दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो जरूर कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो सच में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का दिन एक अच्छी सोच के नाम करें।

खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में होती है। सुबह की चाय की खुशबू, परिवार की मुस्कान या किसी अपने का गुड मॉर्निंग, इन पलों को महसूस कीजिए, यही असली जिंदगी है।

दोस्तों, हर सुबह हमें एक नया मौका देती है पुरानी गलतियों को सुधारने का। तो आज अपने दिन को खूबसूरत बनाइए। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे इजाजत चाहती हूँ। फिर मिलेंगे भूर सुहानी में। मुस्कुराते रहिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संबत 1948 के वैशाख मास की 14वीं तिथि तदनुसार 4 मई 2026 सुबह के 5:53 और ठीक 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आपसे कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। प्रस्तुत करेंगी पूजा भारद्वाज। छह बजकर 44 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम होगा आज सवेरे। समाचार प्रभात सुबह 8 बजे और न्यूज इन इंग्लिश 8:15 पर प्रसारित की जाएगी। सुबह 8:30 बजे आप सुनेंगे लाइव बिलिंगुअल डिस्कशन ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स।

4:10 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और 4:20 पर आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। परिक्रमा कार्यक्रम शाम 4:30 और शाम 5:10 पर कार्यक्रम होगा गाते गुनगुनाते।

शाम 6:10 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार गीत, प्रस्तुत करेंगी विमलेश। 6:30 कार्यक्रम होगा मार्केट मंत्रा।

मधुरिमा कार्यक्रम होगा रात 8:10 पर, प्रस्तुत करेंगी विमलेश। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं अब आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुद्दुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में

0: सुरक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 union territory. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st May and the counting will be held on 24th May. We have a report.
2: All arrangements have been made for today's counting and personnel have already entered the centres. Out of 294 seats, the counting of votes for 293 assembly constituencies will be held today. A 3-layer security arrangement has been established at each counting centre with the deployment of district police, state police and central forces. A total of 200 companies of central forces have been deployed across the venues. Section 163 of the Bharatiya Nyay Suraksha Sanhita has been enforced within 100 meters of the counting centers and the commission has warned of strict action against any dereliction.

संत रूमी कहते हैं कि एक दीपक बनो या एक जीवन रक्षक नौका या एक सीढ़ी बनो, किसी की आत्मा को ठीक करने में मदद करो, एक चरवाहे की तरह अपने घर से बाहर निकलो। 6:12 और 16 सेकंड। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों की संगति कीजिए जो ईश्वर एवं महान गुरुओं के प्रति निष्ठावान हैं, और आप अपने जीवन को सर्वोत्तम जीवन बनता देखेंगे। आत्मज्ञान की शिक्षाओं के सत्य के प्रति निष्ठावान बने रहिए, तब आप अपने जीवन को परमात्मा के वैभव से एवं उनकी महिमा से भरा पाएंगे।

महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिस व्यक्ति को जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती वो कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तुम ये हृदय में अंकित कर लो कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगा।

आचार्य चाणक्य के अनुसार सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए।

महर्षि वाल्मीकि का कथन है कि जगत में नियति ही सबका कारण है, नियति ही समस्त कर्मों का साधन है, नियति ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक मायानगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस मायानगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। असम पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अद्य मतगणनायै सर्वाः सज्जताः जाताः। मतगणना प्रातः अष्टवादने प्रारप्स्यते। प्रैष्य मतपत्राणां गणना सर्वप्रथमं भविष्यति तथा वैद्युतिकी मतदान यन्त्राणां गणना प्रातः सार्धाष्टवादने प्रारप्स्यते। असम राज्ये षड्विंशत्यधिकैकासनेभ्यः केरलम राज्ये चत्वारिंशदधिकैकासनेभ्यः तमिलनाडु राज्ये चतुस्त्रिंशदधिकद्विशत आसनेभ्यः तथा पुडुचेरी इत्यत्र त्रिंशत् विधानसभासनेभ्यः मतगणना भविष्यति। पश्चिम बंगाले त्रिनवत्यधिकद्विशत आसनेभ्यः अद्य मतगणना भविष्यति। फाल्टा विधानसभायै पुनर्मतदानं मईमासस्य एकविंशति दिनांके भविष्यति। तत्रैव मतगणना च मईमासस्य चतुर्विंशति दिनांके भविष्यति।
1: जनादेश 2026।
2: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीयांतरिक्ष नवाचारेण गैलेक्स आई इत्यनेन संयुक्त राज्यामेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेसएक्स इत्येतस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
0: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताज़ा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण।
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडान

0: विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सआई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st of May and the counting will be held on 24th May. We have a report.
2: All arrangements have been made for today's counting and personnel have already entered the centres. Out of 294 seats, the counting of votes for 293 assembly constituencies will be held today. A three-layer security arrangement has been established at each counting centre with the deployment of district police, state police and central forces. And the commission has warned of strict action against any dereliction of duty during the process. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: Tamil Nadu recorded a historic and peaceful polling in all the 234 constituencies spread across 38 districts. Our correspondent has filed this report.
3: Today is the day to know the choice of the voters for 234 constituencies. It is also a day to find out whether the prediction of the exit polls as projected by various agencies, TV channels and individuals are true. As people are likely to gather around counting centers, state and paramilitary personnel have been posted outside the centers to strengthen security and divert traffic accordingly. The counting will begin with postal ballots and then the EVMs. With Sushil Tiwari, Joy, reporting for Akashwani from Chennai.
4: Janadesh 2026.
5: Special program on results of assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
4: Today, the 4th of May 2026.
5: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
4: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
5: Tune into Akashwani Gold along with additional frequencies.
4: From 8:30 a.m. onwards today.
5: Janadesh 2026.
1: Indian space startup GalaxEye has launched Mission Drishti, world's first Optosar satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California, United States. Weighing 190 kilograms, Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded the successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey. The United States and Iran appear no closer to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baghai said the United States has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, said he had examined the proposal and described it as not acceptable. He said Iran has not yet paid a big enough price, signaling Washington's tougher stance as talks remain indirect and mediated. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night, chasing a target of 164 runs set by Punjab Kings. Gujarat Titans scored 167 for 6 with one ball to spare. Sai Sudarshan was the top scorer for Gujarat with 57 runs. Today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants in Mumbai at 7:30. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Odisha. And that is the end of this news bulletin.

जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी तो तेरे पास है, जो मिल गया वही अपना है, जो नहीं मिला वो सपना है। मत गिनो जिंदगी के पल को, पर जियो जिंदगी के हर पल को। गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। 7:11 और 25 सेकंड।

बात करें मौसम की तो मौसम विभाग के अनुसार आज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के समय बारिश और तेज आंधी आ सकती है और शाम के वक्त भी बारिश आने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सूर्य उदय हुआ 5:38 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:58, 7:17 और 5 सेकेंड। थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से सुनते हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित को।

आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 4 मई यानी कि आज के दिन भारत में कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खदानों की गहराई में काम करने वाले श्रमिकों के अथक परिश्रम, योगदान और बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सात 7:23 गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आइए अब सुनते हैं तेरी कसम फिल्म से अमित कुमार की आवाज में ये अगला गीत।

0: रचनात्मक काम मौलिक, नवीन और कल्पनाशील विचारों को हकीकत में बदल देता है। ये केवल कला या पेंटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्या समाधान, लेखन और दैनिक कार्यों को नए दृष्टिकोण से करने की क्षमता का परिचायक है। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल टुडे विद मी शगुन चोपड़ा एंड मनोज, एंड वी आर वेरी थ्रिल्ड एंड पम्प्ड अप टू बिगिन आवर प्रोग्राम। वेल इट इज अ ब्लेंड ऑफ म्यूजिक। वेल वील ऑल्सो शेयर विद यू द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल news, and today's verdict day, so brace yourselves. Well, counting of votes begins today, and also we have metro city updates, and today we'll also discuss some historical information about this day. Today it's 4th of May. Also, there is something special about this day which we will tell you in the history section of the program. First, Manoj, let's begin with the headlines.
2: Ji.
1: So all arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning, which is

0: kids in about roughly half an hour. It will begin, and the counting of postal ballots will be taken up first, and then counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. So shortly it will start. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 union territory. And counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu, and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. So the re-poll for the Falta Assembly constituency will be held on 21st May, and the counting will be held on 24th of May. Tamil Nadu recorded a historic and peaceful polling in all the 234 constituencies spread across all the 38 districts. Our correspondent has filed a report. Listen in.
1: Today is the day to know the choice of the voters for 234 constituencies. It is also a day to find out whether the prediction of the exit polls as projected by various agencies, TV channels and individuals are true. As people are likely to gather around counting centers, state and paramilitary personnel have been posted outside the centers to strengthen security and divert traffic accordingly. The counting will begin with postal ballots and then the EVMs. With Sushil Tiwari, Joy, reporting for Akashwani from Chennai.
2: Janadesh 2026.
3: Special program on results of assembly elections in Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
2: Today, the 4th of May 2026.
3: Our correspondents on the ground will bring the latest developments for you.
2: For in-depth analysis by the experts and latest update of vote counting.
3: Tune into Akashwani Gold along with additional frequencies
2: from 8:30 a.m. onwards today.
3: Janadesh 2026.
4: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरीडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आज मतगणना होगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। भाजपा के मौजूदा विधायक इमकोंग एल इमचेन के निधन के कारण हुए उपचुनाव में 9 अप्रैल को 82.21% मतदान हुआ। इस सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं।
0: Results for the Baramati and Rahuri assembly by-polls in Maharashtra will also be declared today. The Baramati by-poll was necessitated by the death of former Deputy Chief Minister and NCP leader Ajit Pawar in an air crash on 28th of January. His wife and current Deputy Chief Minister Sunetra Pawar is contesting the seat. In Gujarat, the counting of votes of the Umret assembly by-poll in Anand district is being held today at a college in Vallabh Vidyanagar amid tight security. So this by-poll was necessitated after the death of BJP MLA Govind Parmar.
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया। नेपाल के क्षेत्रीय दावों के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ बातचीत के लिए तत्पर है। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नेपाल सरकार इस तथ्य पर पूरी तरह से स्पष्ट और दृढ़ है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पिया धुरा लिपुलेख और काला पानी 1816 की सुगौली संधि के बाद से नेपाल के अभिन्न अंग है। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत और चीन को अपनी चिंता से अवगत कराया है।
0: Now we'll tell you about the successful launch of Mission Drishti satellite. So Indian space startup GalaxEye has launched Mission Drishti, world's first OptoSAR satellite, aboard SpaceX's Falcon 9 rocket from California in United States. This weighs around 190 kilogram. Mission Drishti is the largest Earth observation satellite ever built by a private Indian company. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi lauded this successful launch of Mission Drishti satellite, highlighting it as a major milestone in India's space and innovation journey.
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रदेश

0: योगी की संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
1: The United States

0: to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baqai said the United States has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, he said that he had examined the proposal and described it as not acceptable. He said Iran has not yet paid a big enough price, signaling Washington's tougher stance as talks remain indirect and mediated.
1: हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमान के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही को लगभग बंद कर रखा है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है।
0: Providing you weather updates now, the India Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha.
1: आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
0: वेल, वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई, मनोज
1: जी।
0: सो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड राइडरशिप ड्रॉप टू अराउंड 3 लाख इन अप्रैल। So that's why the CMRL, Chennai Metro Rail Limited, said that 90.18 lakh passengers travelled in metro trains last month. And in March, around 1 crore people travelled, averaging 3.22 lakh daily. Last month's peak daily ridership of 3.65 lakh, it was recorded on April 2 and ahead of an extended weekend. To attract more footfall, the Chennai Metro Rail Limited has pushed event-based travel initiatives such as free rides for IPL 2026 matches and other events which includes marathons.
1: अब दिल्ली की खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की हरियाली ही इसकी जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने शहरवासियों से कहा कि यदि कहीं अवैध रूप से पेड़ कटते हुए दिखाई दें तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1800118600 पर सूचना दें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेदारी का नारा देते हुए नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बैंक अधिकारी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से हाई रिटर्न का लालच देकर 45 लाख से अधिक रुपए की ठगी की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
0: नाउ वील हेड टू बेंगलुरु। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली आर अशोक हैज कंडेम्ड यूथ फॉर स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री एट स्वराज द्वीप इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बाय अनफर्लिंग द नेशनल ट्राइकलर डीप बीनीथ द सी has commended youths for scripting history at Swaraj Dweep in the Andaman and Nicobar Islands. So he has expressed pride at his son Sharad R. Ashok being part of the patriotic adventure. R. Ashok has also congratulated his teammates trained in scuba diving for earning a place in the Guinness World Records in this underwater mission. The record made on May 2nd, it saw participation

0: participation of over 200 skilled scuba divers from across the country, and this feat achieved with support of Andaman and Nicobar administration as well as Indian Defence Forces involved unfurling a massive 60-into-40-meter national flag beneath the sea against all odds posed by strong currents and water pressure. So Sharath has considered this as a moment of immense pride in his life, and he has said that his experience in adventure sports and wildlife conservation, it inspired him to be part of a meaningful national effort.
1: अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार और शिक्षाविद अभय मोकाशी का अपने 69वें जन्मदिन से एक दिन पहले शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। श्री मोकाशी का पत्रकारिता में लंबा करियर रहा। उन्होंने मिडडे में राजनीतिक संपादक और बाद में द फ्री प्रेस जर्नल में स्तंभकार के रूप में कार्य किया। वे पत्रकारिता के शिक्षक के रूप में भी जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर से जुड़े अंकों में हेर फेर के मामले में अपने खुलासे के लिए प्रसिद्ध थे, जिस कारण मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। मुंबई की एक और खबर। महाराष्ट्र पुलिस ने कल्याण में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और लगभग 2,80,000 रूपये मूल्य के चोरी के दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। सूचना के आधार पर बाजार पेट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 28 अप्रैल को कल्याण पश्चिम में एक आरोपी को चोरी के स्कूटर के साथ पकड़ा, जिसके बाद 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कल्याण के विभिन्न हिस्सों से वाहन चोरी करने की बात कबूल की।
0: नाउ वी विल फोकस ऑन हैदराबाद। द फर्स्ट बैच ऑफ हज पिलग्रिम्स डिपार्टेड फ्रॉम हैदराबाद ऑन देयर सेक्रेट जर्नी टू सऊदी अरेबिया। मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज वेलफेयर मोहम्मद असहरुद्दीन सेरेमोनियली फ्लैग्ड ऑफ द पिलग्रिम्स फ्रॉम हज हाउस इन नमपल्ली। A total of 430 pilgrims left in the first flight, marking the start of Hajj operations from Hyderabad. Minister Azharuddin advised the pilgrims to dedicate themselves to prayers and worship during their pilgrimage. He urged them to follow all rules and regulations in Saudi Arabia and pray for Telangana's development. The minister said the Telangana government is committed to providing the best facilities and support for Hajj pilgrims.
1: अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। पहले दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की खबर। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। यहां का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
0: Well, Manoj, it's much the same in other cities as well. Moderate rain, thunderstorm, thunder lightning. So Chennai first is expected to have partly cloudy sky, and as I told you, possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature will be around 29 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees Celsius in Chennai. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature will be around 23 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Hyderabad, again, partly cloudy sky and there is a possibility of development of thunder lightning. The temperature will be around, minimum temperature will be around 26 degrees Celsius and maximum temperature in Hyderabad will be around 41 degrees Celsius, Manoj.
1: और श्रोताओं, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, इसकी जानकारी दे रही है शगुन।
0: Well, yes, Manoj, it is International Firefighters Day. And this day honors firefighters for their service internationally and remembers firefighters who lost their lives during service and to commemorate the firefighters killed in the September 11 attacks. So firefighters, they dedicate their lives to the protection of life and property. And sometimes, listeners, that dedication is in the form of countless hours volunteered over many years. In others, it is many selfless years working in the industry. So in all these cases, it risks the ultimate sacrifice of a firefighter's life. So this is observed on May 4th every year. It is a time where the world's community can recognize and can thereby honor the sacrifices that the firefighters make to ensure that their communities and environment are as safe as possible. And this day, it is also a day in which current and past firefighters, they can be thanked for their contributions as well.
1: Ji. और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 4 मई है. देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है.
0: सो वील टेक आवर लिसनर्स मनोज वे बैक इन टाइम स्टार्टिंग विद द ईयर 1540 वेनिस एंड टर्की साइन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. In 1814, King Ferdinand VII of Spain signed the decree of the 4th of May, returning Spain to absolutism. In 1904 now, United States began construction of the Panama Canal. In 1924, Manoj, German Republic election was held where fascists and communists, they won. In 1925, the year saw League of Nations conference on arms control and poison gas usage. In 1927, first balloon flight over 14,000 feet, it took place at Scott Field, Illinois. In 1927, again this year only, Nicaragua agreed to a U.S. supervised presidential election in 1928. Now, in the year 1979, Margaret Thatcher became the first woman to be elected as Prime Minister of the United Kingdom.
1: Jee. 1994 में आज ही के दिन काहिरा में इसराइल और फलिस्तीनी नेताओं द्वारा फलिस्तीनी स्वायत्तता से संबंधित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. 1999 में आज ही के दिन भूमिगत बारूदी सुरंगों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए ओटावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की पहली बैठक मापुतो मोजाम्बिक में शुरू हुई. 2003 में आज ही के दिन मैक्सिको के अन्ना गुएवेरा ने 35.30 सेकेंड का समय लेकर ग्रां प्री की 300 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया. 2007 में आज ही के दिन बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर बैठक संपन्न हुई. 2008 में आज ही के दिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने भारतीय इस्पात गठबंधन से अपने को अलग किया.
0: In 2022, U.S. Federal Reserve made largest interest rate increase since 2000, which was plus 0.5%, and attempting to combat the fastest rate of inflation in 4 decades. Manoj.
1: जी, और अब याद कर लेते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन जयंती या पुण्य तिथि है.
0: Well, yes. First, let us tell you about Edith Nesbit, the writer and poet, published her books for children. And others as well. She wrote or collaborated on more than 60 such books. She was also a political activist and co-founder of the Fabian Society. This is a socialist organization which was later affiliated to the Labour Party. So the greatest wish of Edith Nesbit was to be remembered as a poet. But her poetry, like much of her adult fiction, is long forgotten. She came to write children's stories in later life and was a responsible she was actually responsible for a string of enduring titles, the most notable being The Railway Children. She has been described as the first modern writer for children, although Wordsworth readers have also been introduced to her talents as a writer of supernatural fiction. I was telling you about Edith Nesbit.
1: आज पुण्यतिथि है टीपू सुल्तान की. उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली कोलार जिला कर्नाटक में हुआ था. टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेरे मैसूर का खिताब अपने पिता से प्राप्त हुआ था. टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों और निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी. ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव किया, और चूंकि अंग्रेजों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे. दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई, और इसी के फलस्वरूप मंगलौर की संधि संपन्न हुई. कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था.
0: हाउ ग्रेट. वेल नाउ लेट अस टेल यू अबाउट अ म्यूजिशियन, अ ब्लूज सिंगर एंड हारमोनिका प्लेयर, पॉल बटरफील्ड. Well, he's mostly associated with the Paul Butterfield Blues Band, which was inducted into the Blues Hall of Fame. He created a blues style that was uniquely his own, preferring single notes as opposed to chords and playing his harmonica. You're listening to his track, Driftin' Blues.

0: आज पुण्यतिथि है पंडित किशन महाराज की। उनका जन्म 3 सितंबर 1923 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। वे बनारस घराने के वादक थे। उन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1973 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। आइए सुनते हैं उनके तबले को।
1: जब कोई अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है तो तबले को भी जुबान हो जाती है। देखिए, एक एक शब्द तबला कहता है कि नहीं, हम मुंह से बोल के इस पर निकाल के दिखला रहे हैं। आप देखें, गणा नाम, गणा नाम, गणपति, गणेश, लंबोदर, सोह, भुजाचार, एकदंत, चंद्रमा, ललाट, राजे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तालदय, धुरपद, गावे, अति विचित्र।
2: Fabulous. Well, yes, we are telling you about Pandit Kishan Maharaj, the legendary Indian tabla maestro, and he belonged to the Banaras Gharana of Hindustani classical music, being a central figure of Banaras Gharana. And we know him for his robust and open sound on the tabla, which we could rightly hear as well. And we also know him for his majestic stage presence and powerful playing style. And this, he's also celebrated for his ability to play a wide variety, Manoj, of rhythmic patterns with unparalleled clarity and speed.
0: जी, आज जन्मदिन है अनंग देसाई का। उनका जन्म 4 मई 1953 को अहमदाबाद में हुआ है। वे एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। देसाई 100 से अधिक टेलीविजन शो और 70 फिल्मों में दिखाई दिए हैं और टेलीविजन श्रृंखला खिचड़ी और उसी नाम की फिल्म में बाबूजी के किरदार के लिए जाने जाते हैं। वे नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और संस्थान के पेशेवर नाट्य मंडली का हिस्सा थे, जहां उन्होंने टेलीविजन और फिल्म जगत में अपना करियर शुरू करने से पहले हिंदी थिएटर के लिए कई नाटकों में अभिनय किया। उनकी मुख्य फिल्में गांधी, परिंदा, नई दिल्ली टाइम्स, परिणति, आशिकी, सर दिलवाले आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके साक्षात्कार का कुछ अंश।
3: मैंने जो 3 साल ट्रेनिंग के बिताए एनएसडी में, बहुत कुछ सीखा मैंने। आपकी पूरी बॉडी के बारे में आपको जानने को मिलता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, साथ साथ रियाज भी होता रहता है। आप जो प्रोग्राम्स, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस करते रहते हैं, 2-4 सिग्निफिकेंट प्लेज मैंने जो रेपर्टरी में किए, सबसे पहला मेरा इम्पोर्टेंट प्ले था मुख्यमंत्री करके, जो बहुत पॉपुलर हुआ था। मेरा रोल भी उसमें काफी इम्पोर्टेंट था। और दूसरा एक महाभोज करके प्ले था, बेगम का तकिया, तुगलक, विरासत, ये 5-7 मतलब कई प्लेस हैं जिसमें अच्छे अच्छे रोल्स मुझे मिले।
0: आज जन्मदिन है त्रिशा कृष्णन का। उनका जन्म 4 मई 1983 को मद्रास में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक त्रिशा ने तमिल सिनेमा में 2 दशकों से अधिक समय तक एक सफल मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना करियर बनाया है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 5 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 1 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड और 1 नंदी अवार्ड शामिल है। तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म जोड़ी में एक छोटी सहायक भूमिका से पदार्पण करने के बाद त्रिशा ने फिल्म मौनम पेसियाधे में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। त्रिशा ने हिंदी सिनेमा में फिल्म खट्टा मीठा, कन्नड़ सिनेमा में पावर और मलयालम सिनेमा में हे जूड से डेब्यू किया।

और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
1: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
2: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है।

0: उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो तीन, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
0: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का 1-1 निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर 1-1 केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा नौगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरलम में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दामन

0: मेरे दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए हैं। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट न सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों

0: कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं। ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को दो टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है न ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
3: At this moment, the postal ballot is being counted. And after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers, and there are 77 counting centers in the states. And one thing I should mention that today 293 assemblies constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered repoll in Falta assembly constituency. on that will be held on 21st.

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सिर्फ वोटों की गिनती नहीं हो रही, आज उम्मीदों का हिसाब होगा, सपनों का फैसला होगा। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी, हर राज्य लिखेगा अपनी कहानी। कहीं सत्ता बचेगी, कहीं सत्ता बदलेगी, कहीं इतिहास दोहराया जाएगा तो कहीं इतिहास रचा जाएगा। पश्चिम बंगाल जहां वोट लिख सकता है नए राजनीति का सवेरा, केरलम जहां बदल सकती है दशकों पुरानी परंपरा, तमिलनाडु जहां टकरा रही हैं दो सियासी विरासतें, असम जहां विश्वास की असली परीक्षा है और पुदुचेरी जहां सत्ता की वापसी की दस्तक है। हर पल बदलते रुझान, हर आंकड़ा तय करेगा भविष्य की दिशा। तो तैयार रहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जनादेश 2026। मेरे साथ हैं मेरे को एंकर निशित कुमार और राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
3: वेलकम लिसनर्स टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ जनादेश 2026, वेर इन विल बी डिस्कसिंग, एनालाइजिंग, डिसेक्टिंग एंड ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड of these elections and the results, so stay tuned. As Anand mentioned, my name is Nishit Kumar. Along with me is political analyst Umesh Chaturvedi. Umesh ji, very welcome to the show.
4: Namaskar.
3: A warm welcome to you all. And yes, as Anand rightly mentioned, today is a day of history to be created and a lot of other things to look forward to.
2: जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपको ताजा रुझान के बारे में बताएं तो असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक पत्र की गिनती की जा रही है, कुछ राज्यों से शुरुआती रुझान मिलने शुरू भी हो गए हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर आगे है। एक सीट पर असम गण परिषद के उम्मीदवार आगे हैं। केरलम में 140 विधानसभा सीटों की मतगणना चल रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके 1 सीट पर आगे है, जबकि टीवीके पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है।

0: पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है.
1: राइट एंड इन द काउंटिंग एज आनंद वाज आल्सो मेंशनिंग अर्ली ट्रेंड्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू ट्रिकल इन फ्रॉम केरला तमिलनाडु असम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एज वेल एंड केरला ट्रेंड्स आर अवेलेबल फॉर 11 सीट्स. कांग्रेस इज लीडिंग इन 5 सीट्स, सीपीआईएम इन 3 सीट्स, बीजेपी आरएसपी एंड इंडिपेंडेंट in one seat each, and in Tamil Nadu trends are available for 2 seats. DMK and TVK are leading in 1 seat each, and in Assam trends are available for 10 seats. BJP is leading in 9 constituencies and an AGP in a 1, and the first trends have also started coming in from the very interesting state of West Bengal. West Bengal is the state wherein eyeballs are all focused. The entire India is looking to that state, and the BJP is leading all 3 constituencies for which the trends are available at the moment. Umeshji, we'd like to start with you. West Bengal, as we mentioned in our opening remarks, is really the state to look forward to this time.
2: बिल्कुल. और एक बात और भी है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे अभी और 5 राज्यों की मतगणना हो रही है. तकरीबन भारत की 19% जनसंख्या अपने नेताओं का चुनाव करेगी, अपने भाग्य विधाता का चुनाव कर रही है, कर चुकी है, नतीजे आने सामने हैं, बाकी हैं. एक चीज देखने की बात है कि इन 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद भी पूरे देश का, बल्कि कहें कि पूरी दक्षिण एशिया का फोकस पश्चिम बंगाल पर है. और इसकी एक बड़ी वजह है. अगर आप याद करें, कुछ साल पहले अमेरिका की एक बड़ी मशहूर पत्रिका ने ममता बनर्जी पर, जो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन पर कवर स्टोरी की थी. उसमें उन्होंने एक बात कही थी, पत्रिका ने लिखी थी, वो ये कहा था कि ममता बनर्जी दक्षिण एशिया की अकेली महिला लोकतांत्रिक नेता हैं जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है या किसी बड़े राजनीतिक परिवार से वो नहीं आती. जाहिर है कि ममता बनर्जी ने जो हासिल किया है 15 साल पहले, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनावों से 2021 में और फिर 2026 में जिस तरह से चुनौती दी है, निश्चित तौर पर इस चुनौती के ही चलते सबसे ज्यादा ध्यान, और मुझे लग रहा है कि हमारे श्रोता भी जो हमसे जुड़े होंगे वो भी यही जानना चाहते होंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है. तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है. और जो रुझान दिख रहे हैं उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह से देश पहले से ही मान चुका था, खासतौर पर एग्जिट पोल आने के पहले ही लग रहा था कि असम में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, तीसरी बार सरकार बनाएगी. और ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी. अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन कांटे की टक्कर कम से कम पोस्टल बैलेट में नहीं दिख रहा है. और एक चीज और भी ध्यान देने की है, बातचीत की शुरुआत हुई, हम लोग अभी लंबी चर्चा करेंगे. डीएमके पहली बार, अगर ये सरकार बनाने की स्थिति में है, जैसा कि रुझान में दिख रहा है कि वो आगे चल रहा है, तो वो इतिहास में पहली बार अपनी सरकार दोबारा बनाए.
1: बिल्कुल.
2: तो एक चीज ये भी है. और जिस तरह से केरल में यूडीएफ आगे चल रहा है और एलडीएफ पीछे चल रहा है, तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इस देश में कहीं भी किसी भी कोने में वामपंथी दलों की सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं होगी.
1: दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेक उमेश जी, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दैट द लेफ्ट, द सो कॉल्ड लेफ्ट, वुड बी जस्ट अबाउट नोवेयर अराउंड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेक. एंड अनदर पॉइंट दैट यू मेक अबाउट द डीएमके काइंड ऑफ रिटेनिंग पावर इन, इफ एट ऑल दे रिटेन पावर इन तमिलनाडु, वुड बी अनदर बिग थिंग. बट माई क्वेश्चन हियर इज दैट, टॉकिंग ऑफ AIA डीएमके हियर, डू यू थिंक दैट पोस्ट द जयललिता फेज, वेन शी वॉज देयर, ऑफकोर्स शी वॉज द पार्टी, शी वॉज द थिंग अराउंड विच द एंटायर the party that the AIADMK revolved around her or guided around her, like now post Jayalalitha phase, how do you see the AIADMK kind of faring or kind of holding on to it?
0: उमेश जी, इस सवाल पर आप जरूर आइएगा. हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ताजा हाल यह है कि असम में जो ताजा रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है. केरलम से जो अभी ताजा रुझान आ रहे हैं, वहां पर सीपीएम 3 पर आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 पर आगे चल रही है, और वहां पर बीजेपी 2 सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है. पश्चिम बंगाल का ताजा हाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 4 पर बढ़त बनाए हुए है.

0: जबकि वहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है। तमिलनाडु जिसकी चर्चा निश्चित कर रहे थे, डीएमके 8 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, और जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है टीवी के, वहां पर वो 1 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी आप
1: निशित जी
0: डीएमके पर बात कर रहे हैं,
1: निशित जी के सवालों पर हम आते हैं। निशित जी, एक चीज ध्यान में रखने की है कि

0: है वो दो धड़ों में साफ बंटी नजर आ रही थी और उसका चुनावी नतीजों पर बड़ा असर पड़ा था। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उसने तो खुद लड़ाई लड़ी है, लेकिन तमिलनाडु में उसने गठबंधन बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जो AIDMK प्रमुख पलानी स्वामी हैं उन्होंने कुछ मामलों पर मतलब झुकने से इनकार कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि टीवी की जो पार्टी है उसको भी शामिल किया जाए गठबंधन में, लेकिन पलानीसामी इसके लिए तैयार नहीं हुए। और इसका असर अगर यही रहेगा तो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब EBM मशीनें खुलने लगती हैं तो आप देख चुके हैं अतीत में नतीजे बदलने शुरू हो जाते हैं पोस्टल बैलेट के, ये बड़ा शुरुआती रुझान है। लेकिन अगर ऐसे ही रुझान रहे तो निश्चित तौर पर AIDMK को सोचना होगा कि वो कहां तक इस तरीके से आगे बढ़ सकती है, कहां तक पहुंच सकती है।
1: उमेश जी आपको रोकेंगे, इलेक्शन पोर्टल पर जो अभी ताजा रुझान आ रहे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से जो रुझान आ रहा है वहां ममता बैनर्जी पीछे चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में उन्हें मात दी थी, इस बार भवानीपुर से ताजा रुझानों में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बैनर्जी पर बढ़त बना ली है।
0: बिल्कुल, इस तरह से अगर देखें यही अगर रहा तो ये तय मानिए कि जो 2011 में किसी ने नहीं सोचा था कि 34 साल के शासन का ममता बनर्जी की अगुवाई में अंत हो सकता है वामपंथी दलों के शासन का, कुछ कुछ वही स्थिति ऐसी इस बार भी होने जा रही है और ऐसी स्थिति दिख रही है। अगर यही रहा तो अब बात की बात है, लेकिन
2: अर्ली डेज, यस
0: बिल्कुल,
2: यस यस एब्सोल्युटली, एंड दिस इज रियली यू नो इफ फॉर द मोमेंट इफ यू कैन से दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इफ यू कैन से, बट स्टिल अर्ली डेज एज यू मेंशन्ड अर्लियर।
1: केरलम की बात करें तो केरलम में मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है, विधानसभा की 140 सीटों में से शुरुआती रुझान आ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे है, वामपंथी गठबंधन यानी LDF 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF 7 सीटों पर आगे है और अन्य का खाता नहीं खुला है। थोड़ा अगर विश्लेषण की बात करें उमेश जी, चूंकि आप बहुत समय से भारतीय राजनीति को कवर करते रहे, पश्चिम बंगाल में अगर आंकड़ों की बात करें तो जो ग्रोथ रेट है वो भारत के दूसरे राज्यों के ग्रोथ रेट से सबसे पिछड़ा ग्रोथ रेट पश्चिम बंगाल का है, जो आंकड़े जारी हुए, विकास की दर वहां सबसे कम है। मतदाताओं के ध्रुवीकरण की बात होती है, जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है। इस बार के चुनाव में वहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी एक बहुत अहम मुद्दा रहा, वामपंथियों ने अपना नैरेटिव सेट किया कि अगर आप BJP को यहां पर लाते हैं तो इस राज्य का भला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के सरकार का नैरेटिव सेट कर रही है और वो ये कह रही है कि ममता बैनर्जी के शासन में काफी ज्यादा हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में। मतदाता किस फैक्टर से ज्यादा प्रभावित नजर आया आपको?
0: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो अभी राजधानी है ना कलकत्ता, वो कोलकाता जिसका अब नाम हो गया है, वो भारत की आजादी के पहले अंग्रेजों की पहली राजधानी थी और उसका असर आप देखेंगे कि पूर्वी भारत ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बहुत ज्यादा रहा एक दौर में। बल्कि हम लोग भी जब छोटे थे तो जब भी किसी को नौकरी की तलाश होती थी, रोजगार की तलाश होती थी, इवन कुछ अच्छी पढ़ाई की तलाश होती थी तो लोग कलकत्ता की यात्रा करना पसंद करते थे, वहां जाना पसंद करते थे। पश्चिम बंगाल में जमाने में औद्योगिक साम्राज्य था, जूट की मिलें थी, लोहे का मिले थी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों को की मांग को लेकर के नक्सलबाड़ी का जो आंदोलन शुरू होता है और उसके बाद वामपंथी दलों की सरकार बनती है 1977 में, उसके बाद से वहां से औद्योगिक जो चीजें हैं वो बदलने लगती हैं, औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने लगता है, उद्योग ठप पड़ने लगते हैं, उद्योग वहां से जाने लगते हैं। आज भी आप देखिएगा कि जितने भी बड़े खासतौर पर उत्तर भारत के उद्योग हैं, दो तीन बड़े जिनका नाम आजकल चल रहा है, उनका नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उनको देखेंगे और उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो पते देखेंगे तो वो कलकत्ता का ही दर्ज है। मतलब ज्यादातर जो बोर्ड्स थे, जो उद्योग साम्राज्य थे, वो कोलकाता से चलते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में LDF की जो लेफ्ट फ्रंट की जब से सरकार आती है तो देखते हैं कि धीरे धीरे वो ग्रोथ रेट डाउन जाती है। हालांकि लेफ्ट फ्रंट का एक बहुत बड़ा योगदान यह रहा कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उन्होंने बहुत जमीनी स्तर पर किया। ममता बनर्जी जब 2011 में आई तो उनको लेकर के एक उम्मीद थी कि वो चीजों को बदलेंगी। हालांकि एक चीज और भी देखिए, तो उनका जो एक कंट्राडिक्शन है उसमें,

0: शायद देश ने उसमें समझने में गलती की कि वो सिंदूर और नंदी ग्राम के आंदोलन से उभर के आई थी, और वो आंदोलन क्या था, वो भी औद्योगिकरण के खिलाफ था। और आप देखिए कि जो टाटा की नैनो फैक्ट्री लगनी थी वहां वो लग नहीं पाई, और जो अभी प्रधानमंत्री है उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने टाटा को बुला करके गुजरात में नैनो की फैक्ट्री लगवा दी। तो एक परिदृश्य बदलने की जो शुरुआत थी, कोशिश थी, वो वैसी दिखी नहीं। और दूसरी जो हिंसा की जो बात आप कर रहे हैं, पिछले जो विधानसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए थे, और हजारों की संख्या में लोगों को जो असम से सटे हुए इलाके थे वहां जाना पड़ा या स्कूलों में शरण लेनी पड़ी थी। तो ये सब चीजें थी जिस पर मतदाता बदले हुए नजर आए। एक चीज और है, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश भविष्य में सोचता है, लेकिन होने क्या लगा था हाल के कुछ वर्षों में, आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों में कि वो उल्टा होने लगा था। अभी आप देखेंगे कि बिहार को कहा जाता है ना मजदूर का सबसे बड़ा सप्लायर, आप हम लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बैठे हैं, आप देखिए घरों में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा कहां से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं। जो ह्यूमन जो स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन हो रहा है, हाँ ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें भी बंगाल से सबसे ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे।
1: वेलकम टू दैट उमेश जी, इन द मीनवाइल वी लाइक टू say that Assam, in Assam 38 out of 126 trends, of course as of now 33 seats for the BJP. It feels like coming going in the direction of the BJP and
2: Janadesh 2026
3: Assam, Keralam, Tamil Nadu, Paschim Bengal aur Puducherry ke chunav natijon par vishesh karyakram Akashvani ke saath
4: जनादेश 2026 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की गिनती चल रही है और हम ताजा रुझान आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ को एंकर हैं निशित कुमार, साथ ही दो राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: यस, बिफोर वी वेंट इनटू द ब्रेक, उमेश जी, वी वर टॉकिंग अबाउट असम 33 seats for the BJP, it seems for the moment going their way out of the 38 trends, of course, trends, very early days as of now. And we were talking about the West Bengal, Umeshji, this time 92%+ of voting, that actually gives some direction to which way it probably, because generally it has been the trend, generally it has been like a feature that whenever there has been bumper voting or something like this happening, it has been like it goes the other way, as that is the anti-incumbent way.
0: बिल्कुल। और एक चीज और भी है जो आप देखेंगे कि एग्जिट पोल जब आए थे तो बहुत सारे लोगों ने एग्जिट पोल को नकारने की शुरुआत की थी, उसको बहुत जोर शोर से नकारा भी था। लेकिन एक चीज ध्यान में, हम लोग क्या है ना, अपनी स्मृति बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी स्मृति बहुत कमजोर होती है। 2005 का दूसरा बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 में बिहार में दो बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार जो जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था उसमें क्या हुआ था कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था, तो किसी भी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसमें एलजेपी को 29 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार जो बाद में मुख्यमंत्री बने वो बहुत पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन एलजेपी ने समर्थन नहीं दिया। तो बाद में हंग असेंबली भंग हुई थी और फिर दोबारा जो चुनाव हुए थे, याद कीजिए, चुनाव आयोग के जो सलाहकार थे उस समय केजे राव, उन्होंने भारी संख्या में गैर बिहार के राज्यों से, पंजाब से, तमिलनाडु से फोर्स बुलाई। और आप जानते हैं कि सिवान जो सबसे मशहूर और सबसे चर्चित जिला होता था, जहां आप सोचिए कि सीधे सीधे पुलिस अफसर से वहां के एक व्यक्ति ने सीधे सीधे मुकाबला किया था, वहां पंजाब पुलिस ने चुनाव कराया था। कुछ कुछ यही स्थिति इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की है। जो
1: इन द मीनवाइल देयर इज दिस ब्रेकिंग न्यूज दैट स्टालिन, मिस्टर उदय निधि स्टालिन, ही इज काइंड ऑफ नॉट लीडिंग एट दिस मोमेंट सो फार एज तमिलनाडु इज कंसर्न, दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फॉर द मोमेंट।
4: जी बिल्कुल, अगर ताजा रुझानों की एक बार फिर बात करें तो असम में इस समय भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीट पर आगे है, केरल में कांग्रेस 10 सीट पर आगे चल रही है, जबकि सीपीएम 2 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी वहां 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल जिस पर सबकी नजरें हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे है, तृणमूल कांग्रेस 9

0: पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। तमिलनाडु में डीएमके 12 सीट पर आगे है, एआईएडीएमके 5 पर बढ़त बनाए हुए है। संजीव जी, पश्चिम बंगाल की चर्चा की हमने, असम की अगर थोड़ी चर्चा करें, वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की जो छवि थी, उन्होंने मामा की छवि बनाई उन्होंने पूरे चुनाव में, और काफी आक्रामक प्रचार किया, खासकर कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने, हमने देखा कि पवन खेड़ा ने किस तरह की टिप्पणी की और उसके बाद किस तरीके से मामले रहे। लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, एक तरफा बंपर जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है।
1: जी बिल्कुल, कांग्रेस वहां उन्होंने कोशिश करी कि तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को आगे करने की, और एक तरह से जो पुरानी ट्रेडिशन थी उसको आगे चलाने की कोशिश करी, लेकिन कांग्रेस पकड़ नहीं पाई, मतलब द ग्राउंड सिचुएशन को पकड़ नहीं पाई। तो हिमंता बिस्व शर्मा फर्मली इन सैडल हैं, और जैसा कि एग्जिट पोल्स भी बोल रहे थे कि हिमंता बिस्व शर्मा बीजेपी लेड अलायंस पूरा बहुमत से आगे आ रही है, तो रुझान इनिशियल जो आए हैं, हालांकि ये इनिशियल है बहुत, और अभी पहले पोस्टल बैलेट फिर ईवीएम शुरू होंगे, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस डेंट नहीं कर पाई, कांग्रेस पकड़ नहीं पाई ग्राउंड सिचुएशन को।
0: हमारे श्रोता ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कि असम में क्या विकास के नाम पर मतदाताओं ने वोट किया या कमजोर विपक्ष का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला?
1: मैं कहूंगा कि दोनों सिचुएशंस हैं, लेकिन कमजोर विपक्ष ज्यादा निर्भर किया है इस इलेक्शन में। प्लस बीजेपी इस इलेक्शन को पोलराइज भी कर पाई है, जैसे कि उन्होंने घुसपैठियों की बात बहुत करी, जैसे ऑल टॉप लीडर्स अमित शाह इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर घुसपैठियों की बात की, घुसपैठियों को निकाल देंगे। फिर कांग्रेस ने थोड़ा सा कोशिश करी नेगेटिव राजनीति करने की, कि हिमंता बिस्व शर्मा की वाइफ को और उनकी करप्शन को लाने की आगे कोशिश करी, लेकिन वो चला नहीं, वो उल्टा पड़ गया और वो कांग्रेस अपने उसमें एम्ब्रॉयल हो गई। तो ग्राउंड सिचुएशन, और अगर आप देखें कि इलेक्शन से कुछ देर पहले फॉर्मर कांग्रेस एमपी, कांग्रेस का सिटिंग एमपी, कांग्रेस के कुछ देर से जैसे लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि किस तरफ राजनीति जा रही है। राजनीतिक जो राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियंस, बहुत समझते हैं आगे कि कैसे आगे क्या चल रहा है। तो जिस तरह से एक से बाद एक दूसरे कांग्रेस के लीडर्स निकल रहे थे कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि बीजेपी स्ट्रांगली इमर्ज कर रही है।
2: राइट, इन द मीनवाइल सुवेंदु अधिकारी ऑफ द बीजेपी इज लीडिंग फ्रॉम बोथ द सीट्स, दैट इज भवानीपुर एंड नंदीग्राम। दिस इज बिग, दिस इज ह्यूमंगस। संजीव जी, एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग डिस्कसिंग अबाउट असम, वन थिंग ऑफ कोर्स इज दैट हाउ द कांग्रेस पार्टी काइंड ऑफ dealt into that negative campaigning, if we may say that, and the BJP mostly, of course, the incumbent chief minister Mr. Sarma, he has been very aggressive right from the very beginning, but at the same time probably he has delivered on the ground as well.
1: That's right. Assam has been a traditional Congress stronghold. But over the years, Hemanta Biswa Sarma was the blue-eyed boy of Mr. Tarun Gugoi, who was the chief minister for a very long time there. Now, the Congress tried to play its card on carrying on the legacy of Mr. Tarun Gugoi by putting forward his son, Gaurav Gugoi, as their leader. However, on the ground, it seems that the Congress has lost its charm on the ground, because Hemanta Biswa Sarma knows the area, the state,
2: and also the pulse of the people. Yeah. Yes,
1: he so is, he's yes. been he's been focusing on the people. He's been focusing, and the BJP on the other hand is giving it a fillip by adding the angle of infiltrators and those who migrated from Bangladesh and all that. So on one side, development is going on. On the other hand, this narrative is also going on. So Congress could not actually capture the narrative in the state.
2: Right. Umesh ji, we were just discussing about West Bengal and the bumper voting which happened this time, 92%+. This is humongous. Now, there has been this talk of infiltration, the Rohingyas and all, crossing into the Indian side from Bangladesh and other parts as well. So now this time it seems the central leadership as well as the election commission, they have been kind of holding fort with very you know, that strong kind of iron face. How far do you think that the tightening of the screw

0: rules so far as the security and these things are concerned has any bearing on these election results?
1: दो चीजें हैं। पहले तो आपके सवाल में दो चीजों का और इशारा है। पहला तो ये है कि घुसपैठ को लेकर के इस बार सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसको मुद्दा सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बनाया किसने था, खुद ममता बनर्जी ने। और अगर आप याद कीजिए 2011 के चुनाव में उन्होंने खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की थी कि केंद्रीय बलों की निगरानी में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो। तो वो खुद मानती थी कि उस समय पश्चिम जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है या कोलकाता पुलिस है उसकी निगरानी में चुनाव सही तरीके से नहीं हो सकते। उम्मीद ये थी की जा रही थी कि ममता बनर्जी जब आएंगी शासन में, जो आई भी 2011 में, तो आएंगी तो जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसको सॉल्व करेंगी, उसका उन समस्याओं का समाधान करेंगी। लेकिन ठीक उसी तरह से वो उसी राजनीति में पगती चली गई जिस राजनीति में पहले सीपीएम की लीड वाली सरकारें होती थी और जिसका वो विरोध करती थी। तो घुसपैठ तो उनका मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उनके हाथ से लप का है। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी जीतती हुई दिख रही है रुझानों में पश्चिम बंगाल में, वो भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी है ना, भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले हिंदू महासभा के नेता होते थे, वही पश्चिम बंगाल से ही आते थे, कोलकाता से आते थे। तो एक तो बड़ा मलाल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, भले वो कहे ना कहे सार्वजनिक रूप से कि जहां के उसके संस्थापक थे वहीं वो नहीं अपनी
0: घर छोड़ने वाली।
1: दूसरी एक चीज और याद कीजिए कि लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा ट्रेमेंडस विकास हुआ है। 1967 में जो संविध सरकारें बनी थी, सात राज्यों में कांग्रेस सीधे सीधे हारी थी, तो उस समय विपक्ष का जो गठबंधन था कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, उस गठबंधन में भारतीय जनसंघ भी शामिल था और उस भारतीय जनसंघ की ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 24 परगना जिले की एक सीट गोसाबा पर गोविंद चंद्र मंडल जीते थे। वो एससी रिजर्व सीट थी और पहली बार जनसंघ ने 1967 में खाता खोला था और बाकी 57 सीटों पर वो नहीं हारी थी। तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मलाल रहा भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरा जो घुसपैठ वाला मामला है ना, घुसपैठ के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर बहुत उछाला है, खासतौर पर 2016 के बाद से वो लगे हुए हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं?
2: जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में इस समय 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों पर आगे नजर आ रही है और तृणमूल कांग्रेस को शुरुआती रुझान में 25 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। संजीव जी, तमिलनाडु में जो इस समय स्थिति बन रही है 26 सीटों के रुझान आ रहे हैं, जहां डीएमके 11 पर आगे है, कांग्रेस 2 पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएमके 6 पर आगे है। लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके। देखिए इस समय वो 6 पर आगे चल रहे हैं और एआईडीएमके भी 6 पर आगे चल रही है। एग्जिट पोल में कुछ ने उनको ट्रिपल डिजिट में भी सीटें दी हैं, कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप?
3: देखिए तमिलनाडु की राजनीति हमेशा आप देखेंगे काफी अरसे से पर्सनालिटी बेस्ड रही है, चाहे वो एमजी रामचंद्रन हो, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो जयललिता हो, और अब नया फैक्टर जो आ रहा है वो विजय है। तो विजय एक्टर रहे हैं तो, और उन्होंने यूथ के ऊपर बहुत उनका इन्फ्लुएंस रहा है। आपने देखा होगा उनकी रैलीज में कितना बहुत रश होता है
2: जी,
3: और एक रैली में तो
2: बड़ी तादाद में नजर आए,
3: महिलाओं का भी सपोर्ट उसको है। तो आप देखेंगे यूथ और महिलाएं जहां जा रही हों, तो इसीलिए अभी सबसे बड़ी बात यह है तमिलनाडु में जो देखने वाली कि द्रविडियन पार्टीज जो होल्ड करती थी फोर्ट, जो राज करती थी पहले, कांग्रेस करा करती थी बहुत पहले, लेकिन जब से द्रविडियन पार्टीज आई, जो रीजनल आइडेंटिटी को और लैंग्वेज को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए ये जो पार्टीज आगे आई, उसके बाद से आइदर वे डीएमके या एआईडीएमके दोनों अल्टरनेटिवली पावर में आ रही हैं। कुछ दो बार तीन बार आती हैं फिर दोबारा दूसरे आ जाते हैं, लेकिन इस बार द्रविडियन पार्टीज को पिछड़ने मतलब कि क्या वो पावर से बाहर जाएंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और टीवीके एक होप दे रहा है यूथ को वहां की और महिलाओं को, और अगर इन दोनों की सपोर्ट है तो आई थिंक महिलाएं 50% ऑलरेडी हैं और यूथ प्लस कर लो आप 25%, मतलब टोटल यूथ 42% है वहां स्टेट में।
2: बहुत संक्षेप में, चूंकि हम न्यूज ब्रेक के लिए भी जाने वाले हैं, ऐसी खबरें आई कि

0: भारतीय जनता पार्टी विजय को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी, उनके साथ एक समझौता करना चाहती थी। खबर यह भी थी कि राहुल गांधी टीवीके के साथ समझौता करना चाहते थे। क्या विजय को इस बात का अंदाजा था कि वो अकेले दम पर तमिलनाडु में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसलिए वो अकेले लड़े?
1: अकेले इसलिए भी लड़े उन्होंने कि अपनी आकलन कर लें कि कितनी उनकी पोजीशन है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे थे क्योंकि उनको मास बेस्ड सपोर्ट था। उनकी रैलीज में जैसे आए, हालांकि रैलीज एक यार्डस्टिक नहीं माना जाता, रैलीज ममता बनर्जी की भी लेफ्ट के टाइम बहुत होती थी, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी, बट पावर में नहीं आ पाई, लेफ्ट को डीथ्रोन नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जो जैसे लग रहा है, और प्लस बीजेपी के साथ वो पहले नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो कुछ लाइक माइनॉरिटी वोट्स को एंटी हो जाती, तो प्री पोल अलायंस की जगह मुझे लग रहा है पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है अगर वो ऐसी इमर्ज करके आए, क्योंकि उनकी अगर पार्टी थ्री फिगर में आए तो पोस्ट पोल अलायंस हो सकती है।
2: राइट, वेरी ब्रीफली बिफोर स्लिप इनटू अ ब्रेक फॉर केरला, द एलडीएफ इज लीडिंग इन 8 सीट, द यूडीएफ इन 21, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली द बीजेपी एज वेल इज लीडिंग इन 3 सीट्स, द बीजेपी प्लस दैट इज द अलायंस इन केरला। Umesh ji, Sanjeev ji will be slipping into a quick break for now for the news bulletins, and we'll be back at 9:10 a.m. just in 10 minutes from now with more and more discussions and more analysis. So listeners, just don't go away, stay tuned, and we'll be back right now.
3: Janadesh do
4: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Mukesh Kumar. असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीट के लिए हो रही है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है। पश्चिम बंगाल में 293 सीट में से 54 सीट के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 41 सीट पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 11 सीट पर आगे चल रहा है, अन्य 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। राजकीय फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीट में से 26 सीट के रुझान मिल गए हैं। एआईएडीएमके गठबंधन 6 सीट पर आगे चल रहा है, डीएमके गठबंधन 13 सीट पर आगे है और अन्य 7 सीट पर आगे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की 140 सीट में से 31 सीट के रुझान मिल गए हैं। यूडीएफ 20 सीट पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 3 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि एलडीएफ 8 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। असम में विधानसभा की 126 सीट में से 43 सीट के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 36 सीट पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 7 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 1 सीट पर आगे है। उधर 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी हो रही है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलाकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं।
3: जनादेश 2026।
4: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। नेपाल ने कहा कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज की खाड़ी से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर दी थी।

0: उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। यूरोपीय देशों के नेता दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के लिए आर्मेनिया पहुंच गए हैं। आज 30 से अधिक यूरोपीय नेता यूरोपीय राजनीतिक समुदाय सम्मेलन ईपीसी में शामिल होंगे। कल पहला यूरोपीय संघ आर्मेनिया शिखर सम्मेलन होगा। इसमें यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बीच कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आर्मेनिया में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देश भर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकियां कंपनियां, स्टार्टअप्स और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots being taken up first, which will be followed by electronic voting machines. Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Keralam, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Early trends have started coming in. Ruling BJP has taken an early lead in Assam. The party is leading in 32 seats of the 45 constituencies for which trends are available. Congress is leading in 6 seats, AGP in 5 seats and others are leading in 2 seats. In West Bengal, BJP has taken an early lead in 43 seats out of the 62 constituencies for which trends are available. Ruling Trinamool Congress is leading in 17 seats, while Congress is in the lead in 2 constituencies. In Keralam, trends are available for 34 seats. Congress has taken early lead in 12 constituencies, states ruling CPM in 7 seats and its allies CPI, 2 seats, RSP, 1. Kerala Congress is leading in 3, BJP in 2 seats, while Kerala Congress J is leading in 1 seat. In Tamil Nadu, trends are available for 28 seats, ruling DMK is leading in 12, while TVK leading in 8, and AIA DMK is leading in 6 seats. Congress is leading in 2, and others in 1 constituency. The first trends have started coming in from Puducherry. BJP is leading in 1 seat, for which trend is available. The counting of votes for 7 assembly bipolls in 5 states was also being taken up this morning. The 7 seats are Umret in Gujarat, Bagalkot and Davangere South in Karnataka, Rahuri and Baramati in Maharashtra, Koridang in Nagaland and Dharmanagar in Tripura. Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate a North Tech Symposium on the theme Raksha Triveni Sangam, where technology, industry and soldiering converge in Prayagraj, Uttar Pradesh today. The Ministry of Defence informed that the symposium will serve as a vibrant platform to showcase and integrate state-of-the-art indigenous technologies to overcome operational challenges. India has rejected Nepal's claim over Lipulekh Pass, termed it as a long-standing route for the Kailash Mansarovar Yatra since 1954, and the Yatra through this route has been going on for decades. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal, in a social media post, said this in response to claims related to border issues made by Foreign Ministry of Nepal in the context of the annual Kailash Mansarovar Yatra. He stressed that India's position in this regard had been consistent and clear, and this is not a new development. Mr. Jaiswal pointed out that

0: India has consistently maintained that such claims are neither justified nor based on historical facts and evidence. The United States and Iran appear no closer to a breakthrough as Washington pushes back on key elements of Tehran's proposed roadmap to end the conflict, even as a fragile ceasefire remains under pressure across West Asia. Iran's government spokesperson Ismail Baghai said the U.S. has responded to Tehran's 14-point plan aimed at ending the war, adding that the response is currently under review. U.S. President Donald Trump, speaking to Israeli media, said he had examined the proposal and described it as not acceptable. Meanwhile, United States will launch Project Freedom to guide countries with ships stranded in the Strait of Hormuz. President Donald Trump said this effort will help hundreds of vessels and some 20,000 seafarers. The India Meteorological Department has forecast thunderstorms accompanied with hailstorm over Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand for today. Similar weather conditions are also likely to prevail over parts of Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. It also predicted heavy rainfall at isolated places over Bihar, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand and West Bengal. Coastal Andhra Pradesh is expected to witness hot and humid weather conditions today. Amid intense summer heat, the national capital witnessed rain lashing several parts this morning. And that is the end of this news bulletin.
1: जनादेश 2026
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम
3: जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन सिर्फ आंकड़ों का नहीं, इतिहास का दिन है। सुबह की हर किरण के साथ खुल रहे हैं लोकतंत्र के वो पन्ने जिन पर जनता ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरलम तक, तमिलनाडु से असम और पुदुचेरी तक, हर राज्य एक कहानी कह रहा है, उम्मीदों की, संघर्ष की और सत्ता की। कहीं ताज बचेगा, कहीं तख्त बदलेगा, कहीं सपने सच होंगे तो कहीं वर्षों की मेहनत धूल में मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल जहां हर वोट एक संदेश है, केरलम जहां विचारधाराओं की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर है, तो वहीं तमिलनाडु जहां सत्ता की बिसात पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। असम नेतृत्व की परीक्षा है, तो पुदुचेरी जहां सत्ता की वापसी या बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। हर पल बदलते रुझान, हर क्षण नई हलचल और इन सब के बीच आपके साथ है आकाशवाणी। ये सिर्फ गिनती नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है जिसकी हर धड़कन, हर अपडेट, हर मोड़ हम आपके लिए जनादेश 2026 में लेकर आए हैं। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरे को एंकर निशित कुमार और हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं दो राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी और संजीव चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
4: वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ जनादेश 2026। एज आनंद वाज मेंशनिंग, वी आर कवरिंग ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली राइट फ्रॉम असम टू वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु टू केरलम टू पुडुचेरी। सो स्टे ट्यून, वी विल बी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट when it comes to breaking news as well as insights, political analysis, more and more. So just stay tuned. And for now, when it comes to West Bengal, the BJP is leading on 48 seats, up 21 from the last time, Trinamool on 29, down 24 from the last time, that is 2021. This is so very significant. And when it comes to Assam, the BJP is leading, the BJP Plus is leading on 42 seats. In Keralam, the LDF on 15 and the UDF on 31 seats. And BJP, more significantly, BJP Plus, that is, on 3 seats in Puducherry. Just one trend at the moment coming. And Sanjeevji, if we may begin with you again. When we talk about the West Bengal, 48 seats at the moment for the BJP, this is tremendous. Of course, as the exit polls would suggest that this would be neck and neck, but it seems to be going the other way around this time.
5: Yeah, it seems it's going one way. And for the BJP, which has been, earlier the Jan Sangh and earlier the Hindu Mahasabha, you know, Hindu Mahasabha had a government in West Bengal in the pre-partition days. Mm. So it would be a return in power for the BJP. And, going by the

0: Friends, Mamata Banerjee is also trailing in her Bhabanipur constituency where Subhendu Adhikari is, you know, leading. So for Subhendu Adhikari, you know, who has emerged as the leader for the BJP, you know, it'll be a double triumph because last time also he defeated Mamata Banerjee
1: Nandigram.
0: From Nandigram. And this time he's contesting from Nandigram as well as Bhabanipur.
2: Yes.
0: So it'll be a real double for him. And the indications right now are that the reign of Mamata Banerjee, you know, is coming to an end because all eyes are on West Bengal because this has been the most crucial election. And Mamata Banerjee has also fought, both Mamata Banerjee and the BJP have fought very strongly, you know, this time.
2: Right. And
3: असम में जो ताजा रुझान है वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सरकार बनाने की तरफ भी आगे जा रही है। 40 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 9 पर आगे चल रही है। पुद्दुचेरी से पहला रुझान सामने आया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। दिलचस्प लड़ाई तमिलनाडु में जारी है जहां पर सत्ताधारी डीएमके 12 सीट पर आगे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पर आगे है लेकिन वहां पर सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके 14 सीटों पर आगे चल रही है। एआईएडीएमके 6 पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त है। और सबसे बड़ी चर्चा जो पश्चिम बंगाल पर चल रही है वहां भारतीय जनता पार्टी ताजा रुझानों में 49 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 30 पर आगे है। कांग्रेस 2 पर आगे है जबकि अन्य जो है वो 1 पर आगे है। उमेश जी, अगर बंगाल की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे थे वहां पर बीजेपी और तृणमूल के बीच बहुत बड़ा गैप था लेकिन पिछले 15 मिनट में, यानी जो हमारे श्रोता समझ रहे हैं, जो पोस्टल बैलेट का दौर लगभग समाप्त हो गया, आधे घंटे चलता है अब जो है वो ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है, वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने उस गैप को कम तो किया है।
4: बिल्कुल कम किया है लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि उससे लगभग 60% ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और एक चीज देखना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी। पिछली बार 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 38 सीटें ऐसी थीं जो वो 5% मार्जिन से, उससे भी कम मार्जिन से वो सीटें हारी थी और करीब 43 सीटें ऐसी थीं जहां 10% के मार्जिन से वो हारी थी। इन सीटों पर उसने बहुत काम किया है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते ऑफ द रिकॉर्ड तो वो बताते थे कि हमने इन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस इसलिए किया कि यहां करने के लिए बहुत ज्यादा था। और एक चीज और है, जो अल्पसंख्यक बहुल 80 सीटें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो की लेकिन उस तरह से मेहनत नहीं की जैसे कि इन सीटों पर की। और जो रुझान में दिख रहा है वो वही परिलक्षित हो रहा है। हालांकि अभी ये बड़ा शुरुआती है।
3: जी उमेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि महिला केंद्रित जो योजनाएं हैं उससे सरकार को बम्पर फायदा मिल रहा है। झारखंड में देखे तो हेमंत सरकार ने मैया योजना की शुरुआत की, वहां पर वो जीते। छत्तीसगढ़ में भी लाभ मिला, मध्य प्रदेश में भी लाभ मिला। यहां पर ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना चलाती हैं, 1000 रुपए मिलते हैं हर महीने। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतेंगी 500 रुपए और बढ़ा देंगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो 3000 रुपए वो हर महीने हर महिला को देंगी। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में?
4: अब बिल्कुल, जब कोई सरकार जीत बनाने की स्थिति में कोई पार्टी आती है और कोई सरकार हारती है तो ये बहुत सारे फैक्टर तो काम करते ही हैं। और आमतौर पर ये कहा जाता रहा है, देखा जाता रहा है कि जो सरकार में रहता और जिन्होंने दे दिया तो जनता और वोटर सबसे ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर जो रुझानों में दिख रहा है पश्चिम बंगाल में वैसा ही अगर ऐसा रहा तो निश्चित तौर पर जो भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वहां ये जो ट्रेंड रहा है ना कि जो दे रहा है उसी पर ज्यादा भरोसा है तो उससे बदलाव आ रहा है। लेकिन क्यों बदलाव आ रहा है इसको भी हमें थोड़ा सा देखना और सोचना पड़ेगा। एक चीज है कि जैसे आरजी कर अभी कुछ महीने पहले आप देखिए अगस्त 2025 में जो आरजी कर में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और जिस पश्चिम बंगाल में एक सवाल तृणमूल की ओर से उठता रहा कि ऐसे तो बहुत सारे पूरे देश में होते रहे हैं, लेकिन जानते हैं उसका रिपरकर्शन क्या रहा? सरकार ने उसको जिस तरह से डील किया उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा गुस्सा रहा, खासतौर पर वहां की महिलाओं में। और एक चीज आप देखेंगे कि जिस तरह से वोट डालने के लिए लोग गए हैं पश्चिम बंगाल से जो बाहर रह रहे थे, उससे भी लग रहा था कि कुछ न बदलाव तो वहां दिख रहा है, कुछ न कुछ

0: होने जा रहा है। तीसरी चीज एक ये भी है कि एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चला पूरे देश में चल रहा है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहां हर जगह हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ पश्चिम बंगाल में बना। तो ये जो कंट्राडिक्शन ममता बनर्जी ने, हम लोग ये ब्रेक के पहले जो चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने कहा कि जो घुसपैठ का मुद्दा था, घुसपैठ के मुद्दे को किसने उछाला था, तो ममता बनर्जी ने, और उसी घुसपैठ को लेकर के एसआईआर से उन्होंने जोड़ दिया कि घुसपैठ की बजाय उन्होंने कहा कि जो लोग यहां के वासी हैं उनको नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने एक नारा दिया बहिर्गतों, पश्चिम बंगाल का समाज जहां आप देखेंगे कि आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े धुरंधर वहीं से पैदा होते हैं, आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसकी भी नींव आप देखेंगे तो वहीं, वंदे मातरम का 150 साल अभी हाल ही में बीता है, पूरे देश ने जिसको गाया। तो वो जो चीजें थी, बहुत सारे ऐसे मसले रहे हैं जिन मसलों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बनाया और उसका असर ये जो रुझान है उसमें दिख रहा है।
1: So right, the BJP has kind of hit a half century when it comes to West Bengal, and now coming back to Tamil Nadu, Sanjeev ji, TVK, the party, it's leading on 14 seats. The first time, you know, this party has come into existence, and 14 seats, the DMK on 16, which is minus 15 from the last time, and AIADMK almost the same, like 9 plus 1 from the last time. So how big a factor do you see TVK playing when it comes to Tamil Nadu this time, when it comes to the formation of the government?
2: No, TVK certainly, you know, Vijay with, you know, he's been an actor and he has the fancy of the youth and the women in the state. So this time since he's emerged very strong. And it's most likely that most of the parties like the Congress also tried earlier to ally with the TVK. Mm. So did the BJP. But Vijay decided to go it alone this time. Mm. So he's tried his time and tested his prowess on the ground. Mm. So every party will now try and, you know, ally with him in post-poll alliance, but it's likely that, you know, the southern parties generally go with the central government. Mm. So it's likely that the BJP may, you know, ally with it post-poll alliance.
1: So mostly the TVK will have to, or rather would be playing the kingmaker role, if not the king itself. Now, Umesh, you know, coming to Assam now, in Assam as well, the BJP is kind of getting close to the half century mark. It's already on 49, and it's been like a clean sweep, just no contest at all when it comes to Assam.
0: It is on an expected line. यही उम्मीद की जा रही थी वहां कि इसी तरह से जीत हासिल होगी भारतीय जनता पार्टी को। और आप जानते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक अलग तरह के नेता हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि बाहर के लोगों को वो नेतृत्व नहीं देते हैं, लेकिन एक तरह से वो ना सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का चेहरा बन
1: चुके हैं।
3: Thank you so much.
1: Yeah, Sushil ji, yeah, please tell us the latest on the ground. What's happening there and how is the mood over there?
3: Actually, the mood is very energetic. We have just visited the nearby counting center, which is close to AIR, that is Queen Mary's College. Hmm. So lots of police personnel are there. The quite tight security arrangements are there. But a major number of political workers are also standing to know the fate of their candidates, their party. As per the trends by Election Commission, the total trends are about 10 seats, five of which AIDMK is leading. TVK, the new entrant in the political arena of Tamil Nadu, is leading on 3, and CPI and DMK are leading on 1 seat each.
4: जी बिल्कुल सुशील जी, पिछले कुछ समय में जब से ये चुनाव घोषित हुए और वहां पर लगातार जो विकास की चर्चा चल रही थी, और कहा जाता है कि तमिलनाडु में व्यक्ति प्रधान राजनीति है, तमिलनाडु के जो टीवी चैनल्स हैं जिस पर बहुत गहरी पकड़ मानी जाती है स्टालिन की, उन्होंने भी बाकी दूसरे पार्टियों को बराबर कवरेज देने की शुरुआत की पिछले एक महीने में, और राजनीतिक पंडितों ने कहा कि टीवी चैनल्स को लगने लगा है कि अब डीएमके के लिए काफी मुश्किल होने वाली है और टीवीके के विजय पूरी तरह छा गए। शुरुआती रुझान में टीवीके काफी बढ़िया करती नजर आ रही है, जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आई जब इस चुनाव को कवर करने के लिए आप तमिलनाडु के अलग अलग केंद्रों पर गए तो?
3: देखिए जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही इस बार निर्णायक साबित होने वाली है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु

0: 4,75,000 से कुछ 4,75,00,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इनमें जो एक बड़ी संख्या है चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 18 से 19 वर्ष यानी जो नए वोटर हैं वो 14,00,000 के आसपास हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और एक बड़ी संख्या युवाओं की जो 19 से 29 साल के यानी जो युवा वर्ग है और जेंजी है वो टोटल मिलाकर के 1,00,00,000 से ऊपर है यानी 1/4 मतदाता ऐसे हैं जो व्यक्ति प्रधान राजनीति में आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे तो पूरी ही राजनीति उस पर रही है लेकिन टीवीके का जो उदय है वो वास्तव में इन्हीं मतदाताओं को ध्यान में रख करके किया गया है। तो जहां एक और डीएमके के पास अपनी जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं महिलाओं के लिए योजनाएं हैं उनका एक बेनिफिट था उसका एक आत्मविश्वास था उसको लेकर के वो चुनाव मैदान में थे, वहीं इन युवा मतदाताओं के भरोसे विजय ने राजनीतिक मैदान में अपना झंडा गाड़ने की तैयारी की थी। तो ये इस बार ये बड़ा दिलचस्प होगा। अभी तो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और कांटे की टक्कर चल रही है लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है वो पोस्टल बैलेट्स होते हैं तो धीरे धीरे जब तस्वीर स्पष्ट होगी कुछ समय के बाद तो हम देखेंगे कि जो युवा मतदाता है उन्होंने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की उसमें कामयाब हुए या फिर जो लोक कल्याण की योजनाएं रहे उनका फायदा डीएमके को मिला या सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है उसका फायदा AIADMK और बीजेपी यानी एनडीए का जो अलायंस है उसने उठाने का कुछ प्रयास किया या उसे कुछ फायदा हुआ। जी
1: सुशील जी जानकारी के लिए धन्यवाद, आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। संजीव जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
2: जी मैं ये कह रहा था कि द्रविडियन पार्टीज जो 1957 में पहली बार डीएमके लड़ा 57 में लड़ा और 67 में पावर में आ गया तो 67 में जैसे जब 67 में जब पावर में आया तो ये लगभग 60 साल के बाद आज अगर विजय की पार्टी अगर किंग मेकर बनती है या पावर में आती है तो एक तरह से इट विल बी सनसेट फॉर यू नो द द्रविडियन पार्टीज और जैसे AIADMK भी डीएमके से निकल के बना तो अल्टरनेटिवली द्रविडियन कल्चर को तमिल कल्चर को तमिल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने से ये उभरा था एजिटेशनल मूवमेंट से उभरा था तो ये उस पार्टी का अंत होगा और एक बार फिर ये देखेंगे कि विजय के जो एक्टर रहे हैं पहले एमजी रामाचंद्रन जयललिता एक्टर्स हैव डोमिनेटेड द पॉलिटिकल सीन इन तमिलनाडु तो एक तरह से उसकी रिटर्न होगी।
1: और आकाशवाणी के श्रोताओं अगर आपकी दिलचस्पी कुछ वीआईपी सीट्स पर हैं तो हम आपको बता दें जो ताजा ट्रेंड्स चल रहे हैं असम के रंगिया से भावेश कलीटा इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो जालुकबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं वो इस समय बढ़त पर हैं जबकि नलबाड़ी से जयंत इस समय आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो इस समय कुछ और रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें जोरहट से तो जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय आगे चल रहे हैं। गोलाघाट से अजंता नियोंग भी इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। बोकाहाट से असम गण परिषद के अतुल बोरा भी आगे चल रहे हैं। भवानीपुर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है इस समय चुनाव आयोग के पोर्टल के अनुसार भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी बढ़त बनाए हुए हैं जबकि वहां पर AIADMK के चेपॉक से अद्री राजम इस समय बढ़त बनाए हुए हैं जबकि चेपॉक थिरु वाली केनी से उदयनिधि स्टालिन जो डीएमके के बहुत बड़े नाम हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं। AIADMK के लिए अन्ना नगर से एस गोकुल इंद्रा पीछे चल रहे हैं। साइदापेट से भी डीएमके के सुब्रमण्यन मां पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन आगे चल रहा है। अगर आप टीवी के चीफ विजय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो अपनी सीट से इस समय आगे चल रहे हैं।
3: Yeah, Umesh, talking of Tamil Nadu and the southern states in general, you know, the NDA or the BJP has been making its mark for quite some time now when it's come to Karnataka. But when it comes to Kerala or Tamil Nadu this time in particular, the BJP has been like trying for quite some time now, let's say for almost 8 to 10 years now, wherein they have kind of been pushing for that major push to either make some inroads or get a foothold into the Tamil Nadu politics. But this time as well, there was that concerted push by the BJP to make some kind of a strong, some kind of a foothold within the BJP politics. How do you see this turning out to be, so far as the results or the trends rather, for the moment, which we can see?
4: देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो तमिल

0: में अपनी ताकत बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। अब आप देखिए अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी कोयम्बटूर से आते हैं, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक बड़ा होजरी सेंटर है, बहुत बड़ा उद्योग केंद्र है खासतौर पर कपड़ा और होजरी का, तो वहां से आते हैं। वहां से वो दो बार 1998 और 99 में सांसद भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां कोशिश तो की। जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वो कोयम्बटूर साउथ से विधायक भी रही है, तो इस बार वो चुनाव भी लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, लेकिन जो तमिलनाडु की राजनीति है जैसा कि संजीव जी बोल रहे थे, वहां अभी भी वो पुराने जो दो प्रतिद्वंदी रहे हैं एआईडीएमके और डीएमके, खासतौर पर 1967 में जब से डीएमके का उभार होता है। और ये देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है कि जिस कांग्रेस को उसने साफ किया आज वही कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आती है, और वो उसके पीछे उसकी छोटे भाई की तरह हर बार, एक चुनाव छोड़ दीजिए 1998 का, तो हर बार लगभग।
1: लेकिन संजीव जी, जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी, ये तो एक ट्रेंड बन गया है।
0: बिल्कुल,
1: तमिलनाडु की बात नहीं, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आप बिहार में चले जाएं, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, कई सारे तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ये जो धूर विरोधी थे।
0: बिल्कुल, तो तमिलनाडु में, और पिछली बार विधानसभा में 3% वोट 2021 में भारतीय जनता पार्टी का अपने सवाल पूछा था, सिर्फ 3% वोट ही मिले थे। तो अब केरल की बात है, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया और पिछली विधानसभा चुनाव में 15-16% वोट उसने हासिल किए थे, और इस बार वहां जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं, जिन्होंने फील्ड पर काम किया, जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, सबका ये मानना है कि भारतीय पार्टी केरल में सीटों को लेकर के बहुत बड़ा उलटफेर भले न कर पाए, लेकिन इस बार वो अपना वोट शेयर बहुत बढ़ाने जा रही है। और वैसे तीन सीटें हैं जो निम्बम है तिरुवनंतपुरम की, जहां से वहां के पार्टी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कासरगोड जहां से पुराने पार्टी अध्यक्ष जो है के सुरेंद्रन, और पलक्कड़। ये तीन सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि वो जीत सकती है। अभी रुझानों में पलक्कड़ में से दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से आगे चल रहा है।
2: तो जी, आकाशवाणी संवाददाता राकेश धूले हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। और क्या स्थिति नजर आ रही है, जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वहां पर, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
3: जी, अभी तक के अगर ट्रेंड देखे तो अराउंड 59 सीट्स में बीजेपी प्लस जो है एनडीए जो है वो आगे बढ़ रही है, एंड कांग्रेस इज अराउंड 16 जिसमें लीड ले रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो धेमाजी में जो रोनू पेगू धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से, और धेमाजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से रोनू पेगू एजुकेशन मिनिस्टर है, वो आगे बढ़ रहा है। नोलबारी से जयंत मल्लभ बरुआ वो आगे बढ़ रहा है। गौरव गोगोई जोरहाट से है वो भी आगे हैं। तो इस तरह से अभी पहला राउंड अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ ही है, उसके नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। तो दिस इज द ट्रेंड। तो बेसिकली अगर हम कहें कि लोग किस तरह से वोट किए या किस तरह से वोट किए होंगे, तो हमें असम को जो है चार भाग में भाग कर सकते हैं, लाइक द अपर असम। तो अपर असम हम लोग कहते हैं कल्चरल हार्डलैंड ऑफ असम, वहां की जो मुद्दे हैं दैट्स डिफरेंट। वहां पर जो हम लोग कहते हैं कि सिक्स जो एसटी स्टेट है, जो सिक्स कम्युनिटीज मोरान मोटोक अहोम कुछ राजवंशी और सी ट्राइब्स जो आदिवासी थे, उन लोग एसटी कम्युनिटी मांग रहे थे, तो ये एक इशू है और दे आर वन ऑफ द डिसाइडिंग मैंने डिसाइडिंग फैक्टर्स है वहां पर। और लास्ट टाइम अगर अपर असम की बात करें तो लास्ट इलेक्शन बीजेपी वहां पर बीजेपी प्लस एनडीए जो है वहां पर अराउंड आउट ऑफ 35-36 उन लोगों ने वहां पर 31 सीट जीते थे। तो ये द सेम थिंग दे वांट टू कंटिन्यू अगेन। तो ये जो मैंने आपको कहा कि जो एसटी स्टेटस है उन लोगों ने प्रोमिस किए कि इन सब कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस देंगे, दिस कैन बी अ फैक्टर वन फैक्टर। फिर जो आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स की हम बात करते हैं, जो जो लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन पे ध्यान दिए थे, जैसे जिस कितने सारे इवेक्शंस किए अराउंड 1.25 लाख हेक्टेयर जो लैंड इन लोगों ने इलीगल इमिग्रेंट से एविक किए, फिर एंड देन बहुत सारे ऐसे इंडिजिनियस पीपल है कम्युनिटीज है उनको लैंड राइट्स भी दिए। फिर इन लोगों ने फिर ये अपने मैनिफेस्टो में ये भी बताया कि मोर सच थिंग्स विल हैपन। तो ये एक इश्यू है क्योंकि अपर असम कल्चरल हार्टलैंड, अपर असम की जो पॉपुलेशन है उन लोग सोचते हैं कि जो पहाड़ से जो कितने भी लोग हैं वो उनका उनको लैंड राइट ना मिले, irrespective of any religion, जो असामीज है, तो that's one of the issue there. और T-Tribe जो है, T-Tribe plays a very significant role in Upper Assam. तीनसुकिया के हैं, डिब्रूगढ़ के. हम तीनसुकिया डिब्रूगढ़ की जब बात करें तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 12-13 सीट्स हैं. तो लास्ट इलेक्शन आई विल से कि एनडीए हैज कैप्ट वेरी वेल. इन दो डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है, सारे एनडीए को सीट मिले थे. तो उन लोगों ने अच्छी तरह से जो T-Tribe पॉपुलेशन है उन लोगों को टैप किया था. दिस कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर. इसीलिए अभी देख रहे हैं कि जो रुझाने हैं, अभी हम 63 हो गई है, कांग्रेस इवन लैगिंग नाउ कि अभी 17 में ही है. तो इसी तरह से सारे असम की जो हम लोग बात करें तो लोअर असम की इश्यूज अलग है. लोअर असम में एनडीए थोड़ा कम की है क्योंकि यहाँ पर जो जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन थोड़ा मिक्स्ड है.
2: जी जी राकेश जी, आगे भी आपसे जानकारी के लिए वापस जुड़ते रहेंगे. और जैसा कि बता रहे हैं राकेश जी भी कि इस समय जो असम में 126 विधानसभा सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इस समय आगे चल रही है. केरलम से बड़ी खबर सामने आ रही है. धर्मदम से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस समय पीछे चल रहे हैं.
1: This is something very big from Tamil Nadu. The new party TVK is leading on 24 seats, which is more than the DMK, which is on 16, and AIADMK on 15. So this is really very significant when it would be coming to the formation of the government this time. And as we have been discussing, the TVK, which was formed which has been fighting for the first time, would probably be playing the role of the kingmaker this time, or probably the king itself. What do you say, Umesh ji?
0: पहले भी एक बार हो चुका है ना MGR. उन्होंने नई पार्टी बनाई थी AIDMK, और उन्होंने DMK को इसी तरह से हराया था पिछली सदी के शायद आखिर.
1: So do you see the history being repeated?
0: Yes, yes. कुछ भी हो सकता है राजनीति में. किसने सोचा था कि 2011 में जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बड़ी जीत लेकर के आएंगी. उत्तर प्रदेश के आप चुनावों को देख लीजिए, 2014 के लोकसभा चुनावों को भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी जीत लेकर के आई थी. MGR की पार्टी का गठन हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि कलिंगर को कोई हरा पाएगा. करुणानिधि को कलिंगर कहा जाता था लेकिन उन्होंने हराया था. तो जनता भाई लोकतंत्र में मालिक है, वो किस तरह से सोचती है और किसको समर्थन देती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है.
2: पुदुचेरी पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं संजीव जी. ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर वोटों की गिनती चल रही है और जो ट्रेंड्स इस समय हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 पर, AINRC 3 पर, AIADMK 1 पर आगे है, DMK 1 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 पर आगे है. पुदुचेरी में इस समय जो इस चुनाव में जो मुद्दे रहे वो ये रहा पूर्ण राज्य का दर्जा. कोई भी पार्टी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है. साथ ही साथ एक और मुद्दा रहा कि वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उससे टकराव की स्थिति रही. भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई डबल इंजन की सरकार, हम ज्यादा से ज्यादा फंड देंगे, विकास होगा. वहां की जनता का क्या मूड नजर आया?
4: तब जो पुडुचेरी बड़ा छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, 30 सीटें हैं, उसमें ज्यादातर सेंटर पे निर्भर करता है. जो फंड्स आते हैं सेंटर डायरेक्टली देता है. तो हमने पहले देखा जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे मुख्यमंत्री और किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थी तो बहुत टकराव रहा एक दूसरे के साथ, हमेशा रोज कुछ ना कुछ होता रहा. तो डेवलपमेंट सफर करी वहां. तो उसके बाद डबल इंजन की सरकार आई, एनडीए की सरकार वहां बनी. तो मुझे लग रहा है कि साउथ की है, सेंटर पे काफी निर्भर है, फंड्स, छोटी स्टेट है, छोटी यूनियन टेरिटरी है. तो मुझे अभी भी यही लग रहा है कि लोग वहां पे इसी ट्रेंड से जाएंगे कि सेंटर से तालमेल बना रहे, अदरवाइज गवर्नेंस सफर करती है. और जहां तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में विजय जैसे आगे बढ़ रहा है तो जैसे आपने बोला कि किंग मेकर ही नहीं किंग भी बन सकते हैं.
1: yes.
4: ऐसे लग रहा है. और ये यही शो कर रहा है कि एस्पिरेशनल इंडिया जो है उसके साथ यूथ है, उनके साथ विमेन है. तो एस्पिरेशनल इंडिया is looking for a change and a new future for Tamil Nadu.
1: Probably the manifestation, as you say, of the young India coming in the form of TVK Vijay. Meanwhile, we are joined in by our Kolkata correspondent Kalyan Laha. Kalyan, welcome. This is Nishit Kumar this side.
5: Hello, Nishit.
1: Yes, Kalyan. Hello. So the BJP kind of, rolling and rolling and rolling, 69, almost 70 now.

0: or maybe 5 seats or 10 seats, but this is humongous. Your say on that? You have been there on the ground and covering, you know, we know that extensively.
1: देखिए निशित, जैसा अभी ट्रेंड में आ रहा है, बीजेपी बहुत सारे जगह में अभी आगे है, ट्रेंडिंग हो रहा है, और जैसा आपने मेंशन किया है, द फाइट इज ऑन, नेक टू नेक फाइट हो रहा है अभी. अभी पोस्टल बैलेट के जो काउंटिंग है अभी वो खत्म ही होने वाला है, और ईवीएम का काउंटिंग अभी शुरू हुआ है, तो हमें देखना होगा ये ट्रेंडिंग जो चल रहा है. बीजेपी कैंडिडेट सारे जगह में, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे दे आर लीडिंग, लास्ट में कैसा रहेगा.
2: जी कल्याण जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने ये नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली से आते हैं वो बंगाल के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, बंगला में नहीं बोलते हैं, वो कनेक्शन का अभाव है, वो बाहर के लोग हैं, वो बंगाल के नहीं हैं, उनका ये नैरेटिव सेट था. आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वाम दल जो पिछली बार अपना खाता नहीं खोल पाए थे, इस बार उन्होंने भी युवा उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह दी थी इस चुनाव में. पहले तो ममता बनर्जी के उस नैरेटिव पर क्या बंगाल की जनता का राय है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ वाम दलों की क्या स्थिति देख रहे हैं आप, चूंकि चर्चा तो करनी पड़ेगी, 34 सालों तक उन्होंने शासन किया यहां पर.
1: देखिए जैसा कि फील्ड का जैसा ट्रेंड है, वोट के आगे से ही हो रहा है इधर पोलिंग करके, वाम जो दल है, लेफ्ट कैंडिडेट इन वेरियस, लेफ्ट हैज प्लेस इन मेनी सीट यंग कैंडिडेट, पीपल आर टेकिंग देम पॉजिटिवली. और ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है, जो बाहर से आ रहा है, जो हिंदी भाषी है, बंगाल में उसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो लगता है अभी ये जो ममता बनर्जी का जो रेटोरिक है, पीपल आर नॉट गेटिंग इन टू दैट रेटोरिक.
2: एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, भवानीपुर में आप बहुत ज्यादा घूमे, लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की, इस समय इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार वहां से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, लोगों के जहन में क्या समझ में आया आपको?
1: देखिए जैसा लोगों के जहन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो पीपल आर नीडिंग अ चेंज, नॉट ओनली इन भवानीपुर, इन ऑल द कैंडिडेट, इन ऑल द एरियाज, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी. और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप कैसा पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे देखिए बहुत सारे जगह में तृणमूल कांग्रेस का वोट है, पॉकेट वोट है, और बहुत सारे जगह में बीजेपी का भी वोट है, पॉकेट वोट. तो हमें देखना होगा कि बाद में क्या हो रहा है.
2: जी हाँ कल्याण जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे.
0: या उमेश जी, इवन कल्याण वाज मेंशनिंग अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन ओवर देयर नाउ, दिस इज ह्यूमंगस राइट, 70 सीट्स ऑलमोस्ट फॉर द बीजेपी एंड 34 फॉर द टीएमसी. दिस वाज, बट यू वोंट बी सरप्राइज, यू हैव बीन मेंशनिंग दैट दिस हैज बीन द ट्रेंड, दिस हैज बीन द हिस्ट्री, इट्स बीन हैपनिंग टाइम एंड अगेन. बट अगेन कमिंग बैक टू द ग्राउंड ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स in Bengal, Trinamool Congress, like as the name itself suggests, it's the grassroots, Trinamool, right? So when it comes to like other factors, let's talk of the RG Kar incident which happened, you mentioned as well in the, you know, earlier discussions. Another thing, infiltration, of course, that is one. Now, do you feel that the people of Bengal, the natives over there, because I have also been traveling, you know, over the past 10-15 days, and I have been seeing like people who kind of, you know, rushing to Bengal this time to vote, which was not the trend earlier, be it the 2021 or 2016 elections. This time, the enthusiasms are very, very much there for us to see. So do you feel that this time really, you know, of course, 92% plus percent had something to say in that?
3: बिल्कुल. जरा जब इस सवाल के पहले आनंद ने एक हिंदी भाषी जो कल्याण लाहा से सवाल पूछा था, तो ये क्या संयोग की बात है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को कलकत्ता से ही हुई थी, और ये 200वां साल चल रहा है, कुछ दिनों में हम 200वीं वर्षगांठ मनाएंगे. तो ये हिंदी को लेकर के सबसे ज्यादा तो अगर देखेंगे तो कलकत्ता ने ही विकास में योगदान दिया है. सबसे पहले शुरुआती अखबार भी वहां से निकले, भारत मित्र निकला, और उदंत मार्तंड की तो चर्चा होती है, मतवाला मंडल का जो संपादकीय था वो तो बड़ा फेमस था, मतवाला भी वहीं से निकला. तो ऐसी बहुत सारी चीजें क्या है कि राजनीति अपने ढंग से इन सब विषयों को उठाती है. ममता बनर्जी ने तो नारा दिया था कि बहिर्गतो, मतलब जो बाहरी है, वो आएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि करीब 60

0: लाख के करीब मतदाता जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गए हुए लोग हैं, जो वहां के एक जमाने में जो जिन्हें चटकल कहते थे, जूट मिलों में काम करते थे या बाकी उद्योगों में काम करते थे। ये कैसे भूल जाते हैं कि कलकत्ता का जो पूरा स्ट्रीट बिजनेस है, चाय पान की दुकानें हैं, वो इन्हीं पूर्वियां लोगों की है, जो ड्राइवर हैं सबसे ज्यादा वहीं के हैं, तो एक तरह से लाइफ लाइन है। तो ये सब बातें राजनीतिक ढंग से उठाई जाती हैं। जहां तक सवाल है कि किन मुद्दों पर मतदाता प्रभावित नजर आया, तो दूसरी बात यह है कि देखिए आज ना कई तरह से सूचनाओं का मतलब आदान प्रदान हो रहा है, संचार क्रांति हो चुकी है। बेशक पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि किसी गांव में बहुत ज्यादा बिजली न रहती हो, लेकिन आजकल लगभग हर हाथ में फोन है, तो सबके पास सूचनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग भी या यूथ भी देख रहा होगा कि हमको क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। और अभी भी जब चुनाव अभियान चल रहा था तो बहुत सारे रिपोर्टरों से युवा बोल रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा पुराना कलकत्ता का वैभव लौटे और उसमें हम आकर के काम करें। तो बहुत सारी बातें होती हैं। और रही बात पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक जमाने में खुद भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कहा था कि ममता दीदी साक्षात दुर्गा है। तो दुर्गा वाला जो समाज है वहां महिलाओं की एक खास तरह से इज्जत होती रही है बनिस्बत बाकी जो सोसाइटी है उनकी तुलना में। और उस सोसाइटी में अगर आरजी कर की घटना होती है और घटना अगर हो भी गई तो उसको डील कैसे किया जाए, असली बात ये थी। और कलकत्ता या पश्चिम बंगाल की महिलाओं के मर्म को सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई। और अगर ये नेक टू नेक फाइट दिख रही है या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है रुझानों में, तो आप देखिए कि पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी 2021 में, आप देखेंगे कि जो टोटल वोटिंग हुई थी उसमें 4% पुरुष मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत वोट दिया था और महिला मतदाताओं ने 10% का अंतर था महिला मतदाताओं का। अब ये देखने की बात है, ये तो पूरे नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से दिख रही है भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का तो समर्थन उनसे छीजा है।
1: थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा उमेश जी आपसे, नेक नेक तो बिल्कुल भी नहीं है अभी जैसा दिख रहा है बंगाल में। Behind the humdrum of all these assembly elections, let's not forget that there were by-elections also which were held this time in 7 assembly constituencies across 5 states, and the counting for them are also underway at the moment. And these include Davanagere South and Bagalkot assembly constituencies in Karnataka, Baramati and Rahuri constituencies in Maharashtra, Umreth in Gujarat, and Dharmanagar in Tripura, and Koridang assembly constituency in Nagaland. And the BJP is leading in 4 constituencies, while the Congress and the Nationalist Congress Party, that is NCP, are leading in 1 seat each. In Davanagere South constituency, Srinivasa T. Dasa Kariyappa of the BJP is leading, while in the Dharmanagar, BJP's Jahar Chakraborty is maintaining a lead of more than 5,600 votes, while in Umreth, Harshad Bhai Govind Bhai Parmar of the BJP is leading by more than 8,300 votes, and in Rahuri, Akshay Shivaji Rao Kardile of the BJP is in the lead. And in the Bagalkot constituency, the Congress candidate Umesh Hulappa Meti is leading by more than 10,000 votes, while Sunetra Ajit Pawar of Nationalist Congress Party is leading in Baramati constituency. Sanjeev Ji.
2: संजीव जी पर वापस आएंगे, लेकिन सुपर वीआईपी टैली पर अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपको बता दें कि असम के जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा इस समय काफी बड़ी बढ़त पर चले गए हैं, लेकिन असम के जोरहाट से गौरव गोगोई इस समय 3,937 मतों से पीछे चल रहे हैं। केरल के धर्मदम से पेनुराई विजयन इस समय 5,008 वोट से पीछे चल रहे हैं। केरल के कांजिरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, 2,086 मतों से पीछे चल रहे हैं। केरल के निमोम से, जिसकी चर्चा कर रहे थे उमेश जी, राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु के पेरम्बूर से सी जोसेफ विजय यानी सुपरस्टार विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर हैं। कोलाथुर से डीएमके के एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। चेपॉक थिरुवालिकेनी से डीएमके के उदयनिधि स्टालिन भी इस समय पीछे चल रहे हैं। चूंकि विजय 2 जगह से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से भी सी जोसेफ विजय टीवीके के इस समय बढ़त पर चल रहे हैं। इस समय पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें भवानीपुर से इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के अनुसार अब सुवेंदु अधिकारी पिछड़ गए।

0: direction only. Now, a more interesting point I would like to make here, or rather ask you, who would be the chief minister in West Bengal?
1: अभी ये तो
0: सुवेंदु अधिकारी नो
1: देखिए
0: इट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम आस्किंग
1: आपके सवाल पर सवाल का जवाब देने से पहले जब आपने इस के पहले एक संजीव जी से पूछा था ना वो सुनेत्रा पवार के बारे में उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि उनको एक तरह से वॉकओवर दिया गया है जो शिवसेना ने वहां से कैंडिडेट देकर के कांग्रेस ने देकर के हटा लिया था शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन ने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी थी उसके बाद उसको वापस ले लिया था तो वो तो ठीक है. अब आप बोल रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा. अभी मुझे लगता है कि
0: नाउ व्हाई आई एम आस्किंग यू, मैं क्यों ये पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी हमने सुवेंदु अधिकारी को सुना और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सुवेंदु अधिकारी ने कितना काम किया है. बिग फेस फॉर द बीजेपी इन इन वेस्ट बंगाल, प्रोबेबली द बिगेस्ट एट द मोमेंट इफ यू लुक एट इट. इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सुवेंदु अधिकारी हमारे अगले मुख्यमंत्री, भाजपा के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें अभी कम से कम एक बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगा परिदृश्य. और रही बात यह है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, खासतौर पर आप हाल के कुछ वर्षों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सुवेंदु अधिकारी ही होंगे या हेमंत विश्व शर्मा ही होंगे या कौन होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है. आप देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पूरा मतलब एकदम हिस्टोरिक विक्ट्री जिसको कहते हैं, ऐतिहासिक विजय मिली. शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बने. तो इसलिए ये कहना कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, खासतौर पर आज की भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा मुश्किल है,
0: खतरनाक हो सकता है. तो हम कह सकते हैं कि टोपी में से कोई दूसरा खरगोश निकल सकता है.
1: बिल्कुल. इसलिए अच्छा, फिर वो थोड़ा सा चर्चा की शुरुआत अभी बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि प्री है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वोटों पर ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है कि कैसे वोट मिल रहे हैं.
0: यू आर प्लेइंग वेरी सेफ उमेश जी, आई अंडरस्टैंड.
2: संजीव जी को जोड़ना चाह रहे हैं.
3: भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया रही है वो चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर ही नहीं करते. अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर है तो उसको चलाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जैसे उमेश जी ने बोला कि शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उनको भी हटा दिया गया. तो बीजेपी की प्रक्रिया पोस्ट पोली होती है, उसके बाद एक प्रक्रिया से जाएंगे.
2: तो संजीव जी, आपका जो इशारा है, क्या असम में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड्स में तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही, क्या वहां चीफ मिनिस्टर में बदलाव देख रहे हैं आप?
3: मुझे वहां नहीं लग रहा, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा अभी नहीं लग रहा. बाद में बीजेपी क्या करेगी, बिकॉज बीजेपी आपने देखा होगा उत्तराखंड में या कई अदर स्टेट, बाकी स्टेट्स में भी चीफ मिनिस्टर बदलती है ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो चीफ मिनिस्टर की है वो खत्म हो जाए. जैसे आप केरला में देखेंगे तो केरला में चीफ मिनिस्टर एंटी इनकम्बेंसी काफी थी उनके खिलाफ. तो केरला में पहली बार लेफ्ट सरकार, जो पूरे विश्व में पहली वेस्ट बंगाल, पहली
1: केरल की सरकार,
3: केरल में सरकार बनी थी 1957 में. तो आज अगर केरला में उनकी सरकार खत्म होती है, अगर कांग्रेस वहां यूडीएफ आती है, तो एक तरह से लेफ्ट का खात्मा होगा और लेफ्ट की अब कोई सरकार नहीं बचेगी पूरे देश में. तो जहां लेफ्ट ने मतलब एक हिस्ट्री बनाई थी कि पूरे विश्व में उन्होंने वो.
2: जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लेफ्ट का खात्मा होना तय नजर आ रहा है.
0: So, coming to Tamil Nadu, for the first time, the AIADMK has nosed ahead or inched ahead of the TVK, and DMK, as we all know, is languishing back. AIADMK inching forward, nosing ahead with 41 seats and the TVK at 39. This is the first time happening when the counting began this morning.
2: जी हाँ बिल्कुल, और जैसा कि तमिलनाडु पर भी चर्चा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के जो ताजा रुझान है, भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही है. एक दिलचस्प आंकड़ा भी आ रहा है उमेश जी, बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे. मुस्लिम बहुल 111 सीटों में से 42 के रुझान आए हैं, जिसमें 17 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 23 पर तृणमूल कांग्रेस. यानी माना जा रहा था कि एक विशेष वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है, लेकिन इन आंकड़ों से कहानी बदल रही है.
1: बिल्कुल, जो एग्जिट पोल में, कई एग्जिट पोल ने यह बताया था कि करीब 10% मुस्लिम वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। तो अगर ये रुझान में जो दिख रहा है इसी तरह से अगर नतीजे आते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि एक तो वर्टिकल ध्रुवीकरण हुआ और उस ध्रुवीकरण में भी जो मुस्लिम वोट बैंक से 10% जो एग्जिट पोल ने अंदाज लगाया है, अनुमान लगाया है, वो वोट भारतीय जनता पार्टी की ओर गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 27% अल्पसंख्यक वोट है, मतलब जो उसमें मुस्लिम बहुल वोट है, सबसे ज्यादा माना जाता है और बड़ा गजिन भी है, बड़ा ठोस है, खासतौर पर 80 सीटों पर। तो मुझे लगता है कि इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए।
2: जी हाँ बिल्कुल। अब समय हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ताजा हाल बता दें। असम में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो कांटे की लड़ाई इस समय तमिलनाडु में हम देख रहे हैं, वहां तमिलनाडु में स्थिति इस समय ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीवीके के फेवर में जा रही है। वहां पर 44 सीटों पर टीवीके आगे है, डीएमके 20 पर बढ़त बनाए हुए है, एआईएडीएमके 38 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 43 पर आगे है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस 58 पर आगे है, सीपीएम 29 पर आगे है और सीपीआई 10 पर आगे चल रही है। हिंदी और अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे बारी बारी से और 10:10 में हम दोबारा जनादेश 2026 के साथ वापस आएंगे। सभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आप सुनते रहिए आकाशवाणी।
4: जनादेश 2026।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 116 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 73 सीटों पर आगे है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 38 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, यहां 21 मई को मतदान होगा।
4: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
5: असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 88 के रुझान मिल रहे हैं। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भाजपा गठबंधन ने काफी बढ़त बना ली है और वो 69 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। केरलम में विधानसभा की 140 सीटों में से 112 के रुझान मिल रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने अच्छी बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 77 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वामपंथी गठबंधन एलडीएफ 32 सीटों पर आगे है। भाजपा गठबंधन भी 3 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से 79 के रुझान मिले हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार सभी गठबंधनों में कांटे की टक्कर चल रही है। एआईएडीएमके गठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है, डीएमके गठबंधन 20 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, अन्य 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 8 का रुझान मिला है। एआईएनआरसी 5 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 1 सीट पर आगे है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदिले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनित्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। त्रिमुरा में धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहोर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। ताजा रुझान क्या है, स्थिति, कौन से बड़े उम्मीदवार इस समय बढ़त पर हैं, हम ये लेकर आकाशवाणी पर आते हैं। और इस समय हमारे साथ, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ हैं को एंकर निशित कुमार और राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय जो सूरत हाल है वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त पर नजर आ रही है, साथ ही साथ असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। लेकिन सबसे दिलचस्प टक्कर इस समय तमिलनाडु में देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर नई नवेली सुपरस्टार विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। डीएमके और एआईडीएमके भी वहां पर जोरदार टक्कर में है। डीएमके पिछड़ती नजर आ रही है, एआईएडीएमके काफी आगे नजर आ रही है। पुदुचेरी में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। केरलम में यूडीएफ एलडीएफ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। उमेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और आपसे समझना चाहेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में स्थिति बनी है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही बनती नजर आ रही है आपको?
3: देखिए, जो एग्जिट पोल, आमतौर पर तो एग्जिट पोल को लेकर के इस बार जितना विवाद हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। तो एग्जिट पोल एक को छोड़ करके लगभग सभी एग्जिट पोल ने यही बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। तो उस लिहाज से कहें तो जो अभी रुझान दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है जी।
4: इनफैक्ट उमेश जी, इट इज नॉट इवन ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, इफ आई मे से सो, because the expected lines was a neck and neck fight, which doesn't seem to be at the moment. That is one. And of course, who would have even thought that Mamata Banerjee, of course, she has inched ahead a bit, you know, in Bhavanipur, where Subhendu Adhikari is also kind of giving her a tough fight. So why I'm saying this is, one is that overall, the TMC tally going down substantially, that is. And the second one, the leader, Mamata Banerjee, also struggling to get her foot in.
3: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं उस एक्सपेक्टेड लाइन पर कह रहा था जो एग्जिट पोल कह रहे थे। और दूसरी बात, एक चीज ये ध्यान में रखने की है कि ममता बनर्जी की जो यूएसपी रही है उनका स्ट्रगलिंग और फाइटर रोल, आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में, खासतौर पर ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनका वो जो फाइट

0: जो रूप रहा है वो बड़ा कमजोर दिखा है और बार बार वो झुंझलाती हुई दिखती नजर। और एक चीज और है कि जो राजनेता जमीन पर होता है उसको अंदाज होता है कि जनता उसके प्रति किस तरह का रुख रख रही है और उसके लिए किस तरह से नतीजे आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका वो आभास था। और निश्चित तौर पर वो पिछले 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर उनकी पकड़ है और बाकी सारी जानकारियां उनको मिल ही रही होंगी। तो जो ममता बनर्जी की यूएसपी रही है, फाइटर, योद्धा, लड़ाका, उन्होंने ठीक है कि हर मुख्यमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं कि विकास करेगा, और आज तो विकास का ही दौर है। एक जमाने में चंद्रशेखर कहा करते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, कि विकास से राजनीति नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे कि 2003 के बाद से बिजली, सड़क, पानी, बीएसपी पर राजनीति होने लगी है। तो ममता बनर्जी से भी इस तरह से उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी उनकी जो यूएसपी थी, यूनिक सेलिंग प्वाइंट जिसको कहते हैं, जो उनका एक रूप रहा है, वो लड़ाका का रहा है, योद्धा का रहा है, वॉरियर का रहा है, जुझारू। वो जुझारूपन इस बार कम नजर आ रहा था, बल्कि झुंझलाया हुआ नजर आ रहा था। जिस तरह से वो उसमें जैसे स्ट्रांग रूम में जाकर के बैठ गई एक दिन 4 घंटे तक, वो कहीं ना कहीं वो
1: क्या आपको क्या क्या कारण लगता है, क्या इस बार वो कमिटमेंट क्यों नहीं है ममता बनर्जी की तरफ से? क्या एक ओवरऑल प्रेशर या 15 साल का एक फटीग फैक्टर भी आपको लगता है कि कुछ?
0: अब बिल्कुल, 15 साल तक अगर कोई भी दल सरकार में रहता है तो कुछ ना कुछ तो उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, और वो थी। लेकिन जो बार बार हम लोग कह रहे हैं और उसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का समाज महिलाओं को लेकर के बाकी जो उत्तर भारत के समाज की स्थिति रही, हालांकि वहां भी अब चेंज हो रहा है, खासतौर पर शिक्षा के बढ़ते प्रसार के चलते, सूचना तकनीक के क्रांति के चलते, लेकिन पूर्वी भारत में आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर के खास तरह का आदर भाव रहा है। महिला इस तरह से कभी वो पीड़ित और मतलब वो शासित टाइप का भाव नहीं रहा है वहां। वहां जिस तरह से आरजी कर की घटना हुई, ऐसा नहीं कि देश के किसी और इलाके में नहीं हो सकती है, हुई, लेकिन उसको लेकर के सरकार का जो रवैया रहा, जिस तरह से उसको डील किया गया, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाओं को चाहिए कि 9 बजे रात को के बाद घर से बाहर न निकले, और पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता रहा है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर के ऐसा नहीं रहा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, ऐसे इन सब राज्यों में ऐसा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सब कारण रहे हैं और यही वजह है कि ये रुझानों में इस तरह के नतीजे दिख रहे हैं।
2: ताजा हाल बताएं तो पश्चिम बंगाल में इस समय भारतीय जनता पार्टी 92 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी 57 से अब 59 सीटों पर आगे चल रही है। केरलम में जो स्थिति बन रही है वो यूडीएफ इस समय बड़ी बढ़त पर नजर आ रहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर आगे है। तमिलनाडु में इस समय टीवीके 70 सीटों पर आगे चल रही है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही कड़ी टक्कर है। एआईडीएमके इस समय 60 सीटों पर आगे है, डीएमके प्लस 38 सीटों पर इस समय वहां पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। पुदुचेरी की स्थिति की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस 3 पर है, एआईएनआरसी 11 पर आगे चल रही है, और जबकि टीवीके का वहां पर इस समय खाता नहीं खुला है। तो ये स्थिति है। असम में 89 सीटों पर उमेश जी इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी क्लीन मेजॉरिटी से भी काफी ज्यादा सीटें जीतती नजर आ रही है।
0: और होती है
2: जी, और चर्चा आप कर रहे थे कि भारतीय राजनीति में दूसरे मामा का प्रादुर्भाव हो चुका है।
0: बिल्कुल, भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जो हैं मामा के रूप में ख्यात रहे, लेकिन इस बार हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने को खुद मामा के रूप में स्थापित किया, और जिस तरह से चुनावी रैलियों में उनको समर्थन मिलता रहा, और वो भी जिस तरह से पूरा प्रोटोकॉल तोड़ करके, सुरक्षा घेरा तोड़ करके जनता के बीच में जाते रहे, तो निश्चित तौर पर वो मामा के रूप में तो स्थापित हुए ही, और उसका नतीजा दिख भी रहा है। नतीजों में कि जहां आप सोचिए कि 126 विधानसभा सीटें हैं असम में, और वहां आप बता रहे थे कि 80 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो लगभग 2/3 मेजॉरिटी, और ये बहुत ही जबरदस्त मेजॉरिटी मानी जाती है, बहुत बड़ी जीत मानी जाती है।
2: तमिलनाडु में टीवी के 70 सीटों पर इस समय आगे है, एआईडीएमके 60 पर बढ़त बनाए हुए है, और डीएमके के पास 38 के आसपास की बढ़त है। क्या वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की आप स्थिति देख रहे हैं?
0: फिलहाल तो वही लग रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि कुछ 1977 जैसा इतिहास दोहराया जा रहा है। आप जानते हैं कि एआईडीएमके के संस्थापक थे एमजीआर, एमजी रामचंद्रन, 1972 तक डीएमके के साथ थे, जो स्टालिन के पिताजी थे करुणानिधि उनके साथ थे, लेकिन 1972 में उनसे थोड़ा मतभेद हुआ, बड़ा मतभेद हुआ और उससे उन्होंने अलग पार्टी बनाई और 1977 में चुनाव लड़ा तो भारी जीत हासिल की, 1977 में हासिल की, 80 में हासिल की, 87 तक वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो निश्चित तौर पर इसी तरह की राह पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी, सॉरी टीवीके जो है वो तमिलनाडु में दिख रही है आगे। और लेकिन जो हंग असेंबली है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पलानी सामी को थोड़ा अफसोस हो रहा होगा कि काश कि वो टीवीके के साथ समझौता कर लिए होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती थी, उसने कोशिश भी किया, तो शायद नतीजे और इनके फेवर में और ज्यादा बेहतर हो सकते थे। आप जानते हैं कि जो टीवीके के संस्थापक हैं विजन, वो चाहते थे मुख्यमंत्री का पद, पलानी सामी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक का पद भी नहीं देना चाहते थे। तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने तो उनको भी पछाड़ दिया है। अभी जो मेरे सामने चुनाव आयोग का डाटा है उसकी वेबसाइट का, तो उसके हिसाब से तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है टीवीके। तो ये 1977 तमिलनाडु में दोहराया जा रहा है। हाँ, तब 1977 में एमजीआर को स्पष्ट बहुमत मिला था, अभी रुझानों में ऐसा नहीं लग रहा है कि टीवीके स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाएगी। जी,
1: मीनवाइल वी आर ज्वाइंड इन बाय अमृता मधु कायवालिया, एक्सपर्ट फ्रॉम गुवाहाटी। वेलकम अमृता।
3: थैंक यू फॉर हैविंग मी।
1: या अमृता, वी वुड लाइक टू नो अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन देयर इन गुवाहाटी। ऑफ कोर्स वी हैव सीन लाइक द बीजेपी एंड द एनडीए काइंड ऑफ मेकिंग अ क्लीन स्वीप दिस टाइम, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द डिफाइनिंग फैक्टर सो फार एज द दिस काइंड ऑफ अ मैंडेट फॉर द बीजेपी गोज?
3: It was quite evident even earlier this year that the BJP was in for another term, and the reason specifically for that is that the BJP has delivered on the ground in terms of infrastructural and developmental projects. There is a bit of anti-incumbency against perceptions around the Chief Minister of Assam. But to counter him, I don't think so. There was a very formidable effort from the opposition. You did not have the Congress coming up with a very strong fight against him. You had the Congress making Gaurav Gogoi the president just months ahead of the elections. And you have the Congress stitching an alliance with two other regional parties barely weeks ahead of the election. So that sort of set them behind in this electoral race. And what you see today is pretty much the work that the BJP has been putting on in the ground in the last few years, I would say.
0: उमेश जी, अमृता, मैं उमेश चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। ये बताइए, आप तो असम से आती हैं, नमस्कार। किस तरह से ये तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को नेता बनाया गया और इसके बावजूद कांग्रेस फाइट करती हुई नहीं दिख रही है? आपने कहा कि फाइट कर रही है, लेकिन रुझान में जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें तो फाइट नजर ही नहीं आ रही है। 2/3 से ज्यादा बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे?
3: जी नहीं, मैं यही कह रही थी कि जैसे कांग्रेस की जो एक चुनावी एक जो फाइट हो रही होनी चाहिए थी कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टीज को, वो नहीं हुई है। इलेक्टोरली अगर हम देखें, तीन लोकल पार्टीज एक साथ आई हैं और ये दो लोकल पार्टीज हमें लगा था कि कांग्रेस को मदद करेगी, इसलिए क्योंकि यही दो पार्टीज थी रीजनल पार्टीज जिन्होंने लास्ट 2021 इलेक्शंस में पोस्ट सीए आंदोलन के बाद भी कांग्रेस की काफी वोट्स मतलब ले ली थी अपनी तरफ। तो ये जो अलायंस इन्होंने स्टिच किया था और ये जो कांग्रेस की जो एक इलेक्टोरल एफर्ट रहती है, जैसे आप किसी भी चुनाव पे जाते हैं आपकी एफर्ट रहती है, मुझे लगता है उनमें काफी कमी रही है, क्योंकि संगठन आपकी इतनी और कांग्रेस के जितने भी मतलब लीडरशिप है उन्होंने गौरव जी को असम में प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जस्ट वीक्स बेली मंथ्स मतलब 6 महीने 6-7 महीने पहले ही उनका नाम आया एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस यूनिट इन असम। एंड ये जो अलायंस हुई थी अलायंस भी कुछ हफ्तों पहले ही आई है, तो ये मुझे लगता है कि जो एक तैयारी होती है इलेक्शन के लिए वो उनको और ज्यादा करनी चाहिए थी, स्पेशली अगर आपके सामने एक ओपोनेंट जो है जो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह एक ओपोनेंट है जो पॉलिटिकली बहुत ही एजाइल है, पॉलिटिकली बहुत अनफॉरगिविंग है, वो बहुत मतलब ही हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही इज ऑन द बॉल ऑल द टाइम, इन द सेंस कि आप वो किसी चीज मतलब को ही डजंट लीव अ स्टोन अन

0: वो किसी तरीके से कुछ भी मतलब छोड़ते नहीं है, वो हर चीज को देखते हैं। अगर आप देखेंगे
1: जी
0: उनकी
1: जी बिल्कुल।
0: अलायंस तब आपको समझ में आएगी।
1: राहुल गांधी भी
0: आई जस्ट
1: बहुत
0: से
1: ज्यादा
0: वन मिनट
1: प्रचार करते हुए नहीं दिखे, राहुल गांधी भी,
0: जी
1: जबकि
0: जी राहुल गांधी जी
1: गौरव
0: वहां
1: गोगोई
0: प्रचार करते
1: उन्हीं
0: हुए
1: के।
0: नहीं दिखे।
1: जी
0: गौरव जी के साथ
1: जी,
0: केस,
1: आपको थोड़े
0: गौरव
1: समय
0: जी
1: के
0: को
1: लिए
0: राहुल गांधी
1: रोकेंगे।
0: ने
1: पश्चिम बंगाल की ताजा स्थिति इस समय यह है कि 166 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 97 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 64 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 पर आगे है और सीपीएम 1 पर इस समय बढ़त बनाती नजर आ रही है। और हमारे साथ शुभनील जुड़ चुके हैं कोलकाता से। शुभनील, आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू।
1: शुभनील जी, आज एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ मातम का भी माहौल होगा, लेकिन जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे कि ममता बनर्जी के शासन में बहुत ज्यादा हिंसा फैल रही है, साथ ही साथ उद्योगों का विकास नहीं हुआ, राज्य का जो विकास दर है वो बहुत नीचे रहा, महिलाओं का वो सशक्तिकरण नहीं हो सका जो बीजेपी चाहती है, और साथ ही साथ एक जो उनका बड़ा फैक्टर है, डबल इंजन की सरकार, क्या ये सब आज फलीभूत होता नजर आ रहा है? क्योंकि लगभग शतक की तरफ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है कि यह शुरुआती रुझान है, कैसे देखते हैं आप?
2: रुझान जो है वो तो बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहा है। सवाल ये होता है कि ये जो इलेक्शन हुआ इसमें जो सबसे सेड और अनसेड जो फैक्टर था वो था एसआईआर, और एसआईआर के मुद्दे पे यहाँ पे जो चुनाव हुआ वहां पे 27 लाख से 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी ट्राइब्यूनल में फंसे हुए हैं, तो उनको छोड़ के ये चुनाव हुआ वो अपने आप में हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक इथोस है से नहीं जाता है, वो सबको लेके ही चुनाव होना चाहिए था। खैर जो भी चुनाव हुआ उसमें डेफिनेटली एक तो बात यह है कि 15 साल से ममता बनर्जी का सरकार था उसके चलते एंटी इनकम्बेंसी है, ये तो अभी दिख ही रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि एक तो राउंड का ही रिजल्ट आया है, आगे देखना पड़ेगा। लेकिन जहां तक रुझान का जो सवाल है वो डेफिनेटली बीजेपी के पक्ष में है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पोलराइजेशन भी बीजेपी यहाँ पे एक पोलराइजेशन पे जो है हुआ है, तो ममता एंटी ममता पोलराइजेशन कह लीजिए या फिर कम्युनिटी के वाइज पोलराइजेशन कह लीजिए,
1: जी
2: वो
1: बिल्कुल।
2: पोलराइजेशन भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे जहां तक अभी तक जहां जो लग रहा है।
1: कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में आपको बता दें तो असम के जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्वा सरमा काफी बड़ी बढ़त पर हैं, असम के जोरहट से गौरव गोगोई 3,937 मतों से पीछे चल रहे हैं, केरल के धर्मदम से पिनराई विजयन 15,570 मतों से पीछे चल रहे हैं, कांझिरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे 3,959 मतों से पीछे चल रहे हैं, कझाकूटम से बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन 4,907 मतों से पीछे चल रहे हैं, केरल के निमोम से जहां पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने की तरफ देख रही है राजीव चंद्रशेखर 6,604 मतों से आगे चल रहे हैं, पेरम्बूर से जो नई नवेली पार्टी है टीवी के उसके चीफ सी जोसेफ विजय बढ़त पर चल रहे हैं, लेकिन दो बड़े विधानसभा क्षेत्र जहां से चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, तमिलनाडु के कोलाथुर से एमके स्टालिन डीएमके के फेस पीछे चल रहे हैं, चेपॉक थिरु वलिकेनी से डीएमके के उदयनिधि स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं, इडापड़ी से एआईएडीएमके के इडापड़ी पलनी स्वामी बढ़त पर चल रहे हैं, और अवनाशी से तमिलनाडु का एक और विधानसभा अवनाशी जहां पर डॉक्टर एल मुर्गन इस समय पिछड़ते नजर आ रहे हैं 2,853 मतों से, क्योंकि विजय जो हैं वो दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से वो बड़ी बढ़त पर हैं, सत्तूर से नायनार जो बीजेपी के हैं वो इस समय पीछे चल रहे हैं, भवानीपुर जिस पर सबकी नजरें हैं शुभेंदु अधिकारी इस समय 1,670 मतों से पीछे चल रहे हैं, ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की चीफ हैं और वहां की मुख्यमंत्री हैं इलेक्शन कमीशन पोर्टल के अनुसार 3,666 मतों से वो आगे चल रही हैं, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बढ़त पर हैं जबकि थाटन चावड़ी से एन रंगासामी इस समय 3,447 वोट से आगे चल रहे हैं।
3: एंड इफ आई मे ऐड टू दैट, आनंद द यूडीएफ हैज ऑलमोस्ट क्रॉस द हाफ वे मार्क इन केरलम, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग, ऑफ कोर्स दीज आर ट्रेंड्स एंड नॉट रिजल्ट्स। Shovanil, if I can ask you something. This is Nishit Kumar this side.
2: Yeah.
3: Shovanil, can you hear me?
2: Yeah, tell me.
3: Yeah, Shovanil. Now, talking of Bengal, this time, as we saw, violence has been the hallmark of, when it comes to Bengal elections. We have seen that, in 2016, be it 2021, even earlier, kind of. Now, this time, with the kind of tightening of screws that the Election Commission and the central leadership has done, and the SIR and other things, of course, and we have seen beyond the optics, if I may ask you, which Mamata Banerjee had her moment in the Supreme Court here, so far as those things are concerned. So how do you see, as in we have also seen, that hordes of people from West Bengal have thronged to the place to cast their votes this time, which was not the case earlier. We have seen, reports or heard of reports like people getting intimidated or threatened for not coming out and voting. So what was the change this time when you saw there on the ground?
1: Shovanil, is par thodi der mein aapke paas wapas lautte hain.
4: जनादेश 2026
1: में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गिनती चल रही है और आकाशवाणी आपके लिए लाया है विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक उमेश चतुर्वेदी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शुभनील और मधु कैवल्य भी जुड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस राज्य में बढ़त पर है और कुछ हम सीटों के बारे में विवरण भी दे रहे हैं कि जो बड़ी सीटें हैं वहां पर किस तरीके से कौन उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं।
3: Yes, in the meanwhile, another interesting fact coming in. Shuvendu Adhikari, it seems, has once again inched ahead in Bhavanipur ahead of Mamata Banerjee. But Shuvanil, getting back to you, your say on the question which was put on earlier.
2: So there was an increase in the voting percentage. Undoubtedly, the Election Commission has said that it is the highest ever recorded. One of the reasons, before the election results were out, it was quite obvious in the circles that I had moved around. Many of my friends came back from other parts of the country to vote. Mm-hmm. One of the reasons was a apprehension that if they don't vote, then maybe next round of SIR or the voter list, their names may not be there. That is one of the reasons that they came down and voted. And then whom they voted for, the result is more or less coming out now. And secondly, I think it is, of course, true that there was an important intimidation in earlier elections. But I also think that it has been blown out of proportion in various areas in 2021. If you look at the post-poll during the elections, the various opposition parties, the number of complaints that they have filed may not be very high as compared with earlier elections. But of course, and remember that in 2021, it was a 7-phase election and there was the election machinery, ECI, everybody coming in huge numbers. But this time it was unprecedented. The number of troops deployed in West Bengal was highest ever for any election in any part of the country, which was a bit strange as far as I am concerned, because there are other parts of the country which are very troubled and we did not see this kind of troop deployment.
3: Right.
2: Most importantly, two factors, I think, is playing on the ground when the results are coming in. One part of it is, of course, the people's opinion about the 15-year Trinamool rule, and things are swinging against the Trinamool as we are right now, the results that have come. But also, I think the Trinamool is not vanishing from the ground. It is maintaining the ECI that I was just looking at is maintaining a 40-42% kind of vote share, which is not something which is too bad for any party. But of course, as of now, clearly trailing.
3: Yes, another interesting fact. The mother of the Arjikar incident which happened, Ratna Debnath, is leading by 3,000 votes in her constituency. So this is another very significant thing which is coming in. But Shuvendu, you mentioned about the fatigue factor here, 15 years of rule of the Mamata Banerjee. But generally, even if you look at the things which over the past few months, Mamata Banerjee is so a bit kind of we could see her on the back foot this time, if not the back.

0: Blackfoot not that aggressive that we have seen her over the years. Now, how do you attribute this thing, with the manifestation of the results that we, not the results, of course, the trends that we see at the moment?
1: No, two, three things happened. One was, of course, you mentioned the Arji Kaur. The Arji Kaur incident galvanized a huge protest movement against the government just almost two years back. And the Kolkata suburban middle class came out in large numbers since the TMC government at that point of time. Second is the school service commission corruption. 26,000 teachers lost their jobs, some of whom were innocent. They didn't pay any bribes, but they had to lose their jobs. And third is a general, for example, if you look at the student union elections, we have had students union election for a very long time. The government did not allow any student union election. Mm-hmm. There were serious allegations of malpractices, rigging during the panchayat elections. So clearly there has been some kind of anger. And now to the results are showing that a very significant amount of anger against the government, and which is now getting translated. And the BJP, through its huge money power, as well as the central agencies, as well as the election commission, the SIR is a very contested issue. I would have been very happy if that everybody who are genuine voters could have voted, but that is not the case. That is the most worrying part of this election. Whoever wins, they will always carry this baggage that a large number of our co-citizens, our co-patriots could not vote.
2: जी बिल्कुल शवनील, आगे भी आपसे राय लेते रहेंगे. कुछ प्रमुख सीटों के बारे में आपको बताएं तो मठभंगा जो पश्चिम बंगाल की सुरक्षित सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के निशित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं. दिनहाटा से तृणमूल कांग्रेस के उदयन गुहा पीछे हैं. तूफानगंज से भाजपा उम्मीदवार मालती रवा रॉय पीछे हैं. बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पीछे हैं. इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी भी पिछड़ रहे हैं. बागड़ा सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार सोमा ठाकुर ने बढ़त बना रखी है. भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी पीछे हैं. यहां तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं. राष्ट्र बिहारी सीट से भाजपा के स्वप्न दास गुप्ता आगे हैं. श्यामपुकुर से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शशि पांजा पीछे हैं. शिवपुर से भाजपा उम्मीदवार रुद्रनील घोष ने बढ़त बना ली है. मोयना से भाजपा के अशोक डिंडा पीछे चल रहे हैं. अशोक डिंडा जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं. एग्रा से भाजपा उम्मीदवार दिवेंदु अधिकारी आगे हैं, जबकि आसनसोल दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के अग्निमित्र पॉल आगे चल रहे हैं. और इसी के साथ हमारे साथ सुशील तिवारी जो आकाशवाणी संवाददाता है वो भी जुड़ रहे हैं. सुशील जी, चूंकि आप चेन्नई में हैं और वहां पर तो एक दूसरे तरह की राजनीति के रुझान हमें नजर आ रहे हैं, चूंकि जो ताजा रुझान है उसमें टीवी के जो सुपरस्टार विजय की पार्टी है 97 सीटों पर इस समय आगे पहुंच गई है. 214 के रुझान आए हैं. AIADMK 63 पर आगे है और सत्तारूढ़ DMK 37 पर आगे है और उसकी सहयोगी कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है. तो क्या आपको लग रहा है कि तमिलनाडु में आज जैसे जैसे शाम ढलेगी वहां राजनीति का नया सवेरा होने वाला है?
3: बिल्कुल बिल्कुल. देखिए क्या है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक जबरदस्त परिवर्तन दिखा है और किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी. लोगों ने ये जरूर शुरू में जो राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने ये जरूर माना था कि जो विजय की पार्टी है TVC वो थोड़ा बहुत अपने वोट जो है वो वोट परसेंट ले सकती है, वोट शेयर ले सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सीटें उसे मिलेंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था. तो सनसनी जिसे कहेंगे, आज की सनसनी तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की, वो एक जोसेफ विजय हैं जो कि खुद दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं जहां से वो लड़ रहे थे. और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो MK स्टालिन जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सीट से पीछे चल रहे थे. उनके छोटे भाई, उनके बेटे और डिप्टी CM उदयनिधि जो है वो भी अपनी सीट से, जो चेपक सीट है चेन्नई की, वहां से पीछे चल रहे हैं. और चेन्नई में एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है DMK का. स्ट्रांग होल्ड था DMK का. पिछली बार पार्टी ने अधिकांश सीटें जीती थी और इस वक्त सभी सीटों पर TVK जो है उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और एक

0: तरीके से कहा जाए कि जो सिनेमा जो एक आम तौर पर मनोरंजन का माध्यम है वो तमिलनाडु में राजनीति में प्रवेश का एक बड़ा माध्यम है, एक बार फिर से साबित हुआ है।
1: सुशील, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टीवी के फैक्टर हियर। ऑफ कोर्स नाउ विथ ऑलमोस्ट द पार्टी नियरिंग 100 सीट्स नाउ एंड वी सी दैट द डीएमके एज वेल एज द एआईडीएमके लैंग्विशिंग फार

0: benefactor, MGR, Jayalalitha, so on and so forth. You know, we have been seeing this since decades now. Now, with this Vijay factor coming in, how much of the new generation, kind of the Gen Z, as we call, and others, the younger people, are attracted? And do you also see that the older population, they would have also kind of gone with him this time?
1: बिल्कुल. और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां अपने फिल्म जो अभिनेता होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी मूर्ति बना करके पूजा भी होती है. उसमें से एक अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं, वो खुशबू सुंदर. लेकिन आप देखिए कि वो किसके साथ जनता जाना चाहती है और लोग जाना चाहते हैं. तो निश्चित तौर पर टीवीके के साथ, जिसकी व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले पूरी तरह से हिंदी भाषी और बाकी देश के लोगों के लिए आनंद ने बताया कि उस पार्टी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्त कर रही है. जेएनजी, जिसके अभी हाल में देखेंगे कि नेपाल के चुनाव में उसका असर दिखा कि एक काठमांडू शहर का 35 साल का मेयर अचानक से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बालन शाह, तो कुछ कुछ ऐसा है. लेकिन ये अच्छा, एक चीज और भी है कि तमिलनाडु की राजनीति में आप देखेंगे कि जनता एक तरह से फैनेटिक अंदाज में सपोर्ट करती है, बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ा कुछ ज्यादा ही दिखता है. बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि राजनीति करने वाले लोगों को ही, राजनेता को ही जनता पसंद करती है. वहां हीरो फिल्मी दुनिया के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. लेकिन उत्तर भारत में भी 1984 के चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन बाद के दिनों में आप देखेंगे कि वो क्रेज उत्तर भारत में डाउन हो गया. आप देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन किस तरह से, ज्यादातर लोग तो टीएमसी के साथ ही हैं. तो ये एक भारत विविधताओं का देश है और उसमें एक तरह से चीजें हैं. लेकिन एक चीज है जो इस तमिलनाडु के चुनाव के नतीजों में देखने की है, जो परिसीमन की बात हो रही थी अभी लोकसभा चुनाव सीटों को, और जिस तरह से जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की अपने यहां व्यवस्था है, और उसका सबसे बड़ा विरोध एमके स्टालिन कर रहे थे. उन्होंने इसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले रखी थी. उनका कहना था कि हमने परिवार नियोजन को लागू किया, मतलब हमने, उन्होंने पूरे दक्षिण भारत के राज्यों को जोड़ने की कोशिश की थी, क्या इसका हम खामियाजा चुकाएंगे कि हमारी सीटें आनुपातिक रूप से कम हो जाए. तो मुझे लगता है कि वो एक जमीनी समस्या, अपने ढंग से जमीनी समस्या को उठा रहे थे, जनता ने उसे जमीनी मानने से इनकार कर दिया.
2: दक्षिण भारत में अमूमन सफेद कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन से आधारित जो कानून अभी संसद के विशेष सत्र में लाया गया था, काले कपड़े पहनकर आए थे एमके स्टालिन और उनके सांसद.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सब चीजें आप देखिए कि किस तरह से जनता ने उनको नकारा है. तो आने वाले दिनों में इसका भी एक बड़ा असर पड़ेगा, जो इस मुद्दे पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे नंबर की भी पार्टी नहीं बन रहे हैं, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन रहे हैं. और जिस तरह से स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, हालांकि आपने सुशील से पूछा तो बोल रहे थे कि छोटी पार्टियां बहुत ज्यादा नहीं जीत पाई हैं, जिस तरह से रुझान दिख रहा है नहीं जीतती नजर आ रही है. पीएमके 6 सीट और 3 और लोग जीत रहे हैं, तो ये 9 लोग मिलकर के भी सरकार, जिस तरह से टीवीके को बहुमत मिल रहा है, उसको कम से कम 15-18 सीटों की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं मिल पाएगा. तो मुझे किसी ने लगता है कि किसी न किसी बड़ी पार्टी से, और वो स्वाभाविक रूप से बड़ी पार्टी एआईडीएमके ही हो सकती है. और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, जिस तरह से एमके स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश करेगी. लेकिन कई सारे मुद्दे प्रभावित होंगे. एक और देखिए कि दक्षिण भारत के राज्यों को इस बात का बड़ा गर्व रहा है कि वो उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में ज्यादा विकास किए हैं. तो ज्यादा विकास का मतलब तो ये होना चाहिए कि वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, जेन जी को उनके पीछे जाना चाहिए था. लेकिन क्या हो रहा है कि ऐसा जो रुझान में नतीजे दिख रहे हैं, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं. भारत को समझने के लिए एक नजरिए से आप नहीं समझ सकते. एक राज्य में कुछ और मुद्दे प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे राज्य में कुछ और मुद्दे होते हैं. लेकिन एक चीज है, असम और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि दोनों जगह पर मामला उछलता रहा है घुसपैठ का. अवैध जो घुसपैठिए होते हैं, वैसे तो घुसपैठ अवैध ही होती है, तो वो मामला सबसे ज्यादा आप जानते हैं असम में उठता रहा है. असम में एक नई पार्टी बनी थी 1985 में, असम गण परिषद, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसने सरकार भी चलाई.
0: प्रफुल्ल महंता
1: जी, हॉस्टल से सीधे लोग गए थे दिसपुर में शपथ लेने के लिए, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से. तो वो मामला वहां बहुत, वही मामला पश्चिम बंगाल में है. तो कम से कम भारत के दो राज्यों में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और चुनाव नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है. जी

0: पश्चिम बंगाल से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भवानीपुर से एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ गए हैं। इस समय 6380 मत उन्हें प्राप्त होते नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी के पास 4822 मत हैं, जो अभी की काउंटिंग है उस हिसाब से। कुछ और हाई प्रोफाइल सीट्स पर हम नजर डाल लेते हैं तो जालुकबाड़ी से हेमंत बिस्व शर्मा लगातार आगे बने हुए हैं, लेकिन जोरहट से गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के फेस माने जा रहे थे, बड़ी संख्या से पीछे चले गए हैं। पिनराई विजयन, एक और बड़ा नाम जो केरल के धर्मदम से हैं, वो भी पिछड़ रहे हैं। कांजिरपल्ली से भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट जॉर्ज कुरियन पिछड़ रहे हैं, जबकि कझुकटम से वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी के वो भी पीछे चल रहे हैं। नेमोम से राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं और पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट, दो ऐसी सीटें जहां पर सी जोसेफ विजय टीवीके के चीफ हैं, वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जोरदार संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है और जो भवानीपुर सीट है वहां से लगातार हम देख रहे हैं कि आईपीएल मैच की तरह वहां पर रोमांच बना हुआ है। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। असम में बीजेपी समय 79 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 24 पर आगे चल रही है, जबकि पुदुचेरी में एआईएनआरसी 7 पर आगे है, बीजेपी 3 पर आगे है, डीएमके 2 पर आगे है। तमिलनाडु में 100 यानी शतक जड़ दिया है रुझानों में कम से कम टीवीके ने, डीएमके 38 पर आगे है, एडीएमके 65 पर आगे चल रही है। और पश्चिम बंगाल का जो ताजा हाल है, 138 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 81 पर।
1: You know, coming back to you in Bengal, we've been seeing this seesaw battle between Shubhendu and Mamata happening in Bhavanipur yet again. As we see the latest, Shubhendu Adhikari has just nosed ahead of Mamata Banerjee. Now, how do you see the political landscape changing in Bengal? That is one. And of course, when we come to TMC and Mamata Banerjee in particular, what could be their politics in the coming days and the road ahead for them?
2: Well, first point is that if Mamata Banerjee is trailing in Bhavanipur, she is Trinamool Congress. I don't think that any other leader in the Trinamool Congress has the charisma or the weight that she carries. Right. We just take one constituency for a state and look at it, and if there's Bhavanipur and she is trailing, so that itself is the biggest statement of this election. Much like in 2011 when Buddhadev Bhattacharya lost from Jadavpur.

0: राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदीले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजीत पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और धर्मनगर में भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं।
1: या उमेश जी, यू नो इट्स ऑलमोस्ट नियरिंग 11 AM नाउ। Earlier than expected, we would think that probably by noon or by 1 PM or so, the picture would get more clearer. But it seems that even at 11 AM, just 3 hours into the counting or more than that, the picture is getting more and more clearer. And probably if the trend continues, we see this thing standing.
2: अब बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, जैसा कि अभी अतीत का इतिहास जो है, अभी अतीत के जो अनुभव हैं उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और उस तरह से आप जानते हैं। आज एक खास तौर पर आजकल हालिया कुछ चुनावों में आप देखेंगे कि जनता क्लियर मैंडेट दे रही है, हालांकि तमिलनाडु में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर भी वो लगभग क्लियर मैंडेट की ओर जाता हुआ दिख रहा है तमिलनाडु। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर पढ़ने वाला है जो अभी के रुझान है। जी,
0: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन पर ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता दें कि असम में जो ताजा हाल है, भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 25 पर आगे है। केरल में जो इस समय स्थिति है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 61 पर आगे है, सीपीएम 29 पर आगे चल रही है, सीपीआई 9 पर आगे है। पुदुचेरी में इस समय भारतीय जनता पार्टी 3 पर आगे है, AINRC 8 पर आगे है, DMK 2 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 141 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है, सीपीएम 1 पर वहां पर आगे है। तमिलनाडु में बात करें तो टीवीके ने सब

0: के 2 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 141 सीटों पर बड़ी बढ़त बनाए हुए है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीएम 1 पर वहां पर आगे है। तमिलनाडु में बात करें तो टीवीके ने सबको चौंकाते हुए 106 सीट पर बड़ी बढ़त ले ली है। सत्तारूढ़ डीएमके 35 पर आगे है, जबकि एआईएडीएमके इस समय 68 सीटों पर आगे चल रही है। तो अंग्रेजी और हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी पर, लेकिन 11:10 पर जनादेश 2026 के साथ हम वापस आएंगे और चर्चा जारी रहेगी। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से काफी आगे निकल गई है। अब तक के रुझानों में विधानसभा की 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 69 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 6 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लहा के पास। कल्याण, मतगणना के 3 घंटे बीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल में ताजा स्थिति क्या है?
5: देखिए कनकलता, अभी बहुत सारे सीटों में, जैसे कि आप देख रहे हैं, 100 से ज्यादा सीटों में अभी बीजेपी लीड में है और टीएमसी बहुत पीछे पड़ा हुआ है। और भवानीपुर जो इम्पोर्टेंट सीट है, जिसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही है, उसमें शुभेंदु अधिकारी लीडिंग में है। और शुभेंदु अधिकारी दूसरे सीट में जो लड़ रहे हैं अभी नंदीग्राम में, दोनों ही सीटों में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का भी लीड में चल रहा है। और पूर्व वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है, जो टीएमसी का घर है, उसमें भी बहुत सारे सीटों में बीजेपी आगे चल रहा है। और बांकुरा पुरुलिया में भी कांटे का टक्कर चल रहा है। और तीनहाटा जो एक इम्पोर्टेंट सीट है, उसमें बीजेपी कैंडिडेट अभी आगे चल रहा है।
4: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। असम में विधानसभा की 126 सीटों के रुझानों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है। भाजपा 76 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर पीछे चल रहे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 94 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन एलडीएफ केवल 44 सीटों पर आगे चल रहा है। एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन धर्मादम सीट पर पीछे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों में से 218 सीटों के रुझान मिले हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके 100 सीटों पर बढ़त के साथ अन्य दलों से आगे चल रही है। एआईएडीएमके 64 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ डीएमके 37 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 18 सीटों के रुझान मिले हैं। एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर आगे है, कांग्रेस ने 3 सीटों पर और डीएमके 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। उमरेठ से भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार बढ़त बनाए हुए हैं। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेथी आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दास करियप्पा बढ़त बनाए हुए हैं। राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले आगे हैं। बारामती से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। अजित पवार की इस साल जनवरी में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। संगोष्ठी में देशभर से एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश

कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि यह क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Karnataka, Srinivas T. Dasakariyappa of BJP is leading, while in Dharmnagar constituency of Tripura, BJP's Jawahar Chakravarti is maintaining a lead of almost 9,000 votes. In Gujarat, Harshad Bhai Govind Bhai Parmar of BJP is leading by more than 10,000 votes in Umret seats. In Maharashtra, Akshay Shivaji Rao Kardile of BJP is in the lead in Rahuri seat, while in Koridang Assembly constituency of Nagaland, BJP nominee Dao Chir Imchin, who is also the consensus candidate of the People's Democratic Alliance government, led by the Naga People's Front, is leading. And in IPL cricket, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants at Wankhede Stadium in Mumbai at 7:30 this evening. And with that, we end this news bulletin.
1: जनादेश 2026
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जनादेश 2026। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे अब आ रहे हैं और लगातार हम सुबह से आप तक ताजा रुझान और नतीजों के बारे में पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी चुनाव वाले राज्यों में मौजूद हैं और उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं बीच बीच में। और हमारे साथ कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं अनुभा रोहतगी, मेरी को होस्ट। जी अनुभा,
4: thank you Vishal, and welcome once again to Janadesh 2026. As Vishal just said, we are giving you the latest trends and results coming in from the assembly elections that were held in the month of April for four states and one union territory. The states were, of course, Assam, Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, and the union territory of Puducherry. And to discuss these trends and the implications for the state politics in the coming days, we have with us two very distinguished people, panelists with us. We have senior journalist Umesh Chaturvedi with us and political analyst Ashok Tandon. Mr. Tandon and Mr. Chaturvedi, welcome to the program.
5: Thank you.
4: Let's, before we begin the program, let's quickly have a look at what the trends are at the moment. Before we do that, so let's look at the trends. As in Assam, the trends are showing that the BJP at the moment, which is the ruling party right now in Assam, it is leading on 77 seats. It's one of its alliance partners, AGP, is leading on 10 seats. Another alliance partner of the BJP or the party that is in NDA, that is BPF, Bodoland People's Front, it is leading on 10 seats. The Indian National Congress is leading on 25. Its alliance partner, Riojar Dal, is leading on one seat. UPPL is leading on one seat. And Badruddin Ajmal's AIUDF is leading on two seats. Vishal.
3: जी, और पश्चिम बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है इस चुनाव में और यहां का चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है, देश की राजनीति को भी और एक दिशा भी देने वाला है। यहां पश्चिम बंगाल के जो हमारे पास ताजा रुझान इस समय मौजूद हैं, जो मिल रहे हैं हमको, वो ये बता रहे हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 152 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।
4: एंड लेट्स गो ऑन टू तमिलनाडु। इन तमिलनाडु द रूलिंग डीएमके इज एट द मोमेंट लीडिंग ऑन 38 सीट्स। इट्स अलायंस पार्टनर कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 4। अनदर अलायंस पार्टनर डीएमडीके इज लीडिंग ऑन 1, वेयर एज द एआईएडीएमके, व्हिच इज राइट नाउ इन अलायंस विद द बीजेपी एंड पार्ट ऑफ द एनडीए, इज लीडिंग ऑन 69। दैट्स एआईएडीएमके लीडिंग ऑन 69 सीट्स। बीजेपी इज लीडिंग ऑन 2 सीट्स। CPI is leading on 3 seats. CPM is leading on 2 seats. The PMK is leading on 7. PTM is leading on 6. And most importantly, actor Vijay's TVK party, which was formed just 2 years ago and is making its electoral debut in these elections, that party is leading on 105 seats. Another party, VCK, is leading on 1 seat.
3: जी, उमेश चतुर्वेदी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। तमिलनाडु, ये जो पश्चिम बंगाल के जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, वो एक तरीके से दिख रहा है कि एग्जिट पोल जो आए और उनके नतीजे जो आए वो लगभग सही साबित होते दिख रहे हैं। भाजपा ने बहुत अच्छी बढ़त वहां पर बना ली है।
5: बिल्कुल, अब तो रुझानों में वो बहुमत प्राप्त कर चुकी है, तो ये तो बड़ी बात है कि आप देखिए कि जो पार्टी 2011 में बमुश्किल 4% वोट हासिल करती है, 2016 में वो 10% से कुछ ज्यादा वोट हासिल करती है, 2021 में वही पार्टी आते आते एकदम से उछाल लेती है और 38%, और जो ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उस समय वो करीब 48% वोट पाई थी। अब देखिए कि स्थिति पलट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो रुझानों में जो वोट परसेंट जो चुनाव आयोग का डाटा दिखा रहा है 44% से कुछ ज्यादा ही वोट हासिल कर चुकी है, और रुझानों में तो आगे बढ़ती हुई दिखी रही है, बहुमत प्राप्त कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो 77 सीटें हासिल की थी उसमें से उसके अलावा उसने 38 सीटों पर वो 5% के वोटों के मार्जिन से हारी थी, और करीब 43 सीटें ऐसी थी जिस पर 10% के मार्जिन से वो हारी थी। तो वो क्या है कि इन सीटों पर ये जो 38 और 43 जो करीब 81 सीटें हैं, इन 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, और जो 77 सीटें उसके खाते में पहले से थी उसको वो तो मान के चली रही थी, क्योंकि वो एक कहिए कि अलग तरह के सिचुएशन में उसने इस तरह की जीत हासिल की थी तो मान के चल रही थी, तो उसने पूरा काम किया। और जो 80 सीटें वहां मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं उन 80 सीटों में से भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी सीटों पर वो आगे बढ़त बनाई हुई है। तो ये कहना कि ममता बनर्जी के पक्ष में एक अल्पसंख्यक वर्ग का पोलराइजेशन था वो भी इस धारणा को तोड़ता हुआ नजर आता है। तो ये एक तरह से देखेंगे तो एग्जिट पोल की ओर से जो एक्सपेक्टेड था उसी लाइन पर वहां के चुनाव नतीजे दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल के।
4: Mr. Tandon, I'll come to you now. You know, if we look at all the five states, union territories where the election is being held, if we look at the overall Assam, BJP Himanta Biswa Sarma, the CM, is seeking a third consecutive term. If we talk about the Tamil Nadu, M.K. Stalin is seeking a second term. Puducherry CM N. Rangaswamy seeking a second straight term. In West Bengal, Mamata Banerjee is seeking a fourth straight term. We don't know what the result is going to be yet. And Kerala, again, the LDF, Pinarayi Vijayan, is seeking a third term. So if you look at all the places, all the states and union territories where the elections are being, were held, it's a question of, not just consolidation, but also of, would you say that survival? Because we're seeing a lot of the trends are not coming as per the expectation of the ruling dispensation. What would you say? A lot at stake for all the parties, ruling parties and the CMs.
6: You're right. In certain cases, it's really very disruptive. Particularly Tamil Nadu, if I may say so. All the opinion polls and exit polls were showing DMK alliance to win.
4: Right.
6: And what is coming out is a great disruption in Tamil Nadu politics. A film star is now leading almost.
4: Mr. Tandon, interrupt you right now, because we have online with us Mr. Tom Vadakkan, BJP spokesperson. Mr. Vadakkan, welcome to Akashwani's Janadesh 2026.
7: Sir, शुरुआती रुझान है उसको किस तरीके से देखते हैं?
8: देखिए, अभी ट्रेंड चल रहा है, एक घंटे के अंदर हमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट पोजीशंस क्या है, लेकिन इनिशियल ट्रेंड से क्लियर इंडिकेशन है असम, वेस्ट बंगाल और स्टेटों में भी हम कुछ नए सीट्स पर आ रहे हैं। मोदी जी के लीडरशिप में हमने देखा है ये डबल इंजन गवर्नमेंट सक्सेसफुल है, और जो अर्ली ट्रेंड्स इंडिकेट कर रहा है, जनता जनार्दन को विश्वास है जो मोदी जी जो प्रॉमिसेस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, और इसी डबल इंजन गवर्नमेंट करीबन हिंदुस्तान के हर स्टेट में होगा आने वाले दिनों में।
4: That was BJP spokesperson Tom Vadakkan speaking to media earlier in the day. Mr. Tandon, back to you.
6: Yeah, we were talking about Tamil Nadu. Long, Tamil Nadu has seen contest between DMK and AIADMK-led alliances. They have been, in fact, alternating in the office. But now the early trends from Tamil Nadu suggest that actor-turned politician Joseph Vijay is leading by a huge gap. So in what is going to shape up to an unusually disruptive election, as I said earlier. Now the question is that His entry into politics has jolted a system long dominated by regional DMK.
4: Okay,

0: BJP in Assam, and also victory of the BJP in West Bengal. So I think let's wait for the final result. But the initial indications very clearly say that there was anti-incumbency against Mamata Banerjee's return, and BJP was emerging as an alternative to Trinamool. Now, what has happened to the left front?
1: Exactly.
0: Which was ruling West Bengal for a long time.
1: More than three decades before Mamata Banerjee.
0: So that means, see, now West Bengal is seeing a two-party system.
1: Yes.
0: Whereas there was no BJP when it used to be left front versus Congress.
1: Yes.
0: Then slowly it emerged as left front versus Trinamool. Now it has emerged as Trinamool versus BJP. So I think it's time for Congress party particularly to introspect what has gone wrong with them in West Bengal. Assam. See, Assam, their leader himself I think is trailing. Some time ago,
1: Gaurav Gogoi was also trailing.
0: So I think in a democracy like India, a party which is more than 100 years old, they need to introspect where things are going wrong, because slowly they are losing state one by one, except for Kerala, where the UDF is coming back to power, where Congress of course is the leading partner. But I think it's early to analyze all the elections, but initial trends indicate that West Bengal BJP is doing extremely well, and in Tamil Nadu the film star turned politician Joseph Vijay is also emerging as a star in Tamil Nadu.
2: जी, और इस बीच हमारे संवाददाता दीपेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से बात की है. जी,
3: शुरुआती ट्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन हम खास तौर पे जो हमारा सवाल होगा पश्चिम बंगाल को लेकर कैसे देख रहे हैं इसे?
4: देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं. ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में, और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस प्रकार की विकास की प्यास और आवश्यकता पूर्वोत्तर को थी, उसी को देखते हुए आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक महिला विरोधी तुष्टिकरण वाली सरकार को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया है, और मोदी जी की सरकार को लाने के लिए वो वहां पे तत्पर है. असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है. इसका मतलब हम सरकार जब चलाते भी है तो अनलाइक डीएमके, अनलाइक लेफ्ट पार्टी या अनलाइक टीएमसी, हमारी सरकार डिलीवर करती है, इसलिए तीसरी बार भी हमारी सरकार बनती है.
2: जी, दीपेंद्र हमारे संवाददाता बीजेपी प्रवक्ता भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से बात करते हुए. उमेश जी, यहां पे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल को एक लास्ट फ्रंटियर के रूप में देखा जाता था अभी तक, कि उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में बात करें तो भाजपा अपना परचम लहरा चुकी थी. ये एक ऐसा मात्र राज्य बचा था जहां पर कि बीजेपी भाजपा बहुत दिनों से और बहुत सालों से मेहनत कर रही थी. जनसंघ के संस्थापक जो रहे हैं शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका गृह राज्य माना जाता है. पश्चिम बंगाल में भाजपा का सत्ता में आना, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है, और राष्ट्रीय राजनीति पे इसके क्या असर आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं?
5: देखिए, माना नहीं जाता है, उन्हीं का गृह राज्य है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का. वहीं कलकत्ता के रहने वाले थे, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे. बिल्कुल. लेकिन एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा कि 1967 में जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो संयुक्त विपक्ष के ने चुनाव लड़ा था, तो उसमें 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से भारतीय जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल जीते थे. पहली बार वहां जीती थी भारतीय जनता पार्टी 1967 में, तब उसका नाम भारतीय जनसंघ होता था. 58 सीटें लड़ा था भारतीय जनसंघ उस बार, लेकिन एक सीट पर जीत मिली थी. तो निश्चित तौर पर जिस राज्य के निवासी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ के संस्थापक, वहां जीत के एक अपने मायने हैं. दूसरी क्या है कि एक चीज जो हम पूरी चर्चा में छोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल हल्के नहीं बल्कि नक्सलवाद के उभार के बाद से देखेंगे तो चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव में थोड़े बहुत नहीं, 58 लोगों की मृत्यु हुई थी ऑन द रिकॉर्ड, मारे गए थे चुनावी हिंसा में। जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसमें 75 लोग मारे गए थे। ये पहला चुनाव है जिसमें एक भी मौत नहीं हुई है, ये बड़ी बात है, इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि

0: चुनाव आयोग आजकल बड़ा सवालों के घेरे में रखा गया है कि उसने एक तरह से 2.5 लाख केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और बीएसएफ और आईटीबीपी और सीआईएसएफ के जवानों को उतार करके उसने चुनाव कराया, और हम भूल जाते हैं कि केजे राव 2005 में चुनाव आयोग के एडवाइजर थे और उन्होंने अगर इस तरह से कड़ाई नहीं की होती तो शायद बिहार में भी, जो वो भी चुनावी हिंसा और बूथ लूट के लिए जाना जाता था, वहां पारदर्शी और स्वच्छ मतदान नहीं हो सकता था। तो इन जो पश्चिम बंगाल में जीत जो है ना, पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहां देखिए असम में जीत चुकी है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरुणाचल में है, त्रिपुरा में है, अब वहां एक पश्चिम बंगाल एक प्रश्न प्रदेश बनकर रहा था, तो अब प्रश्न प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने हल कर लिया है। चुनाव आयोग को भी हम लोगों को बधाई देनी चाहिए कि उसने हिंसा मुक्त चुनाव कराया है, बहुत छिटपुट हिंसा हुई है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग की ओर से एक मैसेज भी आया है, बाकी 4 राज्यों में चुनावी विजय यात्रा पर रोक चुनाव आयोग ने नहीं लगाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगा दिया है। यह देखते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उस पर एक जो आरोप लग रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनावी हिंसा को रोकने के लिए वो बड़ी पूरी तरह से मुस्तैद है। और पश्चिम बंगाल की जीत जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो अब अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं, या उसके ठीक अगले साल फिर एक साल बाद राष्ट्रीय चुनाव होंगे, तो इन चुनावों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्साह का काम करेगा। और हर चुनाव में जब जीत मिलती है किसी भी पार्टी को तो उत्साहित होती है, उत्साहित तो कांग्रेस भी होगी क्योंकि यूडीएफ को जीत मिल रही है केरल में, तो ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए।
1: जी अशोक जी,
2: मैं इसमें थोड़ा खेल प्रेमियों के लिए एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, टेनिस, इनके कई लोकप्रिय खिलाड़ियों को टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को टिकट दिया था, और इसी तरह अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर शिव शंकर पॉल को मैदान में उतारा, और आगे देखें तो जो टीएमसी ने जो स्वपन बर्मन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको उतारा, इसी तरह से और बहुत नाम
1: जी,
2: है।
1: जी, अशोक जी, वी हैव विद अस बीजेपी स्पोक्सपर्सन तुहिन सिन्हा हैज जॉइंड अस ऑन लाइन राइट नाउ। मिस्टर सिन्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026। सर, व्हाट आर योर इनिशियल यू नो कमेंट्स ऑन योर थॉट्स ऑन द ट्रेंड्स दैट आर कमिंग इन?
3: वेल, इट्स नो लॉन्गर यू नो जस्ट द ट्रेंड्स, बिकॉज द ट्रेंड्स हैव held on for the last 3.5 hours now.
1: Right.
3: So very clearly, the BJP is headed towards a 3-2 win. Of course, in Puducherry, it's an NDA government which seems to be on its way. But in Assam, it's a very decisive win. In West Bengal, again, it's a very comprehensive win. It's not a close election at all. And if the present trends hold, we are on course to get more than 175 seats at least. Now, very clearly, it's a rejection of the Diamond Harbor model of governance, where intimidation of women, threats, and crime were holding sway. And people have expressed their faith in BJP's promise to revive, you know, the rule of law in the state. So it's end of TMC's Gunda Raj in West Bengal.
1: तो हिंजी, आपसे मैं खासकर वेस्ट बंगाल की बात करना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा कि हम जो ट्रेंड्स भी देख रहे हैं, 170 सीटों पे बीजेपी पहले अभी ऑलरेडी लीड कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो वहां पर जहां सरकार थी जिसकी अब तक, वो सिर्फ 93 सीटों पर है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कौन सा एक जो फैक्टर था वो बीजेपी जो अपना इतनी इसने बढ़त ले ली पिछले इलेक्शन में?
3: हमारा पूरा संवाद ही जनता से भय बनाम भरोसा
1: जी,
3: तो जो टीएमसी के आतंक का माहौल पिछले 15 सालों से चल रहा था
1: जी।
3: और पिछले 45 दिन में तो टीएमसी के अगर नेताओं का भाषण आप सुने
1: जी,
3: तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो ये लोग व्यवहार ही नहीं कर रहे थे। इनका पूरा आचरण एक माफिया एम्पायर का था, लोगों को डरा रहे, धमका रहे थे। तो आज महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। अगर आप देखें, रीता देवनाथ जी बड़े मतों से रीता देवनाथ जी जीत रही हैं, रेखा पात्रा जी जीत रही हैं। तो महिलाओं ने जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि जब सोशल वेलफेयर के द्वारा महिलाओं को बेनिफिट्स भी मिलता है, तब भी महिलाएं उस पार्टी को वोट नहीं देगी जो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, जो गुंडा राज के जरिए उनको भय के वातावरण में रहने पर मजबूर करती है। तो निश्चित रूप से महिलाओं ने बड़ी संख्या में हमें वोट दिया। और ये जो भाजपा का परफॉर्मेंस रहा है पश्चिम बंगाल में, प्रेसिडेंसी का क्षेत्र जो हमारे लिए कठिन क्षेत्र माना जाता था, वहां पर भी हमारे सीट बड़ी संख्या में हमारी सीट में बढ़ोतरी हुई है। नॉर्थ बंगाल तो हमारा स्ट्रांग एरिया है ही, पर पूरे बंगाल में इंक्लूडिंग वो मथुआ बेल्ट में इस बार लोग संशय पैदा कर रहे थे कि मथुआ कम्युनिटी शायद वोट ना दे, एसआईआर में कुछ त्रुटियां आई हैं उस वजह से। मथुआ कम्युनिटी के गढ़ों में भी वहां पर भी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई हमारे पक्ष में। तो मेरे ख्याल से पूरे एक मत में बंगाल की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और टीएमसी के भय के वातावरण को पूरी तरह से नकारा है, एक करारा जवाब दिया है।
1: मिस्टर सिन्हा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन एंड दिस टाइम अबाउट यू नो द असम। असम यू आर द बीजेपी लेड एनडीए इज लुक्स यू नो टू बी हेडिंग टुवर्ड्स forming the third consecutive government now. The interesting thing here is that in the past two elections, the BJP was not able to get a majority on its own. It was not able to cross the six figure of 60. But this time, as we can see, the trends are showing
3: us. In Assam, it's very clearly, this was very clearly a report card versus Congress party's minority card election.
1: Right.
3: And people have preferred the report card. So in Assam, this time it was always meant to be a one-sided election, and the results show for themselves. The massive infrastructure development which has taken place across the state of Assam,
1: right.
3: Women empowerment, and of course we have succeeded in circumventing the demography distortion which Congress was presiding over pre-2016. So all of these factors have actually led to a massive flow in incumbency vote in our favor.
1: Right.
3: That explains the Assam verdict in our favor.
1: Mr. Sinha, thank you so much for speaking to Akashwani.
3: Thank you.
1: That was BJP spokesperson Tohin Sinha speaking to us. Now, my next question is to both Mr. Tandon and Umesh Chheed, both of you. You know, when we look at, we were talking about, Ashokji was just talking about actor Vijay, who's being seen as a disruptor in Tamil Nadu. But the interesting fact here is that it's not the first time that a celebrity or rather a film actor has, you know, come into politics in Tamil Nadu. Tamil Nadu has had a very long history. You had MGR, there was J. Jayalalitha, Mr. Karunanidhi was a screenwriter. So it's not the first time that a actor has entered the political arena in Tamil Nadu. So why is he being seen as a disruptor? And what's so different about, you know, this time that his party is leading so much? Mr. Tandon, we'll start with you.
2: If you look at it from the first general election onward, the Congress used to be a very dominant party in Tamil Nadu. They, you know, produced stalwarts like Kamaraj and all that. But gradually, there was a vacuum. There was no other national party on the scene at that time. So therefore, the emergence of MGR, a film star, icon, that he became a disruptor.
1: Yeah.
2: Then he formed a party, Anna DMK. And he became a rival to Congress gradually. And then the emergence of DMK. So it became Congress, you know, when Congress compromised with a regional party, forging an alliance, it proved to be Waterloo for the Congress.
1: Right.
2: Then DMK came on the scene. So it was for a very long time DMK versus AIADMK.
1: Yes.
2: Now after MGR's death, there was a question of legacy. And Jayalalitha captured that scene. Now, so she also was from the film fraternity. So DMK, as you also said, Karunanidhi was a very script writer and all that. But it continued for a long time. After Jayalalitha's death, the AIADMK was in a very bad shape, as the results are also showing. The BJP tried to emerge in Tamil Nadu, but of course they failed. Then they tried to align with AIADMK. And again, this alliance is also not proving very fruitful. Now, in the process, the younger generation got very disappointed because of frustration, because of family and dynasty rule. And then suddenly, an actor emerges on the scene. He captures the hearts of the younger generation.
1: He already has the hearts.
2: He's already. So therefore, history of Tamil Nadu is like that. But the fact remains, this fellow came from nowhere.
1: Right.
2: Suddenly emerging on the scene. I remember in the last election, even there was an effort that either two other film stars who are very popular, Kamal Haasan and Rajnikanth, there was speculation that they may be entering politics. So that means there was a vacuum. Certainly both, I don't know why, Kamal Haasan of course floated a party, but suddenly now there is an emergence of Joseph Vijay, and he has proved that there was anti-incumbency against Stalin government and alternative AIADMK alliance

0: सकलन अख्तर हमारे संवाददाता इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है नई दिल्ली में। जी सकलन, क्या जानकारी है आपके पास ताजा वहां से?
1: अभी हमारी जो है कांग्रेस मुख्यालय पर जब हम यहाँ खड़े हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में केरल अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी चार राज्यों पर वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अभी अभी हमारी बात कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से हुई थी। पवन खेड़ा ने भी यही कहा कि नतीजे अभी नहीं आए हैं, रुझान है, इसी पर वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता केरल के जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, जो रुझान है, उनको देखे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
0: जी धन्यवाद सकलन। चतुर्वेदी जी, ये यहां पर केरल की बात अभी हम कर रहे थे, हमारे संवाददाता भी कांग्रेस मुख्यालय से बता रहे थे, केरल में कांग्रेस की वापसी एक तरीके से देखा जाए तो क्या अब हम ये मान के चलें कि वाम दल जो है या वाम राजनीति जो है अब एक आखिरी किला माना जाता था केरलम को, वहां से भी अभी धीरे धीरे दरक रहा है?
2: आजादी के बाद ये पहला मौका है, वैसे तो पहली बार 1957 में केरल में ही चुनी हुई, कोई दुनिया की चुनी हुई पहली वामपंथी सरकार बनी थी। तो ये तो सही है कि आजादी के बाद भारत में पहली बार कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां वामपंथ की सत्ता में सीधी भागीदारी हो या सत्ता जिसके हाथ में है। और जो अनुभा जी ने जो पहले सवाल पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 25 सालों के अंतराल के बाद 133 सीटों के साथ अपने दम पर, हालांकि गठबंधन में चुनाव लड़ा था डीएमके ने, अपने दम पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। इसका मतलब जनाकांक्षाओं का एक बड़ा उफान उनके साथ था और आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके विरोध में, कभी भाषा के मुद्दे पर, जबकि भाषा वहां गौड़ हो चुकी है, हिन्दी का मामला इतना सिर्फ राजनीतिक ढंग से उछाला जाता है। श्रीधर बेम्बू जो जोहो के संस्थापक है, उन्होंने कह दिया था कि भैया अगर आप हिन्दी नहीं सीखोगे तो बड़ी कठिन होती है, तो उनको भी एक तरह से ट्रोल किया गया था। और वो जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने से इनकार, आप जानते ही हैं तमिलनाडु अकेला राज्य जहां नवोदय विद्यालय नहीं है अभी भी। तो केंद्र की नीतियों का विरोध में राजनीति करना, 133 अकेले दम पर 234 में 133 पाना, ये बड़ी बात थी। तो निश्चित तौर पर यह हार ममता बनर्जी की हार से कहीं कमतर नहीं है, यह भी बड़ी हार है तमिलनाडु की। और दूसरा जो केरल में आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस उभर रही है, ठीक है अभी जीती है तो माना जाएगा कि उभर रही है, लेकिन केरल में जो जीत हो रही है वो विकल्पहीनता के चलते यूडीएफ की जीत है। अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार, ठीक है कि उसको 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, नेमम पलकड़ और एक तीसरी सीट है, तो लेकिन उसने वोट शेयर उसका लगातार बढ़ रहा है, पिछली बार के 16% की तुलना में अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन शायद 20% से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है कि आगे अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि मुझे लगता है जो आपने अभी पिछले सवाल में पूछा था ना कि पूरब का द्वार है पश्चिम बंगाल, वहां कब्जा हो गया, तो अब वो कंसंट्रेट करेगी दक्षिण के राज्यों में, केरल में, कर्नाटक में तो उसकी उपस्थिति मजबूत पहले से है ही, तेलंगाना में मजबूती से बढ़ ही रही है, तो अब वो कंसंट्रेट करेगी, तो मुझे लगता है कि अगला उसका टारगेट केरल ही होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को खुशियां मनानी चाहिए क्योंकि उसकी सत्ता में वापसी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। जी
3: अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: केरल के बारे में, केरलम के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछले चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने जीत हासिल की थी दोबारा, क्योंकि उससे पहले हमेशा बदल होता रहा, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर रही केरल में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां काम बहुत अच्छा है। तो पहले ये माना जाता था कि जो यूडीएफ है, कांग्रेस लेड यूडीएफ, क्योंकि उसमें केरला कांग्रेस है, उसमें मुस्लिम लीग है, तो जो हिंदू वोटर था वो अंत में जाकर जब देखता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं तो वो एलडीएफ को वोट दे देता था, क्योंकि केरला में लेफ्ट फ्रंट को हिंदू पार्टी माना जाता है। लेकिन इस बार ज्यादा जोर लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष तौर से जब वो त्रिवेंद्रम की म्यूनिसपैलिटी जीत गए तो उनको लगा कि अब हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो हमको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, इसलिए राजीव चंद्रशेखर को वहां भेजा गया और उन्होंने पूरा दमखम लगाया, और उसके चलते अगर वो 2-3 सीट अगर जीत रहे हैं या लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका मत प्रतिशत बढ़ने वाला है। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान एलडीएफ को हो रहा है ऐसा दिखता है, क्योंकि पहले अगर आखिरी मोमेंट पर संघ और भाजपा का वोट एलडीएफ को चला जाता था, जिसके

0: कारण वो जीतते थे। इस बार अगर वो नहीं जा रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना चाह रही है, तो हो सकता है अंत में चलकर ये एलडीएफ की हार का एक कारण ये भी बने कि जो हिंदू वोट है जो एलडीएफ को मिलता था वो इस बार बढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाह रही है और वोट प्रतिशत बढ़ाकर आगे विकल्प बनना चाहती है। तो शायद केरल की जब एनालिसिस होगी केरलम की तो ये एक फैक्टर भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: And now let's go over to Kolkata, where Akashwani correspondent Kalyan Laha is with us. Kalyan, welcome to the program. What is the latest that you have for us from West Bengal?
2: The latest news is West Bengal mein jo hai abhi, BJP is leading in 156 seats.
1: Ji.
2: And Trinamool Congress is leading in nearly 82 seats. And in major fight in the Bhavanipur seat. Sometimes we note that the Trinamool Congress is Mamata Banerjee is leading, and sometimes we see that the Shubhendu Adhikari is leading, and there is a neck-to-neck fight we are witnessing here. And in a significant development that in all the districts where Trinamool Congress's candidates were sitting position, and they are trailing, and BJP is leading in many seats. In several districts where there was no presence of BJP earlier.
1: Kalyan, West Bengal में इस बार जो काउंटिंग के दौरान जो सुरक्षा इंतजाम किए गए बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम है और पिछले कई चुनावों के अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छा इंतजाम किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं?
2: देखिए, आपने सही बोला है एकदम। पिछले चुनाव और लोकसभा हो और विधानसभा है, हमने देखा है कि बहुत वायलेंस होता था। इवन काउंटिंग के दिन भी बहुत वायलेंस होता था, एजेंट को जो अपोजिशन एजेंट्स को मारा पीटा जाता है, ऐसे भी हम इंस्टेंसेस देखते हैं। बट अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए है, टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, 3-layer सिक्योरिटी है आपका काउंटिंग सेंटर में, अंदर एकदम अंदर है आपका सीएपीएफ। और इसमें और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है हिस्ट्री में जैसे देखा नहीं गया पहले, पुलिस ऑब्जर्वर भी काउंटिंग सेंटर में है बट उसको एकदम भीतर में अलाउड नहीं है। तो सीनियर एक आईपीएस ऑफिसर होगा, सारी काउंटिंग सेंटर में है और ऑब्जर्वर भी है और राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसे में हम देखे कि वोटिंग के दौरान 23rd में और 29th में जो वोटिंग हुई कोई भी वायलेंस ऐसा मेजर नहीं हुआ है, अभी तक कोई वायलेंस का इंसिडेंट नहीं है, पूरे एकदम शांतिपूर्ण से सभी जगह में काउंटिंग हो रहा है।
3: जी कल्याण, अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम, ये ऐसे जिले रहे हैं जहां पर कि 118 सीटें 294 में से यानी कि 40% सीटें इन्हीं जिलों से आती हैं। और 2021 में टीएमसी ने कुल 103 सीटें इन्हीं 6 जिलों से पाई थी। इस 2026 में इस बार क्या स्थिति है वहां की, कुछ जानकारी आपके पास है ताजा?
2: देखिए, अभी तक जो ट्रेंडिंग अभी दिख रहा है इस जिले में, सारी जिले में जैसे आप मेंशन किया है अभी, बीजेपी बहुत सी जगह में इस जिले में सीट जो कंस्टिट्यूएंसी है लीड कर रहे हैं। अभी देखिए मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी बहुत सारे सीट्स में लीडिंग कर रहे हैं, दक्षिण 24 परगना में भी लीड कर रहे हैं और उत्तर 24 परगना में भी लीड कर रहे हैं। अभी बीजेपी की स्थिति अभी बहुत अच्छा है, बाकी अगर पास्ट इलेक्शन के को हम कंपेयर करें तो अभी बहुत पुख्ता स्थिति है बीजेपी का।
1: जी कल्याण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड बिफोर वी टेक द प्रोग्राम अ लिटिल फर्दर, विशाल, लेट्स गिव आवर लिसनर्स द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग।
3: जी, ताजा रुझान हम अपने श्रोताओं को बता दें, तमिलनाडु से जो हमारे पास ताजा रुझान आ रहे हैं, पेरम्बूर सीट से टीवी के उम्मीदवार सी जोसेफ विजय बढ़त बनाए हुए हैं, कोलातूर से डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं, हार्बर से डीएमके उम्मीदवार पीके शेखर बाबू पिछड़ रहे हैं, चेपक तिरुवल्लिकेणी से डीएमके उम्मीदवार उदयनिधि मारन पीछे हैं, अन्नानगर से ऑल इंडिया अन्ना डीएमके उम्मीदवार एस गोकुल इंदिरा पीछे चल रहे हैं, सैदापेट से डीएमके उम्मीदवार सुब्रमण्यम पीछे हैं और माइलापुर से भाजपा उम्मीदवार डॉ तमिलीसाई सौंदरराजन पीछे चल रहे हैं। श्री पेरम्बूर सुरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के सेल्वा पेरुनतगई पीछे चल रहे हैं, कटपड़ी से डीएमके उम्मीदवार दुरई मुरुगन पिछड़ रहे हैं, पेन्नागरम से कांग्रेस उम्मीदवार जीकेएम तमिल कुमारन पीछे चल रहे हैं, धर्मपुरी से पीएम के उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि बढ़त बनाए हुए हैं, किलपेन्नातूर से डीएमके उम्मीदवार पिटचांडी के पीछे हैं, एडापड़ी से ऑल इंडिया अन्ना डीएमके उम्मीदवार एडापड़ी पलनीसामी आगे चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये। और गोबी चेट्टीपलयम से टीवी के उम्मीदवार सेनगोट्टियन के ए बढ़त बनाए हुए हैं। अवंशी सुरक्षित सीट से भाजपा के डॉक्टर एल मुरुगन पीछे हैं। कोयम्बतूर उत्तर सीट से भाजपा उम्मीदवार वनती श्रीनिवासन पिछड़ रहे हैं। कोयम्बतूर दक्षिण से डीएमके उम्मीदवार वी सेंथल बालाजी बढ़त बनाए हुए हैं। तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट से टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आगे चल रहे हैं। कुरिंजीपड़ी सीट से डीएमके उम्मीदवार एमआरके पनीरसेल्वम पीछे हैं। करईकुड़ी से एनटी के उम्मीदवार सीमन पिछड़ रहे हैं। और तिरुपत्तूर से डीएमके उम्मीदवार पेरिया करुप्पन बढ़त बनाए हुए हैं। बोडीनया कुरनूर से डीएमके उम्मीदवार ओ पनीरसेल्वम बढ़त बनाए हुए हैं। सत्तूर से भाजपा उम्मीदवार नैनार नांगेरतरन पीछे हैं। और राधापुरम से डीएमके उम्मीदवार अप्पू एम पिछड़ रहे हैं।
1: और इसके अलावा पांच राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे, चलिए आपको उनके रुझान बताते हैं। तो जैसा कि मैंने भी कहा था कि पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी आज हो रही है। ये सात सीटें हैं गुजरात में उमरेट, कर्नाटक में बागलकोट और दावनगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर। इनमें से चार सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। उमरेट से भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार आगे चल रहे हैं। बागलकोट कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश खुल्लप्पा मेती आगे हैं। दावणगेरे दक्षिण में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिका अर्जुन आगे हो गए हैं। अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो राहुरी से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजी राव करदिले आगे हैं। बारामती से पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सुनेत्रा अजीत पवार बढ़त बनाए हुए हैं। और नागालैंड में कोरिडांग से भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमेचेन आगे हैं। वहीं त्रिपुरा में धर्मनगर से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती आगे चल रहे हैं।
3: जी अनुभा, कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्या वहां पर इस समय ताजा स्थिति है। असम की अगर हम जानू कबारी सीट की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के भाजपा के आगे चल रहे हैं और लीड बनाए हुए हैं। असम से ही जोरहाट सीट से जो है गौरव गोगोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं।
1: आई विल यू नो विशाल, व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज दैट गौरव गोगोई इज एक्चुअली द सिटिंग एमपी राइट नाउ फ्रॉम जोरहाट। ही वन द यू नो मैसिव मार्जिन इन 2024 इलेक्शंस एंड टू सी हिम यू नाउ लीडिंग इन द असेंबली इलेक्शंस। बिफोर यू गिव एनी मोर ट्रेंड्स, आई वांट अ कमेंट फ्रॉम बोथ उमेश जी एंड अशोक जी ऑन दिस।
0: So it's very interesting, on the eve of the election,
1: yes,
0: Hemanta Biswa said, I want him to win. I want Gaurav Gogoi to win and come to the assembly, and then I will show him what exactly we have done, my performance. Because sitting in Lok Sabha, he may not be observing my performance in Assam, but unfortunately he is losing. So having won the Lok Sabha election, Gaurav Gogoi is trailing and he was the Congress face,
1: yes,
0: for
1: yes,
0: the Assam
1: exactly.
0: election. He was perhaps emerging as a very popular, he's a very good parliamentarian, no doubt about it. So he was, that's why he was asked to go and contest the assembly election and perform well as far as Congress is concerned, because Congress had been ruling Assam for a very long time, and only when they lost Hemanta Biswa Sarma, he left,
1: yes,
0: Congress and joined BJP. That was a huge loss for Congress, but now he is trailing, but Hemanta Biswa wanted him to win and become leader of opposition so that he can face to face tell him the performance of the Hemanta Biswa government in Assam.
1: Umesh ji,
4: Tarun Gogoi के पिछड़ने के संबंध में आपने सवाल पूछा है,
1: गौरव गोगोई,
4: सॉरी गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के बेटे हैं, सॉरी, हाँ जी। देखिए, तरुण गोगोई निश्चित तौर पर कांग्रेस का असम में चेहरा थे, और जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, वो हाफ हार्टेड जिसको कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ा है। और एक चीज और ध्यान में देने की है कि असम के प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे, पवन खेड़ा प्रकरण भी वही हुआ, और जिस तरह से इसको उछाला गया और जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने भी उसको टैकल किया, जिस पर कि अभी पवन खेड़ा को दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि वो जीत सकती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एक चीज और भी था कि कांग्रेस के तीन जो कैंडिडेट की लिस्ट तीन जगह तैयार हो रहे थे, एक प्रियंका गांधी तैयार कर रही थी, एक भूपेश बघेल कर रहे थे और तीसरा राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे

0: राहुल गांधी जो उनके स्टार चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने शायद एक ही दिन असम में प्रचार किया। तो निश्चित तौर पर आप जब किसी को नेता प्रोजेक्ट करते हैं और उसके पीछे अगर पूरी तरह से खड़े नजर नहीं आते और उस नेता का कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व तो नहीं होता जिस तरह से कि हेमंत विश्व शर्मा का दिख रहा है, तो ये ऐसे ही नतीजे आने थे। तो एक चीज तो ये है कि कांग्रेस अगर, जैसे कि टंडन जी बता रहे थे कि अगर गौरव गोगोई जीत गए होते तो शायद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जो राहट की सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता तो शायद वो भी सीट कांग्रेस के खतरे में पड़ सकती थी। कम कह सकते हैं कि वो सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब रही है, जो राहट की लोकसभा सीट। तो मुझे लगता है कि इस तरुण गौरव गोगोई की जो का पिछड़ना है वो कांग्रेस के लिए एक आईना हो सकता है कि आपको किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए और किस तरह से अपने लोगों को साध के रखना भी चाहिए। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा कहा जाता है कि वो पहले तरुण गोगोई के ही लेफ्टिनेंट थे, हालांकि मेरे पास जानकारी ये भी है कि वो अहमद पटेल के भी लेफ्टिनेंट थे और उनके लिए भरूच में भी काम करते थे, लेकिन किस तरह से वो कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और ना सिर्फ वो असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर आयातित नेताओं को इस तरह से नंबर वन की सीट नहीं मिलती रही है, इस परंपरा को भी वो तोड़ने में कामयाब होते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके चमत्कारिक नेतृत्व के सामने गौरव गोगोई की जो स्थिति है वो शोचनीय है, कही जाएगी, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है।
1: जी अशोक टंडन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
2: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस नेतृत्व का जो फेल्योर है वो केवल चुनाव जितवाने तक नहीं है, वो अपने नेताओं को संभाल के रखने की भी एक समस्या है। और हेमंत बिस्वा शर्मा उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। वो कांग्रेस के स्टालवर्ड थे पूरे नॉर्थ ईस्ट के असम के, वो कई लंबे समय से राहुल गांधी से समय मांगते रहे थे और ऐसा जो हमने रिपोर्ट देखी मीडिया में, जब उनको समय मिलता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा उनको पूर्वोत्तर की राजनीति समझा रहे और वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे। तो ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो नेतृत्व से निराश होकर कांग्रेस छोड़ी है जिन्होंने, और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व अगर चुनाव नहीं जितवा सकता लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को तो संभाल सकता है। एक एक करके जो लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस, और कई वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं और ऐसे युवा नेता भी छोड़ रहे हैं, एक तो उनको कांग्रेस में भविष्य इसलिए भी नहीं दिखता कि नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में है, चाहे पार्टी हारे या जीते नेतृत्व एक परिवार के हाथ में ही रहना है, तो ऐसे में हमारा भविष्य क्या है। तो ये सोचकर भी कांग्रेस को, मैं समझता हूं, और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं कि ये जो एक जिंक्स टैच को तोड़ा जाए कि कांग्रेस क्यों ही एक परिवार के नेतृत्व में रह सकती है, कांग्रेस इतनी लंबी पुरानी स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी है, क्यों नहीं उसमें कोई नेहरू गांधी फैमिली के बाहर का नेतृत्व आ सकता है। तो ये मैं समझता हूं जो सोच चल रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं में, उनको अब मुखर होकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और पार्टी समाप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में राष्ट्रीय दल दो रहने चाहिए। अभी लेफ्ट फ्रंट खत्म हो गया तो बाकी तो सब क्षेत्रीय दल रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के अंदर इस पर मंथन होना चाहिए।
3: जी हम क्योंकि बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट असम, वेरी क्विक कमेंट बिफोर वी गो इनटू ब्रेक एट 12 नून फ्रॉम बोथ ऑफ यू। असम, यू नो, इट्स द फर्स्ट इलेक्शन दैट्स बीइंग हेल्ड इन असम आफ्टर द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ 2023। अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग, यू नो, सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। How do you see, what is the impact? Ashok ji, very quick comment.
2: I think a major issue, one of the major issue has been infiltration from across the border. And Hemanta had made it a point that we will not allow this kind of a thing to happen. So if you look at the earlier Assam movement, agitation, that was the issue. Why we should allow Bangladeshis to settle in Assam.
3: Right.
2: So I think that has gone home very well with the people of Assam.
3: Umesh ji, bahut quick comment.
0: तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को ही सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बल्ले बल्ले की बात है। बिल्कुल
1: जी। और अब यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और समाचारों का वक्त हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश बुलेटिन प्रसारित होंगे, उसके बाद हम 10 मिनट बाद 12:10 पर आपसे फिर मिलते हैं।
3: बट उसके पहले क्विकली आई विल गिव यू एन अपडेट। इन असम दी बीजेपी इज लीडिंग ऑन 80 सीट्स, एजीपी इज लीडिंग ऑन 9, एआईयूडीएफ इज लीडिंग ऑन 2। इन केरल दी सीपीएम इज लीडिंग ऑन 30, दी सीपीआई इज लीडिंग ऑन 30, 11 एंड सीपीएम इज लीडिंग ऑन 30 सीट्स, एंड विल बी बैक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है। एआईएडीएमके गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। डीएमके गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि टीवीके के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त टीवीके ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय एमजी रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की एमजीआर से, एमजीआर के बारे में कहा जाता है वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम डीएमके पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: वेलकम बैक टू आकाशवाणी स्पेशल प्रोग्राम जनादेश 2026, वेयर वी आर डिस्कसिंग द ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स कमिंग इन फ्रॉम द असेंबली इलेक्शंस दैट वर हेल्ड इन 4 states and 1 union territory in the month of April. Once again, we have with us in studio senior journalist Umesh Chaturvedi and political analyst Ashok Tandon. And right at the beginning of this section of the program, let's give you the latest trends coming in.
3: जी अनुभा, और सबसे पहले अगर हम असम के जो रुझान आ रहे हैं उन पर नजर डालें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 126 सीटों में से 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम गण परिषद 9 सीटों पर आगे चल रही है। AIUDF 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है वो 23 सीटों पर आगे चल रही है। केरलम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है और CPI 12 सीटों पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 12 सीटों पर आगे चल रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 56 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है।
2: इफ वी टॉक अबाउट पुदुचेरी, देन द AIADMK इज लीडिंग ऑन 1, द रूलिंग AINRC विच इज पार्ट ऑफ द एनडीए अलायंस इज लीडिंग ऑन 10 सीट्स, बीजेपी पार्ट ऑफ द एनडीए अलायंस इन पुदुचेरी इज लीडिंग ऑन 4 सीट्स, DMK इज लीडिंग ऑन 4, कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 7 एंड इंडिपेंडेंट्स आर अहेड ऑन 3 सीट्स। And talking about Tamil Nadu, the AIADMK is leading on 64 seats. BJP, the AIADMK partner, is leading on 3 seats. The DMK, which was in government till, is the present government, is leading on 43. Its alliance partner, Congress, is leading on 5. IUML is leading on 1. Actor Vijay's TVK, which is being seen as the biggest disruptor in these elections in Tamil Nadu, is leading on 106 seats. And quickly, Vishal, why don't you give the...
3: जी, पश्चिम बंगाल के अगर हम रुझानों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 286 सीटों के हमें जो है इस समय रुझान मिल रहे हैं और 293 सीटों के लिए वहां पर गणना हो रही है, चुनाव वोटों की गिनती हो रही है और AISF 1 सीट पर आगे है। AITC 91 सीटों पर आगे चल रही है तृणमूल कांग्रेस।
2: जी, एंड नाउ लेट्स गो ओवर टू चेन्नई फ्रॉम वेयर पॉलिटिकल एनालिस्ट सतीश कुमार श्रीवास्तव इज ऑनलाइन विद अस। मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार सर। सर, दिस इज द फर्स्ट दीज इलेक्शंस, यू आर बेस्ड इन चेन्नई, यू नो कॉलिंग टॉकिंग टू अस फ्रॉम चेन्नई, व्हाट इज योर फर्स्ट असेसमेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन तमिलनाडु? वी जस्ट सेड सॉ दैट एक्टर विजय TVK लीडिंग ऑन 106 सीट्स, अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज बिकॉज इफ वी गो बाय द एग्जिट पोल्स हार्डली एनीबडी हैड गिवन यू नो एनी क्रेडेंस टू TVK इमर्जिंग एज प्रोबेबली नॉट जस्ट किंग मेकर बट एज द नेक्स्ट फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट।
4: Yes, ma'am. Actually, the youth is with the TVK. That is the first thing that youth voters like from that college students and till 30 years age youth is with the TVK, and that 30 year age number percentage of voters is more than near about 20% voters of Tamil Nadu is that is. Second thing, the Tamil Nadu public want to change the DMK, AIADMK, DMK, AIADMK. They want the changing of that.
2: Right.
4: This pattern.
2: जी, तो आपको जी
3: जी जी कुमार श्रीवास्तव जी, जो आपने कहा कि युवा जो है वो TVK के साथ जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या TVK में ऐसा क्या आकर्षण युवाओं को लगा कि वो TVK की तरफ खींचे चले गए वोटर के तौर पर?
4: एक तो जो इनका फैंस क्लब था, जो इन्होंने इनके फैंस थे, ये केवल अभी चुनाव में इस बार उतरे हैं लेकिन इसकी तैयारी ये पिछले कई सालों से कर रहे थे, लोगों की मदद करना, और इन्होंने युवाओं को जोड़ रखा था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि एक अभिनेता के रूप में जो विजय
2: सतीश जी जी सतीश जी इनकी एक हाँ, मुझे आपको यहाँ पर माफी चाहूंगी, रोकना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन GVL नरसिम्हा जुड़ गए हैं। मिस्टर नरसिम्हा, वेलकम टू आकाशवाणी जनादेश 2026।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर, ये जो अभी हम रुझान देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी लेड एनडीए असम में ऑलमोस्ट अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, और बाकी जगह भी जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नजर आ रहे हैं आपको?
0: बिल्कुल, पूरी तरह बीजेपी के जो पूर्वानुमान था, जो लक्ष्य था, उसके अनुकूल आज के परिणाम सब लगभग सभी राज्यों में आ रहे हैं। ये उस असम में तीसरी बार हम और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे, यही हमारा एक आकांक्षा थी, एक लक्ष्य था, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और असम की जनता को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे सरकार उनके उम्मीदों पर खरी उतरी है, इसलिए असम की जनता ने और बड़ी बहुमत से बीजेपी की सरकार वहां बना रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी अपने सरकार अपने पूरी तरह अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है। एक बड़ा राज्य होने के नाते पश्चिम बंगाल का देश के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा उनका स्थान है, और ऐसे राज्य में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट 42 सीट पश्चिम बंगाल से आते हैं, और ऐसे राज्य में एक क्षेत्रीय दल के खिलाफ लड़ते हुए एक बड़े जीत को हासिल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम पश्चिम बंगाल की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने एक तरह से टीएमसी के शासन से एक तरह से बहुत ही दुखी होकर, और वहां जिस प्रकार की करप्शन, भ्रष्टाचार और गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ एक तरह से बीजेपी को चुना है, नरेंद्र मोदी जी के उनके नेतृत्व में बीजेपी को यहाँ बीजेपी की सरकार बनाकर ही केवल विकास के रास्ते पर बंगाल आगे बढ़ सकती है। इसी आशा के साथ, इसी विचार के साथ वहां की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा जीत दिया है, ये उनके लिए धन्यवाद। और पुडुचेरी में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है, तो यही हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का हमारे लिए विषय है।
1: मिस्टर नरसिम्हा, इफ यू लुक एट दी, यू नो, इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, बीजेपी ऑन इट्स ओन इज लीडिंग ऑन 3 सीट्स, सेम वी सी दैट इन केरल बीजेपी इज अगेन लीडिंग ऑन 3 सीट्स, वाइल इन पुदुचेरी इट्स लीडिंग ऑन 4 सीट्स। सो ऑल्दो इट मे बी यू नो पार्ट ऑफ द अलायंस, हाउ डू यू सी दीज ट्रेंड्स दैट the BJP is you know has been making an effort to make expand its footprint, especially in Kerala and Tamil Nadu, the southern states. How do you see these trends coming in?
0: See, Kerala, this would be the first time that a BJP BJP would have its presence in the state assembly. You've seen how BJP formed, BJP won the local corporation elections in Trivandrum, Thiruvananthapuram, and BJP has been increasing its vote share election after election, but our attempt this time was to make a strong presence in the assembly, and that will make a foundation that will help us to form a foundation for future success for the BJP. So we are quite happy that BJP is leading in some seats, and we will also see a big rise in BJP vote share in Kerala, which should be a sort of a ladder for us to grow on our own in future. When it comes to Tamil Nadu, our main aim in Tamil Nadu was to defeat the DMK Congress combined, because this is it is the DMK which ran a lot of negative campaign against the BJP and the central government. They in fact tried to create an impression that BJP was anti-South by alleging that delimitation was going to be harmful for the for the southern states. So all this propaganda. For this propaganda, the BJP always wanted to defeat the DMK, and that was our primary aim, and that certainly is coming true in today's election results. But as we all see, the TVK, which came on the horizon as a new party, certainly has taken Tamil Nadu, has given a new alternative to the people of Tamil Nadu, and they have swung heavily in TVK's favor. So it appears to be hung assembly in Tamil Nadu for the last 3-4 hours. We see a hung assembly scenario. We'll see how it pans out, but it will certainly be an anti-DMK

0: anti-Congress government in Tamil Nadu, which is likely to be certainly pro-center and work towards realizing the dreams of Prime Minister Narendra Modi ji as far as development is concerned.
1: Mr. Narasimha, thank you so much for joining Akashwani.
0: Thank you, ji.
1: Namaskar. That was BJP spokesperson GBL Narasimha.
2: जी अमित चतुर्वेदी जी, तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, एक तरीके से पूरा बड़ा उलटफेर वहां पर देखने को मिला है। बिल्कुल एक राजनीति में ट्विस्ट एकदम से देखने को मिल रहा है वहां पर। टीवी के 105 सीटें पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है और लगभग अब लगता है कि बहुमत की तरफ भी बढ़ती दिखाई देगी, लेकिन अभी देखना होगा कि उसको कितनी सीटें और कहां पर अभी मिलती हैं। कुल मिलाकर के आप जो तमिलनाडु में ये जो परिवर्तन देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है?
3: देखिए, ये तो बता रहा है कि जिस तरह से तमिलनाडु में एक्टर को लेकर के फिल्मी जो दुनिया के लोग रहते हैं, जो सितारे रहे हैं, उनको लेकर के जो एक खास तौर का फैनेटिज्म दिखता रहा है, उसकी एक पुनरावृत्ति दिखती है। लेकिन एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, थलपति विजय की एक फिल्म रही है घीली, तमिल फिल्म है घीली, उसमें उन्होंने एक डायलॉग दिया था, यह एरिया हो या वो एरिया, हर जगह का विजेता मैं ही हूं। तमिलनाडु के जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि वो हर जगह के विजेता हैं, हर तरफ के लोगों के उन्होंने एक तरह से लोगों को आकर्षित किया है, लोगों की बातों को रखा है, लोगों को उम्मीदों पर, लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है।
2: जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चेन्नई से सतीश कुमार श्रीवास्तव ऑनलाइन जुड़े हैं। जी श्रीवास्तव जी, चेन्नई में आप हैं और इस समय वहां पर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु के जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे, आप इससे पहले भी हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो टीवीके के साथ जो है युवा मतदाता तमिलनाडु का, राज्य का, वो सबसे ज्यादा जुड़ा है जाकर के, और उसने अपील किया है युवा मतदाताओं को टीवीके पार्टी ने, टीवीके पार्टी ने या विजय ने, अभिनेता विजय जो है, जो उसके नेता हैं, उन्होंने ऐसा क्या सामने रखा वहां के मतदाताओं के सामने कि जो युवा मतदाता है उससे बहुत प्रभावित नजर आए?
4: सर, एक तो जो कहते हैं ना कि ये जो अभिनेता वाला फैक्टर है यहाँ तमिलनाडु में,
2: जी
4: ये तो है। और उसके बाद इन्होंने कई जगह इनके जो फैंस क्लब इन्होंने बनाए हुए थे यहाँ पर, तो ये जो इनका फैंस क्लब है, ये जब ये अभी राजनीति में अटकलें लगाई जा रही थी कि तलपति विजय राजनीति करेंगे, उस समय भी इनका ये फैंस क्लब जमीनी स्तर पर जाकर के काम कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था। और जो एक मैं पहले भी बताया कि ये डीएमके एआईडीएमके ये दोनों पार्टियां आ रही थी जनता इनको इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी, एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रही थी, तो इस तीसरे विकल्प का भी इनको फायदा मिला। और युवाओं के आकर्षण, एक जो अभिनय इनका था अभिनेता के रूप में, युवाओं के रूप में के बीच में ये उस समय भी लोकप्रिय थे जब अभी राजनीति की अटकलें लगाई जा रही थी।
3: एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इसमें रजनीकांत और कमल हासन, इन दोनों की क्या भूमिका रही इस चुनाव में?
4: सर, रजनीकांत और कमल हासन कि जो इसमें इन मतलब इनके साथ या इनके विपक्ष में वो नहीं रहे, वे साइलेंट रहे। वे जब राजनीति में आने के का जब उनका प्रयास शुरू हुआ, तो वो मतलब जो इनका काम राजनीति में आने के पहले जन सेवा का जो इनका कार्य था टीवी का, वह कार्य टीवी के का वह कार्य न तो रजनीकांत का था और न कमल हासन का था, तो इसका भी इनको फायदा मिला, जनता भी इनसे जुड़ी, केवल युवा वर्ग तो इनके साथ था ही, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो उम्र दराज थे और उनके विचार में परिवर्तन आया।
1: ठीक, मिस्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आकाशवाणी जनादेश 2026। Mr. Tandon, I want to come to you and I want to come back to Assam now. In Assam, we've seen for long years Badruddin Ajmal's AIUDF had been a very decisive force in Assam politics, but we saw in the 2024 elections, he himself lost his constituency, Dhubri, by one of the biggest margins. Now he's contesting at the age of 76. He's contesting his very first, assembly election. Last assembly election, Assam, Congress and AIUDF were together. This time they're contesting.

0: separately. So has that also made an impact? Because the trends show us that AIUDF is leading only on two seats.
1: I think he himself is leading, if I'm not wrong. He himself is leading, but there was no alliance with the Congress.
0: Yes.
1: And there was no alliance actually led by Congress. There were no other smaller parties also in the... Congress wanted to revive its fortunes on its own. And they thought that Gaurav Gogoi, being a young, dynamic leader, may be able to turn the tables. But unfortunately, it has not happened. But as far as this fringe group is concerned, no, they were actually trying to corner all the Muslim votes in Assam. And that has been a setback for the Congress for quite some time. So, but I think the factor which has weighed very heavily in favor of BJP and Hemanta Biswa Sarma is that their, you know, call that they will not allow infiltration. Mm. They will in fact send back the Bangladeshi infiltrators. And that, I think, is the core sentiment in Assam for a very long time, because Assam has been flooded with infiltration from Bangladesh, and many of them were not even a legitimate people coming into Assam. So all the infiltrators, so they will now be pushed back. That was one of the main agenda of Biswa Sarma. So let's see what happens. But I personally feel that the Congress needs to do some introspection in Assam. Because it was a very powerful party in Assam earlier.
2: जी, उमेश चतुर्वेदी जी, महिला मतदाताओं की अगर हम बात करें, असम की हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की बहुत बड़ी, भाजपा की बहुत बड़ी ताकत रही है महिला मतदाता है. और अरुणोदय एक योजना जो है भारतीय जनता पार्टी हेमंता सरकार ने वहां पर चलाई और महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए भेजे हैं. ये इसका असर भी आप देखते हैं चुनाव नतीजों पर?
3: बिल्कुल, ये तो हर जगह दिख रहा है. आप देखिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लड़की योजना, ये झारखंड में माई योजना, छत्तीसगढ़ में इसी तरह की योजना, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने वो दे रही थी लक्ष्मी, क्या योजना नाम है, भाग्य नहीं, लक्ष्मी कुछ ऐसे दूसरा नाम है. तो उस योजना का लेकिन एक चीज देखिए कि पश्चिम बंगाल में वो करामात क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहां आरजी कर के मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, उसको लेकर के महिलाओं में एक क्षोभ रहा और उसका असर दिख रहा है. लेकिन असम में ऐसा नहीं है. और दोनों राज्यों में एक चीज बार बार देखना चाहिए, घुसपैठ का मामला असम से उठता है. आप देखेंगे कि घुसपैठ को लेकर के सबसे बड़ा सवाल पहली बार असम में उठा था 1985 में. तो एक सरकार ही बनी थी असम गण परिषद, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो घुसपैठ के मामले पर ही उभरी थी और वो सरकार बनाने में भी कामयाब रही थी. लेकिन वही मामला पश्चिम बंगाल में भी आया, और सिर्फ महिलाओं का मामला ही नहीं है, बाकी कई सारे मामले हैं. ठीक है कि वो एक मामला है, महिलाओं ने वोट डाला, लेकिन एक चीज ये देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 2021 के चुनाव में महिलाओं का 10% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की तुलना में ममता बनर्जी को मिला था. लेकिन इस बार जाहिर है कि महिलाओं ने साथ छोड़ दिया. उन्होंने जो लक्ष्मी योजना है जिसमें वो 1500 रुपए महीने दे रही हैं, और ये वादा भी किया था कि 500 रुपए और देंगी चुनाव जीतने के बाद, वो काम नहीं आया. तो महिलाओं का देखना यह है कि किन जगहों पर वो उनके साथ ये सहयोग कर रही हैं सरकारें या पार्टियां, और किस जगह पर वो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है. ये दोनों ही चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई. तो असम में उनकी सुरक्षा के साथ कोई चिंता नहीं जुड़ी हुई है, तो इसलिए असम में तो कामयाब रहा, हेमंत बिस्व सरमा को समर्थन मिला. ममता बनर्जी को इसका समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है. तो ये राज्यवार हिसाब से देखें तो अलग अलग ढंग से उसको आप व्याख्यायित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं.
1: जी, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा बंगाल में बहुत जोर पकड़ गया था, और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो रेप विक्टिम की माँ है वो लीड कर रही है चुनाव में. तो वो जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था, जो महिला उत्पीड़न हुआ था और वो बलात्कार का मामला हुआ था, तो उसके चलते बंगाल में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था. तो केवल ये नहीं है कि महिलाओं को आप सुविधा क्या देती हैं, मुझे लगता है महिलाओं के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है महिला सुरक्षा, जिसके बारे में लोगों का विश्वास ममता के प्रति डगमगा गया था और वो शायद इसलिए चुनाव में भी ये परिणाम में भी उसका कुछ न कुछ असर दिखाई दे रहा है।
3: अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो ये कहा था आरजी कर मामले पर, आरजी कर जैसे मामले हो सकते हैं, अपराधी कहीं भी हो सकते हैं, सवाल ये है कि उसके साथ डीलिंग कैसी हुई, उसको लिया कैसे गया, सरकार ने उस पर कैसे किया। तो आमतौर पर आप मोटे तौर पर आप देखेंगे कि ममता सरकार लिपापोती करती हुई नजर आई, और एक बड़ा बयान ये शायद उत्तर भारत में चल भी जाता, कुछ और राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि 9 बजे रात के बाद महिलाएं सड़कों पर न निकलें, बाहर न निकलें। ये बात पश्चिम बंगाल में जो, क्योंकि वहां महिला को सम्मान की नजर से देखा जाता है, वहां दुर्गा की धरती है, शक्ति की धरती है, तो उस राज्य की महिलाओं ने इसे एक अलग ढंग से लिया और ये शायद इसी वजह से उनकी लक्ष्मी योजना कामयाब नहीं रही। और असम में आप देखेंगे कि बार बार एग्रेसिव ढंग से हेमंत विश्व शर्मा घुसपैठ का मुद्दा उछालते हैं, बार बार यहां तक तो ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो किसी को रहने ही नहीं देंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, सिर्फ महिला योजना नहीं है, महिलाओं का साथ देना, सुरक्षा देना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत की 1500 या 2000 या 1500 रुपया देना।
2: जी, प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई और उस इलाके में भाजपा जो है वहां चारों सीटों पर आगे चल रही है, झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपी बल्लभपुर और नयाग्राम, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट करने का मतदाताओं से जो एक तरीका है, ये कितना असर करता है?
3: बिल्कुल, देखिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, संचारक थे, बड़े ही रिसर्च होता रहा है। मुझे लगता है कि एक रिसर्च नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी होना चाहिए, और एक उनकी टाइमिंग कि कब कैसे कनेक्ट करना है। आप याद कीजिए, बिहार चुनाव होने वाले थे तो उसके कुछ दिन पहले यहीं इंडिया गेट पर दिल्ली में उन्होंने लिट्टी चोखा खा करके एक तरह से पूरे बिहार को कनेक्ट कर लिया था। और जो लिट्टी चोखा नहीं खाता है, जो उसको पसंद भी नहीं करता था या जानता नहीं था, वो भी लिट्टी चोखा के पीछे दौड़ पड़ा। तो ये कनेक्ट करने का उनका तरीका है। उन्होंने, आप देखिए, उस दिन उन्होंने एक बात भी बोली, वो पूछता है बाल जो झालमुड़ी बेचने वाला कि प्याज खाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता। तो वो भी एक बात थी, एक सीधे सीधे वो जनता के मर्म को छूने वाली बात थी। और उसके बाद ये देखिए कि सिर्फ झालमुड़ी, ऐसा ठीक है कि बंगाल जाने वाले सब लोग जानते हैं कि झालमुड़ी क्या होता है, लेकिन झालमुड़ी ने बंगाल के झालमुड़ी को ही नहीं बल्कि बंगाल के मर्म को छू दिया, और उस मर्म के जरिए उन्होंने एक तरह से बंगाल के दिलों में पैठ बना ली। तो एक तो रिसर्च ये होना ही चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेटर हैं, तो वो एक कनेक्ट कर लेते हैं, सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी यही आरोप लगा रही थी ना कि ये जो लोग भाजपा वाले हैं वो यहां के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं। हालांकि ये बात भी याद रखना चाहिए कि अभी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के 200 साल होंगे और उसकी शुरुआत उसी कलकत्ता में हुई थी 30 मई 1826 को, और मतवाला एक बड़ा मशहूर पत्रिका होती थी, बड़ी मशहूर, वो भी उसी बंगाल से निकली। रामानंद दोषी जो बहुत बड़े मतलब विचारक थे बंगाल के, उन्होंने हिंदी में प्रवासी पत्रिका निकाली। तो ये कहना, सवाल ये नहीं है कि हिंदी में आप बात करके कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कम्युनिकेशन। हम सब लोग यहाँ पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, चारों लोग बैठे हुए हैं, टंडन जी तो हम लोगों में सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कनेक्ट करना होता है। अब वो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस इलाके में कैसे कनेक्ट करना है। अगर वो बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत करते हैं तो पहली लाइन बोलते हैं कि मतलब भोजपुरी में बोलते हैं, वहां लोगों को भोजपुरी से कनेक्ट करते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंडी बोली से बोलते हैं, पंजाब जाते हैं पंजाबी में बोलने लगते हैं, केरल में भी 4 शब्द मलयालम को बोल लेते हैं। तो वो एक उनका कनेक्ट करने का तरीका है, और ये नतीजे तो दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है।
0: अशोक जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस, व्हाट अवेश जस्ट सेड अबाउट द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट्स, यू नो, डायरेक्टली विद द वोटर्स?
1: No doubt about it. He is a great communicator. But you know, sometimes innovation is very important. No, I'll give you a very small example. Till he emerged on the political scene at the center, no party leader of any party was wearing the party badge on his jacket or trouser, shirt or coat. And not only that, he in fact told the party members that why the symbol of lotus is in saffron color, because on the EVM machine the lotus will be white. He started wearing the white lotus symbol on his jackets and all that.
0: Right.
1: No, these are very small things. Every lectern, wherever he used to address a public meeting, there used to be the symbol of the BJP. he invariably sits in the front seat of his car. The light on his head was always on,
0: mm-hmm.
1: so that people could see him.
0: Right.
1: So these are small, very little things in politics which do matter. Then not only the boat ride which he did, you know, around Howrah Bridge, then on, because when the campaigning ends, he went to Bellur Mat.
0: Yeah.
1: No, anybody could have gone there. Mamata could have gone or anybody. No, his going to Bellur Mat was

0: criticize why he is doing election politics and religion, but it was his, you know, innovative idea,
1: right.
0: Getting blessing from Belur Math, having a boat ride around the Howrah Bridge. So all these things are, and one thing I may tell you,
1: yeah.
0: He himself is a lone think tank. He is not going by any advisor. He does not have any think tank. He himself is the think tank.
1: Right.
0: About all these innovation which he does in politics is his own brainchild.
1: Right.
2: जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से आकाशवाणी समाचार ने विशेष बात की. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा.
3: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी.
4: पहली बार जो है भाजपा
3: नहीं, ये निरंतर तीन चुनावों में आप भाजपा का ट्रेंड देखें. 2011 के विधानसभा चुनाव में हम अप्रासंगिक दल थे. 2016 में हमने 3 सीटें प्राप्त की और 10% वोट प्राप्त किया. 2021 में 77 सीटें, मुख्य विपक्षी दल 38% वोट. तो जो ट्रेंड दिख रहा था वो दिखा रहा था कि 12 वर्षों के नितत सतत प्रयत्न, निरंतर संघर्ष और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहे हैं.
4: कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, क्या हो गया?
3: मुझे लगता है कांग्रेस को आश्वस्तता के पैमाने पर पुनर्विचार करना चाहिए. असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें थी. आज लगातार तीसरी बार सरकार है. ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी ने वहां बहुत शानदार काम किया. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, और उससे हम कह सकते हैं असम में जो हमें हैट्रिक मिली है ये पूर्वोत्तर की दृष्टि से भी एक अभूतपूर्व कार्य है.
1: और अब समय है एक रुझान, कुछ रुझान बताने का.
2: जी, प्रमुख उम्मीदवारों
1: जी विशाल,
2: प्रमुख उम्मीदवारों के सीट्स पर हम नजर डाल लें कि तमिलनाडु में पीछे हो गए हैं लेकिन नंदीग्राम से बढ़त बनाए हुए हैं. पुदुचेरी में तट्टनचावड़ी सीट से AINRC उम्मीदवार एन रंगासामी काफी आगे चल रहे हैं लेकिन मंगलम सीट पर वे पिछड़ रहे हैं.
1: अशोक जी, आई यू नो ड्रॉ योर अटेंशन टू व्हाट सुधांशु त्रिवेदी वाज यू नो
0: के लिए आपके पास जो है एक ऐसे लोग चाहिए जो उसको मूर्त रूप दे सके. तो इस मामले में अमित शाह पूरी तरह से खड़े उतरते हैं. वो हर चुनाव में जमीन पर उतरते हैं, स्वयं जा जाकर एक एक चीज जिसको पन्ना प्रमुख और ये एक एक बूथ का हिसाब लेते हैं और स्वयं वहां पर बैठकर उसको योजना को कार्यान्वित करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हम ये और नहीं भूलें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नीचे की इकाई बना रखी है जिलों के उस स्तर पर, वो लगातार उसको एक तरह से सींचा भी जाता है. लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है जो पीछे रहकर जमीनी स्तर पर इसको एक तरह से ताकत देते हैं और ये लोग मानते भी हैं. और इस वजह से जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी, बहुत पार्टियां उनके इस पूरे कैंपेन मैकेनिज्म को कहीं इतनी बुरी तरह से पिछड़ जाती हैं. जैसे कांग्रेस हर चुनाव में इनकी सिस्टम से, इलेक्शनियरिंग से, कैंपेनिंग से, स्ट्रेटजी से बहुत दूर रहती है, लेकिन ममता बनर्जी के पास क्योंकि खुद की मशीनरी भी थी, स्ट्रेटजी भी रही है और वो सत्ता में भी रही हैं, तो वो इस बार भी एक डटकर मुकाबला करती हुई दिखाई दी हैं. लेकिन बाकी पार्टियां कहां गई बंगाल में? बंगाल में जैसे मैंने पहले भी कहा कि

0: कार्यकर्ताओं को भेजना है, तो ये तो एक सीखने लायक चीज है जो बाकी दलों को सीखना पड़ेगा, सिर्फ उसकी आलोचना करने से बात नहीं बनेगी।
1: जी जी चतुर्वेदी जी, ये जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में खासतौर पर कि भाजपा के राष्ट्रवाद को पश्चिम बंगाल की मतदाता ने स्वीकार लिया है इस बार और उस पर मोहर लगाई है, मूलतः जो हम अभी तक देखते आ रहे थे 2021 तक की जो मूलतः बांग्ला भाषी लोग थे, जो मारवाड़ी नहीं थे, जो बाहर से आकर नहीं बसे थे, उनका जुड़ाव इन चुनावों से पहले तक भाजपा के साथ पूरी तरीके से नहीं देखा जाता था, एक तरीके से बाहरी पार्टी की छवि थी भाजपा की वहां पर। तो जो बीजेपी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है उससे इस बार बांग्ला भाषी लोगों ने ज्यादा आइडेंटिफाई किया अपने आप को।
2: देखिए इसको ना थोड़ा सा और हम पीछे ले जाना चाहेंगे, ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसका गठन उन्होंने 1997 में किया था और 1998 में वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब टंडन जी भी सरकार में होते थे, उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उसके पहले के चुनावों को आप देखेंगे, खासतौर पर राम मंदिर के आंदोलन के उभार के बाद, कोठारी बंधु जिनका बलिदान हुआ था राम मंदिर के आंदोलन में 1991 में, तो कोठारी बंधु उसी कलकत्ता से आए थे। आप देखेंगे उस समय का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वो 10% से ज्यादा था, जो सुधांशु त्रिवेदी अभी 2011 की कर रहे हैं 10% का, 16 की बात कर रहे हैं, तो 10% से ज्यादा था। लेकिन ममता बनर्जी जब आती हैं उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के, तो ये वोट बैंक घटने लगता है, आप देखेंगे कि 4% पर आ जाता है। हालांकि 1998 में एक सीट जीती थी, तपन सिकदर दमदम से जीते थे, 1999 में दो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तपन सिकदर दमदम से और शायद कृष्णानगर से सत्यव्रत मुखर्जी जी जीते थे, दो लोग जीते थे। और एक चीज और देखिए कि ममता बनर्जी दबाव बहुत बनाती थी, उनकी छवि रही है लड़ाका की, लड़ने वाले की, तो वो क्या करती थी कि जब समता पार्टी वाला मामला आया, तहलका वाला मामला आया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ता चुन ली थी और उसके बाद वो सरकार से अलग हो गई थी। और एक चीज और भी है कि टंडन जी ज्यादा गहराई से बता पाएंगे, हम तो रिपोर्टर के नजरिए से देखे हैं कि तपन सिकदर जैसे वरिष्ठ नेता को ममता बनर्जी के दबाव में मंत्रिमंडल से हटाया भी गया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 4% जो 2011 और उसके 2004 में या 9 में दिखती है 4% के आसपास, उसके पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ही साथ रहा है। अब ममता बनर्जी का उभार भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ होता है। आप देखिए कि बलबीर पूंजी का एक राज्यसभा में दिया हुआ भाषण याद आता है, उन्होंने कहा था कि हमारी ममता दी तो साक्षात दुर्गा है। लेकिन ममता बनर्जी जो है जब 2011 में सत्ता पाती हैं, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं, वैसे तो साथ छोड़ना और लेना उनका चलता रहा है, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक को खाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बदलती है और आप देखिए कि 2016 में उभरना शुरू करती है और 2019 में तो उसने लोकसभा चुनाव में जो किया था, आप देखिए 18 लोकसभा सीटें जीत लेना ये मामूली बात नहीं थी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ता है। तो ये कहना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहली बार वहां आ रहा है, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बंगाल ने 1991-92-98 में भी देखा था, समझा था, पकड़ा था। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 1967 में जो विपक्षी दलों की कांग्रेस के खिलाफ जो गोलबंदी हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनसंघ 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 24 परगना जिले की गोसाबा सीट से जनसंघ के गोपाल चंद्र मंडल चुनाव जीते थे, रिजर्व सीट थी। तो ये ठीक है कि सत्ता में पहली बार आ रही है।
1: जी,
0: मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि दर्शक हमारे श्रोताओं को ये जानना आवश्यक है कि ममता बनर्जी का इमरजेंस कैसे हुआ। ममता बनर्जी, सौगत राय, दास मुंशी, ये कांग्रेस के यंग टर्क्स हुआ करते थे और ये कांग्रेस के गढ़ को वहां मजबूती से संभाले हुए थे, हावड़ा हो, कलकत्ता हो या। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र में कांग्रेस सरकार जब से वाम दलों के ऊपर निर्भर रहने लगी और विशेष तौर से नरसिम्हा राव के समय पर, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। आप हमको पश्चिमी बंगाल में तो वाम मोर्चे से लड़ने को बोलते हो, केंद्र में आप उनके साथ सरकार बनाकर चलते हो, तो ममता बनर्जी ने उस समय एक लीड रोल लिया कि आप तय करो कि या तो आप वाम दलों के साथ सहयोग करोगे या फिर हम नहीं लड़ेंगे वाम दलों के साथ। इस पर नरसिम्हा राव और कांग्रेस की मजबूरी रही, बाद में भी हमने देखा यूपीए के समय भी मजबूरी रही। तो इसलिए ममता बनर्जी ने

0: happened, and she's sure that the TMC will be able to form a government. Would you agree to that? Because again, you know, only a few rounds have been counted. There's still a few more rounds of counting to go on. So things can turn around, or can they?
1: No, first of all, I think every leader has to keep his or her cadres in good humor.
0: Right.
1: They don't want to demoralize them so that they run away from the counting centers. So they have to be there.
0: Right.
1: And that's a very right strategy also. But this is also a fact that not even the half of the votes have been counted so far.
0: Right.
1: Less than half votes have been counted. So every party has a right to be optimistic about the results. And therefore, I think there is nothing wrong in claiming that by the time that is counting is over, we will be still doing well. But these are all still initial trends. But sometimes, you know, initial trends are not showing any neck and neck fight.
0: Right.
1: It's almost 97 and 190. So even if it is initial trends, but they are, I think, a very clear indicator the way things are going.
2: जी अशोक जी, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ जो मतदाता है, अल्पसंख्यक मतदाता है, वो तृणमूल कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता था. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ वहां पर, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये जो रिवीजन हुआ वहां पर, अब ये जो कोर वोट बैंक था वो डाइल्यूट हुआ है वहां पर?
1: नहीं, देखिए, जो 83 लाख वोट काटे गए हैं वेस्ट बंगाल के SIR में, उसमें हिंदू वोट ज्यादा थे. ऐसा नहीं है कि ये माइनॉरिटी वोट थे, लेकिन ये भी साथ में सच्चाई है कि जो वोट काटे गए थे वो या तो मर गए थे या वहां रहते नहीं थे. तो ये SIR पर बहस मुझे लगता है बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इसी से वोट परसेंटेज बढ़ी है. जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर 100 वोट पर हम परसेंटेज देखते थे 60 आती थी, अब 80 वोटों पर देखी जा रही. 20 वोट जो थे वो सचमुच में ही डेडवुड था, या तो वो लोग मर गए थे या वोटर नहीं. लेकिन इसको अगर धर्म या उसके साथ जोड़कर देखें तो ये 83 लाख वोट जो कटे, इसमें ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के बहुत सारे वोट काट दिए गए जिसके कारण ये हुआ. लेकिन कुल मिलाकर जो मैंने अभी पूछा भी प्रश्न उनसे, कि जो ये दो फैक्टर आए, अवैसुद्दीन और ओवैसी भी वहां गए और हुमायूं कबीर सडनली खड़े हो गए कि मैं वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, और हमने देखा नौजवान मुस्लिम किस तरह से ईंटें लेकर और पत्थर लेकर वो मस्जिद बनवाने के लिए निकले. और इसलिए फिर ये भी आरोप लग रहा था कि हुमायूं कबीर को तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है. लेकिन कुछ भी हो, ये अल्पसंख्यक वोट में सेंध तो लगी है, इसमें दो राय नहीं है. कहां कहां लगी है, कितनी लगी है, ये देखने की बात. फिर हम एक चीज और नहीं भूले कि बहुत लंबे समय तक जब वाम मोर्चा सत्ता में था तो मुस्लिम वोट वाम मोर्चे को भी ज्यादा जाया करते थे, उससे पहले कांग्रेस को भी जाते थे. तो ये जो एक ट्रेंड है, अभी तो भाजपा भी कहेगी कि भाई 2-4% वोट हमें भी मिले हैं, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी. मैं समझता हूँ इसके लिए हमको इंतजार करना चाहिए.
0: And before we move forward, let me share with our listeners that of the results that have come in from Puducherry, Chief Minister N. Rangasamy has won from one of the constituencies. He contested elections on two constituencies, and he has won from Thattan Chavdi. Mr. Ashok Tandon, I want to ask you, and then Ashok Ji, Umesh, I want to get back to you. In Puducherry, Union Territory, but obviously it has an assembly, 30 seats. And if you look at this Chief Minister, you know, he's seeking a second consecutive term, but he's been in power as Chief Minister since 2001, in the sense that off and on he's been there. So he's been a very popular Chief Minister. How much of what is happening, you know, and for, in fact, even his party, AINRC, is ahead in Puducherry. How much is it to do with his personal, connect with the people, his personal charisma with what's happening in Puducherry?
1: See, traditionally, Puducherry, DMK used to leave Puducherry to the Congress party. And it used to be invariably Congress chief minister.
0: Yes.
1: And now, because of changes which have taken place, now it is BJP, AIDMK plus this particular individual who is very popular there.
0: Yes, the chief minister.
1: So it is not really a victory of BJP. BJP is not having much seats there. But turning Puducherry in favor of BJP and AIADMK is something very phenomenal. Traditionally, it used to be Congress which was ruling in Puducherry.
0: In fact, it's interesting because what you're saying about Congress and Rangasamy, the present chief minister, he won, he became chief minister and he, you know, as a Congress chief minister in 2001 and then in 2006. Later on, it was only, in the, you know, he had to, of course, he resigned in 2008 and then 2011, he formed his own party, which is NRC. So, and after that, of course, he joined hands with the BJP and now there's an NDA government. Umeshji, aap kuch kehna chahenge?
3: देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की तो जीत से ज्यादा वो नारायण स्वामी जी की जीत कही जाएगी. और दूसरी बात, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ इलाका है, तीनों राज्य पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी और तमिलनाडु और असम को भी जोड़ लीजिए, तो इन तीनों में एक चीज देखिए कि जो आक्रामक नेतृत्व है, पुदुचेरी को छोड़ दीजिए, तो उस जो जनता के पक्ष में आक्रामक है उसको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है. जैसे टीवीके को वहां, भारतीय जनता पार्टी को, और वहां असम में हेमंत विश्व शर्मा को भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को. और दूसरी एक चीज और है कि जो एसआईआर का सवाल पूछा था, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा. मैं दूसरे फेज का जो पश्चिम बंगाल का जो 29 अप्रैल को चुनाव हुआ था उसको मैं मतलब नहीं देख पाया हूं उस तरह से, लेकिन फर्स्ट फेज में जो 152 सीटों पर चुनाव हुए थे, आप देखेंगे कि एसआईआर की तुलना में, पिछले साल की तुलना में, जो गिनती के हिसाब से देखेंगे, काउंटिंग के हिसाब से, तो 26 लाख ज्यादा वोट पड़े थे, ज्यादा वोट पड़े थे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं, गिनती के हिसाब से. तो मुझे लगता है कि सिर्फ एसआईआर एक मुद्दा तो था, लेकिन सिर्फ एसआईआर ही एक मुद्दा नहीं रहा.
2: और इस बीच आनंद कुमार हमारे संवाददाता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से जुड़ गए हैं. जी आनंद, इस समय आप वहां भाजपा मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या माहौल है कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह देख रहे हैं आप वहां पर इस समय?
4: जी बिल्कुल, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं बीजेपी के फेवर में, उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं में काफी यहाँ पे हर्ष का माहौल है. और जितने भी हमारे बीजेपी प्रवक्ताओं से बात हुई, बीजेपी लीडर से बात हुई है, सबका कहना है कि जो वहाँ भय का माहौल था उसकी समाप्ति हुई है. और प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में उनके गवर्नेंस मॉडल को लेके लोगों ने वहाँ भरोसा दिखाया है कि वहाँ एक चेंज की जो बदलाव की जो जरूरत थी वो साकार होता हुआ दिख रहा है. क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ट्रेंड है, उसका असर मेजोरिटी लेवल से काफी आगे पहुंची हुई है. और इसी तरह से आसाम में देखें तो तीसरी बार वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है अपनी, तो इन सब को देखते हुए इनमें काफी उत्साह भरा हुआ है. और सबसे अच्छी बात इसमें एक और खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, शाम के समय पहुंचेंगे, और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे. परफॉर्मेंस के ऊपर को लेके उन्होंने जिस तरह से मेहनत की कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वहां आगे बढ़ाने में, और इन सबको, इन पांचों राज्यों में जो बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर वहां पे बात होगी, किस तरह से उन्होंने गवर्नेंस मॉडल को वहां स्थापित किया है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, असम हो, और वहाँ पुदुचेरी में भी एनडीए की वहाँ पे बढ़त है. और डीएमके भी, डीएमके वहाँ पे देखे, अगर तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके भी वहाँ पिछड़ती नजर आई है. तो जिस तरह से इनका एक गवर्नेंस मॉडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस तरह से बात हुई है दोनों स्टेट में देखे, आसाम और वेस्ट बंगाल में, तो निश्चित रूप से लोगों ने एक बहुत मजबूत भरोसा दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लीडरशिप को लेकर.
0: आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो अब हमारे पास समय रह गया बहुत कम, पर इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, लेट अस गिव यू द लेटेस्ट ट्रेंड्स कमिंग इन फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी. इन असम, बीजेपी हैज ऑलरेडी टेकन लीड इन 79 सीट्स. इट्स एलाय एजीपी इज लीडिंग ऑन 9 सीट्स एंड बीपीएफ इज लीडिंग ऑन 10. इन केरल बीजेपी इज अहेड ऑन 2 सीट्स. इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 60 सीट्स. इन पुदुचेरी द एआईएनआरसी इज लीडिंग ऑन 6 and BJP is leading on 3. In Tamil Nadu, TVK is leading on 108 seats, whereas in West Bengal, the BJP is leading on 192 seats. And that's all we have time for in this segment of the program. We will be back at 1:10 p.m. Till then, do remain with us and do listen to the Hindi and English bulletins.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है।

0: विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं। अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्मादम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। नेमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट एआईएनआरसी, एक सीट भाजपा और एक सीट डीएमके ने जीती है। एआईएनआरसी 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एनडीए के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है। क्या कहना है आपका?
1: जी, आप सही बोल रहे हैं कि एनडीए जो है लगभग 100 की सीटें जो है वहां पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहां पर कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो खुद ट्रेलिंग है, वो खुद पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
0: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड्स होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे हैं। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहाँ से लड़े एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये बताइए,
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली भी आगे हैं जो, बट इट इज इन फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
0: धन्यवाद राकेश
1: जी।
0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरूआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम जनादेश 2026 में। इस कार्यक्रम में आज सुबह से हम ला रहे हैं आप तक नतीजे चुनावों के। चार राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जो चुनाव हुए, उसके नतीजे सुबह से हम लगातार रुझान

0: is the constituency of the former CM Sarbanand Sonowal. Only Himanta Biswa Sarma had bucked that trend. So far, it seems that, you know, that the new, the bucking of the trend will continue with this term as well.
1: Right, right.
2: और सतीश श्रीवास्तव चेन्नई से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. जी सतीश, हेलो.
3: नमस्कार सर.
2: जी सतीश जी, तमिलनाडु के जो जो जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत चौंकाने वाला प्रदर्शन जो है इस बार देखने को मिला है हमें. 110 सीटों पर तमिलगा वेत्री कजगम इस समय आगे चल रही है. थलपति विजय की पार्टी है, अभिनेता विजय की पार्टी है ये. और अब महज अभी दो साल ही नहीं हुए हैं इनको राजनीति में कदम रखे हुए, और दो साल के भीतर ही इतना बेहतरीन प्रदर्शन करना, एक तरीके से कहेंगे तो अचंभे में डालने वाला प्रदर्शन है. इस प्रदर्शन को वहां पर राजनीतिक हलकों में किस तरीके से देखा जा रहा है, और खासतौर पर अगर हम उसकी बात करें, डीएमके की बात करें, डीएमके को जिस तरीके का सेटबैक लगा है, इस पर लोगों का क्या सोचना है?
3: देखिए, डी जो दलपति विजय जो हैं, वो ये दो साल पहले राजनीति में प्रवेश किए हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में इनकी जो भूमिका थी वो पिछले 5-7 सालों से नजर आ रही थी. ये लगे हुए थे जमीनी स्तर पर. और डीएमके की स्थिति ऐसी थी कि एक तो डीएमके ने भी इनको जमीन दी कि ये अपनी अपनी जो राजनीतिक पारी खेल सके, एक पिच तैयार की. एक तो इनके यहाँ परिवारवाद चला
1: जी.
3: करुणानिधि ने स्टालिन जी को, स्टालिन जी ने उदयनिधि स्टालिन जी को अपनी पार्टी का प्रमुख बनाने का प्रयास किया, उसका भी था. और डीएमके की जो हिंदू विरोधी छवि निकल करके आ रही थी, वो सीधे सीधे जो बोल रहे थे, उसका भी प्रभाव पड़ा. और डीएमके ने जो पिछले चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसमें कई वादे वो जो हैं अभी पिछले 5-6 महीनों में पूरा करना शुरू किए
1: जी.
3: तो इसका भी जनता मूर्ख नहीं है. जनता समझ रही है कि आप किस लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं. जैसे विद्यार्थियों को लैपटॉप, अब इनको याद आया 3-4 महीना पहले कि नहीं, हमको विद्यार्थियों को लैपटॉप देना है. उसके पहले ये शांत पड़े हुए थे. तो ये कई चीजें थी. और उसी में वहां पे ये पिछले दो सालों से जो इनकी पार्टी थी वो जगह जगह जमीनी स्तर पे जाके काम कर रही थी. और जो इनका अभिनेता की छवि थी समाज के बीच में, वो तो थी ही. युवा वर्ग जो कि 20% मतदाता है
1: जी,
3: वो तो सीधे तौर पर विजय को देख रहा था
1: जी.
2: जी धन्यवाद सतीश जी. एनके सिंह जी, तमिलनाडु के जो हम नतीजे अब देख रहे हैं, और जिस तरीके से टीवीके ने एक तरह से हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है, पहली बार विधानसभा चुनाव में ये उत्तरी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम, और ये जो प्रदर्शन है टीवीके का, क्या ऐसी क्या इन्होंने मतदाताओं के सामने क्या विचारधारा अपनी रखी, इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा जो कि मतदाता खींचे चले गए?
4: देखिए, ट्रेडिशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये एक फ्रेम बनाते हैं कि ये विचारधारा इसकी क्या रही होगी, भाजपा की ये है, कांग्रेस. मतदाता जरूरी नहीं कि इन चीजों से मुतासिर बहुत ज्यादा होता हो आज का मतदाता. और तमिलनाडु का तो कल्चर रहा है कि फिल्म वर्ल्ड से आए लोग, आप देखते होंगे कि कई बार अगर फिल्म की दुनिया का कोई मर जाता है तो 10-20 लोग सुसाइड कर लेते हैं,
1: मंदिर बनते हैं,
4: कुछ लोग मंदिर बनवा देते हैं. तो वहां पे पेंचेंट फॉर हीरोज, फिल्म हीरोज, ये कुछ अजीब सा है जो कि बाकी दुनिया को समझ में नहीं आता, लेकिन वहां पे है. तो अगर आप देख रहे हैं कि विजयन अचानक 2 साल में ये मेटियोरिक राइज होता है और इलेक्शन स्केल पे वो क्वांटम जंप लेते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जनता का आशीर्वाद उनको उनके फिल्म का जो पास्ट है. आप देखें तमिलनाडु की सारी पार्टियां, जयललिता का मुझे याद है, जब जयललिता को करप्शन चार्जेस में जेल किया गया तो अगले इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया
1: जी.
4: तो ये अजीब राज्य है जहां अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बेहद पैरामाउंट है, इतनी पैरामाउंट है कि लिंग्विस्टिक आधार पे, इसके अलावा जो उनका अपना कल्चर है उसके आधार पे ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर करते हैं. यही वजह है कि बीजेपी को वहां पे एक्सपेंशन में दिक्कत आती है. जहां जहां भी कल्चरल स्ट्रांग कल्चरल आइडेंटिटीज है वहां पे आपको दिक्कत आएगी. तो बीजेपी को ये दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो इनका राइज है ये बताता है कि नहीं, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग तमिलनाडु में कुछ अलग होता है
1: जी. बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू नो यू रेज दैट बीजेपी, इट्स नॉट जस्ट बीजेपी मिस्टर सिंह दैट

0: मतगणना के और पुदुचेरी से हमारे पास नतीजे आ रहे हैं। पुदुचेरी के जो रुझान है और नतीजे हमारे पास हैं, पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में कुल 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया गया था और अभी जो ताजा नतीजे और रुझान हैं वो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को 4 सीटें मिल चुकी हैं, 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में और 5 पर बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 पर बढ़त बनाए हुए है, 1 पर आगे चल रही है और 1 सीट उसने भारतीय जनता पार्टी ने भी पुदुचेरी में जीत ली है, अपने नाम कर ली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल हुई है और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम एडीएमके को भी 1 सीट जीतने में कामयाबी मिली है।
1: एंड अनदर रिजल्ट कमिंग इन, the result has come in from Assam, where the Congress leader, the face of Congress in this elections, Gaurav Gogoi, has lost from the Jorhat assembly seat. In fact, it is a seat where he had won the 2024 assembly. I beg your pardon, 2024 Lok Sabha elections. विशाल
0: और केरलम से भी हमारे पास ताजा रुझान आए हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। 2 सीट कांग्रेस को गई हैं और 1 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 103 सीटों पर आगे है, एलडीएफ 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है।
1: एंड ऑफ द 2 सीट्स दैट द कांग्रेस हैज वन इन केरलम, लेट मी गिव यू द रिजल्ट्स फॉर those 2 seats are Thrissur, where its candidate Rajan J. Pallan has won by a margin of over 26,000 votes, and the other seat where the Congress candidate has won is Haripad, where Ramesh Chennitala has won by more than 23,300 votes. So those are the results that we have right now.
0: Ji, N.K. Singh ji, Keralam ki baat kare to जो एलडीएफ है वो 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस का नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन इस बार निर्णायक बढ़त बना ली है इस बार उसने और 103 सीटों पर यह गठबंधन आगे चल रहा है। एलडीएफ का पिछड़ना केरलम में एक तरीके से जो वाम राजनीति देश की थी उसमें एक आखिरी किला केरलम माना जाता था। अब ये नतीजे क्या बता रहे हैं कि वाम राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी स्थिति होने वाली है आने वाले समय में?
2: देखिए, एक बात तो है कि वाम आदर्श जो आइडियोलॉजिकल इसके बोरिंग्स हैं वो कभी डाई नहीं करेंगे। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वाम भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसलिए फेल हुआ कि भारत आइडेंटिटी ग्रुप्स में बटा हुआ है और जब जब कोशिश की कि नहीं ब्रॉडर गरीबों का एक आइडेंटिटी वो बनाए जिसमें शोषित हो, एक्सप्लॉयटेड हो, प्रोलेटेरिएट हो, ये हो नहीं पाया क्योंकि वो फिर वापस जाति में चला जाता था, धर्म में चला जाता था, तो आइडियोलॉजी फेल हो गई। इसमें कोई दौर नहीं, इंडिया में इलेक्टोरली फेल हो गई लेकिन आइडियोलॉजी तो रहेगी। हाँ, यहां पे है तो ये तो केरल में आप जानते ही हैं कि वो अल्टरनेट करते हैं, आज यहां है, आज उन्होंने कांग्रेस को दिया है, अगली बार वो फिर लेफ्ट को देंगे, तो ये अल्टरनेट कर उनके पास विकल्प है और दोनों गवर्नमेंट्स फेयरली ओके करती है। पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो वहां बहुत ही स्मूथ चलती हैं और वेलफेयर की स्कीम सारी इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी होती है। मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं केरल के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखता हूं तो ताजुब होता है। इवन जुडिशियल प्रोसेस आप देखें तो वहां पे अगर किसी को चार्जशीट कर दिया गया है तो 91% केसेस में उसका कन्विक्शन सर्टेन है
1: जी,
2: जबकि बिहार में इसके ठीक उल्टा है, सिर्फ 8% रेट ऑफ कन्विक्शन या 11% होता है, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो क्वालिटेटिव आप देखें ज्यूरिसप्रूडेंस के भी स्तर पे तो मुझे लगता है केरला बेस्ट गवर्न है और ये अल्टरनेट एक विकल्प है तो करते हैं, बाइपोलर सिस्टम है। हाँ, जब बीजेपी इसमें चली जाएगी, जब बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो ये ट्राइपोलर हो जाएगा और आप जानती हैं कि वहां पे 3 समूह हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड
1: जो हिंदू मलयाली पॉपुलेशन
2: जी, और ये एक ही पोस्ट डाल है, उसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए एजवाज है, मुस्लिम्स है, तो जिसे कांग्रेस को ब्रांड किया गया आपकी बार की ये मुस्लिम्स पार्टी है, विच वॉज नॉट द केस क्योंकि कांग्रेस को इसे आप देख रही हैं कि वोट मिला है, सबका मिला है। तो मुझे लगता है कि ये कहना, और कांग्रेस इस वजह से नहीं जीत रही है वहां पे कि कोई यहां पे से केंद्र में बैठा मेहनत कर रहा है
1: जी,
2: वो वहां पे कांग्रेस का अपना वजन है, अपना स्ट्रक्चर है
1: जी,
2: जिसकी वजह से जीत रही।

0: that's also the central leadership was not very seriously contesting the Assam election. Okay. I may be wrong, but I'm guessing can.
1: No. Ashok is 100% correct, but I will add to that.
2: Yeah.
1: You see, in so many states, you will find BJP doesn't have a leader.
2: Yeah.
1: But still, why BJP is wrong forming? Why this this kind of catchment area that BJP completely owns? The reason is that its leader does it. Does the rest of the work.
2: He leads from
1: all
2: the front.
1: Through, continuously.
2: Yeah.
1: Which is not the case with the Congress.
2: Right.
1: Had Rahul Gandhi, whoever they are, it's Nehru family. But even if at that juncture, he had continuously done what Ashokji is saying, that the absence of the national leader would determine as to whether people should vote or not.
2: Right.
1: And that is what is happening.
2: Right.
3: जी गौरव भाटिया को सुनते हैं, उन्होंने कुछ कहा है पार्टी की जीत पर और चुनाव नतीजों पर. क्या कहा है ये सुनते हैं.
4: पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल वांटेड अ चेंज, अ पॉजिटिव चेंज विच कैन क्रिएट सोनार बांग्ला एंड दे सी दैट चेंज कमिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी. सेकेंड रीजन, द अपीजमेंट पॉलिटिक्स ऑफ ममता बनर्जी हैज बीन रिजेक्टेड. दिस कंट्री बिलोंग्स टू एवरीवन एंड the majority, the Hindu class, cannot be treated like a second grade citizen. Third, women empowerment. This has to come. And the Bharatiya Janata Party government will ensure that in West Bengal, Mamata Banerjee, being a female, was seen standing with goons of TMC who were targeting females and violating their dignity.
3: जी एन के सिंह जी, सोनार बांग्ला जो अभी उन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता ने मिस्टर भाटिया ने, कि सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव था भाजपा ने रखा वहां पर, और तुष्टिकरण की राजनीति जो वहां पर पश्चिम बंगाल में होती रही, और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भाजपा ने सवाल उठाए और उन्होंने बताया भी, तो क्या आपको ये जो बातें इन्होंने बताई भाटिया जी ने कही कि जीत का कारण है, क्या इससे आगे भी कुछ और आपको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके पीछे इससे आगे भी कुछ और है?
1: देखिए, ये सवाल थोड़ा डीप, इसका एनालिसिस की जरूरत है. डेमोक्रेसी एक वादा करता है, और हमारा संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है वो वादा करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सबके लिए करता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह. क्या आज एक अफसर, एक मंत्री का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें कि एक गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो उस काउंट पे आप फेल रहे 70 साल से. आखिर जनता को क्या वजह है कि वो हिंदू मुसलमान, चाहे यादव ठाकुर राजपूत ब्राह्मण, ये क्यों करना पड़ रहा है, वो आइडेंटिटी ग्रुप्स में क्यों जा रही है. जब इसको एनालाइज करेंगे कि डेमोक्रेसी के इस सिस्टम में जो किरदार थे वो लोग फेल हो गए वो डिलीवर करने में, तो मजबूरन उसको वापस, आप देखें कि सोशल जस्टिस फोर्सेस के नाम पे जब जयप्रकाश के आंदोलन के बाद ये शुरू हुआ तो आपने देखा कि किस तरह लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सारे लोग उभरते हैं. क्या वो डिलीवर कर पाए? अगर नहीं किया तो नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी एक ब्रॉडर कैनवास लेके आ रही है, और वो अपने, क्योंकि अभी देखा आपने गौरव भाटिया ने फिर वापस आ गए, बोले कि हिंदुओं को इस तरह दबने नहीं देंगे,
2: जी जी
1: वो कहा ना, तो अंत में आके यहां पे रुकता है. और तब हम रेशनल जो थिंकिंग होती है उसकी जगह हम अपने पहचान समूह के साथ रहते, वो हमें ज्यादा सुरक्षा देता है, ये हमारा मानना हो जाता है. तो हमें लगता है कि इसकी डीप एनालिसिस की जरूरत है कि बीजेपी का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है और कांग्रेस क्यों वो ग्राउंड्स देती जा रही है बीजेपी को. उसकी वजह यह कि लीडरशिप में वो शिद्दत से लड़ने का जज्बा नहीं है जो कि बीजेपी के लीडरशिप के पास है.
2: जी, एंड नाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी हैज जॉइंड अस. मिस्टर त्रिवेदी, वेलकम टू आकाशवाणी. हेलो जी, आकाशवाणी के जनादेश 2026 में आपका स्वागत है.
5: जी
2: सुधांशु जी, अभी जो नतीजे आ रहे हैं भाजपा के लिए तो बहुत ही ज्यादा आशावान, बहुत ही बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
5: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं कहना चाहूंगा कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठकर अब ज्वार से सुनामी का रूप धारण कर रही, और ये एक ऐतिहासिक युगांतकारी निर्णय है. और आसाम में हमने शानदार सफलता हासिल की, हम 100 सीटों के आसपास आ रहे हैं, जो अभूतपूर्व है. ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, और पश्चिम बंगाल में हमारा नेतृत्व, और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता के चलते हुए संगठन की गतिशीलता, अमित शाह जी की रणनीति, और सबसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी आज वो काम कर रही है जो मात्र 15 साल पहले कल्पना से परे माना जाता था.
2: जी,

0: बंगाल में हम 2011 में अप्रासंगिक दल से, 2016 में 3 सीटें 10% वोट, 2021 में 77 सीटें 38% वोट, आसाम में हम 2011 में केवल 3-4 सीटें थी, आज लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कड़ी मेहनत, अच्छी नीति और कुशल नेतृत्व के द्वारा क्या अचीव किया जा सकता है वो दिखाई पड़ रहा है
1: जी। और एक जो हमेशा एक भाजपा का जो एक नैरेटिव है कि डबल इंजन की सरकार, आप जो केंद्र में हमेशा हम चुनावों में देखते हैं कि जो भाजपा प्रधानमंत्री भी कहते हैं और आपके नेता भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार का सीधे सीधे फायदा राज्यों को भी होगा।
0: अब बंगाल में पहली बार डबल इंजन की सरकार आई है तो निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में विकास की दिशा में दिखाई पड़ेगा
1: जी। सुधांशु जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो व्हाट आई वाज आस्किंग मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर टंडन, आई विल आस्क यू आल्सो, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द बीजेपी लीडर्स व्हेन दे गो आउट कैंपेनिंग, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट, दे हैव बीन एम्फसाइजिंग द फैक्ट एंड यू नो दैट व्हाई पीपल शुड वोट फॉर बीजेपी, बिकॉज इट गिव्स देम द एडवांटेज ऑफ अ डबल इंजन गवर्नमेंट। सो इट सीम्स टू बी, यू नो, आई एम नॉट श्योर, बट डू यू थिंक दैट दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दैट वी सीइंग दिस काइंड ऑफ, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड द यू नो दैट द वे द बीजेपी हैज द स्वीप द बीजेपी सीम्स टू बी मेकिंग इन द स्टेट?
2: आई थिंक द डबल इंजन गवर्नमेंट कम्स लेटर। Initially, if I am not wrong, before the West Bengal election, maybe about 6-7 months ago, the journalists were talking whether BJP has got enough candidates to be fielded.
1: Okay.
2: Fielding 292-93 candidates was a huge, big task before BJP. And I may be wrong, but the leader of BJP in West Bengal is really not a very stalwart. And in spite of that, the BJP strategy, the electioneering, the campaigning style, and the ground level work, I think that was one of the reasons why they got into a contest with Trinamool Congress.
1: Right.
2: And once they were in the fray, and I have always been saying, where is the left front? What is the Congress doing in West Bengal? So you made it a two-party contest. And then whenever there is anti-incumbency against the incumbent government, obviously somebody has to fill in.
1: Right.
2: And there is where the BJP came in, and they have proved, and plus the machinery and the leadership quality, I must say, that all has put BJP into the saddle in West Bengal.
1: Right. And so now it's time for us. We will be going into a break for our bulletins a very little time. So before we do that, let's give you the latest trends and results coming in from the states and union territory. In Tamil Nadu, the actor Vijay led TVK is leading on 109 seats. AIADMK is leading on 57 seats. Its partner BJP is leading on 1 seat, whereas the DMK is leading on 49 seats. Vishal.
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इसके अलावा सीपीएम 1 सीट पर आगे चल रही है।
1: बात करते हैं अगर असम की, सो इन असम द बीजेपी इज लीडिंग ऑन 70 सीट्स, its alliance partner AGP is leading on 7 seats and another alliance partner BPF is leading on 8 seats, whereas the Indian National Congress is leading on 25 seats and AIUDF is leading on 2 seats. In Kerala, the CPM is leading on 23 and the Congress is leading on 53. And that is all time we have right now. We'll be back at 2:10 p.m., 2:30 p.m.
4: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल में बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 293 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद का इजहार किया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है। हुक्मरान डीएमके तीसरे मकाम पर चली गई है, वजीर आला एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ बाएं बाजू महाज के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाजे अक्सरियत की समत बढ़ रही है। पुदुचेरी में एनडीए फिर से इक्तदार हासिल करने की जानिब गामजन है। और असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक सीट जीती है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे सबकत हासिल है। अब खबरें तफसील से। चार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात सामने आ रहे हैं। ताजा रुझान के मुताबिक मगरबी बंगाल में बीजेपी ने शानदार सबकत हासिल कर ली है, जबकि तमिलनाडु में अदाकार सी जोसेफ विजय की सरबराही वाली नई पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि ओपोजिशन की ऑल इंडिया अन्ना डीएम के दूसरे मकाम पर है और हुक्मरान डीएम के पार्टी तीसरी ओपोजिशन पर चली गई है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ आगे चल रहा है, जबकि आसाम में हुक्मरान बीजेपी ने बड़ी सबकत हासिल कर ली है। मगरबी बंगाल में आज असेंबली के 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है और बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। नई पार्टी टीवीके ने 111 सीटों पर सबकत हासिल करके शानदार शुरुआत की है। ओपोजिशन ऑल इंडिया अन्ना डीएमके को 55 हलकों में सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान डीएमके पार्टी 49 सीटों पर सबकत के साथ तीसरे मकाम पर है। आसाम में 126 सीटों में से 7 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 73 पर उसे सबकत हासिल है, जबकि उसकी इत्तेहादी आसाम गण परिषद को 1 सीट पर कामयाबी मिली है और 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 24 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि 10 सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। केरलम में 140 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 5 सीटें जीती हैं और 57 हलकों में उसे सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान सीपीएम को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है और 23 सीटों पर वो आगे चल रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी सीपीआई को 9 सीटों पर सबकत हासिल है। केरला कांग्रेस 7 पर और बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। पुदुचेरी से भी नतीजे मिल गए हैं। अब तक 13 नतीजों का ऐलान किया गया है। हुक्मरान एआईएनआरसी ने 6 सीटें जीती हैं और 4 पर उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है और 6 सीटों पर वो आगे चल रही है। डीएमके पार्टी ने 1 सीट जीती है और 3 पर सबकत हासिल है। बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर ही उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब ताजा मालूमात के लिए हम अपने नामानिगार सुशील चंद्र तिवारी से बात करते हैं। जी सुशील, बताइए क्या ताजा सूरत हाल है
5: हिंदुस्तान के। देखिए कानून, जुनूबी हिंदुस्तान के इस सूबे में जो इस वक्त तक हालात नजर आ रहे हैं, ताजा हालात जिन्हें कहें, तो जो फिल्म स्टार विजय हैं उनकी पार्टी टीवीके वो जबरदस्त जीत हासिल करती नजर आ रही है और जैसा कि रुझानों से साफ नजर आ रहा है कि वो 100 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। हालांकि यहां जो अक्सरियत है वो 118 सीटों पर तय होती है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब कुछ शाम तक नतीजे आएंगे पूरी तरह से, तब जो है तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। विजय की एंट्री जो है वो यहां के सियासी जो माहौल है उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। जी,
4: इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के तर्जुमान तोहिन सिन्हा ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात बीजेपी के हक में हैं और पार्टी जबरदस्त फर्क के साथ आसाम और मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करने की जानिब गामजन है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के एक और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के रुझान बीजेपी के हक में सामने आ रहे हैं। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि इनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दूरंदेशी पर मबनी नजरिए और रियासत में बीजेपी कारकुनों की अंथक कोशिशों की अक्कासी होती है। बीजेपी के लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने असेंबली इंतखाबात में तारीखी मैंडेट देने पर आसाम और मगरबी बंगाल के लोगों के तई तशक्कुर का इजहार किया। मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात के तनाजुर में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तारीखी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। जनाब पूनावाला ने यह भी कहा कि बीजेपी आसाम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मुकाबला एनडीए और टीवी के पार्टी के दरमियान है।
6: पश्चिम बंगाल में

0: भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
1: इधर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने इब्तदाई रुझानात पर तबसरा करते हुए कहा कि ये शुरुआती रुझानात हैं और जल्द ही पूरी तस्वीर वाजे हो जाएगी और इसके बाद ही नतीजों के बारे में कुछ कहना मुनासिब होगा।
2: दो ढाई घंटे बाद जब स्थिति और क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तब बात करने में ज्यादा आनंद आएगा। हर राज्य के लिए मैं कह रहा हूं कि अभी दो राउंड हुए या तीन राउंड हुए होंगे, 20 राउंड बाकी हैं हर असेंबली में, तो इतनी जल्दी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के ताजा रुझानात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की कारकर्दगी से जाहिर होता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। पांच रियासतों के सात असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। इनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो दो असेंबली हलके और गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक असेंबली हलका शामिल है। ताजा नतीजे के मुताबिक बीजेपी ने दो सीटें जीत ली हैं और तीन हलकों में उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर आगे चल रही हैं। त्रिपुरा के धर्मानगर हलके में बीजेपी के जहर चक्रवर्ती ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अमिताभ दत्ता को 18,290 वोटों के फर्क से हरा दिया। नागालैंड के कोरीदांग असेंबली हलके में बीजेपी के दाओचीर आई इमचेन ने आजाद उम्मीदवार तोशिकाबा को 3,123 वोटों से शिकस्त दी। कर्नाटक में बीजेपी के श्रीनिवास टी दास करियप्पा देवनागरी साउथ हलके में आगे चल रहे हैं, जबकि बागलकोट में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलप्पा मेती 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस को 164 रन का जीत का निशाना मिला था, जिसे उसने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। एक दूसरे मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 293 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद जाहिर किया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले बीजेपी की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है। हुक्मरान डीएम के तीसरे मकाम पर चली गई है। वजीर आला एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के जेर कयादत यूडीएफ बाएं बाजू के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाजे अक्सरियत की समत बढ़ रही है। पुदुचेरी में एनडीए फिर से इक्तदार हासिल करने की जानिब गामजन है और असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक सीट जीती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. BJP heads for landslide victory in West Bengal, leads on 193 seats out of 293, Trinamool ahead on 95 seats. In Assam, BJP set to return to power for a third term. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party TVK delivers a super hit on debut, ruling DMK on third spot, Chief Minister M.K. Stalin trails. In Keralam, Congress-led UDF marches towards a clear majority to replace LDF. NDA on way to retain power in Puducherry. In assembly by-elections, BJP wins one seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland. Early trends are now available for all four states and the Union Territory of Puducherry, which went to polls for assembly elections. Initial trends that emerged have sustained as counting rounds progress into the day. As per latest counting, the BJP has taken a surprise lead in West Bengal, while in Tamil Nadu, new entrant Tamilaga Vetri Karagam, TVK, led by actor C. Joseph Vijay, has surged ahead. Opposition AIADMK is in second position and the state's ruling DMK is trailing at third spot. In Kerala, Congress-led UDF has secured a comfortable lead, while the ruling BJP has secured a big lead in Assam. In West Bengal, the BJP is heading towards a victory as per trends available so far. Counting is taking place for 293 assembly constituencies out of a total 294. Trends are available for all 293 seats. BJP is leading in 193. Trinamool Congress is ahead in 95. CPM in 1 and others in 4. The Trinamool Congress is staring at defeat after 15 years in power in the first election after the Special Intensive Division SIR. West Bengal Assembly has 294 seats. To form the government, a simple majority of 148 seats is needed. Any party or coalition of parties must gain the magic figure to win the election. West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee is leading over her BJP rival Shubhendu Adhikari in Bhavanipur constituency, while Shubhendu Adhikari is leading in Nandigram seat. Sitting BJP MLA Agnimitra Paul is leading in Asansol Dokhin seat over her nearest rival Tapush Banerjee of the TMC. BJP candidate Sharbari Mukherjee is leading over her nearest rival of TMC in the erstwhile left bastion of Jadavpur in South Kolkata. BJP candidate Ratna Devnath, mother of the victim doctor in RG Kaur rape and murder horror, is leading from Panihati. Aam Janata Unnayan Party AJUP chief Humayun Kabir is leading in the Nauda seat over his nearest TMC rival. We now go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for more. Kalyan, what is the latest update that you have for us from the ground?
4: The latest update is BJP is leading in more than 190 seats. And if we see the voter percentage, that BJP's percentage compared to 2021 election has increased nearly 8%, and TMC's percentage decreased nearly 7%. And we also see that this is a BJP thumping victory is going to be held compared to the 2024 Lok Sabha election. And one more thing is that in Kolkata, there are many seats where BJP is leading at this moment. And voters are favoring BJP this time. Not only in Kolkata, in other states like in Purva Bardhaman, in Murshidabad, in Malda, North Chobbish Paragona, South Chobbish Paragona, there are many seats where BJP is leading at this time.
3: Right, Kalyan, thanks for bringing us those details. In Assam, the ruling BJP is all set to retain power for the third consecutive term as per trends and results available so far. Out of a total of 126 assembly seats, results have been declared for 13 constituencies. BJP has bagged 10 seats, while its allies AGP has won one seat and Borderland People's Front has bagged 2 seats. Trends are available for the remaining 113 seats. BJP is leading in 69, while its ally AGP is ahead in 7 and Borderland People's Front in 8. Congress is leading in 25 seats and AIUDF and Raijor Dal in 2 each. BJP candidate and Chief Minister Hemanta Biswa Sarma is leading over his nearest Congress rival Vidisha Niyog in the Jalukbari constituency. BJP candidate Hitendranath Goswami has defeated Assam Congress President Gaurav Gogoi in Jorhat. Cabinet Minister Piyush Hazarika of the BJP has defeated Congress's Bobul Das in Jagi Road constituency. Most of the ministers in the outgoing BJP-led Assam government are leading. Maham Gana Parishat AGP President and Agriculture Minister Atul Bora is leading from Bokakhat constituency by more than 3,000 votes over his nearest Raijor Dal candidate. Minister and BJP leader Chandramohan Patwari is ahead of Congress's Ratul Patwari in Tihu seat. Actor-turned-politician Vijay led Tamilaga Vetri Karagam TVK

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा

0: चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर, और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपल सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है, और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार 3री बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा 3री बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई

0: हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
1: जो परिवार, आप जो बोल रहे हैं परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है. बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन. ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम
1: जी,
0: और उनका भी योगदान रहा है जीत में.
1: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है. अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीज मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे. फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था. पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं. दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है. तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में.
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश. 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं. गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती. कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेड़े दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं. महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदिले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित वार बढ़त बनाए हुए हैं. नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमचेन ने जीती. त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे. नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की. उन्हें 7317 वोट मिले. उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले. इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे. निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले. निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं. अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है. एआईएडीएमके 58, डीएमके 47, पीएमके 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं. चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से. सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या एआईएडीएमके की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है. इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खास तौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, नए यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे. इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था. उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया. वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है.
0: धन्यवाद धन्यवाद सुशील. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: और इसी दौरान यहां मुर्शिदाबाद कांड हो गया, जिसमें वो वक्फ बोर्ड के आंदोलन के बहाने से वहां दो हिंदुओं को मार दिया गया गांव में घुस के। वो एक खास कम्युनिटी के लोगों ने घुस के दो हिंदुओं को मार दिया
1: जी।
0: और जो उस तरह का उबाल हुआ और जो यहाँ के पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में जो शॉक एक लगा
1: जी,
0: वो एक बहुत बड़ा शॉक हम लोग देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात, हम बिल्कुल देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं। तो वो शॉक, एक दो जो शॉक लगे, एक तो 26,000 नौकरियों का अचानक से जाना, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार ने किया है इसलिए 26,000 नौजवान युवाओं की नौकरी चली गई और अब पता नहीं वो कहाँ जाएंगे, अनिश्चय भविष्य हो गया। और सेकेंडली वो जो बांग्लादेश बगल में है, पश्चिम बंगाल के बगल में, जैसा कि आप जानती हैं, हम लोग ट्रेन से अगर चाहे तो 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे बांग्लादेश, बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तो इतने नजदीक एक देश में एंटी हिंदू हत्याएं हो रही हैं और यहाँ मुर्शिदाबाद जैसा कांड हो रहा है, तो यहाँ के हिंदुओं में एक पैनिक क्रिएट हो।
2: जी विनय जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का और सोनार बांग्ला का जो नैरेटिव रखा, उसने मतदाताओं को किस हद तक छुआ?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स ने छुआ। ये इन एडिशन क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और उस तरह के कल्चर को लेकर जो बात छिड़ी, पश्चिम बंगाल का कल्चर ये तो नहीं था कि हत्याएं हो
2: जी,
0: एंटी हिंदू चीजें हो, सांप्रदायिक बातें हो, ये तो नहीं था जो सत्तारूढ़ दल ने किया। तो उसको लेकर, इन मुद्दों को लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से लोगों को कन्वे किया कि देखिए बंगाल की संस्कृति रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से शुरू होकर के, और अनेक कलाकार बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हुए, उनकी संस्कृति रही है, मार काट और गाली गलौज और हिंसा नहीं रही है, सांप्रदायिकता नहीं रही है। तो
1: जी,
0: इसको लेकर के मोदी जी और अमित शाह जी ने इतना बढ़िया से यहाँ रह के काफी उन्होंने जनसभाएं की
1: जी,
0: और इतना बढ़िया उन लोगों ने कन्विंस किया है कि अद्भुत है। और यहाँ शुभेंदु अधिकारी, अन्य भाजपा के लोग भी बहुत ही बढ़िया से उन लोगों ने कन्वे किया है। मुख्य बात यह है कि आम लोगों को उन लोग जो वो बोलते थे वो उनके हृदय में उतर जाता था, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे यहाँ के लोकल भाजपा के नेता हो शुभेंदु अधिकारी, और यहाँ के जो भाजपा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के,
1: जो
0: वो श्रमिक, तो इन लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली ढंग से उन लोगों ने इस बार अद्भुत ढंग से ये हुआ है।
2: धन्यवाद विनय जी हमारे साथ, हमसे बात करने के लिए। एनके सिंह जी, अब बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो लगभग अब बिल्कुल साफ होती दिख रही है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जो डबल इंजन की सरकार, अब हम बंगाल में किस तरीके के बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं?
3: ये एक टेस्ट केस होगा जिसमें कि बीजेपी एक उस इलाके में जो कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा है, जिसकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और अपनी समझ रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो इसमें नेशनलिज्म का सूत्रपात ही यहीं से हुआ है, बंग भंग का जो हुआ मूवमेंट वहीं से नेशनलिज्म मूवमेंट आया है। तो आज बीजेपी जो उसको ओन अप करती है, दरअसल वो बंगाल का है। तो अब जब गवर्नेंस में जब आप आ रहे हैं तो क्रॉस करेंट्स होंगे, और माइंड यू वहां पे 27-28% मुसलमान है, तो आप वहां पे कैसे लेके, यूपी में तो आपका कम है, 18-19% है, लेकिन वहां पे एक साइजेबल नंबर है। वहां पे डेवलपमेंट क्या सबका साथ सबका विकास वाला हो पाएगा? और होगा तो जो दो वर्गों के बीच में इतनी इस चुनाव के बाद से दुराव हो गया है, उसको इफेक्टिवली आप कैसे कंट्रोल करेंगे, डिलीवर करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, और वो भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज आपकी खत्म हो गई हैं। ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया है। अगर आप जंगल महल एरिया में

0: देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर इस समय तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल इन्हीं दो जगहों पे अच्छा रहा है, लेकिन नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम का तो वो भी नेशनल एवरेज से सवा गुना बंगाल का ज्यादा है। तो उस चैलेंज को आपको लेना पड़ेगा कि डेवलपमेंट भी करें, डेवलपमेंट दिखाई भी दे, सोशल फीचर्स जो हैं, जो सामाजिक दुराव हो गया है उसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे, क्योंकि अब आप गवर्नेंस में हैं
1: जी।
0: तो मेरे ख्याल से ये चैलेंज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रहेगा
1: जी। एंड वी हैव रिएक्शंस कमिंग इन फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। लेट्स फर्स्ट लिसन इन टू व्हाट बीजेपी एमपी रवि किशन सेड ऑन द रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स दैट हैव कम इन टुडे।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास, पूरे बंगाली समाज को, गृहमंत्री अमित शाह जी की रणनीति और उनका वहां बैठना, सेना बल को लगाना और बंगाली हिंदू, बंगाली सनातनी, बंगाली हर व्यक्ति अपने आप को आजाद कराना चाहता था उस भय की दुनिया से, उस माफिया और गुंडों से, उस बम के आतंक से, उन हत्याओं से। बंगाल एक सुनार बंगला हुआ करता था, एक लिटरेचर, एक अध्यात्म की जगह, माँ दुर्गा की शक्ति। आज दोबारा बंगाल अपने अस्तित्व को पा लिया, अपनी पहचान को दोबारा पा लिया, दोबारा बंगाल अपने कदमों पे, अपने अध्यात्म, अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़ेगा। समस्त भारत को इस बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारत की जीत हुई, भारत के विचारों की जीत हुई कि भारत में एक अलग राज्य बना के ये लोग रह रहे थे, वो ऐसा राज्य जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपोटियों का पूरा आतंक मचा हुआ था, उससे आज हम लोग मुक्त हुए, हमारा भारत मुक्त हुआ 2047 के सपनों में। अब बंगाल इकोनॉमी में आगे बढ़कर हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बनेगा इस भारत की। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को
3: जी। विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त जीत पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कुछ कहा है, ये सुनते हैं।
4: बंगाल की जीत एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। बंगाल में जिस विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जन्म दिया था, उस विचार का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, और इसलिए बंगाल की जीत हमारे लिए बहुत भावनात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। असम में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, पुदुचेरी में हमारी सरकार बनने जा रही है, एनडीए ने तमिलनाडु में भी अच्छा किया और केरल में भी हमने अच्छा किया है। इन पांच राज्यों के चुनावों का जो परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत शानदार है, उसका हम अभिनंदन करते हैं।
1: एंड नाउ लेट्स लिसन इन टू व्हाट सीनियर कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गढ़ी हैड टू से अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर कमिंग इन।
5: नतीजों के बाद अगर और मगर का बहुत प्रश्न नहीं रह जाता है। ठीक है, पार्टी ने एक निर्णय लिया था, उस निर्णय के साथ गए थे, लेकिन अंततोगत्तो मैं ये कह सकता हूं कि तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हारा है। बाकी जो भी ताकतें जीती हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ खड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि विजय की जीत पर भी उनको बधाई देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि वो जीत हमारी हार नहीं है।
1: Mr. N.K. Singh, we just heard Imran Pratap Gadi, senior Congress leader, saying ki he was congratulating the BJP, but he's saying their win is not our loss. How do you interpret that?
6: नहीं, उन्होंने बीजेपी को नहीं कांग्रेचुलेट किया, विजय को किया, विजय को।
1: My bad. Sorry. Yeah.
0: There is a logical fallacy. Yeah. When you study logic, there is a fallacy which is described as a selective appropriation of facts.
1: जी.
0: Here, इमरान गढ़ी इज सेइंग कि साहब वो हमारी हार नहीं।
1: मिस्टर सिंह, आई विल इंटरप्ट यू हियर बिकॉज बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी इज ऑनलाइन विद अस। मिस्टर रूडी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
7: हाय
1: जी। मिस्टर रूडी, योर कमेंट्स ऑन द वे द बीजेपी हैज यू नो ऑलमोस्ट मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ दीज इलेक्शंस।
7: सो व्हेन वी लेट्स स्टार्ट विद वेस्ट बंगाल।
1: यस।
7: Now, we never had a government in West Bengal. This is the first time since independence we have had a government there. Yeah. Now, we are going to have a government there. Now, this mandate was truly between the Prime Minister and Mamata Banerjee because we did not have any leadership to project. Now, having said that, it's a fact that with this election, the presence of the Prime Minister has been reimposed and reiterated at the national level that he's just not there in Delhi and other states. He's there even in a place like West Bengal. That how did we reach them? We reached them through the schemes and the programs of the Prime Minister, which possibly was perceived there but not implemented.
1: Right.
7: Now, it's a loss to TMC, whatever may be the reasons, could be arrogance, could be incumbency, but end of the day, it's a victory of the BJP and the Prime Minister. That's part A. Assam, we had a government.
1: Hmm.
7: We have gone back to the government again. We shall be going back to the government again. So that's not an issue. And the performance of the government.

0: under the Prime Minister's leadership has been restored. Then we go to Tamil Nadu. Well, there is a surprise element. We may not be there, but the fact is that DMK is not there anymore. And with a surprise, which many people say was not a surprise, but that's a debatable factor.
1: Yeah.
0: So let us see how the government is formed there in Tamil Nadu. And coming back to Pondicherry is, of course, a very pleasant victory for the BJP again, because we have positioned Kerala, of course, we do not exist. But end of the day, the major states which have gone to the elections, which had stakes in the whole election, was primarily starting from West Bengal. So it's a great achievement for the workers, for the leaders, for the people who have toiled there, the workers and the leaders who had gone there.
1: मिस्टर रूडी, अभी आपने जैसे कहा कि तमिलनाडु और केरल में ऑफकोर्स बीजेपी ने बहुत ज्यादा तो नहीं सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो एक आगे इन राज्यों में जो अपनी बढ़त अपनी बनाने की जो कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, आप फिर एक छोटे से सवाल पर चले आए कि जहां हमें जीत हुई है उसकी चर्चा आपने छोड़ दी, जहां हम अभी संघर्ष में है उसकी चर्चा कर दी। तो पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल, और ये मैंडेट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में। दूसरी तरफ हमारे विरुद्ध में वहां अगर किसी को अगर सामने देखा गया था तो ममता बनर्जी को, वो अब नहीं रही। तो अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से कि भारत की पकड़ और देश के प्रधानमंत्री की पकड़ पश्चिम बंगाल में। उसके आगे हम लोग आते हैं असम में, जहां हमारी सरकार थी, फिर से एक बार प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार फिर से एक बार वहां बनेगी हेमंतो के नेतृत्व में। जहां तक तमिलनाडु का है, हम वहां पर मेजर प्लेयर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीएमके अपने आप को ये बात साबित करना चाहते थे कि हम फिर से सरकार में आ रहे हैं। वहां एक बड़ा सरप्राइज है जो हमारे जैसे लोगों के लिए और सबके लिए बड़ा सरप्राइज है, लेकिन ये सच्चाई है। तो वहां भी परिस्थिति सबके लिए बदल चुकी है, ना वहां डीएमके है ना वहां एआईडीएमके है, वहां एक तीसरी पार्टी उभर के आ चुकी है। रहा पांडिचेरी, तो वहां बहुत ही खूबसूरत परिणाम, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जीत हासिल की है, और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में वहां भी हमारी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से पूरे भारतवर्ष में, और केरल में हमारी उपस्थिति कम थी, हम वही रह गए, और प्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरे भारतवर्ष में अपनी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिख रहा है।
1: राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी उमेश चतुर्वेदी जी, रूडी जी ने जो कहा कि पूरा श्रेय जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में खासतौर पर जो जीत है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, और इस बार जो हमने देखा प्रचार के दौरान भी, अमूमन प्रधानमंत्री जो हैं हमेशा प्रचार के बाद दिल्ली लौट आते थे, लेकिन अब की बार कई बार वो कोलकाता में रहे, राजभवन में रुके, रात रात भर रुके और दो दो दिन तक रुके। और इसके अलावा जो है, जो मोदी जी ने जो कहा वहां पर कि हर सीट पर मैं उम्मीदवार, इसने कितना असर किया?
3: मोदी जी का जब से भारतीय राजनीति में उभार हुआ है और जितने भी चुनाव होते हैं लगभग हर जगह वो ऐसी ही बात कहते हैं। तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जो है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा संभावनाएं भी थी पश्चिम बंगाल में, तो इसलिए उन्होंने पूरी जान लगा दी। पीछे की जो गलतियां थी 2021 में भी आप याद कीजिए, लगता था भारतीय जनता पार्टी को कि वो सरकार बना लेगी, तो मुझे लगता है कि उन गलतियों से सबक सीखने की एक कोशिश थी, और जो कोई भी कसर बाकी रह जाए ऐसा उन्होंने किया। और एक चीज पश्चिम बंगाल की हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी जी ने भी उसी पर बहुत जोर दिया, देखिए, और हम लोग

0: चुनौतियों की बात कर रहे थे, एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में नई सरकार के लिए वहां का पारा क्लब जो कह सकते हैं, जो मोहल्ला क्लब है, वो बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जो कट मनी का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, पश्चिम बंगाल में बहुत पुराने समय से पारा क्लब रहे हैं जहां लोग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो इन कमेटियों को, क्योंकि सीपीएम के बरक्स जब वो चुनाव जीत करके आई थी ममता बनर्जी, तो सीपीएम की जो स्थानीय लोकल कमेटियां जो होती थी, उन कमेटियों की तुलना में उन्होंने पारा क्लब को मजबूत किया था, 1,01,000 रूपये का वो दिया था, सहयोग दिया था। बाद में वह पारा क्लब इतने ताकतवर हो गए कि स्थानीय जो प्रशासन था उस पर भी वो हावी रहने लगे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लब बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, तो इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज जो चर्चा में हम लोग बहुत भूल जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीता है उसके तो कोशिशों को हम लोग याद करते ही हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो वहां शिक्षकों को, अब हर राज्य में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकारी नौकरी वाला तबका है वो शिक्षक का है, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षक। शिक्षकों को अभी भी छठवें वेतन मान के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आप सरकार में आते ही आपको सातवां वेतन मान देंगे। और एक चीज और है कि ये हर शिक्षक कहीं ना कहीं पूरे समाज को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं ये भी बड़ा रोल प्ले किया है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि कितनी जल्दी उनको ये देने जा रही है।
1: Mr. Singh, I want to come back to you and I want to stay on with West Bengal, that like we're saying, Trinamool Congress at the moment has been, you know, is leading on 94 seats. That's less than half the, not less than, but that's like little more than half the seats that it won the last time. But that doesn't mean that the party or its leader, Mamata Banerjee, is finished. You know, it still has a stronghold. What do you see next for the party and for its leader, Mamata Banerjee?
2: No, that will be the task of the BJP now, whether to finish it for good, I mean completely.
1: But is it going to be that easy for BJP?
2: Well, it depends how it is conducting itself in the governance. And what Umesh has said is very valid. The entire power structure is such that in the authority, civil society is playing a vital role in corruption. Now you have to do two things. One, eliminate this corruption. These bodies should not be a den of corruption. And still, they should be harbinger of your policies. So how to convert these units into a non-corrupt unit, well-functioning, well-oiled units, and still, and that is a non-state organizations, non-state actors. And still further your policies through that. So that is an uphill task. And the day you stop giving them cut in the deals, that is when Mamata Banerjee's role will come in.
1: Okay.
2: So BJP has to be very cautious in approaching the process of governance.
1: Right.
3: जी एन के सिंह जी, पूरे अगर राष्ट्रीय फलक पर हम बात करें तो जो दो गठबंधन है मुख्य तौर पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अब पश्चिम बंगाल और असम, ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की, तो जो ये इंडिया ब्लॉक है, अभी तक आपको क्या लगता है कि ये एक विभिन्न मुद्दों पर एक एक, एक दिखाता तो है कि हाँ विरोध प्रदर्शन जैसी सहमति तो दिखती है इंडिया गठबंधन में, लेकिन जो एक राजनीतिक मतभेद इनके बीच में बने हुए हैं अभी भी, जो इसके गठबंधन के जो सहयोगी हैं, और संख्या बल के आधार पर ये गठबंधन जरूर बना ले रहे हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक सामंजस्य की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं ये इंडिया ब्लॉक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और केवल बस पार्लियामेंट में कुछ प्रदर्शन के दौरान तो कुछ सहमति बनती दिखती है, लेकिन जब वोट शेयरिंग या सीट शेयरिंग की बात आती है, समझौते की बात आती है चुनाव में जाने से पहले, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपको लगता है कि ये लेक कर रहा है ब्लॉक?
2: सेफोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, IUO, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स, ये बिल्कुल जीरो पे है। इंडिया ब्लॉक दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता। और जब भी ऐसे चैलेंजिंग ऑकेजन्स आते हैं, जैसे दिल्ली का इलेक्शन है तो आप और कांग्रेस, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है तो कांग्रेस और टीएमसी, तो वहां पे ये एक्सपोज हो जाता है।

0: कि नहीं, हम अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। चलिए ये भी ठीक है, नेशनल लेवल पे तो सहचितता हो, देयर मस्ट बी सम कॉमन प्रिंसिपल्स ऑन विच यू थ्राइव, लेकिन वहां पे भी आप पाएंगे कि कम से कम यहां पे ममता बनर्जी को अगर आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो तमिलनाडु में सारे मिलके कांग्रेस को सपोर्ट करें, पर ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स बिल्कुल जीरो पे है और इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट नहीं करता। वो कुछ ऐसे ही किताबों में है, कभी कभी पार्लियामेंट में दिखाई पड़ जाता है ओकेजन स्पेसिफिक। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अब यूनिटी करनी पड़ेगी, और वो ऐसी हो कि जब जब जनता सत्ता से नाराज हो तो कम से कम उसको दिखाई दे कि हाँ एक यूनिटी है, हम उधर जा सकते हैं। अगर ये विकल्प नहीं रहेगा तो वो मजबूर होके सत्ता के साथ खड़ी होगी, सत्ता को वोट देगी। तो ये मजबूरी ना आए इसके लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन यूनिटी की जरूरत है। लेकिन क्या कांग्रेस जो रैलिंग पॉइंट है, आज गिरे दिन में भी कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिलते हैं, आज गिरे दिन में भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई अगर बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिल रहे हैं तो 13 करोड़ कांग्रेस को भी मिलते हैं, हम कांग्रेस को, लेकिन क्या ये बरकरार रहेंगे
1: जी?
0: इसके लिए अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आपको, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी पे है जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो क्या उन ओकेजन्स पे वो वाकई खड़े होकर सहचितता बना पाते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस बुरी तरह मिस कर जाती है।
1: लेट्स मूव ऑन टू तमिलनाडु। लाइक वी आर सेइंग दैट इट सीम्स ऑलमोस्ट सर्टन नाउ दैट टीवीके ऑफ एक्टर यू नो विजय इज ऑन इट्स वे टू मेक द नेक्स्ट गवर्नमेंट, बट फ्रॉम व्हाट वी कैन सी द रिजल्ट्स एंड ट्रेंड्स शो दैट द पार्टी इज all in all, you know, 107 seats. It has won 5 seats. It is leading on 102. So it's still about 11, you know, it's still short. 11 seats short of the majority. Yeah. Now, before the results, Vijay had very clearly said that it will not align with any party. But what now do you see if it falls short of the majority? Where do you see it moving? DMK, AIADMK, or even BJP, if it can?
0: A very, very valid question at this juncture. This was the question that was to be delved deep into. See, one thing is there, willy-nilly.
1: Yeah.
0: All these months that I had been tracking this leader, I found that there is a very palpable lurch towards BJP.
1: Okay.
0: He may not say there, and he had said openly that BJP is number one enemy, number two enemy perhaps.
1: Yeah.
0: DMK is also enemy. But now I think that somewhere they will align with BJP and its group.
1: Right.
0: So I think 11 members not difficult.
1: Yeah.
0: And they will amass that much of a strength and will form the government.
2: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनावों के पहले, मतलब जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो अमित शाह ने भरपूर कोशिश की कि AIDMK के साथ TVK का और NDA का जो वो है पूरा अलायंस बन जाए, लेकिन जो पलानी सामी जी हैं वो एकदम से तैयार नहीं हुए, और वो तो विजयन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद देने तक को तैयार नहीं थे।
0: उमेश, यही टैक्टिकल होशियारी विजयन ने की कि वो साथ में वो भी नहीं गए तो आज इतनी सीटें मिली है, वरना AIDMK आज चीफ मिनिस्टर बना रहा होता और विजयन सेकंड नंबर पे होते
2: जी।
0: तो ये अच्छा हुआ कि विजयन ने अपना किया और उससे उनको गेन हुआ।
2: तो अनुभाजी के सवाल का जवाब यही है कि ज्यादा संभावना यही है कि बीजेपी मीडिएटर बने और AIDMK के साथ सरकार बने।
1: और एट द एंड ऑफ द डे यू नो पॉलिटिक्स नथिंग बट
0: चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी, और चीफ मिनिस्टर हो विजयन और AIDMK डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए
1: जी। जैसे मैं कह रही थी कि राजनीति कॉम्प्रोमाइज का ही दूसरा नाम है, और ये तो जो जो जो संतुलन होता है कौन बनेगा कि सब तो चलता ही रहता है। सो वी आर रीचिंग द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, एंड बिफोर वी वाइंड अप दिस सेगमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम, लेट्स क्विकली गिव यू अनदर अपडेट ऑन द ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स कमिंग इन। विशाल
3: जी, असम की 126 में से सभी सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 28 सीटें जीत चुकी है।
1: इन केरल द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लीडिंग ऑन 38 सीट्स। इन पुदुचेरी AINRC इज लीडिंग ऑन has one, leading on two and has won 9 seats.
3: और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
1: एंड दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर इन दिस सेगमेंट. डू जॉइन अस एट 7:10 PM व्हेन वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. थैंक यू. नमस्कार.
4: जनादेश
5: 2026. नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. रुझानों के अनुसार सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बैनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना तय नजर आ रहा है. विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे चल रही है. तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर आगे है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आगे हैं. रुझानों के अनुसार विभिन्न दलों की स्थिति इस प्रकार है. तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94, जेयूपी 2, एआईएसएफ 1, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है. राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा. असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 4 के परिणाम मिले हैं. भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं और 78 पर आगे चल रही है. कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 1 सीट पर विजय हासिल की है, जबकि 9 पर आगे है. असम गण परिषद 8, एआईयूडीएफ 2, आरजेआरडी 2, तृणमूल कांग्रेस 1 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे है. पुदुचेरी में विधानसभा की 30 में से 15 सीटों के परिणाम मिल गए हैं. एआईएनआरसी ने 9 सीटें जीती हैं. भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 पर आगे है. कांग्रेस ने एलजेके 1 सीट पर आगे है. एआईएडीएमके ने 1 सीट जीती है. एनवीएमके 1 सीट पर आगे है. डीएमके ने 1 सीट जीती है और टीवीके 1 सीट पर आगे है. निर्दलीय को 1 सीट मिली है और वो 2 पर आगे है. केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 23 के परिणाम मिल गए हैं. कांग्रेस ने 11 सीटें जीती हैं और 52 पर आगे है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं और 21 पर आगे है. आईयूएमएल ने अब तक 2 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे चल रही है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 6 पर आगे है. केरल कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और वो 5 पर आगे है. आरएसपी ने 3, भाजपा 2, आरजेडी 1, आरएमपीओआई 1, केरल कांग्रेस जैकब 1, सीएमपीकेएससी 1 तथा निर्दलीय 4 सीटों पर आगे हैं. तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 233 सीटों के रुझान मिल गए हैं. टीवीके 106, डीएमके ने 1 सीट जीती है और 54 पर आगे है. एआईएडीएमके 54, आईयूएमएल 2, पीएमके 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 2, भाजपा 2, डीएमके 1, वीसीके 1 और सीपीआईएम 1 और अन्य 1 सीट पर आगे है. 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 4 के परिणाम मिल गए हैं. गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार ने जीती. कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुल्लाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे चल रहे हैं. महाराष्ट्र की बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं. राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदिले आगे हैं. नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई इमचेन ने जीती. त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहाज चक्रवर्ती विजयी रहे. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई. इस अवसर पर सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष के अग्नि सुरक्षा सप्ताह का विषय सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, अग्नि रोकथाम है. घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो चुका है आपके मनपसंद गीतों का कार्यक्रम मन भावन। भाई देखो, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए विटामिन एम की बहुत जरूरत होती है। एम एम फॉर म्यूजिक, एम फॉर मन भावन। ये आज मन भावन में आपके साथ है हम रूमी मलिक, और आप हमें एफएम गोल्ड aardelhi@gmail.com पर भेज सकते हैं अपनी फरमाइश। लेकिन अभी हम सुनेंगे ये गीत, बड़ा क्यूट क्यूट क्यूट गीत है ये।

FM Gold. सनम साथ रहे हम दोनों जन्म जन्म, ये गर्मी में तो साथ देके दिखाओ। हाँ, अधिक मास शुरू हो चुका है, पता है ना आपको। यस, हर तीन एक साल में आता है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास उसे कहते हैं, जेठ का महीना जिसे संस्कृत में ज्येष्ठ बोलते हैं, है ना। बड़ा महीना इस बार सचमुच में बड़ा है, 60 दिन का। हाँ जी, सच कह रहे हैं हम। और अटेंडेंस ले लें हम, मास्टर अशोक कुमार, बिट्टू गगनेजा, हरजिंदर सिंह भाटिया, प्रवीण रानपरा, मोहम्मद मूसा शेख, मास्टर अशोक कुमार, मोहम्मद कमार, आफ्ताब अंसारी, जॉन डी कैस्ट्रो, एवरग्रीन पब्लिकेशन, रेनू मल्होत्रा, दिग्दर्शन कौर जी, अनिल वर्मा, कौसल्या देवानगन, संदीप सिंह, रास क्रिएशंस, जय, राजेश सिंह, संदीप मक्कर, है ना। देखो कितने सारे लोगों ने हमको लिखा है। और आप संदीप सिंह सोनारा, आप कहाँ से लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं फव्वारा चौक से, चुरू, राजस्थान से। अरे वाह, संदीप सिंह सोनगरा, संदीप सिंह सोनगरा के साथ हैं प्राची, सोमल, कार्तिक। और ये सुनना चाहते हैं गीत, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अह, बहुत ही अच्छा गाना है। अच्छा, इनके साथ और भी कोई है क्या? मेलसुर बीकान सरदारपुर शहर से अंबिका भाटी, अच्छा, संदीप स्वामी भी हैं, सचिन चौहान भी हैं, प्रकाश जी राणा भी हैं। हे प्रभु, सबके नाम पढ़ने से जो पुण्य मिलता है वो रूमी मलिक को जरूर दे देना। टिंग टोंग, आइए गीत सुनाई।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक और हमारे साथ हैं किशन वंजानी, मोहम्मद सईद अब्बासी, भव्या देवानगन, मोहसिन हाशमी, मंगल जनागन, बोधराज खोरवाल जी, शमसुल कमर राही। है ना, देखो जितनी हम कोशिश करते हैं, जितने हमारे क्या होता है ना, बहुत बार बोल चुकी हूँ ये वाली बात की। सो दिस, अभी देखो ये मैसेज आया है आज

Njani, Mohammad Sayed Abbasi, Bhavya Devangan, Mohsin Hashmi, Mangal Janagan, Bodhraj Khorwalji, Shamsul Kamar Rahi. है ना, देखो जितनी हम कोशिश करते हैं, जितने हमारे क्या होते हैं ना, बहुत बार बोल चुकी हूँ ये वाली बात की. सो दिस, अभी देखो ये मैसेज आया है आज. अच्छा जी, मैं हारी, जरा मान जाओ ना. अभी किन्होंने लिखा है ये, सुनना कौन सा चाहते हैं. फिल्म अब्दुल्ला का गीत सुनना चाहते हैं, संदीप मक्कर. संदीप जी रुक जाओ, अभी आपका गीत जो है मैं ढूंढ रही हूँ, और ज़रूर मिल ही जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा. इतनी बार सुना है हमने यह खूबसूरत सा गीत, मतलब क्या एक, अगर कहूँ ना, रोमांस की पराकाष्ठा है ना. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी. संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल, पिंगा वाला चौक, जलंधर, पंजाब से, ये लीजिए आपका गीत.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। और मित्रों, वैसे इस दुनिया में नाम कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत मशक्कत, दिन रात बैठ के कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ इजाद कर रहे हैं, क्या क्या कमाल किए दुनिया में। लेकिन आप देखिए, आप आकाशवाणी के श्रोता हैं तो आप हमें अपनी फरमाइश भेजते हैं और आपका नाम पूरा भारतवर्ष सुनता है, है ना। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, रवायत है आकाशवाणी की कि फरमाइशी कार्यक्रम में लिसनर्स के नाम हम लेते हैं, हमेशा से शामिल करते हैं। पर ये कहना जैसे कि इन्होंने फरमाया, किन्होंने फरमाया, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, और उनके पूरे परिवार का नाम इन्होंने लिख डाला है कि आप जो है ये पूरी लाइन नहीं बोलती। अब मुझे ये बताइए कि आपके मोहल्ले और घर का एड्रेस भी अगर मैं जान लूं, मकान नंबर, तो क्या आप हमें चाय पे बुलाने वाले हैं? और फिर अगर बाकी सभी लोग कहते रहे तो फिर तो गीत नहीं सुनेंगे, सिर्फ आपके एड्रेस ही सुनते रह जाएंगे, क्यों, है ना। अहमद फूल वाले रूमी जी, आदाब एवं नमस्कार। आपको भी नमस्कार। हमें निराश, देखो मतलब मुझे तो कई बार डर लगता है, मुझे लगता है कि मतलब आप सबके दिल वगैरह ठीक रहे, है ना, ऐसे लिखेंगे उद्बोध

देखिए, हमें निराश और नजरअंदाज मत करना, मेरे मेल जरूर से जरूर शामिल करें, है ना? फीलिंग आ रही है ना? यू कैन अंडरस्टैंड, रिलैक्स, आराम से रखें, है ना? अब इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हमें आज, इन्हें आज कौन सा गाना सुनना है? फिल्म है लव स्टोरी, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, और कौन लिख रहे हैं? छोटी बलिया से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ, आरजू, जूही इकबाल, इमरान, आमना, आसमा, आशू और समस्त फूल वाली फैमिली। बताओ इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? आरजे धर्म का निर्वाह हो रहा है पूरी तरह से, है

0: लगती है।
1: मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है, वाह मजा आ गया है ना। चलो कुछ लेटर्स और पढ़ लेते हैं। लेटर्स मेरा मतलब ईमेल है ना। पता है आप बता नहीं सकते क्या क्या हादसे होते हैं स्टूडियो के अंदर। अचानक पढ़ने लगो, अचानक से छींक आने लगती है। सच्ची में इतनी ठंडी स्टूडियो में, हमारे लिए नहीं मशीनों के लिए। बबलू ठेकेदार ने हमें संदेश भेजा, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। रोशन जान दिख रही है। रूमी बाजी, कुछ सिस्टर्स आपके इधर भी हैं, प्लीज जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। आफ्ताब अंसारी जी ये लिख रहे हैं, इनके साथ रियाज, मोहम्मद गैफ, अनावर, लुबना, आलिया भी हैं। और कहाँ प्रोग्राम में ये लिखते हैं, प्रोग्राम में मैसेज पढ़ने का अंदाज बहुत ही शानदार है रूमी, आपकी चंचलता प्रोग्राम का बेहतर बनाती है। उफ, उफ, उफ, आपने तो मुझे क्या कहूँ, शर्मिंदा कर दिया। ओके ओके, हो गया हो गया। कीप द लग जा ऑन द छजा। अब ये सुनना चाहते हैं गीत, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे और फिर मेरी क्या देख ले, है ना। चलिए हम खुद ही सुन लेते हैं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। मन भावन में आपके साथ हैं हम रोमी मलिक, हमारे साथ सतीश अनेजा जी हैं। सतीश जी कह रहे हैं कि इनको गीत सुनना है, अच्छा तो हम चलते हैं। और इन्होंने सबसे पहले है ना 3 बजे फरमाइश की थी, सतीश जी टेल मी समथिंग, पहला गाना ये बजा दूं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर दूसरा क्या बजाऊं, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल भी भरा नहीं। आप खुद सोचिए सबसे पहला गाना मैं कैसे बजा सकती हूँ, अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, सोपन ताइड़े, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं पूरे भारत से। इन्होंने लिखा है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपन के साथ है वसंतराव और इनके साथ है निवृत्ति। और ये कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, महबूब की मेहंदी फिल्म से, मेरे दीवाने पन की भी कोई दवा नहीं, हाय मेरे दिल की बात कह दी। ये गाना तो मुझे गाना चाहिए। अच्छा, अब हमारे साथ तुलसी मस्कीन जी, गंगा बनकर अटेंडेंस साथ साथ लेती रहूं ना तो आपके दिल जो है थमा रहे, आपका है ना चैन मिलता रहे दिल को। डीकेपी परिहार, जाकिर, बुधराज खोलवा, राजकुमार डूडी, मोहम्मद कालिम, जय मुकेश कश्यप, चंदूलाल पटवा, दिग्दर्शन कौर जी, रमेश चौहान, और तो कोई दे नहीं गया ना, यूनुस खत्री, मैंने सारे नाम अपनी तरफ से तो लिए हैं अभी तक के, है ना। सोपन जी का गीत अब हम सुन लेते हैं, आइए। मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं।

मेरे दीवानेपन की कोई भी दवा नहीं और आपकी बेताबी और आपके उतावलेपन की भी कोई दवा नहीं। माहिरा मलिक लिखती हैं, रूमी जी प्यार भरा आदाब बेशुमार मोहब्बत, कनॉट प्लेस दिल्ली से लिखती हैं। माहिरा के साथ हैं हिबा, आयशा, जोया, जैनब, मरियम और कह रही हैं कि कोई भी गीत में हमारी हाजिरी लगा दीजिए, शुक्रिया। देखिए कितनी मोहब्बत भरी हुई है ना, रस्ट पक रहा है इनकी बातों में, है ना। तो कोशिश करके हमें भी मोहब्बत से और इत्मीनान से जो है काम लेना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि माहिरा का मेल भी आया था, लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी मेल्स में गुम जाता है। इरफान कुरैशी, स्वर्ण सिंह, उग्रसेन यादव, धर्मेंद्र छीपा, ये लोग ना कई लोग ऐसे भी हैं जो बीच में सो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उठ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा नाम नहीं पड़ा। जिम्मेदार

कलाकार बनिए तो आपके नाम पढ़े जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें मैसेज भेजा है, किसने भेजा है देखते हैं। ये है नांगल नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल ये सुनना चाहते हैं गीत कोई हसीना जब रूठ जाती है। हाँ, ये भी गीत बहुत बढ़िया है। आइए सुनते हैं गीत।

बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब आखिरी पेशकश लेनी होगी। स्वर्ण सिंह, गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। अनिल मोहन जी ने बोला है कि मेरी तो अभी अभी अटेंडेंस लगेगी, मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है। रामशरण विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। उज्मा शेख हैं, है ना, और सबके नाम तो ले ही लिए। कौशल्या जोशी लिख रही हैं, आरजे जी प्लीज प्लीज प्लीज। किस बात के लिए प्लीज? चंद्रनगर कॉलोनी से ये लिख रही हैं। चंद्रनगर कॉलोनी कहाँ है कौशल्या जी? इनके साथ प्रमिला और सोनाली भी हैं, और ये सुनना चाहती हैं फिल्म रोटी का गीत, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। क्या गाना है, चलिए ठीक है, ये भी पसंद हो सकते हैं, क्यों नहीं, है ना। तो आइए सुनते हैं गाना। आज केवन भावन का आखिरी गीत रहेगा, और उसके बाद भी आपके फरमाइश के गीत लिए जाएंगे। 5-10 पे गाते गुनगुनाते में 80 और 90 के दशक के बहुत खूबसूरत गीत सुनने को मिलेंगे। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। असम और पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 148 सीटों के जादुई आंकड़े की आवश्यकता होगी। विधानसभा में 294 सीटों में से 292 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 194 सीटों पर आगे चल रही है, एक पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है और उसने एक सीट जीत ली है। भारतीय कांग्रेस पार्टी और एजेयूपी दो दो सीटों पर आगे है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा एआईएसएफ को एक एक सीट पर बढ़त प्राप्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से 39 के परिणाम मिले हैं। भाजपा ने 31 सीटें जीती हैं, उसके सहयोगी एजीपी को दो और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीट मिली हैं। एआईयूडीएफ एक सीट मिली है। शेष 87 सीटों पर मिले रुझानों के अनुसार भाजपा 50, एजीपी 6, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5, कांग्रेस 21, एआईयूडीएफ 1, राइजोर दल 2 और अन्य 2 सीट पर आगे हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालू कबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोहार सीट पर हरा दिया है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र से, जो इस समय भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। जी दीपेंद्र, पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा का शानदार प्रदर्शन हो रहा है, कैसा माहौल है मुख्यालय में?
1: जी अवलिन, पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जो है जश्न का माहौल है और पार्टी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। खासतौर पे बंगाल की जो झालमुड़ी है और वहां की रसगुल्ला जो बहुत ही फेमस है, एक दूसरे को खिलाकर जश्न मना रहे हैं। बता दूं कि बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और वहीं लगातार तीसरी बार असम

0: administrative and research leadership credentials. The position carries a fixed pay of 2,10,000 plus 11,250 special allowance. Applications must be submitted online till 11/5/2026. For details, kindly refer to the website at www.nitcouncil.org.in, or you could also go on to www.education.gov.in. The Ministry of Defence, Government of India, through the Department of Defence Production, has invited applications for the post of Chief Executive Officer Managing Director in Indo-Russian Rifles Private Limited, a defence sector joint venture. The position requires senior level leadership experience in defence, manufacturing or allied strategic sectors. The last date for receipt of applications is 7/5/2026, up to 15 hours, and the detailed eligibility conditions and qualifications and requirements and application format is available on the website. Kindly visit www.ddpmod.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान असम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सीनियर असिस्टेंट एक पद सामान्य वर्ग के लिए, जबकि एक अन्य पिछला वर्ग के लिए आरक्षित है। वेतन स्तर रहेगा L5। कुल पद हैं 2, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, जबकि असिस्टेंट का एक पद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। वेतन स्तर L4, कुल पद 1 और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की वेबसाइट www.nidj.ac.in अथवा नेशनल करियर सर्विस www.ncs.gov.in पर भी आप संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2 तथा सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1। विभाग हैं जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग, सूक्ष्म कणिका एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग तथा यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग। कुल पद 15 हैं, जिनमें से अनारक्षित 8 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। एसोसिएट प्रोफेसर के कुल पद हैं 10, जिनमें 4 सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग में ये पद उपलब्ध हैं। प्रोफेसर के कुल 5 पद हैं, जो जनपद अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, विद्युतीय एवं सूक्ष्म कणिका अभियांत्रिकी विभाग में उपलब्ध हैं, और कुल 5 पदों में से 4 सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 1 पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नियमित पद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और प्रोग्रामर। संविदात्मक पद हैं चेयर प्रोफेसर, विजिटिंग फेलो और रिसर्च असिस्टेंट। ऑनलाइन आवेदन जमा करने, आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि है 7 मई 2026। संलग्नकों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि है 13 मई 2026। चेयर प्रोफेसर के लिए नामांकन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in/rac। मत्स्य पालन विभाग सहायक

0: आयुक्त मत्स्य पालन के दो पदों की रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत पात्रता मानदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बायोडाटा प्रारूप आदि के लिए आप देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट www.dof.gov.in। पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में दो रिक्तियां उपलब्ध हैं। पदों के नाम हैं उपाध्यक्ष मुंबई पोर्ट प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 28 मई 2026। अभ्यर्थियों को आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से भेजना होगा onlinevacancy.shipmin.nic.in। अधिक जानकारी के लिए देखिए मंत्रालय की वेबसाइट www.shipmin.gov.in। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं। पद के नाम हैं कोर्ट मास्टर दो पद, प्रधान निजी सचिव एक पद तथा वैयक्तिक सहायक एक पद। पदों के बारे में अधिक जानकारी, विवरण, नियम और शर्तों आदि के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट का पता है jalshakti-dowr.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी बराबर हमारी नजर और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ आज मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: हेलो मुनीश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट मुनीश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. BJP heads for landslide victory in West Bengal Assembly elections.
1: और दोस्तों, असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने को है तैयार।
2: In Tamilnadu, actor turned politician Vijay's party TVK delivers a super hit on debut, ruling DMK on the third spot. Chief Minister MK Stalin trails.
1: और केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर।
2: एनडीए ऑन वे टू रिटेन पावर इन पुदुचेरी।
1: जबकि विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीत ली है।
2: Yes, sir. Now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India's rise as a global medical and wellness destination. And, well, listeners, today someone sitting thousands of kilometers away chooses India for the surgery, recovery or even peace of mind.
1: दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि देश में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया भर से लोगों को सीमाएं पार करके यहां खींच लाती है? घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि इलाज के लिए। चलिए आज इसी के बारे में बातें करते हैं।
2: Yes, and across the world today, healthcare is becoming expensive. Waiting periods are getting longer, and lifestyle diseases are quietly rising. So people are asking a very practical question: where can I get high quality treatment without draining my life savings?
1: और इसीलिए इसका जवाब तेजी से भारत बनता जा रहा है। भारत इस क्षेत्र में कोई इत्तेफाक से कदम नहीं रख रहा है। ये एक ऐसा देश है जहां इलाज हमेशा से जीवन का एक हिस्सा रहा है, चाहे वो सर्दी जुकाम होने पर दादी नानी का काढ़ा हो या फिर सुबह सवेरे पार्कों में किए जाने वाले योग सत्र। हमने डॉक्टरों और पारंपरिक उपचारों दोनों पर ही भरोसा किया है।
2: ऑफ कोर्स, एंड हीलिंग हियर हैज ऑलवेज बीन होलिस्टिक। नाउ दैट सेम फिलॉसफी इज रीचिंग द वर्ल्ड। इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन टू पावरफुल पिलर्स। On one side, this advanced medical care, including complex surgeries, organ transplants, cancer treatment that are performed with cutting-edge technology.
1: और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, wellness और रोकथाम भी है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, ये ऐसी पद्धतियां हैं जो बीमारी का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसको होने से रोकती हैं। तो कैसी जगह जो आपकी बीमारी का इलाज भी कर सके और आपको ये भी सिखाए कि भविष्य में उससे कैसे बचा जाए। भारत ठीक यही चीज पेश करता है।
2: Yes, and through the flagship Heal in India initiative, the government is positioning the country as a premier destination for integrated and holistic healthcare. It has two vibrant pillars. First is medical tourism, which focuses on curative interventions such as complex surgeries by specialized hospitals and healthcare institutions.
1: दोस्तों, वेलनेस टूरिज्म, दरअसल ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अन्य आयुष पद्धतियों जैसी पारंपरिक प्रणालियों के जरिए निवारक और समग्र कल्याण पर केंद्रित है। और ये दोनों स्तंभ मिलकर भारत के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इकोसिस्टम की नींव को बनाते हैं।
2: एंड लेट्स क्रिएट अ सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अ पेशेंट फ्रॉम अनदर कंट्री कम्स टू इंडिया फॉर हार्ट सर्जरी। द प्रोसीजर इज सक्सेसफुल, द कॉस्ट इज फार लोअर देन बैक होम। And the bonus point is that during recovery, they're introduced to yoga, breathing techniques. They're guided on diet through Ayurveda. They learn ways to manage stress. They don't leave with stitches alone, they leave with a new lifestyle.
1: लेकिन क्या ये एक तरह की अलग तरह की स्वास्थ्य सेवा नहीं है? और पूरी दुनिया इसे जरूर नोटिस तो कर रही है. हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भारत आते हैं. असल में एक ही साल में 5 लाख से ज्यादा लोग खासतौर पर मेडिकल उपचार के लिए यहां आए, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. और इसकी वजह असल में कुछ खास बातें हैं. पहली तो है क्वालिटी. भारत में कुशल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों का एक बड़ा समूह पहले से मौजूद है.
2: यस, एंड द सेकंड रीजन मुनीश इज दैट टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स हियर फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स विद स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी चेक्स. And third, and this surprises many, it includes affordability. Treatments that cost a fortune elsewhere are available here at a fraction of the price.
1: और ये नहीं भूला जा सकता है अभिषेक कि भारत योग की जन्मभूमि और आयुर्वेद का घर है. एक ऐसी धरती जहां उपचार सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है. आज इन परंपराओं को न सिर्फ सहेज कर रखा गया है बल्कि इन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दिया जा रहा है. जो लोग आयुष उपचार के लिए भारत आना चाहते हैं उनके लिए खास वीजा की व्यवस्था है, और अब तो बीमा में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी शामिल हैं.
2: एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइजिंग इंडियस लीडरशिप इन होलिस्टिक हेल्थ, एंड स्लोली द वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग वी हैव नोन फॉर सेंचुरीज, दैट इज हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट क्योरिंग डिजीज, इज अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस.
1: दोस्तों, एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए. हम कितनी बार तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं, हम कितनी बार अपनी देखभाल करने में देर कर देते हैं. हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए

0: व्यवस्था कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विदेश में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए भारत में अपने पूरे इलाज की यात्रा की योजना बनाना आसान बना रहे हैं, सलाह मशवरे से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक। इसलिए अब ये कोई मुश्किल काम नहीं रहा, ये पूरी तरह से आसान भी है और सुचारू भी है।
1: एंड टू साइट सम स्टेटिस्टिक्स मुनीश, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020-21, इंडिया रैंक्स 10th अमंग द टॉप 46 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस ग्लोबली, 12th अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 20 वेलनेस टूरिज्म मार्केट्स, 5th अमंग द टॉप 10 वेलनेस डेस्टिनेशंस in the Asia Pacific region, and India is becoming a place where the world comes to heal, a country where science meets a tradition, where recovery includes both medicine and mindfulness.
0: दरअसल दोस्तों, प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक उत्कृष्टता तक भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा आंदोलन का सिर्फ अनुसरण नहीं कर रहा, बल्कि वो देखभाल, करुणा और उपचार की कैसी दृष्टि के साथ इसका नेतृत्व कर रहा है जो वास्तव में परिपूर्ण प्रतीत होती है।
1: And now let's move to one of the most discussed topic of the day in a country today, that is the assembly elections and celebrations underway at BJP headquarters in New Delhi, following the BJP's outstanding performance in West Bengal and Assam. Our correspondent Dipendra Kumar spoke to some of the women party workers who credited Prime Minister Narendra Modi's leadership and governance model for the victory in these states.
2: पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस जीत को।

0: दिन बंगाल में बहुत ही अराजकता था, माँ काली का आशीर्वाद मिल गया बंगाल को।
1: ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और यहाँ पर बंगाल के झालमुड़ी और बंगाल के रसगुल्ले जो है एक दूसरे को बांट रहे हैं। आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस जीत को।

0: बोलते जय श्री राम, जय श्री राम।
1: पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री थी, फिर भी जो है महिलाओं ने लगता है भाजपा को साथ दिया, क्योंकि 200 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसे?
0: बंगाल भयमुक्त, रोगमुक्त, सारे आपातकाल मुक्त हो गया, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मैं ये कहूंगी कि ममता बनर्जी एक महिला थी, लेकिन उनके राज्य में जितना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की शिकार हुई, बैन बेटी सर्वसार कर दिया पूरे बंगाल को। दीदी खेलना ना होवे, मेला होवे मेला।
1: आप ये बताएं कि जीत का श्रेय किसे जाता है?
2: जीत का सारा वो जाता है मोदी जी को, क्योंकि एक मोदी जी है जो देश को बदल सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको देख लिया, एक है तो मोदी जी है। जय श्री राम
0: हिंदुत्व को और सनातन धर्म को, क्योंकि आज सनातन धर्म की वजह से ये बंगाल की जीत हुई है। जय हो मोदी की, जय बंगाल, जय श्री राम, जय श्री राम।
1: तैयारियां यहां जोरों पे है, शाम में प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में लगभग 6 से 6:30 के बीच में प्रधानमंत्री यहां आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
3: और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास हमारे लिए उनके पास।
4: यस एंड स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम बेंगलुरु। An Indian Institute of Horticultural Research in Hesarghatta village near Bengaluru had organized an awareness campaign on a balanced use of fertilizer under Mere Gao Mera Gaurav initiative, and the farmers were briefed by the agriculture scientist about the precise quantity of fertilizer to be used according to the soil quality and nutrient management. We have a report.
5: Under Mera Gaon Mera Gaurav initiative, the Indian Institute of Horticultural Research, IIHR, reached out to the farmers to create awareness about the balanced use of fertilizers and encourage eco-friendly alternatives. During the intensive awareness campaign, the scientists of the research unit spoke about sustainable soil health management, scientific nutrient management, and utilization of eco-friendly alternatives to chemical fertilizers. During the technical sessions, the experts emphasized on soil testing as the foundation for precise nutrient management. The ICAR IIHR

0: technologies such as ARCA Microbial Consortium, ARCA Decomposer, crop specific micronutrient formulations, ARCA Fermented Cocoa Pit and ARCA Sasya Poshak Ras were demonstrated before the farmers. They highlighted the adverse effects of excessive chemical fertilizers and stressed on the need to adopt biofertilizers, green manures, vermicompost and integrated nutrient management practices for sustainable agriculture. The agri-scientists showed how imbalanced use of fertilizers degrade soil health, increase costs and reduce productivity. They also addressed the concerns raised by the visiting farmers. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
1: अपने दोस्त और उनकी दोस्ती, ये किसी के भी जीवन का अभिन्न अंग होती है। दोस्तों के साथ आप सुख दुख के पल साझा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कई उलझने जो परिवार में बता पानी जरा कठिन होती हैं, उन्हें भी हम लोग अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। और यही दोस्ती दरअसल कभी कभी किसी का जीवन संवारने का भी काम करती है।
2: महाराष्ट्र के बीड जिले का एक शहर है अंबाजोगाई। साहित्य, कला और सांस्कृतिक विरासत को आज के युग में भी इस शहर और यहाँ के शहरियों ने अच्छे से संभाला हुआ है। इसी अंबाजोगाई के कुछ मित्रों ने एक साथ आकर पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ किया कि कईयों की जिंदगी बदल गई। यहाँ के एक साहित्यिक अभियान में कार्यरत अभिजीत जोंधड़े ने अपने ग्रुप की इसी पहल के बारे में आकाशवाणी के साथ जानकारी साझा की।
3: 2007 में मेरे एक मित्र का मुझे फोन आया। उन्होंने बताया एक छात्र बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली है, उसे अंक अच्छे मिले थे और वह पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर, उसके पिता नहीं थे और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं। सारी जानकारी लेने के बाद हम चार पांच दोस्तों ने मिलकर तय किया कि इस छात्र की जितनी भी आवश्यक आर्थिक मदद होगी हम सब मिलकर करेंगे। इसी निर्णय से मैत्री ग्रुप फ्रेंडशिप क्लब की शुरुआत हुई। शुरुआत में हम सात दोस्तों ने हर महीने आर्थिक योगदान देकर उस छात्र की पढ़ाई की जिम्मेदारी दी। उस छात्र ने भरपूर मेहनत करके पॉलिटेक्निक तो पूरा किया ही, उसके साथ ही उसने इंजीनियरिंग का भी शिक्षण पूरा किया। तब तक हमारे समूह की संख्या बढ़ती गई थी और 12 सदस्य हो गए थे। जिस उद्देश्य से हम एकत्र हुए थे वह पूरा हो चुका था। तब हमने तय किया कि इस कार्य को यही समाप्त नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही अन्य होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करनी है। इसी विचार से हमारा समूह और बड़ा होता गया। आज हमारे प्रयास से 5 छात्र इंजीनियर बन चुके हैं, 5 छात्र डॉक्टर बन चुके हैं और 2 छात्राएं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। वर्तमान में लगभग 70 लोग हर महीने 200 रुपए यानी सालाना 2400 रुपए का योगदान देकर इस कार्य में जुड़े हुए हैं। इस काम के दौरान हमें समाज की कई समस्याओं और लोगों की कठिनाइयों को करीब से समझने का अवसर मिला। पास के ही गाँव में एक लड़की थी, उसे 10वीं में 96% अंक मिले थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उसकी पढ़ाई रुकने और कम उम्र में शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इस बात का हमें पता चला, हमने उसकी मदद की। पहले उसने पॉलिटेक्निक किया और आगे फिर इंजीनियरिंग पूरा किया। आज वह लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी नौकरी कर रही है। जिन छात्रों को हमने मदद की वे आज हमारे समूह के सदस्य बन चुके हैं और स्वयं भी आर्थिक योगदान दे रहे हैं। लोग इस पे अब जुड़ने लगे हैं और एक बहुत बड़ा काम हो रहा है।
2: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस शेर की तरह इस मैत्री ग्रुप का दिन ब दिन विस्तार हो रहा है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
4: एंड नाउ द स्टोरी फ्रॉम पानंजी। द गोवा गवर्नमेंट इज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग स्टेट वाइड हेल्थ इनिशिएटिव टू ब्रिंग फ्री आयुर्वेदिक केयर क्लोजर टू पीपल। वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
5: Chief Minister Pramod Sawant has launched the Health with Ayurveda hashtag checked by Doctor 2.0 campaign, a major public health initiative. As part of this campaign, free Ayurvedic health camps will be organized from 5th of May to 5th of June, offering consultations, treatments and medicines through a network of over 190 doctors across government and private facilities. Services are being delivered through district hospitals, primary health centers, 70 private clinics and 41 Ayushman Arogya Mandirs, ensuring outreach even in remote areas. The campaign focuses on early detection and management of lifestyle diseases like diabetes, hypertension and obesity using traditional therapies. Citizens must carry Aadhaar for registration. Details of nearby centers are available on the goaonline.gov.in portal, with a dedicated helpline also in place. The government says the drive promotes a preventive, wellness-first approach to healthcare. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Barji.
1: दोस्तों, कच्छ का रण जहां प्रकृति अपने अद्भुत रंग बिखेरती है, हर साल

0: लाखों प्रवासी पक्षियों का स्वागत करता है। इनमें फ्लेमिंगो की मौजूदगी इस इलाके को बना देती है और भी खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी सुंदरता और पर्यावरणीय महत्व का उल्लेख करते हुए इन्हें पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताया है। एक रिपोर्ट।
1: स्थानीय भाषा में सुरखाब, हंज और राजवी रालाखा के बाराती जैसे नामों से पहचाने जाने वाले फ्लेमिंगो अब कच्छ की पहचान बन चुके हैं और यह गुजरात का राज्य पक्षी भी है। लंबी घुमावदार गर्दन, हल्के गुलाबी रंग के पैर, लाल रंग की विशिष्ट चोंच और आकर्षक पंखों के साथ इनकी अदाओं से पक्षी प्रेमी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पानी में एक पैर पर खड़े रहना, धीमी चाल से चलना और उड़ान भरते समय विमान जैसी भव्यता इनकी खास पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में फ्लेमिंगो की इसी खूबसूरती का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पक्षी कच्छ में पर्यावरण संरक्षण का एक सुंदर प्रतीक बन गए हैं।
2: पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती है। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूँ। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत तो हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यहीं घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं।
1: कच्छ की अनोखी भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना और बड़ी संख्या में खूबसूरत पक्षियों के निवास का यह अद्वितीय संगम हर वर्ष मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवानी।
3: The Himachal Pradesh government has announced an ambitious and forward-looking initiative, Mission 32%, in the 2026-27 budget. The mission aims to increase the state's forest cover from 29.50% to 32% by the year 2030, and this step has been seen as a major move towards transforming Himachal into a green Himalayan state. We have a report.
4: To enhance forest cover, the state government has rolled out several innovative initiatives over the past 3 years, bringing together forest expansion, conservation and community participation. Among these, the Chief Minister Forest Expansion Scheme stands out as a key initiative, aims at transforming barren and unused hills into green landscapes. In its very first year, plantation has already been carried out on nearly 600 hectares of barren land. Under the scheme, plantations are being undertaken through multiple projects on forest land, with nearly 60% of saplings comprising fruit-bearing species. To ensure proper care and long-term survival of these plantations, dedicated financial provisions have been made. Individuals and institutions are being provided assistance of rupees 1.2 lakh per hectare, strengthening both maintenance efforts and survival rates. The scheme is being implemented at the grassroots level through self-help groups, Mahila Mandals and youth participation. This approach is not only advancing environmental conservation but also generating employment opportunities and creating sustainable income avenues for local communities. In a further push to make green development a mass movement, the government has introduced the Green Adoption Scheme. Under this initiative, private enterprises, companies and non-governmental organizations can adopt barren forest land for plantation and conservation activities. This move promotes corporate social responsibility while ensuring active participation of the private sector in environmental protection. The cumulative impact of these efforts is steadily guiding the state towards its vision of a green Himachal. The central focus of Mission 32% in the 2026-27 budget underlines the government's commitment to achieving a balance between development and environmental sustainability. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: और दोस्तों, अब बात खेल के मैदान की हलचल की। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने और मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
3: Yes, and moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.5% higher today. The Sensex gained 356 points to close at 77,269, while the Nifty rose 122 points to settle at 24,119. The broader market on the National Stock Exchange also closed in positive zone. The mid-cap 100 climbed over 0.6% and the small-cap 100 jumped 0.7%.

0: बनारस घराने के वादक पंडित किशन महाराज, जिन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने 1973 में पद्मश्री और फिर 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ एक मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के मर्मज्ञ भी थे। हमारी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि।
1: Yes, and we are also remembering Jyotindranath Tagore, who was born on this day in 1849. He was a central figure of the Bengal Renaissance and the elder brother of Nobel laureate Rabindranath Tagore. A true polymath, he excelled as a playwright, musician, editor and painter. He is perhaps the most celebrated for being the primary mentor who nurtured his younger brother's genius, often
0: जयंती है त्यागराज की, जिनका जन्म हुआ था आज की तारीख को 1767 में तंजावूर तमिलनाडु में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के कवि। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की और उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां आकाशवाणी में जैसे ही हम इसकी पुरानी इमारत में प्रवेश करते हैं तो एक तरफ हमें दिखाई देते हैं स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे, और दूसरी तरफ त्यागराज, और फिर सीढ़ियों से ऊपर एक रास्ता जाता है।
1: Absolutely. And त्यागराज, like Munishji was mentioning, was of course born on this day in 1767, often referred to as Saint त्यागराज or Tyaga. He was a legendary composer and singer of Carnatic music. He is celebrated as one of the trinity of Carnatic music alongside his contemporaries Muthuswami, Dikshitar and Swami Shastri. A prolific composer and a profound devotee of Lord Ram, he is credited with thousands of devotional compositions, primarily in Telugu and Sanskrit.

0: बाबूजी मैंने आपके लिए चाय बनाई है, लीजिए।
1: तू तो रह नहीं थे अंसा, तेरी चाय नहीं जमती सबको पता है।
2: Yes, and we're also remembering Jyotinder Singh Jyoti Randhawa, who is a prominent Indian professional golfer who reached a career-high world record ranking of 70 in 2008 and became the first Indian to top the Asian Tour Order of Merit in 2002. Most recently, in January 2024, he won the final stage of the Legends Tour qualifying school in Turkey to secure full playing rights on the European Senior Tour.
3: और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो आज्ञा दीजिए हमें, यानी मुझे, मुनीश शर्मा को और हमारे साथी अभिषेक मुखोपाध्याय को, ये परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो चले आइए हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newsonair.gov.in, और हमें आप हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी सुन सकते हैं। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। असम और पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता बरकरार रहने के संकेत हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के इतिहास रचने की ओर है और केरलम में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 15 साल से सत्ता में मौजूद तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा की 294 सीटों में से 293 के रुझान मिल गए हैं। भाजपा 192 सीटों पर आगे है और 6 सीट पर जीत कर निर्णायक बढ़त बना ली है। तृणमूल कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट जीतती है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीत ली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य दलों को 4 सीटों पर बढ़त प्राप्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 126 सीटों में से भाजपा और सहयोगी दलों ने 70 सीटें जीती हैं और 30 पर आगे हैं। कांग्रेस और सहयोगी दलों को 2 सीटें मिली हैं, 20 पर वो आगे हैं। अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली है और 2 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार हितेंद्रनाथ गोस्वामी ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को जोरहाट सीट पर हरा दिया है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस समय भाजपा मुख्यालय में हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा मौजूद हैं। अनुपम, पश्चिम बंगाल और असम में पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है, पार्टी मुख्यालय में कैसा माहौल है?
5: जी लवलीन, पार्टी मुख्यालय में आनंद और उत्साह का माहौल है और जहां पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, रंग लगाकर और सेलिब्रेट

0: स्वागत कर रहे हैं। यहाँ उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री 6:30 बजे यहाँ प्रधानमंत्री जी का यहाँ 6:30 बजे पहुँचने का अनुमान है और उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रीगण और भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे।
1: धन्यवाद अनुपम इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के पार्टी तमिलगा वित्रे कड़गम टीवी के इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। टीवी के ने 234 सीटों में से 108 पर आगे है और 7 सीट जीत ली हैं। डीएमके और सहयोगी दलों को 7 सीटें मिली हैं, 64 पर आगे है। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 3 सीट जीत चुके हैं और 51 पर आगे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा आईयूएमएल सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को करारी शिकस्त देने की ओर अग्रसर है। 140 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं और 23 सीटों पर आगे है। कांग्रेस के सहयोगी आईयूएमएल ने 9 सीटें जीती हैं और वो 13 सीटों पर आगे है। सत्ताधारी मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक 20 सीटें जीती हैं, 6 सीटों पर आगे है। भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं केरल कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर आगे है। भाजपा ने 1 सीट जीती है, 2 पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मदम ने 11,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की सभी 30 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। एनडीए गठबंधन ने 12 सीटें जीत ली हैं, 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईएनआरसी ने 9 सीटें जीत ली हैं, 2 पर उसकी बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीतनी है और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती है, डीएमके ने 1 सीट हासिल की है और 4 सीटों पर उसकी बढ़त है। निर्दलीय अन्य उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में 1-1 सीट जीत ली है और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में 1-1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 1 सीट जीती है जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूसरे उपचुनाव में आगे चल रही है। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्रतियोगिता में बने रहने की नजर से महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो हाय नमस्ते राम राम आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते और आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। तो मन में हर्ष है, उत्साह है, कॉफी पीने पिलाने की चाह है और क्या, कॉफी पीते पीते हम इस माहौल को आगे बढ़ाते हैं उत्साह के। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गाते गुनगुनाते का सफर शुरू करते हैं।

ये सफर चलता रहे इस सुहाने सफर के सदके। आई हाय, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, गाते गुनगुनाते आए राम। गुड़ियों का है जमाना, एक फिल्म आई थी और उस वक्त मैं FM रेनबो में होती थी, तो वो उसके बोल ऐसे थे, न लेना हमसे पंगा उस्ताद हम बड़े हैं, लड़के तुम्हारे जैसे मेरी जेब में पड़े हैं, डोंट टेक पंगा, नो नो नो नो। बड़ा मजा आता था जब वो गीत बजता था ना। आए हाय, अब हम FM गोल्ड पर हैं, हमारा नाम रूमी मलिक है, शो का नाम है गाते गुनगुनाते। अब ये भी पता साहिल पर हमने शाम कर दी, अब ये भी पता साहिल पर हमने शाम कर दी, अपना दिल और दुनिया आपके नाम कर दी। ये भी न सोचा कैसे गुजरेगी जिंदगी, ये भी न सोचा कैसे गुजरेगी जिंदगी, बिना सोचे समझे हर खुशी आपके नाम कर दी।

जो दोस्त अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें वो सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज शो है गाते गुनगुनाते आपके साथ है हम रूनी मलिक। इश्क में मोहब्बत में प्यार में अक्सर इतना रोना क्यों पड़ता है, इस पर भी शोध होनी चाहिए। कान पास लाओ रेडियो के, रिसर्च रिसर्च शोध होनी चाहिए। राह दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते हवा को गुमान था अपनी आजादी पर, हवा को गुमान था अपनी आजादी पर, किसी ने उसे भी गुब्बारे में भरकर बेच दिया। इसलिए दोस्तों कभी भी अकड़, अभिमान, गर्व इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में भी कहते हैं ना कि ठंड से और घमंड से बच के रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केसेस में इंसान अकड़ जाता है ना।

यूं ही गाते गुनगुनाते हाँ ये सफर चलता रहे, चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम जिंदगी। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, किसी भी भाषा में कह लीजिए, लेकिन हाँ गति देना जीवन को, अपने विचारों को बहुत ज्यादा जरूरी है। रुकना वर्जित है, रुकना मना है। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, आपके साथ हम रूमी मलिक। न रुकी वक्त की गर्दिश और न जमाना बदला, न रुकी वक्त की गर्दिश और न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। किसी को रोकता हूं करीब आने से, किसी को रोकता हूं करीब आने से, किसी को रोकता हूं दूर जाने से, रोकने से कौन रुका है भला, रोकने से कौन रुका है भला, अहमियत नहीं रहती रुक जाने से।

गाते गुनगुनाते का सफर यूं ही चलता रहे। और कभी आपने ये बात सुनी है किसी से कि आप तो बहुत बदल गई हैं? आए हाय। अच्छा, बाहर की बदलाहट तो हर कोई देख लेता है ना, लेकिन अंदर का बदलाव कोई देख पाता है? बताओ जरा, अंदर से हम कितने बदले तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या मालूम, जो जितना हंसता है अंदर से वो उतना ही थका हुआ हो सकता है ना। ये जो तूने खुद को बदला है, ये जो तूने खुद को बदला है, ये बदला है कि बदला है। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रूमी मलिक हैं आपके साथ में और कहना चाहते हैं कि हिंदी पंचांग के मुताबिक अधिक मास शुरू हो गया है, तो इस मास अधिक कर्म करना है, अधिक मेहनत करनी है और फिर अधिक फल भी मिलेगा, खूब मजा आएगा, अधिक मौज भी होगी, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, लेकिन पहले मेहनत है ना। जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो इतिहास बदल सकता है। रूमी मलिक को दीजिए इजाजत, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने तीन सीट जीत ली है और दो पर आगे है। वहीं कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजीपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजीपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एआईयूडीएफ रायजोर दल को 2 और टीएमसी 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
1: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर माइंड।

0: मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
1: केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। एआईएडीएमके को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है। पीएमके 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Initial trends that emerged in counting of votes for all 4 states and a union territory have sustained as counting rounds progress into the day. BJP is headed for a landslide victory in West Bengal Assembly elections, whereas the ruling dispensations are set to return in Assam and Puducherry. In Tamil Nadu, actor-turned-politician Vijay's party TVK is poised to deliver a super hit on debut. In Kerala, Congress-led UDF is marching towards a clear majority to replace LDF. In assembly by-elections, BJP has won a seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland, while Congress has won a seat in Karnataka. In West Bengal, out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 61 constituencies so far. BJP has bagged 48 seats, while Trinamool Congress has won 13 seats. As per the trends available so far, for 232 seats, BJP is leading in 153, while Trinamool Congress is ahead in 73. CPM in 1, Congress in 2, and others in 3. Ruling BJP appears all set to retain power in Assam, securing a historic third successive term. Out of a total of 126 assembly seats, results have been declared for 86 constituencies so far. BJP has bagged 62 seats, while its ally Aham Gana Parikhar, AGP, has won 6 seats, and Bodoland People's Front, BPF, has secured 8 seats. Congress has gained 7, while ARUTF, Raijor Dal and TMC clinched 1 seat each. In Kerala, results and trends are available for all 140 seats. Congress-led UDF is on course to trounce the ruling LDF. Congress has won 55 seats and is leading in 8 seats. Congress ally RUML has won 15 seats and leading in 7. Ruling CPM has won 22 seats and leading in 4. Ally CPI has won 7 seats and leading in 1 seat, while Kerala Congress has won 6 seats and is leading in 1 seat. Actor-turned-politician Vijay's led Tamaraga Vetri Karagam, or TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly elections by emerging as the single largest party. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangasamy's All India NR Congress. Out of a total of 30 seats, results of 20 seats are available. N. Rangasamy's AINRC has won 9 seats, while BJP has bagged 2 seats. AIADMK has got 1 seat, INC has got 1 seat, DMK got 2, TVK has got 2 seats. In assembly by-elections for 7 constituencies across 5 states, BJP has won a seat each in Gujarat, Tripura and Nagaland and is leading in 1 seat in Maharashtra. Congress has won 2 seats in Karnataka. We now go over live to our correspondent Anupam, who is present outside BJP headquarters in Delhi. Anupam, how is the atmosphere at the BJP office after its massive win in West Bengal and Assam and Puducherry assembly polls?
3: Yes, sir. There is a lot of happiness and enthusiasm over here in party headquarters in New Delhi. And after 6:30 p.m., the Prime Minister is about to arrive here to attend the victory celebration along with party workers and office bearers. Party President Nitin Naveen and Union Minister Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari and Jagat Prakash Nadda will also be available here, will be participating in the victory celebrations. Here people are busting crackers, applying colors to each other and distributing sweets to celebrate the victory in all three states and UTs. And they are also expressing happiness over their performance in Tamil Nadu and Kerala.
2: Right. Saira. Right. Thanks a lot, Anupam. In some other news, Iran has warned the U.S. against entering the Strait of Hormuz, stating that any attempt to enter the area will be met with force. In a statement, Iran's Khatam al-Anbiya central headquarters said that any foreign armed forces, especially U.S. troops, would be targeted if they approach the vital shipping route. And benchmark domestic equity indices ended around 0.5% higher today. Sensex gained 356 points to close at 77,269, while Nifty rose 122 points to settle at 24,119. Broader market on the National Stock Exchange also closed in positive zone. Mid-cap 100 climbed over 0.6% and small-cap 100 jumped 0.7%. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

0: Namaskar and a warm welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 code as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke Tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको करते हैं आमंत्रित। आप भी सम्मिलित होइए हमारे कार्यक्रम में और पूछिए हमसे सवाल, अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: तमाम श्रोताओं को नमस्कार, धन्यवाद।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनिजा डैंक।
0: थैंक यू मनोज। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस क्लाइंब अराउंड 0.5%, सेंसेक्स गेन्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस अबव 24,100, मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव जोन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।

शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.5% लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 24,100 के ऊपर हुआ बंद। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी दिखी तेजी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And friends, before we move on, here's a disclaimer for you all, and that is that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: हमारे साथ मुंबई और नोएडा दोनों से कुछ श्रोता जुड़े हुए हैं. हम आप दोनों का और साथ ही जो लाइन में लगे हुए हैं आप सबों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं नोएडा से जितेंद्र जी को. जितेंद्र जी, आपका स्वागत है.
2: हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. थैंक यू फॉर द टाइम. माय क्वेश्चन सिंपल, विच इज ये वीपीएफ और प्रोविडेंट फंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? And are they same in nature in terms of rate of interest for employee? And the last point is, if we save as part transferable to voluntary, is that going to be added in our pension, which is going to be deducted or maybe disbursed after we retire? Thank you.
3: I think you asked the difference between VPF and EPF, which is a voluntary provident fund, and the employees provident fund. Since there is a cap on that, I mean, how much money you can put into employees provident fund, and beyond that cap, whatsoever money you are contributing, like for example, for any employee, 12% contribution from him and 12% from the employer are deposited in the employer's provident fund. So if you want to put more money into the provident fund, that becomes a voluntary provident fund. Earlier, the situation was, I mean, there was no difference between EPF and the VPF. But if I can remember correctly, in a budget sometimes back, any deposit beyond 2.5 lakh was taxed separately. So the money will be there in your account, but in terms of the tax benefit or in terms of the government interest, it will have a different kind of treatment.
0: All right. And the second question wasn't very clear, so we are sorry, we won't be able to take
3: He was talking about more about EPF and VPF. Okay. So I think that's the answer which I can give you.
0: Yeah. All right. We are now joined by Murtaza from Mumbai. Ji, sawal puchhi. Hello.
4: डबल नाइन थ्री जीरो
0: हेलो,
1: आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सवाल पूछिए मुर्तजा जी.
4: मेरा सवाल है, दो सवाल है कि पहला तो गोल्ड बॉन्ड क्या क्या रेट मिलेगा और गोल्ड किस महीने सही कि गलत है?
3: देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की आप जो बात कर रहे हैं वो प्राइमरी मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है. उसके जो 2023-24 तक वो अवेलेबल था, जो सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक जारी किया करते थे. अब अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट हो जाएगा अलग. अभी के समय में क्या होता है कि जो आपके पास प्राइमरी मार्केट से लिया हुआ, यानी कि आपको सरकार ने सीधे दिया था, जब वहां पर आप 8 साल तक उसको होल्ड करना पड़ता है. 8 साल में जो भी उसमें एप्रिसिएशन, यानी कि जो भी उसमें बढ़ोतरी होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. 5 साल के बाद आपको जो है वो विड्रॉल की फैसिलिटी होती है, लेकिन वहां पर टैक्स लगता है. अब ये सिचुएशन है कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं और वहां पर जो भी आप उस पर फायदा कमाते हैं, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है.
1: हमारे साथ श्रोता हैं, लेकिन हम आपको अभी इंतजार करने को कहेंगे और आपको लिए चलेंगे पहले घरेलू शेयर बाजार. कुछ बातें हो जाएं अब अपने यहां के कारोबार की. घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% के आसपास लाभ के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़त के साथ 24,119 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी अच्छी खासी रही. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.6% से अधिक लाभ के

0: साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% के आसपास बढ़ोतरी हुई।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड अराउंड 0.5% हायर टुडे। द सेंसेक्स गेन 356 पॉइंट्स टू क्लोज एट 77,269, व्हाइल द निफ्टी रोज 122 पॉइंट्स टू सेटल एट 24,119। द ब्रॉडर मार्केट ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो

0: zone. The mid-cap 100 climbed over 0.6% and the small-cap 100 jumped 0.7%. Earlier, the market opened higher amid firm global cues and early assembly election trends. However, due to profit booking in the latter half, the indices trimmed some of the initial gains and ultimately ended the session on a moderately positive note.
1: हम सेंसेक्स पैक पर यदि ध्यान दें तो 30 में से 22 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी रही अदानी पोर्ट्स. इसके शेयर 5.3% फायदे के साथ बंद हुए. हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2.6% का मुनाफा हुआ. रिलायंस के शेयर 2.2% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए. उधर नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे अधिक भारतीय एयरटेल को हुआ, जिसके शेयर 3.1% से अधिक लुढ़क गए. कोटक बैंक के शेयर 2.8% और टीसीएस के शेयर 1.7% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए.
0: इन द सेक्टरल इंडेक्सेस एट द बीएससी, 20 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एज्ड अपवर्ड. अमंग द टॉप गेनर्स, रियल्टी एज वेल एज हॉस्पिटल्स क्लाइम्ड 2.5%, सर्विसेज एडेड ओवर 1.9% एंड हेल्थ केयर गेन्ड अराउंड 1.5%. इन द टॉप लूजर्स, आईटी शेड 0.8%, फोकस्ड आईटी लॉस्ट 0.7% एंड पीएसयू बैंक्स fell more than 0.3%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,607 companies advanced, 1,735 declined and 216 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर हुआ. 95.08 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.4 पर चल रहा था. श्रोताओं, आज हमारा फोन इन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप हमसे सवाल पूछा करते हैं. हम आपको अपना नंबर बताए देते हैं, 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर जी साथ हैं. शिशिर जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को?
2: इसके पहले छोटा सा स्पष्टीकरण, जो सवाल ईपीएफ और वीपीएफ का था, मेरे ख्याल से उनके दूसरे प्रश्न में पीपीएफ शब्द आया था, जितना आधा कुछ मैं सुन पाया था
1: जी.
2: और ये मुद्दा इसलिए भी उठता है कि ये 3 टर्म है आपके, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड. तो ईपीएफ और वीपीएफ तो आपका सेम है, फर्क बस इतना है कि ईपीएफ में आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं यानी कि जो नियोक्ता है वो भी बराबरी का योगदान करते हैं, जबकि वीपीएफ में कर्मचारी देता है लेकिन एम्प्लॉयर की ओर से नहीं मिलता है, नंबर एक. दूसरा, वीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको जो ईपीएफ पे ब्याज दर मिल रही है, जो कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8.25% के करीब में है, उतना ही आपको उस पर भी मिलेगा. तो ये एक सुरक्षित और बेहतरीन एक माध्यम माना जाता है. बस ध्यान रखिए कि अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो. लेकिन यहां पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसका मैंने जिक्र उसमें भी किया था, कि अगर आपकी ब्याज की रकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है. पीपीएफ 1,50,000 रुपये, ईपीएफ 1,50,000 रुपये. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है तो आपको टैक्स में छूट मिलती है. वीपीएफ में ऐसी कोई सीमा नहीं होती है. पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है, 7 साल के बाद आप उस पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं. तो अगर जितना मैंने उनके सवाल को समझा था और फिर मुझे लगा कि कुछ और चीजें जोड़ देनी चाहिए. मुझे लगता है कि दो और कॉलर आ गए हैं, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं.
0: दैट्स राइट. वी आर जॉइंड बाय सचिन फ्रॉम फरीदाबाद. जी सचिन जी, सवाल पूछिए अपना. जी
3: जी जी, नमस्कार सर. मेरा क्वेरी ये था, अभी ये ऑयल का जो प्राइसेस का एकदम से स्टीप अगेन इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ अगेन सम वॉर सिचुएशन इज अराइजिंग. तो अभी शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट का व्यू क्या रहेगा आपका, से फॉर अ पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स अगर मैं देखूं?
2: ओके सचिन जी, देखिए तेल की कीमत उछलने की बहुत खास वजह है. अगर आप देखें कि सप्ताहांत में जो प्रस्ताव दिया गया और उस पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया थी, वो अभी एक घबराहट का माहौल पैदा कर रही है. दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि ओपेक प्लस ने

0: तेल का उत्पादन बढ़ाने की बात तो कही है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो उत्पादन कैसे बाजार में पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे रास्ते जो हैं वो अभी दिक्कत में हैं। तो बाजार थोड़ा भरोसा नहीं कर पा रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपने देखा कि कच्चे तेल के भाव जो हैं आज बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं आंकड़े आप मुझे साफ कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि शेयर बाजार का हाल अगले 3 महीने में क्या होगा, देखिए यहां पर अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। आज कोई और एक प्रतिक्रिया आती है, फिर प्रस्ताव आता है, फिर प्रस्ताव खारिज करने की बात आती है, फिर होता है कि इसराइल जो है वो लेबनान पे हमला करने वाला है, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ और स्टेटमेंट आता है। तो ये बहुत ही मुश्किल भरा समय है बाजार की दिशा के बारे में कोई अनुमान लगाने का। मेरी अपनी राय यह है कि अगर आप शेयर बाजार को लेकर के आप पैसा लगाना चाहते हैं तो एक छोटी सी रकम किस्तों में आप लगाते रहें जब कभी भी बाजार में गिरावट हो, और एक अच्छा खासा रकम जो है आप हेजिंग के तौर पे डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं उसमें रखिए, वो आपके लिए सुरक्षित भी है और उसमें ब्याज की दर अभी जो महंगाई दर है उससे कहीं ज्यादा है।
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अनुभव, स्वागत है आपका अनुभव जी, सवाल पूछिए।
2: हाय, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल ये है कि ईटीएफ के बारे में मुझे पूछना था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो मैं अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और एक घर लेना चाहता हूं अपने लिए दिल्ली में। एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड टू बाय अ होम, तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। 50,000 पर मंथ मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि ईटीएफ ज्यादा बेटर रहेगा या म्यूचुअल फंड? बिकॉज म्यूचुअल फंड में एक फिक्स डेट रहता है, बट ईटीएफ में आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे क्या कुछ 5 ETF ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं जो 5 साल या अगले 10 सालों के लिए मैं जिसमें लगातार इन्वेस्ट कर सकूं?
0: देखिए, कार्यक्रम की जो नियम है वो हम किसी खास विशेष योजना या एक खास कंपनी का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ईटीएफ में लगाना, और आपने रकम का भी जिक्र किया है। मेरा मानना है कि आप ईपीएफ की जगह पर, ईटीएफ की जगह पर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की जगह पर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक छोटी सी रकम लगाइए और उसका एक हिस्सा आप रिकरिंग डिपॉजिट करना शुरू करिए। रिकरिंग डिपॉजिट का फायदा क्या होगा, जैसा आपने कहा आपको घर लेना है और आपके पास कुछ रकम हर महीने आपके पास आते हैं, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट में लगाइए जहां पर ब्याज दरें अभी ठीक ठाक हैं। कई जो, अगर मैं खासतौर पर डाकघर की बात करूं, वहां काफी अच्छा है, आप बैंक में भी रख सकते हैं। तो आप क्या करिए कि अगर आपके पास 100 रूपये हैं तो उसको 3 हिस्सों में बांट दीजिए, 33 33 33, यानी कि एक हिस्सा आप ईटीएफ में डालें, एक हिस्सा आप डाकघर का आरडी करें रिकरिंग डिपॉजिट, और एक हिस्सा जो हो बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट करें। इससे क्या होगा कि आपके पास 5 साल के बाद हेजिंग भी, यानी कि जो पैसा अगर बाजार में किसी भी तरीके से उसमें बट्टा लगता है तो उसकी एक सुरक्षा जो है वो बैंक और डाकघरों की योजनाओं के जरिए आप कर पाएंगे। और आप, उम्मीद हम करते हैं कि आपके लिए घर का सपना जो है वो पूरा होगा, और अगर हो जाता है तो हमें लड्डू खिलाना ना भूलिएगा।
3: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। या
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, माय क्वेश्चन इज अबाउट वैल्यूएशन व्हिच आर हाई, दैट इज व्हाई द एफआईआई हैव लेफ्ट, दैट इज वन रीजन, एंड द वैल्यूएशंस आर हाई एंड एफआईआईज आर लीविंग, बट डीआईआई इज पुटिंग द मनी, सो मार्केट इज बेसिकली गोइंग नोवेयर, सो वैल्यूएशंस आर रिमेनिंग एज इट इज। तो नेक्स्ट करेक्शन, द टाइम डायरेक्शन इज एक्सपेक्टेड, मींस थोड़ा टाइम लगेगा कि वैल्यूएशन फिर से नॉर्मलाइज होने में, क्योंकि एफआईआई जा रहे हैं, डीआईआई आ रहे हैं, वैल्यूएशन वही है एंड मार्केट इज नॉट गोइंग अप। सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस विल कंटिन्यू, एंड विल दिस ऑयल फॉल बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, विल ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडियन मार्केट? सो अगर मेरे पास अभी कोई पैसा है एक्स्ट्रा अदर देन एसआईटी, एसआईटी विल कंटिन्यू, बट एक्स्ट्रा पैसा है तो शुड आई पुट इट इन एफडी और एनी फिक्स्ड डेट इनकम, और इट अगेन स्प्रेड इट नेक्स्ट 6 to 8 months or 1 year? What is your view for this kind of people, retail investor like us, who have some extra money to put into the market, but we are not seeing any return in this current scenario, in next?
0: So you have already given some explanation to the market that valuations are still very high, but still I believe that there are some stocks where the valuations are very attractive, and then there you can go and purchase those stocks. But please remember, don't put money in one go. If you want to invest in the market, if you are adopting SIP, which you just mentioned that you are also having some SIP, use the same mechanism for the stock market also whenever there is a dip. Number one. Number two, you said that should I put

0: money into bank fixed deposit or debt instrument, my suggestion would be that put that money into the bank or the post office fixed deposit, because the interest rate there, especially in the post office, are very high, and that is going to give you some additional money. And hopefully when the market will recover, you will have some money, some additional money to put into the equity market also. So as of now, my advice would be that diversify your risk. That would be the better. And in terms of valuation, of course, some of the stocks are still very high, but some of the stocks, some of the blue chip stocks are very, very attractive, attractively available.
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रवि. रवि जी, स्वागत आपका. सवाल पूछिए.
2: थैंक यू सर. ये मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो 12 लाख रुपए साल का कमाऊंगा तो टैक्स भरना होगा कि उससे कम कमाऊंगा तब भी भरना होगा?
0: देखिए, स्टॉक मार्केट के जो नियम है वो ये कहते हैं कि आपका जो लाभ होता है, जिसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल गेन कहते हैं, उसमें दो तरीके के टैक्सेशन का सिस्टम है. एक जिसको हम लोग थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म की बात जो करते हैं, दूसरा जो है लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म का मतलब है एक साल यानी कि 365 दिन, और जब उससे ज्यादा हो जाता है तो आपका लॉन्ग टर्म बनता है. जहां तक सवाल शॉर्ट टर्म का है तो उसका आपका टैक्सेशन का रेट अलग होगा, और जहां तक रहा सवाल आपका लॉन्ग टर्म का, वहां पे आपका रेट जो है वो अलग होगा. हाँ, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि 1 लाख रुपए तक का जो मुनाफा होता है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता, और अगर आपने शेयर 2017 के पहले खरीदे हैं उस पर जो मुनाफा है उस पर आपको टैक्स नहीं देना है. अब जो आपने प्रश्न पूछा 12 लाख रुपया, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये पिछले साल के बजट घोषणा की वजह से ये बात उठी, जिसमें कहा गया था कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. लेकिन उसमें एक शर्त है कि अगर उसमें से किसी भी तरीके से आपको शेयर बाजार से फायदा होता है तो आपको इस 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा.
3: Right, that was quite detailed. Now we move on to where else. We are broadcasting from Delhi, so here's a caller from Delhi. Virendra is online. Virendra ji, ji sawal puchhiye apna.
4: Namaskar ji.
3: Namaskar. Ji sawal puchhiye.
4: Mera sawal thoda sa alag hatke hai market se.
1: Ji.
4: Ye hai ki matlab ek viksit desh aur avikshit desh ka jo mukhya aadhar kya hota hai, wahan ke resources hote hain ya padhe likhe log hote hain, matlab kis aadhar pe या किस वजह से विकसित बनता है, जो कम विकसित देश है विकसित कैसे बने, मतलब मेरा ये है मुख्य क्वेश्चन.
0: देखिए, क्या है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र तीनों अपने अपने तरीके से विकसित, विकासशील और जो हमारे अल्प विकसित देश हैं उसकी परिभाषा करते हैं. इसमें सब में जो मूल आधार होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय की बात होती है, कि प्रति व्यक्ति आय किस तरीके की है, और उसके अलावा आपकी अर्थव्यवस्था का पूरा आकार क्या है, लेकिन मूल आधार जो है वो प्रति व्यक्ति आय है. अब भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, लेकिन अभी भी वो डेवलप्ड नेशन नहीं बल्कि इमर्जिंग इकोनॉमी यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था कही जाती है. एक और बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो है एक सीमा दी जाती थी जिस आधार पर देशों का वर्गीकरण किया जाता था प्रति व्यक्ति आय के आधार पर. अब उसके जगह पर जो है मूल रूप से ये देखा जाता है कि विकसित देश कहाँ है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है, जहां पर अर्थव्यवस्था का आकार भी अच्छा है, और एक ऐसा भी देखा जाता है कि जहां पर प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है और वहां की अर्थव्यवस्था का आकार भी बहुत कम है, और उनकी निर्भरता जो है वो विभिन्न स्रोतों के ऊपर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन सब पे ज्यादा है. तो इस तरीके से परिभाषा जो है वो दी जाती है. तो मूल अगर मैं बता सकूं तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक बड़ा तथ्य होता है किसी भी देश के वर्गीकरण को सामने लाने में.
3: एंड आई थिंक शिशिर अर्लियर दे यूज्ड टू से अंडर डेवलप्ड नेशंस एंड द यूनाइटेड नेशंस थॉट इट वाज लिटिल टू डेरोगेटरी एंड सो दे टर्न इनटू डेवलपिंग नेशंस.
0: इवन द डेवलपिंग नेशंस दे आर यूजिंग द वर्ड वन कैटेगरी एज द इमर्जिंग इकोनॉमी, लाइक इंडिया इज कॉल्ड एज द इमर्जिंग इकोनॉमी. सो ऑफकोर्स वी आर अ डेवलपिंग नेशन बट वी आर कॉल्ड एज द इमर्जिंग इकोनॉमी, सो दैट गिव्स अनदर काइंड ऑफ स्टेचर यू कैन कॉल इट. दैट्स रियलिटी.
3: हूएवर सेड व्हाट्स इन अ नेम.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, श्रोताओं को लिए चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर खरीदारी तेज दिखी. दक्षिण कोरिया में आज सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की जोरदार खरीदारी की गई. इसके चलते कोस्पी सूचकांक 5.1% से अधिक लाभ के साथ अपने सर्वकालीन उच्च स्तर 6,937 पर बंद हुआ. श्रोताओं।

0: खरीदारी अच्छी होने से हांगकांग का हेंगसिंग भी आज 1.2% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% से थोड़ी सी अधिक बढ़ोतरी हमने देखी। उधर जापान और चीन के शेयर बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण आज बंद रहे। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां नरमी बनी हुई थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.9% और जर्मनी का डेक्स 0.3% के आसपास नुकसान के साथ चल रहे थे। उधर सार्वजनिक अवकाश के कारण लंदन शेयर बाजार में आज छुट्टी है, वहां कोई कारोबार नहीं हो रहा है।
1: Alright, Securities and Exchange Board of India Chairman Tuhin Kanta Pandey said, regulation must remain optimum and forward looking to balance market growth with risk management, while asserting that market integrity is non-negotiable. Addressing the Capital Markets Conference 2026 today, SEBI chairman flagged risks from emerging technologies, including artificial intelligence, saying SEBI will soon issue an advisory on vulnerabilities arising from AI-led tools. Pandey said global geopolitical tensions, including those in West Asia, highlight the need for deep, efficient and resilient financial markets capable of withstanding external shocks. He added that SEBI is adopting a proportionate and risk-based regulatory approach to ease capital raising, improve disclosures and support market development alongside investor protection.
0: In sab ka aashay yadi samajhna chahe aam shrotaon ke liye to kya tippani karna chahenge Tuhin Kanta ji ke इस वक्तव्य पर
2: एक छोटा सा स्पष्टीकरण। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैंने 1 लाख कहा था, वो 1.25 लाख हो गया है। हम अपने श्रोता को ये स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने खास तौर पे 12 लाख रुपए की बात की, तो वो मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं। मैं यहां पर आपको 20% की दर से शॉर्ट टर्म और 12% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा, लेकिन 1.25 लाख रुपए के ऊपर है लॉन्ग टर्म में तब, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप 1 रुपया भी कमाएंगे तो उस पर आपको देना होगा। देखिए, जहां तक रहा सवाल सेबी का मूल मकसद क्या है, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, तो ऐसे जितने भी कदम उठाए जाते हैं उसमें मकसद ये होता है कि बाजार एक पारदर्शी तरीके से चले और निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके।
0: हमारे साथ दिल्ली से हैं ललित। ललित जी, बहुत समय कम है, संक्षिप्त में सवाल पूछिए।
3: सर नमस्कार जी, मेरा सर एक छोटा सा सवाल ये है कि मान लीजिए हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर लेट सपोज एक 50,000 का लॉस हो गया जो हमने बेयर कर लिया, और सेम फाइनेंशियल ईयर में हमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, राइट
0: जी,
3: तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा कैपिटल गेन बनना चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग, उसमें से वो मेरा जो 50,000 का लॉस है वो लेसर होगा या नहीं होगा?
2: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए आप शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस है उसको आप जो है वो बैलेंस कर सकते हैं।
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहायता के उद्देश्य से एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। ये पहल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी में लाभ पहुंचाएगी। महत्वपूर्ण खनिज से विनिर्माण वित्त पोषण साझेदारी सुविधा नामक इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण जैसे उच्चतम मूल्य वाले उद्योगों के केंद्र में बदलना है। एडीबी के अनुसार ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखलाओं में परियोजना की तैयारी, नीतिगत सुधार और सार्वजनिक निवेश तथा निजी वित्त पोषण को बढ़ावा देगी।
1: And global crude oil prices reversed earlier losses and rose about 3% today amid concerns over prolonged disruption in the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.2% up at $111.63 per barrel, while West Texas Intermediate crude was also trading over 3.2% higher at $105.22 per barrel when reports last came in.
0: श्रोताओं, आइए आपको लिए चलें हाथ के हाथ सर्राफा बाजार।
1: जी, इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24-कैरेट गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड 0.9% डाउन एट 1,50,530 रुपीज पर 10 ग्राम्स, वाइल सिल्वर वॉज ट्रेडिंग 2.5% लोअर एट 2,44,970 रुपीज पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो।
0: एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी लगभग यही रुझान चल रहा है।

0: अंतरदिवसीय कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जून अनुबंध के लिए सोने का भाव लगभग 0.9% कम होकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा था। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी भी 3.6% से अधिक कम होकर 2,37,500 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यहां बहुत संक्षेप में बस एक पंक्ति में पूछना चाहूं तो सोने के में अभी निवेश का समय है या अब समय समाप्त?
1: बिल्कुल नहीं,
0: यानी अब श्रोताओं सोने में निवेश का समय यानी जो आकर्षण था वो खत्म हुआ। हमारे विशेषज्ञ आप सबों की ओर से हम शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: जी धन्यवाद।
2: And before we wind up, here's a look at the headlines again. Benchmark domestic indices climb around 0.5%. Sensex gains over 300 points. Nifty closes above 24,100. Major Asian stock markets end in positive zone. And global crude oil prices rise. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, my co-anchor Manoj Pathak, and our expert for the day, Shishir Sinha, signing off. So, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में वो सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इतिहास रच दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम अब तक मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि वाम दल 2 सीटों पर आगे हैं। अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट से सुवेंदु अधिकारी आगे हैं। उधर असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनमें से वो 90 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 11 सीटें जीत चुके हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक नया इतिहास रच चुकी है। टीवी के 108 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 61 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 75 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 22 सीटें जीत चुके हैं। AIADMK और उसके सहयोगी दल 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 18 सीटें जीत चुके हैं। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भाजपा 1 सीट पर आगे चल रही है। केरल में विधानसभा की 140 सीटों में से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 99 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीती हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 25 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं।

पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार की वापसी हुई है। एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी ने 9 सीटें जीते हैं और 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और नागालैंड में 4 सीट जीत ली हैं। महाराष्ट्र के बारामती में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। श्री मोदी कुछ ही देर में पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा एनडीए की जीत गठबंधन के विकास और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के संकल्प के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, उनके संघर्ष और उनकी शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, जनादेश 2026 में आप सभी का स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछले महीने हुए और आज सुबह से उनके मतों की गिनती जारी है और हम पल पल अपडेट आप तक ला रहे हैं। क्या रुझान है, क्या परिणाम है, इन पर अपडेट देते हुए हम विशेषज्ञों से चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा नाम है सोनू सूद और मेरे साथ मेरे इंग्लिश के को एंकर हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। वैभव, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में।
3: सोनू, वेलकम टू दिस स्पेशल एडिशन ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम दैट वी आर ब्रिंगिंग यू लाइव फ्रॉम आकाशवाणी एंड वी वेलकम इन दिस प्रोग्राम अ वेरी स्पेशल गेस्ट सर्जना शर्मा मैम। वेलकम टू दिस शो।
4: थैंक यू सो मच।
2: सो सर्जना जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में।
4: आभार सोनू जी।
2: जी, और इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर है, जबकि असम और पुदुचेरी में ये सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 204 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से ये 70 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 27 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम 2 सीटों पर आगे है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं और 1 पर आगे है। असम की बात करें तो असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से वे 90 सीटें पर जीत हासिल कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वह 11 सीटें जीत चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं।
3: टॉकिंग अबाउट केरलम, द कांग्रेस लेड द चार्ज विद 63 सीट्स व्हाइल द IUML एडेड 21 गिविंग द अलायंस अ डोमिनेंट एज अक्रॉस द स्टेट। अदर यूडीएफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग केरला कांग्रेस फैक्शंस एंड स्मॉलर एलाइज ऑल्सो चिप्ड इन अंडरलाइनिंग अ ब्रॉड बेस्ड मैंडेट फॉर द कोअलिशन। लेटेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट चीफ मिनिस्टर एंड CPIM लीडर Pinarayi Vijayan has defeated VP Abdul Rashid of Congress in Dharmadam constituency by more than 90.

0: 17,000 वोट्स।
1: सर्जना जी, क्या कहेंगी आप, ये जो विधानसभा चुनाव आए हैं, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, इन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर पश्चिम बंगाल में जो हमने देखा है जिस तरह का एक स्वीपिंग विक्ट्री लगता है कि बीजेपी को मिलने वाली है, उस तरफ अग्रसर है, 200 से अधिक सीटें, किस तरह से देखती हैं आप?
2: देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति, अगर आप इतिहास देखें, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 30 ईयर तक कांग्रेस रही, फिर 34 सीपीएम रही और फिर 15 साल टीएमसी रही, और एक बार जो सत्ता से गया वो लौट के नहीं आया, और जबकि टीएमसी ने तो बाकी अपनी दोनों पार्टियों की तुलना में बहुत कम समय, 15 ईयर आधा ही उन्होंने किया था
1: जी।
2: पर ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बीजेपी के लिए, और इतनी बड़ी है कि इसको वोटों से ज्यादा आइडियोलॉजी की हम एक जीत कहेंगे, एक आइडियोलॉजी की जीत है, और विरासत के साथ विकास, जो बीजेपी का एक नारा है विरासत के साथ विकास, उसको भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सब की बात कही, और रक्षा, महिला सुरक्षा की बात कही, इसके अलावा कहा कि हम आपको जो घुसपैठिए, जो सीमा सुरक्षा की जो बात कही, ये बहुत सारे मुद्दे थे जो कि बीजेपी के पक्ष में गए। और दूसरा, जो बीजेपी की चुनावी रणनीति, जो स्ट्रैटेजी थी, जमीन पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक जिसको बोलते हैं कि पन्ना प्रमुख तक से बात करने की जो रणनीति है बीजेपी की, और संस्कृति से जुड़ा, जो अभी आज देखिए, आज मोदी जी जब बीजेपी मुख्यालय में गए हैं तो पूरी तरह से भद्र लोक, जो बंगाल के भद्र लोक होते हैं, उस तरह की वेशभूषा पहन के, बंगाली स्टाइल की, बिल्कुल झक वाइट धोती, उसके ऊपर बंगाली स्टाइल का कुर्ता और उसके ऊपर अंगवस्त्रम पहनकर गए।
1: तो विरासत और विकास दोनों का जो एक समागम है उसका एक ये प्रतीक है।
0: सर्जना जी, how would you see this election victory for the BJP, which has fought different opposition parties for decades now in Bengal, starting from their ideologue, their mentor Shyama Prasad Mukherjee ji? Now they have been able to form, or they are being seen as someone who will form a government in Bengal. How do you see these results, and not just for the national issues that were raised up, just mentioned by you, by the BJP, but also the issues, the smaller issues that were picked up by TMC, saying that this is a fight between outsiders and insiders? How do you see that result?
2: See, I see this result. You have mentioned about Shyama Prasad Mukherjee.
0: Yes, ma'am.
2: I think ancestors, we have ancestors and we owe many things to them.
0: Absolutely.
2: I think Modi ji, whatever BJP owed to Shyama Prasad Mukherjee, today they have paid the Pitra Ran to Shyama Prasad Mukherjee.
1: That back. Yes. So in 1952, ab hum chalte hain BJP headquarters Delhi, jahan se
3: भारत माता की, जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए, किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की, आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा
4: हूं।
3: आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के

सफलता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जय पराजय, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है।

ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है।

आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोड़ोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है।

साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होएगे छे, साथियों इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं।
उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में

बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 2500 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है, हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है।

बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी, तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे

संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम निकले हैं साथियों। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था, और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है, और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में
कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन तीन सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई।

0: ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशंस था उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा।
1: अभी हम दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुन रहे थे। सर्जना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और मुझे और वैभव श्रीवास्तव को अब इजाजत दीजिए। 9:15 बजे हम फिर जनादेश 2026 लेकर आपके बीच होंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। केरलम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 99 सीटों के साथ सबसे आगे है और सत्ता में वापसी के लिए उसने निर्णायक बढ़त बना ली है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने बहुत बड़ा उलटफेर किया है। पुदुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के एन रंगासामी के नेतृत्व में फिर एनडीए सरकार बनने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विशाल बहुमत के साथ सरकार बनाकर इतिहास रचने जा रही है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो रही है। 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 205 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 125 सीट जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, इनमें से 50 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है, 1 सीट पर वो आगे है। अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है और 1 पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकार से आगे चल रही हैं। नंदीग्राम सीट में शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से वो 100 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 16 सीटें जीत चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। असम में जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हरा दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके 108 सीटों पर आगे है और इनमें से 66 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 29 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और इनमें से 29 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 86 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भाजपा को 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 27 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी ने 10 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर वो आगे चल रही है।

0: इस बीच पश्चिम बंगाल में बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए एक नए सवेरे का प्रतीक है।
1: आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: केरल के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है राग पर आधारित प्रोग्राम मधुरिमा का। और आज जिस राग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में वो राग है राग दरबारी। और इस प्रोग्राम के साथ मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, राग दरबारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गंभीर और शाही राग माना जाता है जो असावरी थाट से उत्पन्न होता है। इसे तानसेन द्वारा रचित एक राग माना जाता है जो मध्य रात्रि में गाया जाता है, जिसमें ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं। और आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये एक और गीत।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती।

समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ, राग दरबारी का जिक्र हो रहा है आज इस प्रोग्राम में। और अगर हम राग दरबारी के आरोह की बात करते हैं तो सारे ग म प नीसा और अवरोह सा नी ध प म ग रे सा है, और पकड़ नी सा रे सा ध नी, नी सा रे ध ध नी रे सा रे ग म रे सा है। और इसका जो गाने का समय है रात्रि का तीसरा पहर है। और आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित इस प्रोग्राम का ये अंतिम गीत। और मैं विमलेश फिलहाल अभी इस गीत के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को हराया। यानिक सिन्नर ने मैड्रिड ओपन 2026 का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। और तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण कल से शंघाई में शुरू। 16 सदस्यीय भारतीय दल रखेगा भारतीय चुनौती।

0: मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 141 रन बना लिए थे। मेजबान मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए गिरीश, तो मुंबई 9वें नंबर पर है और लखनऊ 10वें नंबर पर है, तो ऐसा माना जाए कि अनऑफिशियली पहला नॉकआउट मैच चल रहा है आईपीएल का।
1: बिल्कुल, एक वर्चुअल आप नॉकआउट ही कह सकते हैं कि यहां से अब जो रेस है प्लेऑफ्स में बनाने की वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आज का जो मैच का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि रोहित शर्मा इस मैच में खेल रहे हैं, लेकिन कप्तानी हार्दिक पांड्या एमआई के लिए नहीं कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जब टॉस पे आए तो उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा की वापसी हुई है और पिछले कुछ मैच से वो बाहर थे, और हार्दिक पांड्या के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो इस लिहाज से एक ये जो बदलाव है वो टीम में है। फिर वहां पर ट्रेंट बोल्ट को भी आज बाहर रखा गया, कॉर्बिन बोस को लाए, और लखनऊ की टीम ने भी 3 बदलाव किए हैं शक्ति, तो इस लिहाज से देखते हुए अब इनको लग रहा है। और मुंबई एक ऐसी टीम है जो काफी खिलाड़ियों को आजमा चुकी है इस आईपीएल में, इस सीजन में आप देखें तो अब सब कुछ वो करना चाह रही है कि किसी तरह से जीवित रखे अपने आप को, लेकिन अभी तक जो है उनको वो जीवनदान मिल नहीं रहा है, लगातार मैच हार रहे। अब तक आप देखें अगर पॉइंट्स टेबल की जो बात करें तो आप 9 मैच खेले, 2 जीत 7 हार, तो एनआरआर भी इनका काफी नेगेटिव है। और उधर लखनऊ की बात करें तो उनका भी जो है प्रदर्शन इतना बुरा रहा है, तो इस लिहाज से अब उनको बने रहने के लिए अभी भी अनगणित, मैं ये नहीं कह सकते कि बाहर है। अगर जीतेंगे तो इनके अब सारे मैचेस वो जीते और फिर दूसरी टीम भी हारे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है।
0: जी बिल्कुल, आपको दूसरी टीमों के परिणामों पे भी काफी हद तक निर्भर होना पड़ेगा यहां से। आपने पॉइंट टेबल की बात की, इसी कड़ी में कल एक और मुकाबला हुआ जहां गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 163 रन बनाए। पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही और 47 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद मार्कस स्टोनिश और सूर्यांश शेडगे ने 6 विकेट के लिए 44 गेंद में 79 रन जुटाए। सूर्यांश ने 29 गेंद में 57 और स्टोनिश ने 31 गेंद में 40 रन बनाए। इस साझेदारी की मदद से टीम 163 के स्कोर तक पहुंच सकी। गुजरात की ओर से सेजसन होल्डर ने 4 विकेट लिए 100

0: 64 रन के लक्ष्य को गुजरात टाइटंस ने अंतिम ओवर में अपने नाम कर लिया। साई सुदर्शन की 57 रन और वॉशिंगटन सुंदर की 40 रन की नाबाद पारी ने गुजरात की जीत सुनिश्चित कर दी। विपक्षी खेमे से अर्शदीप सिंह और विजय कुमार वैशाख ने दो दो विकेट लिए। जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: गिरीश, अगर कल के मुकाबले की बात की जाए, हमें ऐसा लग रहा था एक वक्त पे जब शुरुआत में पंजाब की पारी लड़खड़ाई और 47 रन पे 5 विकेट थे, वहां से पंजाब ने कमबैक किया, लेकिन गुजरात के पास एक अच्छा मौका था कि वो एक बेहतर रन रेट के साथ ऊपर आती और टॉप फोर में अपनी दावेदारी मजबूत करती। जीत तो हाथ लगी लेकिन वो रन रेट वाला सपना अधूरा रह गया और अभी भी पांचवें नंबर पर है गुजरात।
2: बिल्कुल, वो तो गनीमत थी कि सेगड़े की जो पारी थी वो उसको पंजाब उबरा, लेकिन उसके बावजूद भी जब लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ऑलमोस्ट आखिरी ओवर और आखिरी गेंद, मतलब सेकंड लास्ट गेंद पे वहां जीते, तो उनका जो गुजरात अगर आप देखें तो अभी 13 पॉइंट पंजाब के पास है, लेकिन जो चार टीम है 12 पॉइंट पे, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, सनराइजर्स हैदराबाद है, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स। लेकिन यहां पर जो एक गौर करने की बात यह है कि गुजरात टाइटन्स जो है वो नेगेटिव एनआरआर पे है, नेगेटिव रन रेट पे है, और अब यहां पर उनको स्थिति सुधारनी पड़ेगी। अब ये जो मैचेस जो आखिरी ओवर तक वो ले जा रहे हैं, छोटे टारगेट को लक्ष्य का पीछा करते हुए इतने आखिरी ओवर तक जाएंगे तो उनका रन रेट जो है और भी खराब होगा। अब उनका जो मैच बचेगा वो जयपुर में राजस्थान रॉयल्स से है, जो चार मैचेस है, अहमदाबाद में खेलेंगे अपने घर पे एसआरएच के खिलाफ, और फिर कोलकाता जाएंगे, वहां पर नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेंगे, और फिर अहमदाबाद वापस आके सीएसके के खिलाफ खेलेंगे। तो यहां पर आप देखें तो आरआर जो है वो अभी बेशक उन्होंने एक मैच हारा जीता पिछला, लेकिन वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो वहां पर अगर उनको कोई टीम मिलती है तो वो केकेआर, लेकिन केकेआर भी जीत रही है अभी एक दो मैचेस, और फिर सीएसके वो भी पटरी पे आ रही है, तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और रही बात पंजाब की, पंजाब जो है एक टीम जो जीतते आ रही थी लगातार, और दो मैचेस उन्होंने बैक टू बैक गंवा दिए जिस वजह से वो 13 पे ही रुके, और उनके जो मैचेस हैं वो एसआरएच, फिर डीसी, फिर एमआई, आरसीबी और एलएसजी के खिलाफ होंगे। तो इस लिहाज से कोई एक टीम ये देखे कितना एक खुला हुआ आईपीएल इस सीजन का है, जहां पर अभी भी 6 टीम 7 टीम जो है वो प्लेऑफ्स में बनी हुई है। तो अब हर एक मैच इन सब के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है, चाहे कोई भी टीम। हमें लग रहा था कि पंजाब किंग्स जो है, हालांकि उनको दो ही मैच जीतना है, दो मैच अपने 5 में से 2 मैच जीते और वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन फर्स्ट में होते हैं या सेकंड में होते हैं वो भी एक निर्णायक बात होती है। सिर्फ प्लेऑफ्स में ना पहुंच के सिर्फ उनको एक जीवनदान भी होता है कि अगर आपने पहला एलिमिनेटर हारा तो फिर आपको एक मौका भी मिलता है। तो यहां पर अब हर एक टीम को रणनीति बनानी पड़ेगी कि वो लाइटली ना ले और अपने मैचेस जो है इजिली जीत के फिर अपनी पोजिशन को सुदृढ़ करें।
1: जी बिल्कुल, जो कि पंजाब टेबल में देखा जाए तो टॉप पर है, लेकिन पिछले दो मैच में हार मिली है और उस लय में भी नजर नहीं आ रही टीम, शायद जहां पे प्रभ सिमरन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लगातार और मिडल ऑर्डर में भी मजबूती थी, शायद थोड़ी सी गाड़ी पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है क्या पंजाब की?
2: हाँ, मतलब पंजाब की गाड़ी ऐसे इस लिहाज से तो नहीं देख रहे, लेकिन उनके जो काफी जो बैटिंग लाइनअप देखें और जो कप्तानी देखें श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में, तो वहां सब तो काफी कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो रन जो उनके बॉलर्स जो है वो कंसीड करते हैं वहां पर रोकना होगा, अर्शदीप को अपनी मेन भूमिका में रखना होगा, तो ये सब चीजें जो चुनौती जो है अब टीम के पास कि वो कैसे अब अपनी प्लेइंग 11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर को कैसे वो यूज करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा।
1: जी बिल्कुल, पंजाब की नजरें भी होंगी कि उस लय को और उस फॉर्म को मेंटेन रखा जाए ताकि जब प्लेऑफ में पहुंचे तो फिर कम से कम पहले या दूसरे स्थान के साथ टीम आगे बढ़े। विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यानिक सिन्नर ने मैड्रिड ओपन 2026 का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया। यानिक ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 6-1, 6-2 से हराया। एक रिपोर्ट।
3: यानिक सिन्नर के लिए मैड्रिड ओपन 2026 की राह अपेक्षाकृत आसान नजर आई, क्योंकि 58 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में सिन्नर ने एक तरफा जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही सिन्नर ने लगातार 5वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 1990 में इस सीरीज की शुरुआत के बाद वो ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये खिताब उनके करियर का 9वां मास्टर्स 1000 खिताब भी है। सिन्नर इस सीजन के शुरुआती चारों मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने बिना कोई सेट गंवाए सनशाइन डबल पूरा किया और फिर मोंटे कार्लो में कार्लोस अल्कराज को हराकर खिताब जीता। अब सिनर करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने से सिर्फ एक खिताब दूर है। ये उपलब्धि अब तक केवल नोवाक जोकोविच ने ही हासिल की है। सिनर के पास अपने घरेलू टूर्नामेंट रो मास्टर्स में ये मकाम हासिल करने का एक

0: बड़ा ही अच्छा मौका होगा। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस 23-24 वर्षीय इटली के खिलाड़ी ने पिछले 3 सालों में जिस प्रकार कोर्ट पर अपने प्रदर्शन को, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को इन्हेंस भी किया है और प्रदर्शित किया है, कितनी संभावनाएं नजर आती हैं जो हम लोग औरा की बात करते थे आज से 5-6 साल पहले, राफेल नडाल, रोजर फेडर जैसे खिलाड़ियों में, क्या उस लाइन में है यानिक?
2: बिल्कुल, मतलब आपने

0: रिकॉर्ड जो एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट होते हैं 9 में से जो पिछला अभी इस साल तो 4 लगातार जीतते हुए आए, इंडियन वेल्स और मियामी ओपन, मोंटे कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन, और उससे पहले पेरिस मास्टर्स को उन्होंने जीता। अब जो बचे हुए वो चार जो अपने उनका सबसे बड़ी जो प्रतियोगिता जो पांचवी इस साल की होगी वो इटालियन ओपन घर पे ही है, और उसके फिर कैनेडा ओपन, सिंसिनाटी और संघाई मास्टर्स में वो भाग लेंगे। लेकिन कितने मजबूत है मनोवैज्ञानिक तौर पे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था तो ये उनके कैरियर की सबसे बड़ी जीत थी, और उन्होंने फाइनल में दानिल मेदवेदेव को दो सेट में पिछड़ने के बाद वहां पर हरा के वो ग्रैंड स्लैम जीता। तो क्या है उनकी खासियत जो खेल में सुधार और मानसिक मजबूती है उनकी, वो सर्विस और पावर, सिनर की पहली सर्विस अब से पहले कहीं ज्यादा घातक हो गई है, उनके ग्राउंड स्ट्रोक में इतनी पावर है कि जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है वो बेबस नहीं जाते। आप अगर देखें तो जेवरेव भी जो है फाइनल में वहां पर इस भुक्तभोगी थे,
1: बिल्कुल सरेंडर करते हुए नजर आए,
0: और फिर फिटनेस, मतलब पहले सीनर ने लंबी थकान या चोटों की वजह से वो समस्या होती थी, लेकिन अब वो उस पर उन्होंने काम किया, फिटनेस पे काम किया। तो अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो अगर जोंकोविच को देख लें, आप किसी अन्य खिलाड़ी को देख लें जो टॉप शीर्ष पे अपना लगातार वर्चस्व बना के रखते हैं, तो उनको इन समस्या से दो चार तो होना ही पड़ेगा। अपनी फिटनेस वो कैसे रखते हैं, कैसे बरकरार रखते हैं, वो एक खिलाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है।
1: जी बिल्कुल, और युवा खिलाड़ी हैं और अपनी पूरी जान झोंकते हैं। आपने मनोविज्ञान की भी बात की, इसी टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में एक वक्त आया था जहां एक सेट हारे और फिर कमबैक किया, जीते, और एक शानदार सेमीफाइनल में जीत और उससे ही शानदार फाइनल में जीत। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में 16 सदस्यीय भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। ये प्रतियोगिता कल से 10 मई तक शंघाई में खेली जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: 5 दिन तक चलने वाली है प्रतियोगिता। 5 मई को कंपाउंड तीरंदाजी क्वालिफाइंग राउंड से शुरू होगी। दूसरे चरण में 44 देशों के 300 से अधिक तीरंदाज भाग लेंगे, क्योंकि अधिकांश एशियाई देशों की टीमें इस साल के अंत में होने वाले एशियाई खेलों पर नजर रखते हुए मजबूत टीमें उतार रही हैं। सीजन के पहले टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन मिला जुला रहा, केवल महिला कंपाउंड टीम पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रही। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो शंघाई में महिला रिकर्व में दीपिका कुमारी, अंकिता भाकत, सिमरनजीत कौर और कुमकुम अनिल मोहत, तथा पुरुष रिकर्व में धीरज बोम्बा देवरा, अतानु दास, तरुणदीप राय और यशदीप संजय भोगे चुनौती रखेंगे, जबकि महिला कंपाउंड में ज्योति सुरेखा चेन्नम, अदिति स्वामी, प्रगति और मधुरा धामन गांवकर, तथा पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा, ओजस देवतले, कुशल दलाल और साहिल जाधव भारतीय दल का हिस्सा है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो उम्मीदों के शिखर पे सवार भारतीय तीरंदाजी दल अब शंघाई में अपनी चुनौती पेश करेगा। बात निशानेबाजी की कर लेते हैं, जहां 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में आज राजस्थान की अंजलि शेखावत ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंजलि ने 240.5 का स्कोर बना करके शीर्ष स्थान हासिल किया।
0: बिल्कुल, ये ग्रास रूट टूर्नामेंट है, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग, और एनआरआई के पूर्व प्रेसिडेंट रहे, उनके नाम पे ये इवेंट है, और इसी इवेंट से फिर आगे आपको जो है ओलंपिक क्वालिफिकेशन, फिर अंक आपको मिलते हैं कि नेशनल्स खेलने के लिए। और अंजलि शेखावत राजस्थान से आती है, खेलो इंडिया में प्रतिभागी रह चुकी है, और इस खेल में ईशा सिंह जैसी जो आपकी निशानेबाज है वहां उनकी मौजूदगी होने से आप एक ओलंपिक प्रतियोगी के सामने अगर हैं आप, तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। और इस तरह के टूर्नामेंट ग्रास रूट है जो आगे मेडल्स जो अभी हमने 10 मीटर का देखा वो फिर नेशनल्स और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मेडल्स में वो तब्दील करते हैं।
1: जी बिल्कुल, और अगर 10 मीटर एयर पिस्टल की बात की जाए तो भारत के लिए तो हमेशा एक फेवरेट इवेंट रहा है, एक फेवरेट ट्रैक रहा है भारत के लिए ये इवेंट। और फुटबॉल की बात करते हैं, भारत की अंडर 17 फुटबॉल महिला टीम कल एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप में जापान का सामना करेगी। भारत को ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में टीम इस हार से उबर करके टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी। भारत के लिए यहां से हालांकि देखा जाए तो गिरीश हर एक गोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सामने जापान है, लेबनान को 13-0 से हरा करके आई है वो टीम यहां पर, तो चुनौती होगी।
0: बिल्कुल, काफी चुनौती होगी, एशियन पावर हाउस है जापान, 13-0 आपने कहा, लेकिन इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया से खेला था, वहां पर हम 2-0 से हार गए थे, उसमें एक अपना ओन गोल भी था। लेकिन अगर भारतीय जो कोच है पावला कॉन्टी, उन्होंने बताया कि अब जो है वो काउंटर अटैक और उस पर वो काफी ध्यान दे रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जापान बेशक एक पावर हाउस है, लेकिन अंडर 17 की ये लड़कियां जिन

0: ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनको एक अनुभव अच्छा मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, एक अच्छे अनुभव की उम्मीद होगी इन खिलाड़ियों को, और उम्मीद ये भी होगी कि उस हार से उबर करके एक बेहतर जीत के साथ टीम आगे बढ़े। आईएसएल फुटबॉल लीग में ओडिशा एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ओडिशा ने बेंगलोर पर 1-0 की बढ़त बनाए रखी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। गिरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस

0: तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेन जी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला, और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा

0: हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
1: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
2: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
2: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रूपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। यूपीआई से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कहें कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं प्रफुल्ल केटकर जी और मिस्टर केवी प्रसाद, आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो विधानसभा चुनाव अप्रैल में हुए 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में, उनके रिजल्ट्स आए हैं। वेस्ट बंगाल आ रहे हैं रादर रिजल्ट्स, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रिजल्ट का जो प्रोसेस है अभी भी काउंटिंग चल रही है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुदुचेरी। अगर हम शुरुआत वेस्ट बंगाल से करें, जिस पर बहुत सबकी नजरें थी और बहुत स्पर्धा थी इस चुनाव में, अगर मिस्टर केवी प्रसाद आपके पास आए तो क्या लगता है आपको, जिस तरह का जनमत आया है बीजेपी के फेवर में, 200 से अधिक सीटें, 294 सीट्स के जो असेंबली है उसमें इतनी बड़ी जो बहुमत आई है, किन उम्मीदों और किस विश्वास पर ये जनमत उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, और भारतीय राजनीति के लिए आप इसको कितना बड़ा मील का पत्थर मानते हैं?
1: देखिए, एक तो 15 साल के जो शासन था ममता बनर्जी का, उसके खिलाफ, उनके विरुद्ध काफी सारे समस्याएं थी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात कही थी, जो कि मूल मुद्दा जिसका आप पूछें, कि परिवर्तन लाएंगे हम पूरे प्रक्रिया में, उसमें मतलब बंगाल में, चाहे आर्थिक तौर से, चाहे वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम सारे मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए थे। और जनता, और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ 14 दिन का कैंपेन है, कि अगर आप देखें, जब से लोकसभा खत्म हुआ उसके बाद से लगातार ये प्रयास चलता रहा। और विपक्ष के जो नेता है सुवेंद्र अधिकारी, वो भी सदन में, और वहां पर एक माहौल उन्होंने इस तरह का तैयार किया, और तो उस ये सब जुड़ता चला गया। और बंगाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक जमाने में वामपंथियों का गढ़ माना जाता था। 34 साल तक उन्होंने लगातार, 77 के बाद जब तक ममता ने उनको हराया नहीं तो वो जीतते रहे। तो ऐसे में उस किला को पहले ममता ने गिराया, अब ममता का किला को बीजेपी ने हिलाया।
0: जी बिल्कुल। 293 सीटें हैं यहां पे और भारतीय जनता पार्टी को 168 सीटों पर जीत प्राप्त हो चुकी है और 40 सीटों पर वह आगे चल रही है। प्रदेश है पश्चिम बंगाल, उसके भविष्य के लिए आप क्या, अब एक आशा है आपको, किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो परिवर्तन की बात की, वो परिवर्तन काफी सारी चीजें हैं, और उसमें उनको लग रहा था कि भाई जैसे कहें कि सबसे बड़ा सुशासन, और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार बनाई दी है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है, और शायद वो एक बंगाल के नागरिकों ने, जिन्होंने चाहा कि सरकार बदले, तो उसका परिणाम हमारे सामने है।
2: मिस्टर केतकर, माय क्वेश्चन वुड बी टू यू, द प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट पेइंग अ डेट टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द मेंटोर ऑफ the Bharatiya Janata Party. He talked about the public's trust in the performance politics. He talked about Ek Bharat Shreshth Bharat. He talked about the defeat of fear, polarization and appeasement. And we also saw a historic number of deployed personnel in the West Bengal elections. Why was this required, or was this change on the cards?
3: See, if we see the history of Bengal politics from 1937, pre-independence period, when Muslim League came to power, every election has been marred with violence. Every election, without any exception.
2: True.
3: During Communist Party's rule, that got the state patronage, like Sohrawardi did during Muslim League government. And then eventually, you know, the politicization of state machinery started. So, Prasad ji said, you know, from Lok Sabha elections, I see the preparation from last Vidhan Sabha elections.
2: True that.
3: The way BJP workers, you know, faced intimidation, and somehow BJP last time could not, you know, give that kind of confidence to the common voters that they can stand by them. The kind of atrocities pre and post poll violence has seen. Last time 34 political murders took place during Vidhan Sabha elections. Around 40 women were murdered just for having a BJP flag or their husbands working for BJP. Now that's why Prime Minister is saying that this was not just a free and fair election, this was also fearless election for voters. Now you know, BJP stands for an ideology of cultural nationalism based on the Hindu civilization, and BJP never hides that. Bengal has been the you know, origin,

0: सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी।
1: KV Prasad sir, the Honourable Prime Minister talking about development and the trust on tomorrow's hopes that the people have and how they have entrusted those hopes in the form of votes to the BJP. How do you see this change in power for the people of Bengal, especially for the constituencies which were just at the border, which were facing issues, as Praful Ketkarji rightly said, that the fall of this government, the TMC government, came or started around 1.5 years back when the government of Sheikh Hasina fell, and there were so many repercussions on one particular community, but there was no comment or no action taken by the TMC, or not even a comment from them. How do you see that changing now? And with this, we will also like to tell everyone that Suvendu Adhikari has clearly talked about the fact that not just Hindu majority areas, but every other areas too, have clearly voted for the BJP for this change. Sir, your views.
2: Well, the biggest thing I would see is for the Bharatiya Janata Party that it has to hit the ground running without delay, number one, because the task, the mandate that people have given them shows the kind of hope they carry in this new government. They've elected a government on the set of promises the government has, the Bharatiya Janata Party, from right from the top leadership, led by the Prime Minister himself during his entire campaign and everybody else. That's one thing. And secondly, what the Prime Minister has articulated, those are the factors on which the BJP will be there. Infiltration, of course, has been big in the campaign, and these are some of the factors. And improving relationship with the neighbor state is now, of course, an aspect that got into the domestic politics too. So we'll have to see how it takes the course through. But I said, they'll have to hit the ground running without delay.
3: Praful ji, एक और स्टेट जो तमिलनाडु में आज जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं। डीएमके जो वहां पर सत्ता में थी उनको नहीं मिली है मेजोरिटी, और एआईएडीएमके जो दूसरी ड्रेविडियन पार्टी थी जो डीएमके से पहले सत्ता में थी उनको भी नहीं मिली है। जो नई पार्टी है टीवी के एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की, उनको जो मिडवे मार्क है उससे केवल 10 सीटें पीछे है वो। सो पहले तो बताएं कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है, एक नई पार्टी जो 2 साल पहले ही बनी थी उसमें क्या देखा है वोटर्स ने, और कैसे देखते हैं पोस्ट पोल क्या अलायंस होगा?
4: देखिए सोनू जी, मैं थोड़ा सा उसको और उल्टे तरीके से देखता हूं। डीएमके और एआईडीएमके मिलकर जितनी सीटें है उतनी टीवीके को है।
1: ट्रू दैट।
4: वन, सेकेंडली फर्स्ट टाइम एवर, मतलब अभी तक जो भी पार्टी वहां पे जीतती थी वो अपने दम पर 30-32% ही वोट लाती थी
3: जी।
4: बाकी अलाइज के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना लेती थी। वो नंबर्स तमिलनाडु में जो दिखते हैं ना, हम जनरली दो बड़ी द्रविडियन पार्टीज में देखते हैं, लेकिन यदि हम पीएमके, एमडीएमके, ये छोटे छोटे दल वहां के देखे तो उनका हरेक का अपना 2-5% का वोट शेयर है, दे एड अप। दैट हैजंट हैपेंड दिस टाइम। टीवी के पक्ष में 35% वोट शेयर है द पार्टी कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
3: बिल्कुल।
4: तो ये जो है ये क्लियरली दिखाता है कि तमिलनाडु का वोटर जयललिता और करुणानिधि जी के निधन के बाद ऑप्शंस देख रहा था। उन्होंने एक बार पनाईसामी के नेतृत्व में एआईडीएमके को ट्राई किया, स्टालिन को ट्राई किया, लेकिन दोनों द्रविडियन पार्टीज वो एस्पिरेशंस और वो लीडरशिप नहीं दिखा पाए। करप्शन, पैसे का पूरे चुनावी प्रक्रिया में उपयोग, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज तमिलनाडु की डिवाइडेड, नोबडी अंडरस्टैंड्स दिस। यू नो वर्चुअली उदयनिधि स्टालिन इज कंट्रोलिंग द फिल्म इंडस्ट्री, और वो फिल्म इंडस्ट्री का रिफ्ट है विजय कमिंग फ्रॉम द सेम फील्ड. He is giving a new hope for Tamil film industry. इसीलिए हम देखते हैं कि मलेशिया से, सिंगापुर से तमिल फिल्म केवल तमिलनाडु में नहीं चलती है, वो बाहर जो तमिल डायस्पोरा बैठा हुआ है उसके भी एस्पिरेशन उन्होंने एड्रेस किए. तो ये सारे फैक्टर मिलाकर एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर बंगाल की चर्चा होती है, तमिलनाडु में भी एटलीस्ट 3 to 4 मिनिस्टर करप्शन चार्जेस में जेल में गए हैं. तो ये सारे फैक्टर एडअप होने के कारण लगभग 17% यूथ आज तमिलनाडु में है. दे वेर लुकिंग फॉर यू नो लुकिंग एट विजय एज एज अ होप. वो दिखने के बाद बाकी रैलिंग हुआ है, ऐसा मुझे अभी इनसाइड में लगा.
3: सो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी.
4: डीएमके के खिलाफ सेंटीमेंट था, वो किसके पक्ष में जाता है ये समझ में नहीं आ रहा था. विजय हैज डेफिनेटली
1: एब्सोल्युटली. प्रफुल्ल जैन, एज यू वर सेइंग दैट द एरोगेंस ऑफ द इनकम्बेंट पार्टी और व्हिच हैज नाउ बिकम द पार्टी व्हिच वाज रूलिंग तमिलनाडु हैज शोन the people that yes they were looking for a change and now they have exercised their right that yes we need that change in the form of a new face. Let's go over to our Chennai correspondent Sushil Tiwari. Sushil ji, welcome to the show. What is the sentiment on the ground? How happy, excited, elated are the people with this win of TVK and what are their hopes and aspirations? I believe
3: सुशील जी आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी शायद प्रॉब्लम है. आपके पास आते हैं मिस्टर प्रसाद, आप कैसे देखते हैं तमिलनाडु में जो ये रिजल्ट आया है? हालांकि अब एग्जिट पोल से कुछ आभास होने लगा था और उसके अकॉर्डिंग ही लगता है रिजल्ट आया है, लेकिन इसका कारण क्या है आपके आप पर्सपेक्टिव हमें?
2: देखिए, मैं एक चीज जो प्रफुल्ल जी ने कहा उसको आगे बढ़ाता हूं. आप अगर देखिए 2016 का जो चुनाव हुआ तमिलनाडु में, वो पहली मर्तबा हुआ कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री कट गई थी, कोई नुमाइंदगी नहीं थी क्योंकि स्टालिन इंडस्ट्री से नहीं आए थे और जो उम्मीद थी रजनीकांत चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव से ठीक पहले पीछे हट गए थे. उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा. और उसके बाद
3: और कमल हासन की पार्टी
2: थी लेकिन उसका कोई खास हुआ नहीं. और भी थे नेमम, और भी दो चार लोग हैं नाइमम जो वहां पे वो थे लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं था. कैप्टन विजयकांत के जाने के बाद डीएमडीके का भी. तो जब इस बारी ये हमारे टीवीके के विजय मैदान में आए और दो साल पहले तो उन्होंने पार्टी बनाई लेकिन इससे पहले उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी. अगर आप देखें उनकी जो फैन क्लब्स है उस फैन क्लब को उन्होंने एक्टिवेट किया सोशल वर्क के लिए. तो एक तरह से पूरा अपना पैंट बनाई लोगों के बीच में और वेलफेयर वर्क किया. उसके बाद उनको स्थानीय चुनाव में लड़वाए तो उसमें से सीटें निकल के आने लगी. तो एक तरह से उनको पता था कि राजनीति क्या होनी है. और सबसे बड़ा मानता हूं कि जब एक तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के साथ देखिए, तमिलनाडु पॉलिटिक्स शुरू से देखिए, अन्नादुराय के टाइम से देखिए, कामराज के टाइम से देखिए, सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी. करुणानिधि खुद, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, सब फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आए. तो

0: हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी बताएं कि तमिलनाडु में जो ये एक कहें कि बहुत ही क्रांतिकारी सा बदलाव आया है, एक नई पार्टी जो उभर के आई है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरह का माहौल है और क्या आशाएं हैं?
1: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत, आप अगर इसे एक नजरिए से देखें तो युवाओं की और जेंजी की इस जीत में बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कई चर्चाओं में कि जो 14 लाख के आसपास पहली बार के वोटर्स थे उनमें युवा वर्ग में बहुत जबरदस्त क्रेज था विजय का, और जिसकी हम लोग बार बार विभिन्न मौकों पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से फिल्म स्टार्स की एक लार्जर देन लाइफ इमेज होती है। वो हमने देखा कि जो तमिलनाडु की राजनीति है उसमें शुरुआत में जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स, जो पेरियार आंदोलन था, वहां से लेकर के राजनीति, जो सिनेमा घर है वो एज ए क्लासरूम सोशल इविल्स को लेकर के और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो उठाते रहते थे, और अगली पीढ़ी में वही लोग नेता बनकर के आए, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने उसको एक्सपेंड किया। अगली पीढ़ी में वो जो पर्दे पर वो जो करते हुए दिख रहे थे गरीब तबके के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, वो उन्होंने सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों के जरिए किया, और इस बार उसी अटैचमेंट का लाभ जो है वो विजय ने अपनी ब्रांड इमेज को मजबूत करने में किया। तो 30 साल के आसपास तक के जितने 1 करोड़ से ऊपर मतदाता थे उनमें उनका जबरदस्त क्रेज रहा, सोशल मीडिया में जबरदस्त क्रेज रहा। तो एक तो उनके जीतने के पीछे एक ये वजह भी थी, प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स थे, जो एक वॉइड था, जो एक खालीपन था, जो फिल्मी सितारों का जिस तरीके से कहा जाए कि उस तरीके से पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ विजयकांत ने जरूर शुरुआत की थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए
0: जी।
1: तो रजनीकांत, कमल हासन सबने प्रयास किया लेकिन इस तरीके का कनेक्ट वो यूथ के साथ नहीं बना पाए, वो पीढ़ी भी पुरानी थी। नई पीढ़ी के सितारे के तौर पर विजय ने जबरदस्त कनेक्ट किया, तो एक तो ये रहा। और दूसरा, हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से युवा सड़कों पर जो विसल पोड़ू, जो तमिल में कहते हैं कि सीटी बजाओ, उनका जो नारा था, उनकी जो सिंबल था, वो भी सिंबल भी था, वो जबरदस्त हर तरफ सीटी बजाते हुए कार्यकर्ता घूम रहे हैं, सड़कों पर आतिशबाजी हो रही, हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं विजय की एक झलक पाने के लिए।
0: तो जोश बहुत है
1: पार्टी वर्कर्स के पास, तो इतने बड़े समूह की आकांक्षाओं को भी साकार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकार की असफलता जो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, और जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें हो रही थी कि एक तरीके से पूरा कब्जा हो रहा था, तो वो उस चीज से मुक्ति दिलाने का विजय वादा करके आए, और AIADMK में उस तरीके का करिश्मा नहीं रहा, लोगों को वो कनेक्ट विजय के साथ हुआ, स्पेशली यूथ को।
0: सुशील जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडियो में प्रफुल्ल जी आपके पास आएंगे, पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो AINRC और सहयोगी दल 17 सीटें जीत चुके हैं और एक पर आगे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 6 सीटें मिली हैं। टीवी के 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। सो जो 16 का जो मैजिक नंबर है वो ऑलरेडी जो बीजेपी और AINRC है उन्होंने हासिल कर लिया है। दोबारा उनकी सरकार बनेगी, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है?
2: देखिए, जो 2016-17 के बाद बीजेपी ने वहां पे एक जो एक्सपेरिमेंट किया, वहां की एक स्थानिक पार्टी को साथ में लेकर सरकार बनाई, उसको मर्ज नहीं किया बीजेपी में, उस पार्टी की आइडेंटिटी बनाए रखते हुए बीजेपी ने अलायंस किया। ये बीजेपी दक्षिण के राज्यों के लिए एक अलग सा प्रयोग करने का प्रयास कर रही थी, पुदुचेरी में वो सफल हुआ है और लगातार दूसरी बार NDA को वहां पे जीत मिली है। यहां पे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज जो अपने जो सुनने वाले हैं उनको बतानी है कि यदि हम AINRC और बीजेपी और उसके अलाइज, इनका सबका वोट परसेंटेज देखते हैं तो ये बहुत छोटी विधानसभा है इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आता, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बीजेपी ऑन इट्स ओन हैज 13% वोट शेयर हियर। तो वहां पे जो केमिस्ट्री होती है किसी भी अलायंस को जीतने के लिए कि वोट ट्रांसफर बहुत अच्छा हुआ है, और इस वजह से लगभग 23-24% के साथ AINRC और बीजेपी, तो वो वोट परसेंट उनका लगभग हम कह सकते हैं कि 35-36% के आसपास होने के बाद भी उन्होंने आराम से वहां पे मेजोरिटी हासिल की है। AIADMK उनके साथ में है ही, उसने भी 1.5-2% वोट ऐड किया है। उसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो DMK और कांग्रेस इनका मिलाकर लगभग 30% तक का वोट शेयर है।

0: कांग्रेस 17% पर है, डीएमके 13% पर है, लेकिन फिर भी वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अंदरूनी केमिस्ट्री नहीं है.
1: एब्सोल्युटली प्रफुल्ल जी,
0: ये समझना बहुत जरूरी है पुदुचेरी के मामले.
1: वेल लेट्स अंडरस्टैंड मोर एज टू व्हाट आर द सिचुएशंस इन पुदुचेरी. वी गो ओवर लाइव टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इन पुदुचेरी, द आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट बिबिन एस नाथ. बिबिन जी, वेलकम टू द शो. What is the sentiment on the ground? How do you see this victory of the BJP of national issues being considered by the people, the national leaders being considered by regional people or regional areas, and them giving a chance to the BJP once again in Puducherry? How the best Puducherry vision of 2021 has borne fruit?
2: Thank you. Good evening. In my perspective, actually, at the heart of the victory in Puducherry, rather than the double engine government, I can say it is once again the central figure of Chief Minister N. Rengasamy. So his performance is central to this to understand this mandate, because you know that he has led the India Alliance with such a grace. And on the other side, if you see in the secular Congress Alliance, there are so many problems in the seat sharing arrangements. But when you take the NDA Alliance, Rengasamy, the way Rengasamy handled all the things, I can say that the Rengasamy factor actually compared smoothly with the Alliance arithmetic. The All India NL Congress remains the backbone of this Alliance. They have actually been 12 seats out of the 16 seats they have contested. So we can say this chemistry between Rengasamy and the All India NL Congress and the Bharatiya Janata Party is that which paved the way for this grand victory in Puducherry against the state. And another factor you can see is that the delivery versus promise. Because NDA's campaign leaned heavily on the development project, welfare scheme, and visible government outcomes. But in contrast, the opposition focused on larger structural issues like a statehood. But it did not appear to resonate as strongly at the water level. The people in Puducherry have this clear intention in mind that they are a union territory. So for getting the welfare measures and development schemes from the center, they want the same government at the center and the union territory level. So that is a fact that actually worked for NDA Alliance in Puducherry. That's what I'm thinking.
3: थैंक यू मिस्टर नाथ फॉर योर पर्सपेक्टिव. एंड मिस्टर प्रसाद, आपसे जानना चाहेंगे, असम की तरफ अगर हम नजर डालें तो वहां पर तीसरी बार लगातार भाजपा और एनडीए की सरकार आई है. इनफैक्ट 65 है वहां का जो मैजिक फिगर था, और 102 सीटें भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिल चुकी हैं. कैसे देखते हैं आप ये जो तीसरी बार वहां का आना है, ये भरोसा जो जताया है इलेक्टोरेट ने, इसके पीछे क्या कारण मानते
4: हैं? सबसे बड़ा तो यही लगता है जी, जो वहां की सरकार है उसने काम किया जो जनता को पसंद आया, वरना उतना ही साल तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, बंगाल ने 15 साल उनको एंटी इनकम्बेंसी घेर गया, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी कहिए.
3: तो इसका कारण है जो विकास
4: के, हाँ, वहां पे जो खबर निकल के आई वो यही था कि जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं, जो तमाम सारे सीएम ने कार्यक्रम चलाए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसकी लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसमें काफी हद तक वो खरे उतरे.
1: KVC, my question to you would be that is this the time when the people in various states or union territories are considering the fact that having a double engine government, एक डबल इंजन की सरकार, जैसे बार बार माननीय प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों, भाजपा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो दोहराते रहते हैं इस बात को, how important is the fact that people are now realizing that the same party in the center, the same party in the state could help them more to prosper, to bring peace, to having free and fair elections, and for a vision of one India which is growing and making amends to the lives and standards of living of the people.
4: So I can argue it both ways.
1: All right.
4: Okay. But to be fair, the first way would be, if you look at the larger picture, definitely this has an impact on people when they see if there is a government of the center and a similar persuasion in the state, there will be less friction, political friction among the parties, and the possibility of, because we've seen in Bengal earlier in Delhi, the Aam Aadmi Party did not roll out the central government schemes or something else. But if you look at the flip side, which is what I was talking, I can argue it both ways, is if the Prime Minister is always saying that the BJP government, BJP at the center does not discriminate with states.
5: True.
4: So we send them funds. So there is a dichotomy, if you notice it.
1: True that.
4: It contradicts, you know, so that's why I said one can argue it both ways as a political observer.
1: Absolutely.
4: But what crosses the people's mind is something different. When they go to vote, they have a lot of things in mind. And the uppermost thing in the mind, which I believe in all state elections, is what will the government do for me? Period.
1: Praful ji, how important is the fact that on one hand the Prime Minister says that we do not discriminate, but on the other hand we see states not implementing central policies, and even the Prime Minister in his victory speech from the BJP headquarters saying that the first decision of the West Bengal government would be to implement Ayushman Bharat.
0: That, see, state government for political reasons many a times, you know, you're talking about the double engine ki sarkar in states like Tamil Nadu or Kerala, or earlier even in the Northeast, anti-Delhi sentiments were used to galvanize the regional sentiments.
5: Mm-hmm.
0: Hemant Biswa Sarma is doing it the other way around. He is using Assamese identity to strengthen the relationship with Delhi.
1: And I would say unapologetically.
0: Unapologetically.
1: He's being unapologetically
0: himself. One is, you know, his stand on, you know, illegal migration issue, because Assamese identity was a very, very sentimental issue since 2000.
5: Absolutely.
0: Actually, from AGP's agitation, ASU agitation, then AGP. The way, again, many a times we do not understand, 102 is a huge number in 126 assembly. But again, I will insist on chemistry. AGP, Bodoland Party and BJP together has, you know, 102 seats. And again, BJP is just 37%. All these two parties have brought in 10% more.
5: True that.
0: So it is shifting not just in their area where BJP is contesting. So when the chemistry is right, you convert seats more with lesser percentage. That is the formula that BJP is using everywhere.
3: In fact, Pradhan Mantri ne apne usme kaha sambodhan mein ki ab jo tea garden ke workers hain wo bhi hamare liye vote kar rahe hain. To jo abhi tak jo bhi aise segments the jo pro BJP nahi the, jo aap keh rahe hain ki jo exploit bhi kiya jata hai cultural identity ya regional jaisa Bengal mein bhi humne dekha, to wo bhi ab is baat ko you know स्वीकार रहे हैं कि नेशनल पार्टी भी उनके लिए बेहतर हो सकती है.
0: असम में और बंगाल में दोनों जगह पर मैंने देखा, खास करके बीजेपी ने अनुसूचित जाति जनजाति दोनों वर्गों में और खास करके टी गार्डन में पहली बार उनको वोटिंग राइट में इंक्लूजन तो एक हिस्सा है ही जिसका सेंटिमेंटल, पहली बार उनको लैंड राइट मिला है. आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन उनको वहां पे एज अ लेबर लेकर गया थे, तो उसके कारण टी गार्डन वर्कर्स को लैंड राइट नहीं थे, अभी उनको पट्टा मिला है. That has been the game changer. You know, unfortunately, Congress or Trinamool Congress didn't pay attention to. वो मुझे लगता है, और वो तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. तो ये केवल आयुष्मान भारत की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल में पट्टा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में सीए और डिलिमिटेशन में कैसी दिक्कतें आई जो असम में इम्प्लीमेंट हो गया. तो वो एक मैसेज है. और तीसरा सबसे बड़ा मुझे जो फैक्टर लगता है, अगेन टुडे नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बंगाल इज वन स्टेट वेयर सेवन पे कमीशन इज स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट.
3: ओके,
0: तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो रिजेंटमेंट है, बहुत लोग पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी तो करते हैं, लेकिन स्टेट मशीनरी को जो सेंटर के बेनिफिट्स पास ऑन नहीं हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता. मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर. तो असम में ये और असम और बंगाल में ये मुझे लगता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो एक्सप्लॉयटेड स्टेट मशीनरी के थ्रू फील करते थे, उन्होंने डिसाइसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है.
1: एब्सोल्युटली.
3: अगर हम केरला की बात करें मिस्टर प्रसाद, तो वहां पर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट थी, अब वो इस चुनाव में अपना जो स्थान है वो बरकरार नहीं कर पाई है, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत गया है. सो इसको आप, इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या जो एक लेफ्ट की सरकार एक जो बची हुई थी एक राज्य में, अब वो भी नहीं रहेगी, तो इसको भी आप एक बहुत बड़ा एक बदलाव मानते?
4: जी, राजनीति में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ठीक है एक लेजिस्लेटिव प्रेजेंस उनका खत्म हो गया, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी या वो उसमें फर्क पड़ा है, लेकिन एक प्रेजेंस नहीं लेगा लेजिस्लेटिव, नंबर वन। नंबर टू, एक चीज

0: जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स हम कहते हैं केरला में जैसे तो ऑल्टरनेट करते थे, वो वापस आ गया क्योंकि पिछले बारी वो टूटा था बहुत सालों बाद कि लेफ्ट की सरकार रिपीट हो गई थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो वो एक सिग्निफिकेंट चेंज है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी अपनी समस्याएं हैं, अभी वो आगे चल के पता लगेंगी हमें।
1: Absolutely. But KV sir, as we were talking earlier, you've said that you've been covering elections and you've been seeing the political scenario in India for so long now, decades. Has the left completely lost track of the voter sentiment now? We see in West Bengal, we see in Assam, now we've seen it in Kerala. How the left has completely been sidelined by the people, and time and again, are there no issues with the left, or the left has completely lost track of what the people want?
0: I don't say they're lost completely, but just that what the issues that they're picking up are not gaining traction. A, probably they're not able to reach out to the segments in the manner in which they were reaching out earlier. The landscape has changed and they have not adapted to the changing landscape. You have to understand that every generation there will be new things coming up. So if you can't use the same old methods of mobilization, mass mobilization, which used to be the criteria for left parties in India, that has changed.
2: और प्रफुल्ल जी, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अभी पोस्ट पोल आप किस तरह का वहां पर अलायंस बनता हुआ देखते हैं, किस तरह की नेगोशिएशंस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है सरकार बनने के लिए?
3: देखिए, टीवी के मोटा मोटा मानकर चलते हैं, अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से 107 108 सीट तक सेटल डाउन होगा, और इसलिए कोई और अल्टरनेट गवर्नमेंट बनने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो टीवी की गवर्नमेंट बनाएगी। विजय इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज अ यू नो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इवन बिफोर व्हेन बोथ द पार्टीज वर ट्राइंग टू निगोशिएट विथ हिम, वो तो बात ही इसी तरीके से कर रहा था कि जिसको मेरे पास आना है वो आए, मैं तो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हूं। तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज सपोर्ट बेस। अब चैलेंज उसके सामने दो तरीके के है, एक वो किस तरीके से, क्योंकि उसने एंटी डीएम के पॉलिटिक्स को तमिलनाडु में लाया है ये पक्का है, लेकिन क्या वो आज छोटी पार्टीज को साथ में लेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने की स्थिति में है, या एआईडीएमके के साथ इसमें बीजेपी और सेंटर कितना रोल प्ले करता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, बिकॉज विजय एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इन टॉकिंग टर्म्स विद द बीजेपी एंड एआईडीएमके ऑल्सो। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है कि उसने लगभग सारे उसके कैंडिडेट्स फ्रेश है, किसी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, एंड गवर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्टेट लाइक तमिलनाडु इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर।
2: और प्रफुल्ल जी, पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है, इसमें क्या कुछ खास रहा इस उपचुनाव में?
3: देखिए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा पवार की सीट है, हाईएस्ट मार्जिन से जीती है बारामती की, तो अजित पवार के निधन के बाद वो सीट वेकेंट हुई थी इसलिए वहां पे बायपोल हुआ है। मुझे नागालैंड की विक्ट्री बीजेपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट लगती है। नागालैंड में अपने दम पर बीजेपी ने एनपीपी और वहां की स्थानीय पार्टियों को हराकर वो सीट जीतना, ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट से भी है।
1: केवी सर, योर व्यूज ऑन द विक्ट्रीज ऑफ द बाय इलेक्शंस सो फार एंड हाउ डज इट?
0: वेल, नॉर्मली वी सी बाय इलेक्शंस द गवर्नमेंट ऑफ द डे gets to carry the by-elections.
1: Right.
0: So if you look at the last in Karnataka, BJP has, Congress has. In Gujarat, BJP. And of course, as
1: Maharashtra again, BJP.
0: Maharashtra,
1: yes.
0: But Maharashtra there was less of a contest because there was more out of sentiments. People had not contested that seat. That is a very common trend in Indian politics. Nagaland is the sole exception if you look at this way. But otherwise, the broader trend that the state assembly elections by polls usually go with the government of the day is more or less in place.
2: समय समाप्त हो रहा है, सो अब हम इस चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे। प्रफुल्ल जी, प्रसाद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने जो आज जनादेश आया है उसका विश्लेषण हमारे श्रोताओं के लिए किया,
0: धन्यवाद।
2: और अब मेरी तरफ से और मेरे को एंकर वैभव श्रीवास्तव की तरफ से आपको नमस्कार। जनादेश 2026 कि इस विशेष चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आकाशवाणी।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
4: जनादेश 2026
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम

0: दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबाई निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलागा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 96 सीटें जीत चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके 50 सीटें जीत चुकी है। एआईएडीएमके 42 सीटें जीत चुकी है। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कुलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और दवेड़ मुन्नेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलागा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं। उधर पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस 30 सीटों में से 29 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं। एन रंगास्वामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है और DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों और की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेड सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड की कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक के बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश होल्पमेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगिरी दक्षिण से कांग्रेस के समर्थ समनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। उधर

0: the people of Kerala for a truly decisive mandate in the assembly polls. In a social media post, Mr. Gandhi congratulated every UDF leader and worker for a hard-fought and well-run campaign. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से दो व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित गुजरने की पुष्टि की। ईरान के मिसाइल हमले के दावों को खारिज किया। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रूस के मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत और 18 घायल। एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत देशों में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए वित्त पोषण सुविधा शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी सेना ने सोमवार को पुष्टि की कि अमरीकी ध्वजवाहक दो व्यापारिक पोत होर्मुज जल डमरू मध्य से सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन ईरान की चेतावनियों के बावजूद और संकरे जलमार्ग में हुई घटनाओं से संबंधित बयानों के बावजूद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: यह घटनाक्रम ईरान की अर्धसरकारी समाचार एजेंसी फार्स के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी सेना ने जास्क द्वीप के पास एक अमरीकी नौसेना पोत पर दो मिसाइलें दागी क्योंकि उसने कथित तौर पर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इस दावे का स्पष्ट खंडन करते हुए कहा कि किसी भी अमरीकी नौसेना पोत पर हमला नहीं हुआ है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने एक पोत पर ड्रोन हमले की पुष्टि की। दो ड्रोनों ने ADNOC से संबंधित एक टैंकर पर उस समय हमला किया जब वह संकरे जलमार्ग से गुजर रहा था। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया और इसे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा की गई समुद्री डकैती की कार्रवाई बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: सरकार ने कहा है कि देशभर में एलपीजी वितरकों के पास एलपीजी की कमी नहीं हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये जानकारी दी।
3: कमर्शियल एलपीजी में 70% तक की आपूर्ति की जा रही है। अभी तक लगभग 2,15,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और ऑटो एलपीजी की सेल अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 11,100 टन की गई है। 5 किलो के सिलेंडर की आपूर्ति भी 100% इंक्रीज की जा चुकी है और इसके चलते अब तक लगभग 23,05,000 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। श्री शर्मा ने बताया कि डीजी शिपिंग ने 2,976 से अधिक भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में सहायता की है। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा निवारण उपायों के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जाफरी जमशोद्दीन ने आज जकार्ता में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमू के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर से पहले इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों का सम्मान करते हुए रक्षा क्षेत्र में ठोस सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। श्री कोइजुमू ने इसे एक महत्वपूर्ण समझौता और दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए एक दिशा निर्देशक बताया। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने और रक्षा प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो अटलांटिक महासागर में एक क्रूज पोत पर हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इस पोत पर हंता वायरस प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो गई है और अनेक संक्रमित बताए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वो स्थिति से अवगत है और राहत कार्यों में

0: सहायता कर रहा है। हंता वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और गिलहरियों इत्यादि के मलमूत्र या लार के संपर्क से मनुष्यों में फैलता है। यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित खार्कीव के नगर मरेफा पर रूसी मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हुए। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार मृतकों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। इस घटना के बारे में रूस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एशियाई विकास बैंक ADB ने आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहायता के उद्देश्य से एक नई वित्त पोषण सुविधा शुरू की है। यह पहल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी में लाभ पहुंचाएगी। महत्वपूर्ण खनिज से विनिर्माण वित्त पोषण साझेदारी सुविधा नामक इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्र को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से प्रसंस्करण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण जैसे उच्च मूल्य वाले उद्योगों के केंद्र में बदलना है। बैंक के अनुसार ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखलाओं में परियोजना तैयारी, नीतिगत सुधार और सार्वजनिक निवेश तथा निजी वित्त पोषण को बढ़ावा देगी। ये कार्यक्रम विकासशील सदस्य देशों को उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सहायता के लिए शुरू किया गया है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा ने एक बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण खनिज अगले औद्योगिक युग को आकार देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इसका नेतृत्व जापानी प्रतिनिधि सभा के सांसद और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान ऑटोमोबाइल, अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। श्री गोयल ने भारत से निर्यात बढ़ाने और बाजार पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता तथा व्यापक हिंद प्रशांत आर्थिक सहयोग ढांचे के अंतर्गत भविष्य की संभावनाएं तलाशने हेतु कारोबारी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉ जयशंकर ने जमैका के सबीना पार्क क्रिकेट स्टेडियम में नए डिजिटल स्कोर बोर्ड के अनावरण के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज दिल्ली में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ताकायुकी कोबायाशी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने भारत जापान संबंधों के रणनीतिक महत्व की पुष्टि की और साझा हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 8वें ओवर में बिना किसी विकेट के 97 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से 2 व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित गुजरने की पुष्टि की। ईरान के मिसाइल हमले के दावों को खारिज किया। इंडोनेशिया और जापान ने रक्षा उद्योग, मानव विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के खार्कीव क्षेत्र में रूस के मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत और 18 घायल। एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए वित्त पोषण सुविधा शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई

चांद मेरे आजा फिल्म के साथ ही आपके लिए प्यार भरे गीतों का ये कार्यक्रम भी आ चुका है, जिसका नाम है हर सिंगार। आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। समय हो रहा है 10:34:35। स्वीकार कीजिए अभिनीत शुक्ला का नमस्कार। इस गीत को आवाज दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, बोल आईसी कपूर के और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। अब आगे 1965 की फिल्म वक्त से महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया ये गीत, जिसके गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार रवि।

मुकेश और विजयंती माला की आवाज में ये गीत था फिल्म संगम से, जिसे लिखा शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का। अब तेरे लिए दुनिया होती है तो हो दुश्मन, अब तेरे लिए दुनिया होती है तो हो दुश्मन, कांटों से नहीं डरता फूलों का तमन्नाई। नाजिम सुल्तानपुरी की इस गजल के ही जैसे भाव हैं हमारे अगले गीत के, जो कि है फिल्म अमृत से मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ, बोल आनंद बख्शी के, और इसकी धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाज में मुद्दत फिल्म से ये गीत था जिसे लिखा इंदीवर ने और इसे संगीत से सजाया बप्पी लहरी ने। कार्यक्रम की शुरुआत रफी और लता की सदाबहार आवाज के साथ हुई तो अंत भी उसी से करेंगे। बस वो जो चांद था ना वो कहीं खो सा गया है। फिल्म का नाम मैं चुप रहूंगी। गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

चांद कहीं नहीं खोया है, यहीं पर है और हमारी ये मुलाकात उसके आधा सफर तय करने तक चलती रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी समाचार के बाद भी। लेकिन हरसिंगार की यात्रा आज यहीं समाप्त होती है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरीडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन

जिंदगी के इतने सारे सवालों में से कुछ के जवाब शायद ना भी मिले, लेकिन आपके मन के हर एक भाव को आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल बखूबी समझता है। इसलिए तो आपकी परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के गीतों का गुलदस्ता आपको इस कार्यक्रम के जरिए पेश करता है, जिसका नाम है गीत मेरे मनमीत। पहला गीत था मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत फिल्म मासूम से अनूप घोषाल की आवाज में, गीतकार गुलजार और संगीतकार आरडी बर्मन।

यही होता है अक्सर जिंदगी में, यही होता है अक्सर जिंदगी में कि थोड़ा गम भी शामिल हो खुशी में। प्रियदर्शी ठाकुर ख्याल ने इन कुछ शब्दों में जीवन की जैसे पूरी सच्चाई ही लिख दी। वैसे इस गीत में शब्द रचना थी गुलजार की, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज, फिल्म का नाम सीमा। अगला गीत बॉबी फिल्म से, शैलेन्द्र सिंह और मन्ना डे का गाया हुआ, विट्ठल भाई पटेल के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म गुमराह से महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, रवि ने इसे सुरों में पिरोया। इसे और हमारे अगले गीत को जोड़ती है सैयद सरोज आसिफ की कलम से निकले ये शब्द कि चांद को देख के जुगनू ने फरमाया है, चांद को देख के जुगनू ने फरमाया है, सुबह का भूला शाम को लौट के आया है। तो चलिए, अब जब चांद की बात चली ही है तो सुन लेते हैं फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे से मुकेश की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत सरदार मलिक का।

दुनिया में उस जैसा कोई नहीं, उसकी अदाएं सबसे जुदा है उसकी।

इस मजेदार गीत के बारे में तो वैसे आप सब जानते ही होंगे, लेकिन चलिए बता ही देते हैं कि मन्ना डे का गाया ये गीत था फिल्म 1968 में आई पड़ोसन से। राजेंद्र कृष्णा का लिखा हुआ, आरडी बर्मन ने दिया इसका संगीत। अब कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में हम आपको जब हर तरह के गाने सुना ही रहे हैं और जब जाने का समय भी होने को आया, तो किशोर कुमार की बात का जवाब दीजिए। फिल्म का नाम दाग, गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हमारा भी बस यही मन करता है कि अपने दिल की बात आपको बताते रहें और आपकी बातें सुनते रहें। लेकिन क्या करें, हमारी मुलाकात आज का दिन और तारीख बदलने से ठीक पहले पहुंच चुकी है अपनी मंजिल तक। तो गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम को देना होगा विराम। इसके साथ ही मुझे यानी कि अवनीत शुक्ला को आज्ञा दीजिए, हम मिलेंगे अगले सोमवार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आगे सुनिए समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट।

0: मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 105 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। AIADMK ने 46 सीट जीते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और UDF सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AI

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आगाज करते हैं निशिगंधा का। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ। तुम मसीहा नहीं होते हो तो कातिल हो जाओ। दश्त से दूर भी क्या रंग दिखाता है जुनू, देखना है तो किसी शहर में दाखिल हो जाओ। वो सितमगर तुम्हें तस्खीर किया चाहता है, वो सितमगर तुम्हें तस्खीर किया चाहता है। खाक बन जाओ और उस शख्स को हासिल हो जाओ। मैं हूं मौज ए फना और यहां कोई नहीं, तुम अगर हो जरा राह में हायल हो जाओ। इश्क क्या कार्य हवस भी कोई आसान नहीं, इश्क क्या कार्य हवस भी कोई आसान नहीं। खैर पहले इस काम के काबिल हो जाओ, तुम मसीहा तो नहीं हो कातिल हो जाओ।

खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, कूचे से तेरे बाद सबा ले गई हमको। फिर छोड़ दिया रेगिसरे राह समझकर, कुछ दूर तो मौसम की हवा ले गई हमको, खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, कूचे से तेरे बाद सबा ले गई हमको।

0: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे
1: कैसे? कुछ
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही खूबसूरत बात आपकी नजर करते हैं कि रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग, जिद्दी वहशी चंचल अल्हड़ मीठे लोग रसीले लोग, होंठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे। हमको सारी रात जगाया जलते बुझते तारों ने, हमको सारी रात जगाया जलते बुझते तारों ने, हम क्यों उनके दर पर उतरे कितने और ठिकाने थे। जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग, होंठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे।

सुरभि के साथ प्रोग्राम निशिगंधा आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और चलते चलते एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए।

आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए, इस तरह हर हाल में जीने का लुत्फ उठाइए। करते हो इंसानियत की बातें इतनी जो दोस्तों, तो बेसहारों को जरा गले से तो लगाइए। आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए, इस तरह हर हाल में जीने का लुत्फ उठाइए। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 1:10 पर। गीत सुहाने में अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की

0: 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Kerala, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance, NDA government, led by N. Rangaswamy's All India NR Congress, AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
3: Trinamool Congress chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhavanipur assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। गीत सुहाने लेकर हाजिर हूं मैं सुरभि आपके बीच। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, लेकिन

पहले। बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे। तुम सोच के रखना दोगी जवाब क्या जब हम सवालात की बरसात करेंगे। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही बात करेंगे। सुनकर रो पड़ोगे तुम खून के आंसू जब पेश अपने दिल के जज्बात करेंगे। जो बात दिल में है हम वही बात करेंगे।

मंजिलें दर मंजिलें हैं, फासले दर फासले। मंजिलें दर मंजिलें हैं, फासले दर फासले। रास्ते दर रास्ते हैं, हादसे दर हादसे। सोचता हूँ होगा क्या, मासूम से वो लोग हैं। राहबर भटका रहे हैं आज जिनके काफिले। चलते चलते रुक गया हूँ मैं भी इस उम्मीद पे, जो लोग बिछड़े हुए हैं मुझसे शायद आ मिलें। मंजिलें दर मंजिलें हैं, फासले दर फासले। रास्ते दर रास्ते हैं, हादसे दर हादसे।

रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न रहे।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूबसूरत बात कही है किसी ने कि दिल से अपने गम जमाने का लगाए बैठे हैं, दिल से अपने गम जमाने का लगाए बैठे हैं, एक अलग ही अपनी दुनिया हम सजाए बैठे हैं। हम नहीं कहते किसी को हाल दिल अपना, मगर लोग कहते हैं कि हम क्या क्या छुपाए बैठे हैं। मैं ना पूछूंगा सबब उनसे खफा होने का अब, मैं ना पूछूंगा सबब उनसे खफा होने का अब, खुद ही जब वो गैर को अपना बनाए बैठे हैं, एक अलग ही दुनिया हम सजाए बैठे हैं।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। अपनों के दिए जख्म हैं दौलत मेरे लिए, अपनों के दिए जख्म हैं दौलत मेरे लिए, रहने दे इनको ताजा कोई दवा न कर। मेरे लिए तो खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। मुश्किल से ये बुझ पाए हैं शोले मेरे दिल के, मुश्किल से ये बुझ पाए हैं शोले मेरे दिल के, जल जाएगा तू देख ले इनको हवा न कर। हर वक्त रहना चाहता हूं तेरे सामने अदना, अपने ख्याल में तू मुझको बड़ा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। मेरे लिए तो खुद को यूं खुद से जुदा न कर।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अपना दीवाना बनाकर ले जाए, अपना दीवाना बनाकर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए। हुस्न वालों में कोई ऐसा हो जो मुझको मुझसे चुरा कर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए। रंग रुखसार पे इतना इतराओ नहीं, जाने कब वक्त उड़ा कर ले जाए। हुस्न वालों में कोई ऐसा हो जो मुझको मुझसे चुरा कर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए।

तीर की अब तो हमें रोशनी सी लगती है, जिंदगी आज हमें जिंदगी सी लगती है। कैसे कह दूं कि फरिश्ता है वो देखो उसको, कैसे कह दूं कि फरिश्ता है वो देखो उसको, उसकी फितरत तो हमें आदमी सी लगती है। बन के साया जो हमेशा ही मेरे साथ रहा, बन के साया जो हमेशा ही मेरे साथ रहा, उसकी सूरत क्यों मुझे अजनबी सी लगती है। तीरगी अब तो हमें रोशनी सी लगती है, जिंदगी आज हमें जिंदगी सी लगती है। और इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। 2:10 पर रात सुरमई में होगी सुरभि और आपकी मुलाकात एक बार फिर। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बू

0: और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on 1 seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam,

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सुरभि और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। उससे पहले अब जाके जिंदगी को समझने लगा हूं मैं, अब जाके जिंदगी को समझने लगा हूं मैं, जब पेचो खम में इसके उलझने लगा हूं मैं, एहसास मेरा आज भी जिंदा है देखिए, तुम धूप में जले तो पिघलने लगा हूं मैं, तेरी वजह से दुनिया में मेरा भी है वजूद,

दरार से ही अपने निखरने लगा हूँ मैं, अब जाके जिंदगी को समझने लगा हूँ मैं, जब पेचोखम में इसके उलझने लगा हूँ मैं।

जब किसी की याद आती है और ऐसे में अगर ये चंचल हवा छेड़ दे और उलझे हुए बालों को, चेहरे को सुलझाती हुई, सहलाती हुई और अपने आप में एक हल्की सी खुशी लबों पर आ जाए तो उस पल में सब कुछ थम जाता है। मन केवल उस स्पर्श को महसूस करता है जिसे शायद पहले भी महसूस किया जा चुका है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, इल्जाम हम भी उस पे कोई लगा देते, उसका अभी बुलावा आता नहीं मगर जीते हैं किस तरह से तुमको बता देते, तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, इल्जाम हम भी उस पे कोई लगा देते।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित।

0: घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरला में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी ईरान द्वारा पिछले 24 घंटों में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले तेज करने के बाद हुई है। इसे अप्रैल की शुरुआत में अमरीका और ईरान के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर स्थिति माना जा रहा है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने के साथ तूफान आने की भी प्रबल संभावना है, जिसमें हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Kerala, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress 160

100.1 पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कट ही जाएगी जिंदगी कुछ बेचैनियों के साथ भी, कट ही जाएगी जिंदगी कुछ बेचैनियों के साथ भी, अब सुकून की तलाश में कहां तक और बेचैन हुआ जाए। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

0: अब तो मुस्कुराने से पहले भी हजार बार सोचना पड़ता है। अब तो मुस्कुराने से पहले भी हजार बार सोचना पड़ता है। आजकल लोग मुस्कुराने की भी वजह पूछने लगे हैं। 3:18 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनू।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं,

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके बोल हैं, मैंने एक ख्वाब सा देखा। मिलेंगे जब भी तुमसे तो सिर्फ तुम्हारे होकर, मिलेंगे जब भी तुमसे तो सिर्फ तुम्हारे होकर, अगर ना मिले तो समझ जाना हम तुम्हारे थे ही नहीं। 3:24 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, 3:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को 100.1 FM गोल्ड पर।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। रिश्ते हैं तो कुछ शिकायतें भी बनी ही रहेंगी, रिश्ते हैं तो कुछ शिकायतें भी बनी ही रहेंगी, ना रहे अगर कोई शिकायत तो समझ लेना अब वो रिश्ता भी नहीं रहा। 3:36 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कुछ मासूमियत बना कर रखिए अपने चेहरे पर भी, कुछ मासूमियत बना कर रखिए अपने चेहरे पर भी, क्योंकि गुस्से में सिर्फ शैतान अच्छे लगते हैं, इंसान नहीं। 3:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

रहते हो तुम ना जाने किस गुरूर में, रहते हो तुम ना जाने किस गुरूर में, होकर मगरूर जाने किस फितूर में। मिले जो फुर्सत तो आओ दो पल बैठे कहीं, मिले जो फुर्सत तो आओ दो पल बैठे कहीं, कब तक भटकते रहोगे यूं ही फिजूल में। 3:53 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

काश किसी दीवाने को। 3:59 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर में ठीक 4 बजे आप सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री करगम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं।

0: पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार को हराकर जीत हासिल की है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on 1 seat. Congress and regional Aam Janata Unayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 401 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's-led Tamila Vetri Kadagam is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 108 seats out of 234 constituencies across the state. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munetra Kadagam, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 59 seats, while its rival All India Anna Dravida Munetra Kadagam has won 47 seats.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चेत। करनी है हमसे बातें तो बड़े इत्मीनान से कीजिए, करनी है हमसे बातें तो बड़े इत्मीनान से कीजिए, जल्दी नहीं है हमें कहीं जाने की। करते हैं वो लोग हर बात हड़बड़ी में, करते हैं वो लोग हर बात हड़बड़ी में, जिन्हें हमेशा ललक रहती है कुछ न कुछ पाने की। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

सुकून से बिता लें कुछ पल, अब वो वक्त ही चला गया। सुकून से बिता लें कुछ पल, अब वो वक्त ही चला गया। मिलने मिलाने का वो दौर अब गुजरे वक्त में बदल गया। होगी ना बात अब उस बेफिक्री के साथ, होगी ना बात अब उस बेफिक्री के साथ। लगता है हर कोई वक्त से पहले ही संभल गया। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।

बनाए रखिए कुछ रिश्ते बिना मतलब के भी, बनाए रखिए कुछ रिश्ते बिना मतलब के भी, जरूरत के हिसाब से बनाए गए रिश्ते अक्सर जरूरत पूरी होने के बाद खत्म हो जाते हैं। 4:24 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मुझे तुम मिल गए हमदम। हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना ही होगा, हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना ही होगा, जमाने के हिसाब से बदलना हमने अभी तक सीखा ही नहीं। 4:34 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

वाकिफ होना पड़ेगा दुनिया के तौर तरीकों से अब, वाकिफ होना पड़ेगा दुनिया के तौर तरीकों से अब, नादानियां करने की उम्र शायद अब निकल गई। 3:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

शिकायतें तो बहुत हैं हम सभी के पास, शिकायतें तो बहुत हैं हम सभी के पास, अपनी शिकायतें लेकर जाऊं अब किसके पास। शिकायतें सुनने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, शिकायतें सुनने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, तलाश है मुझे ऐसे इंसान की जिसके पास हो समाधान भी कुछ खास। 4:45 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कभी रात दिन हम दूर थे, करनी है बात तो करो किसी भी अंदाज में, करनी है बात तो करो किसी भी अंदाज में, पर कुछ नरमी भी रखो अपने मिजाज में। अदब और तहजीब से पता चलते हैं संस्कार हमारे, अदब और तहजीब से पता चलते हैं संस्कार हमारे, हमेशा क्यों रहते हो इतने अहंकार में। 4:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दलों को एक सीट मिली। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जाकुलबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उनकी निर्णायक वापसी का संकेत है, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि डीएमके ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। पीटते हो ढोल सारा दिन अपने काम और काम की व्यस्तताओं का, पीटते हो सारा दिन ढोल अपने काम और अपने काम की व्यस्तताओं का, फिर करते हो गुमान अपने रोजमर्रा के काम का। कमा तो रहे हो तुम अपने और सिर्फ अपने ही लिए, कमा तो रहे हो तुम अपने और सिर्फ अपने ही लिए, फिर रोना क्यों रोते हो समय के अभाव का। 5:12 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में क्या मिलिए ऐसे लोगों से। जरा संभल कर चलिए आज के इस माहौल में, जरा संभल कर चलिए आज के इस माहौल में, गिरेंगे तो खुद ही उठना पड़ेगा चाहे हो किसी भी हाल में। गिराने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, गिराने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, बस संभालने वाला कोई भी ना होगा जब आप फंसेंगे किसी बवाल में। 5:17 हो चुके हैं। वैसे तो आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर अगर आप चाहें तो YouTube पर भी मुझे RJ अर्चित के नाम से सर्च करके सुन सकते हैं।

कुछ तो खास होगा सूरज की पहली किरण में, कुछ तो खास होगा सूरज की पहली किरण में, बड़े से बड़ा अंधेरा भी इसे देखकर भाग जाता है। यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ, यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ, जीवन में गजब का आत्मविश्वास आता है। 5:30 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।